0: खाइएगा कि आपका गला बैठ जाए। कोशिश करिए कि अच्छे टेम्परेचर की चीजें खाइए और बहुत ज्यादा बाहर की तली हुई चीजें अवॉइड करिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का खतरा भी इसके साथ साथ बढ़ जाता है। सो डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: तो इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम जो मैं आपके लिए संडे की शाम को लेकर आती हूँ। और अच्छी बात यह है कि हर संडे की शाम को और भी सुहानी बनाते हैं मानवता की बात करते हुए। हम सबको पता है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस मानवता को भूलते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि मैं उन सभी लोगों से आपको मिलवाती हूँ जो इस तरीके के काम करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के काम करते हैं, मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और अगर पूरे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में नहीं पता है, तो इनका भवन कहाँ पर है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार के काम ये करते हैं, आज हम बहुत सारी बातें इनसे जानने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के, राकेश सोनी जी हैं जो कि ट्रेजरर हैं, और महेश गटानी जी हैं जो कि सेक्रेटरी तो हैं ही इस साल के, लेकिन वैसे हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर के ऑल ओवर के प्रेसिडेंट रहे हैं और एक बहुत ही सीनियर मेंबर है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के। आप सभी का स्वागत है रेडियो वन रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल राम कुमार जी आपसे करना चाहूंगी, अगर मैं पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट तो इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है?
3: माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट की शुरुआत सन 1985 में समाज सेवा और जन सेवाओं के कार्य करने हेतु शुरू किया गया था। इस ट्रस्ट के तहत हम समाज सेवा के कार्यक्रमों में माहेश्वरी समाज के सभी जरूरतमंद परिवारों को मेडिकल सहायता, शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप, विधवा पेंशन और शादी में सहयोग करते हैं। जन सेवा के कार्यक्रमों में नेत्र चिकित्सा शिविर, पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप, दिव्यांग कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, आयुर्वेदिक चेकअप कैंप, निःशुल्क एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का भी माहेश्वरी भवन में संचालन समय समय पर

0: हार्ट चेकअप, कैंसर, डायबिटिक एवं अन्य बीमारियों के संबंधित अवेयरनेस कैंपों का भी आयोजन हम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासन का सहयोग, कोरोना के समय प्रशासन को फुल सपोर्ट, साथ ही साथ रेड क्रॉस के सहयोग से फूड पैकेट्स, सूखा राशन तथा जरूरतमंद परिवारों को वितरण किया गया।
1: सो भाई, बड़े सारे काम है जो माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट करती है, लेकिन अगर हम देखें एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का जब गठन हुआ, सो इसका गठन इसलिए नहीं हुआ कि चलिए अपने समुदाय के लोगों की मदद की जाए, इसलिए हुआ कि इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और खास तौर पर अगर हम अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश में हम अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं वो लोग जिनके पास पर्याप्त नहीं है, जिनके जीवन के लिए उनके पास पर्याप्त नहीं है। अब क्या पर्याप्त नहीं है? कई बार उनके पास सेवाएं पर्याप्त नहीं है, अगर वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। सो ये जो सलाह है ये उन्हें कहां से मिलेगी? और ऐसे नेकी के काम माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट एक लंबे समय से करती आ रही है। अब ये किस प्रकार के काम कर रहे हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं, किस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, समय समय पर किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं, टीम कैसी है, बहुत सारी बातें हैं जो इनसे पूछनी है, लेकिन उतने ही गाने भी तो हैं जो आपको सुनाने हैं। सो फिलहाल कहीं मचाइए, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.9 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर हर चल रहे हैं मानवता की राह पर, और हम मानवता की राह पर चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सदन जो है या भवन जो है वो आपको मिलेगा 7 सेक्टर में। कहां पूछूंगी, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले राकेश जी, हम बात कर रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में, सो मुझे बताइए कि किस प्रकार के अलग अलग काम हैं जो किए जाते हैं।
1: जय महेश, ये माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो विभिन्न समय पे अंतराल में अपना कैंप लगाता है फरीदाबाद में, और इसका जो लाभार्थी है वो आसपास के 150 से 200 गांव इसके लाभार्थी होते हैं। जैसे हम पोलियो कैंप लगाते हैं या नेत्र चिकित्सा कैंप लगाते हैं। नेत्र चिकित्सा कैंप तो अब क्या है कि गवर्नमेंट की उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया
0: जी।
1: बाकी वो लगाते हैं, तो हम एक महीने पहले से हम इन गांवों में, जो मेवात के गांव हो गए, नू हो गए, उसके आसपास हमारी टीम जाती है
0: जी।
1: और वहाँ पे प्रचार करती है, वहाँ के सरपंच हो गया या प्रधान हो गया उनसे वो बात करती है, उनको पेम्पलेट देती है, फिर ये बताती है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो कि सेक्टर 7A में स्थित है वहाँ पे पोलियो कैंप चलता है, उसमें आप आए। और जो भी लोग वहाँ आते हैं, अपने आते तो वैसे वो लेके आते हैं डंडा जैसा की, लेकिन जाते अपने पैरों से हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारे समाज के जो व्यक्ति है, जो हमारे समाज के जो भी सदस्य है, उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं और ये सेवा कार्य हम करते रहे हैं।
0: राकेश जी, एक चीज जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, और वो ये है कि जो आप लोगों का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है दिव्यांग के लिए कैंप, उसमें बहुत सारे दिव्यांग आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो कि दूर दूर से कहीं से आते हैं, जिनके पास शायद कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए किस प्रकार की सुविधा और किसके एसोसिएशन के साथ मिलकर किस तरीके से आप ये दिव्यांग कैंप लगाते हैं?
1: मैं आपको यही बता रहा था कि इसके लिए हम एक महीने पहले से गांव-गांव जाके भ्रमण करके उनको अपने जैसे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, उनके सरपंच हो, प्रधान हो, उनको हम अपने पैम्पलेट देते हैं। अगर उनको बोलते हैं कि आपके पास अगर आने की सुविधा नहीं हो तो हमारे को इन्फॉर्म कर दो, हम वहाँ से गाड़ी भेज देते हैं, उनको बुलाते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारी पूरी टीम है समाज की, वो निस्वार्थ 24 घंटे वहाँ पे तैनात रहती है, और उनके जो भी डॉक्टर्स, जो महावीर, भगवान महावीर कैंप है जयपुर का, उसके साथ में मिलके हम उनका ये इलाज करवाते हैं और उनको पैरों से वापस भेजते हैं। उसके बाद उनको ट्राई साइकिल जो भी उनको देनी होती है वो भी हम समय समय पर देते हैं।
0: दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे होते हैं जो शायद कम पैसे होने के कारण या फिर कोई और परेशानी के कारण विकलांग तो हो गए, लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती है कि वो अपने अंग लगवा सकें। आजकल तो आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट होता है, कृत्रिम अंग जो है वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये लगाना भी तो अपने आप में एक कॉस्ट है। मिनिमम 5 से लेकर 15-20-25 हजार तक का एक खर्चा आता है, और कई बार परिवारों में इतना पैसा ही नहीं होता है कि उस विकलांग इंसान के लिए वो एक कृत्रिम कोई भी अंग है वो लगाया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट निशुल्क आपके लिए ये काम करती है, और खूबसूरत बात यह है कि आप किसी भी गांव के हो सकते हैं, आप इस शहर में कहीं भी रह सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एक विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, और आपको आना है और आपको चाहिए कि आपका अंग लग जाए और उसके बाद आप अपना जीवन आसानी से बिता सकें, सो ये सब काम करती है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मैं जो इनसे जानना चाहती हूँ। आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से रामकुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश जी मेरे साथ बैठे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक बेहतरीन सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड फील लाइफ।
2: क्या कहा?

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं जो ट्रेजरर हैं, और महेश जी हैं जो कि मुझे कहना चाहिए सर्वे सर्वा एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। और इतने लंबे समय से मैं इन्हें काम करते हुए देख रही हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई इनका जो नेकी का काम है ना वो जन जन तक पहुंचे। महेश जी, अब अगला सवाल आपके साथ। किसी भी काम को करने के लिए अकेला इंसान नहीं कर सकता, तो एक टीम की जरूरत होती है। मुझे बताइए आपकी टीम किस प्रकार काम करती है।
1: महेश गट्टानी, महामंत्री माहेश्वरी मंडल, अध्यक्ष हरियाणा पंजाब प्रादेशिक माहेश्वरी ट्रस्ट। माहेश्वरी समाज बिजनेस और सेवा कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। जहाँ तक सेवा कार्यों को संपन्न करने का सवाल है, हम साल में कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। हमेशा सेवा के कार्य चलते रहते हैं। सेवा के कार्य में जब भी हमारा कोई प्रकल्प सामने आता है, सबसे पहले हम कार्यकारिणी से अप्रूव करते हैं। उसके बाद में उस कार्य को एग्जीक्यूशन के लिए हम अलग अलग टीमें बनाते हैं। अपने प्रचार प्रसार की टीम बनती है, प्रिंटिंग का काम देखने की होती है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन का काम होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और 4-5 दिनों का अगर प्रोजेक्ट होता है तो शाम को उसका रिव्यू भी होता है। तो सब मिला के समाज में हमारे युवा साथियों की, सीनियर लोगों की फंड रेजिंग, तो सब मिलके उस काम को सफल बनाने के लिए हम दिन रात उसमें लगे रहते हैं जब तक पूरा, और उसी की बदौलत हमारे हर कैंप सफल होते हैं।
0: वाओ, तो आपने खुद ही देखा भाई माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के कितने सारे काम हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छी और स्ट्रांग टीम की जरूरत है। अब आइडियली अगर आप किसी भी ट्रस्ट या फाउंडेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तो आपने सुना ही है, और वो फोर फ्रंट पर हमेशा होते हैं, लेकिन उनके पीछे होती है वॉलंटियर्स की और मेंबर्स की एक बहुत बड़ी टीम। और माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को मैं सलाम करना चाहूंगी। जिस ढंग से वो लोग हर काम को एग्जीक्यूट करते हैं और जितने सेवा भाव से लगे रहते हैं, मुझे कहना चाहिए एक बहुत ही नेक संस्था है जो ढेर सारे काम कर रही है। भाई आने वाले समय में अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आपके आसपास कहीं कोई ऐसा शख्स है जिसको किसी भी प्रकार की जरूरत है और उसकी जरूरत आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, सो एक ऐसी जगह है जहां आप दरवाजा खटखटा सकते हैं, और वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। अब आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, आप इनके कामों में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, सब चीजों के बारे में करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं, राकेश सोनी जी हैं और महेश जी हैं। राम कुमार जी, आपके पास वापस आऊंगी। जब कभी भी हम ट्रस्ट की बात करते हैं, फाउंडेशंस की बात करते हैं या एनजीओस की बात करते हैं, सो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये सारे काम करना ना बड़ा आसान होता है। आप अपनी नौकरी पर जाइए, आप अपने बिजनेस में जाइए, फिर थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करके आप एक टीम बना लीजिए और इन सारे कामों को कर दीजिए। लेकिन इन कामों को एग्जीक्यूट करने में ढेर सारे चैलेंजेस हैं जो आते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: इन चुनौतियां तो इसमें काफी आती है
0: जी,
1: लेकिन फिर भी हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रस्टी हैं
0: जी,
1: उनके अंदर काफी सेवा भाव है।
0: वाओ।
1: और हम लगभग आपस में मिल करके इन चुनौतियों को पूरा कर लेते हैं। कोई भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है
0: जी,
1: लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही सेवा भावी है।
0: वाओ।
1: उसके लिए मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि 1985 से ये संस्था आज लगभग 42-43 साल हो रहे हैं।
0: वाओ।
1: 42-43 साल से चल रही है।
0: और अगर मैं मेंबर्स की या वॉलंटियर्स की या इसके लोगों की बात करूं, तो कितने लोग होंगे जो इस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं?
1: ये हमारा लगभग मेंबर्स है 1100 मेंबर के आसपास हमारे इस ट्रस्ट के हैं लोग।
0: इतना बड़ा वॉलंटियर ग्रुप, सोच सकते हैं आप 1100 लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं, सो क्या नहीं किया जा सकता है। और सोचिए, हर इंसान अपनी फील्ड में महारत हासिल किया हुआ, यानी ये सब एक बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं जो अपने अपने काम तो करते ही हैं, लेकिन सेवा भाव इतना है कि कोई भी इनके पास आए तो वो खाली हाथ ना जाए, उसकी झोली भर कर जाए। अब परेशानी कैसी भी हो सकती है, मान लीजिए कि कोई आए और कहे जी मेरे घर में खाने के लिए राशन ही नहीं है, तो ये इस चीज को भी इंश्योर करते हैं कि आपको वो भी मुहैया कराया जाए। और कई बार, जैसे मैंने कहा, कुछ बड़े बड़े काम है जो करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स अक्सर ये लगाते हैं। गर्मी के समय में आपने देखा होगा, एक सबसे बड़ा चैलेंज है थैलेसेमिक बच्चे हो या नॉर्मल लोगों, हॉस्पिटल्स में इसकी काफी ज्यादा किल्लत हो जाती है। सो किस प्रकार से होने वाला है ये सब करेंगे बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में आपने जाना 1985। कैन यू बिलीव आई वॉज जस्ट बॉर्न एट दैट टाइम। तब से आज तक ये पूरा का पूरा ट्रस्ट चलता आ रहा है, इतने सारे लोग इसके मेंबर्स हैं और उस टाइम से लेकर आज तक इतना सारा काम किया जा रहा है, मतलब हैट्स ऑफ। लेकिन ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो निरंतर आने वाली पीढ़ी को भी सेवा सिखाती आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेशन काम करती है, जनरेशन से जनरेशन ये काम सीखते जाते हैं, टीम बनती जाती है और ये सारे के सारे काम आप तक पहुंचते हैं। बेनिफिशियरीज की हमने बात की कि भाई किस तरीके के लोग हैं, गांव से लेकर शहर तक जिसकी भी जरूरत है ये वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब एक बड़ी जरूरी चीज है जो अक्सर मुझे लगता है कि हर फाउंडेशन हर ट्रस्ट अपनी तरफ से कोशिश तो करता है, लेकिन उन सभी के लिए बड़ा चैलेंज भी होता है ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, और वो है ब्लड डोनेशन कैंप। भाई मैं खुद जब ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मुझे स्ट्रेस रहता है क्या पता लोग डोनेट करने आएंगे या नहीं। एक बड़ा ही खास डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। महेश जी, मैं चाहूंगी आप इसके बारे में जरूर बताएं।
1: जैसे कि आपने बताया है कि गर्मियों के अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहते हैं। और अभी आने वाले रविवार 24 मई 2026 को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो रोटरी ब्लड सेंटर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर कर रहे हैं। और हमारा टारगेट मिनिमम से मिनिमम 101 यूनिट का है और हमारी कोशिश रहेगी 150 क्रॉस करें। और इसके लिए, इसको सफल बनाने के लिए हमने पिछले संडे मीटिंग करी थी। मीटिंग करके हमने अपने कार्यकर्ता की टीम बना के पूरे समाज में जो रेगुलर ब्लड डोनर्स है उनको 1-to-1 कॉन्टेक्ट करके फाइनली कि कौन लोग कंसेंट दे रहे हैं जो ठीक है उनकी हम लिस्ट तैयार करेंगे। और ब्लड डोनेशन कैंप से 2 दिन पहले फिर रिमाइंड करके और फिर फाइनली जो ब्लड डोनर डे के दिन उनकी एक एक लिस्ट को हम लोग टिक करके रहेंगे भी कौन बंदा नहीं है कौन नहीं है। तो ये ऐसा कैंप है जिसमें हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जो ब्लड डोनेट कर सके और हमारे कैंप के साथ जुड़े। धन्यवाद।
0: ब्लड डोनेशन के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बहुत जरूरी है ब्लड को डोनेट करना। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, एक एक यूनिट ब्लड का इंतजार कर रहे होते हैं। और आपने व्हाट्सएप्स पर तो देखा ही होगा, फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, हाथ जोड़े हुए इमोजी होती है, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई या फिर मेरे ससुर बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, आप लोग प्लीज आकर ब्लड डोनेट करिए। बट हम सब हमेशा यही सोचते हैं ना कि ये कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं और उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो उनके लिए वाकई एंजल का काम करते हैं। सो हम और आप ही वो लोग हैं जो किसी के एंजल बन सकते हैं। अगर आप ये बनना चाहते हैं सो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा मौका है। इस बार 24 मई 2026 को रोटरी ब्लड सेंटर के साथ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का ये बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है। अगर इनकी ये मानना है कि 150 यूनिट होना चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसे 200 यूनिट बनाएं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद पिछले 3 महीनों में ब्लड डोनेट ही नहीं किया, आप बिल्कुल ले दें और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सो चलिए भाई इस बार का टारगेट बना लीजिए, आज ही से अपने कैलेंडर को ब्लॉक कर लीजिए, 24 मई को पहुंचिए माहेश्वरी सेवा सदन 7A सेक्टर 7A फरीदाबाद और मेरे साथ मिलकर चलिए भाई इस ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल बनाते हैं। सो आप सभी से यही अपील है कि आप सभी इस कैंप में आइए और किसी के लिए एंजल बन जाइए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और ये सारी बातें सुनकर आई एम श्योर आपके अंदर की मानवता जाग उठी है। अब आपको लग रहा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अब चलिए भाई, आप मेंबर नहीं है, वॉलंटियर नहीं है, तो बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, कौन आपसे एसोसिएट हो सकता है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है, कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरीके से आप एसोसिएट करते हैं, जानूंगी अब हमारे ट्रेजरर राकेश सोनी जी से।
1: हमारे यहाँ माहेश्वरी, जैसे माहेश्वरी मंडल का गठन हुआ था 1982 में
0: जी।
1: उसके 3 साल बाद हमने ये सोचा कि समाज की सेवा कैसे हो सकती है, इसलिए इसका गठन किया गया माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का 1985 में
0: जी।
1: उसके नीचे भी हमारे माहेश्वरी मंडल में 2 संस्था और काम करती है, एक युवा संगठन और एक महिला संगठन। तो हम सब मिलके ये समाज सेवार्थ कार्य जैसे समय समय पर अंतराल में हम करते रहते हैं। हर 3 महीने में हम अपनी मीटिंग बुलाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इंटरमीडिएट क्या हमारे को समाज की सेवा का काम करना चाहिए। कभी हम आई कैंप लगाते हैं, कभी पोलियो कैंप लगाते हैं, कभी आयुर्वेदिक कैंप भी लगवाते हैं, कभी ब्लड हार्ट चेकअप कैंप लगवाते हैं। ऐसे हम अंतराल में कुछ न कुछ करते रहते हैं, और इसमें सभी हमारे माहेश्वरी समाज के वॉलंटियर है जो अपनी स्वेच्छा से वहाँ आते हैं और अपना जैसे समय का जो भी है जो देते हैं। और हमारे समाज में भामा साहब की कोई कमी नहीं है, उसका हमारे पास कोई भी कभी कमी का महसूस नहीं होता है, और इसीलिए हम अपना समाज की सेवा के काम करते रहते हैं।
0: नहीं देखिए, मैं ना हमेशा कहती हूँ 3 तरीके के दान होते हैं। आप श्रमदान दीजिए अगर आपके पास श्रम है, तो भाई आपकी क्षमता है और आप जाकर श्रम कर सकते हैं, यानी आप जाकर वॉलंटियर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास टाइम ही नहीं है, आप मेरे जैसे इंसान हैं जो अक्सर अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। सो आपके पास एक चीज है, धन। सो आप धन का दान दे सकते हैं, उस धन से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। सो कई बार आपने देखा होगा कि श्रम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास श्रम से होने वाला जो दान है उसके लिए धन चाहिए होता है, वो नहीं होता है। और तीसरा सबसे जरूरी दान, समय का दान। आज के जमाने में मोबाइल फोन में हम घंटों खत्म कर देते हैं, अगर आप अपने 2 घंटे भी निकालते हैं और अपना समय आप जाकर किसी को मोटिवेट या इनकरेज करने के लिए देते हैं ना, तो इससे अच्छा और इससे बड़ा दान हो नहीं सकता है। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट न सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से अपने जितने भी कहना चाहिए माहेश्वरी ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं और जितना भी इनका समाज है, वो तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन क्या हम इसमें अपना हाथ नहीं निभा सकते हैं या हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हैं, दिव्यांग कैंप्स हैं, या फिर इनके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। बेनिफिशरीज लाने के तरीके से, कॉन्ट्रीब्यूशन के तरीके से, वॉलंटियर के तरीके से आप जरूर ये कर सकते हैं, और चलिए मिलकर इस दुनिया को और भी खूबसूरत जगह बनाते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। हमारे साथ माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से राम कुमार राठी जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं जो ट्रेजरर हैं, और महेश घटानी जी हैं जिनको मैं एक लंबे समय से जानती हूँ, और मैंने इनके ढेर सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे कामों को खुद विटनेस भी किया है। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप तीनों आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे? राम कुमार राठी जी, आपसे शुरुआत करेंगे।
1: सभी के लिए संदेश, मानव मात्र की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हमारे समाज का मोटो भी सेवा ही संकल्प है।
2: मैं तो यही कहूंगा कि समाज के लिए हर किसी व्यक्ति को अपना समय जरूर देना चाहिए। समय दोगे, मैं ये समझता हूं कि कोई भी आप काम हाथ में लेंगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। बस आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, सेवार्थ भाव होना चाहिए, तो समाज की सेवा करते रहना चाहिए। यही हमारा समाज का सेवा ही संकल्प, यही हमारा समाज का ध्येय है।
3: माहेश्वरी समाज का मेन मोटो ही सेवा ही संकल्प है, क्योंकि पूरा समाज, चाहे कहीं से पूरे भारतवर्ष में देखें, संख्या में बहुत कम है, लेकिन समाज बिजनेस में सबसे अग्रणी है और सेवा में भी अग्रणी है। राजस्थान में आप एक एक गाँव में देखेंगे तो धर्मशाला से लेके हॉस्पिटल से लेके पशु पक्षियों तक का ध्यान रखा जाता है। उसका मेन मोटो हम लोगों का यही है, सेवा ही संकल्प। जब भगवान ने अगर हमारे को जीवन दिया है तो उस जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम मानव मात्र की कुछ सेवा कर सके। जय महेश।
0: न सिर्फ समाज का जो संकल्प या कहना चाहिए मोटो है वो बहुत ही खूबसूरत है कि सेवा ही संकल्प है, लेकिन साथ के साथ आप खुद ही देखिए कि अगर आपको भगवान ने समर्थ बनाया है, हमेशा हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, सो जब आप समर्थ हैं सो कोशिश करिए कि आप समाज को और भी समर्थ बनाएं। ना कि हम खुद तो खूब अमीर हो जाएं, लेकिन आसपास का हमारा समाज जो है ना वो हमेशा आपको लगे कि उस तरीके से नहीं बढ़ पाया है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इस समाज का ही एक हिस्सा हैं। सो आज हम चले माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, जहाँ पर हमारे साथ राम कुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश घटानी जी थे, और आज की इस मानवता की राह पर हमने माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में ढेर सारी जानकारी ली। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे इजाजत लेते हुए बस एक ही वादा, अगले हफ्ते मैं आऊंगी आप ही के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: क्या है चितचोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चितचोर?
1: You sing like किशोर but शादी का date.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल,
1: तू है बुलबुल,
0: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल,
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले, छम छम छम छम छम छम छम, ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, ए गर्ल तुम काहे को इनकार करता

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की आज इस कड़ी में मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो उतनी ही खूबसूरत है, दिल से ही नहीं चेहरे से भी। और इनका नाम है शशिकला कनकानी। शशिकला कनकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स की, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन लेडीज विंग। और अगर देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एनजीओ है जिसके साथ एक लंबे टाइम से एसोसिएटेड है, और वो है मदर टेरेसा क्लब। सो बहुत सारे सोशल वर्क के काम ये करती हैं और मैं इन्हें सही मायने में दिल से सोशल एक्टिविस्ट कह सकती हूँ। लेकिन आज हम इनका स्वागत करेंगे क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम इनके विचार, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। शशिकला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
1: नमस्कार भावना जी और धन्यवाद आपका, मुझे भी उतनी ही खुशी है आपसे मिलके।
0: शशिकला जी पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कार्यक्रम का स्टैंडर्ड सवाल है और हर महिला से मैंने ये सवाल पूछा है। मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण दरअसल एक बहुत ही पर्सनल चीज है। सशक्तिकरण के मायने हर महिला के लिए अलग है। किसी के लिए मात्र पैसा कमाना सशक्तिकरण हो सकता है, सो किसी के लिए एक डिसीजन लेना सशक्तिकरण हो सकता है, किसी के लिए फ्रीडम सशक्तिकरण हो सकता है, तो किसी के लिए एक डेजिग्नेशन सशक्तिकरण हो सकता है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके नजरिए में आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है?
1: मेरे नजरिए में भावना जी महिला सशक्तिकरण होगा महिला को ना केवल उसका अधिकार देना बट उसके प्रति उसको जागरूक करना, और उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, चाहे वो छोटे से छोटी घर का काम हो या बड़े से बड़ा एमएनसी में कोई पोस्ट संभालना हो, और समाज में सम्मान पूर्वक अपनी पहचान बना सके। मेरे हिसाब से वो महिला सशक्तिकरण है।
0: वाकई देखिए भाई, मैं हमेशा महिलाओं के लिए एक ही बात कहती हूँ कि महिला जब तक खुश है और वो अपने डिसीजंस खुद ले पा रही है तब तक वो सशक्त है। अब जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत हो या किसी बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर बैठे होने की जरूरत है। सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप अपना जीवन अपने तरीके से बहुत कम पैसों में जी रहे हैं, और सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा रही हैं लेकिन अपने जीवन में जो आप चाहती हैं वो आप कर पाती हैं, क्योंकि सशक्तिकरण आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक वक्त है प्यारे से खूबसूरत से गाने का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। इस गाने के बाद वापस लौट कर आएंगे। शशि कनकानी जी से बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, सो आप कहीं नहीं जाएंगे। फील गुड फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। अब जब मैं वी कहती हूँ ना, तो मेरा मतलब दरअसल होता है महिलाएं एक साथ आ जाए तो दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। पर परेशानी सदियों से यही आती है कि पुरुष महिलाओं को ना कहीं अलग रखने की कोशिश करते हैं, और कुछ महिलाओं के अंदर इनबिल्ट एक चिप होती है जिसमें कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप में सर्वे सर्वा हैं और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। सो ये जो एक व्यवहार है महिलाओं का, इसके कारण भी सशक्तिकरण इतना डिलेड हम महसूस कर रहे हैं। शशि कंकानी जी हमारे साथ हैं, और शशि कंकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ की, एक खास एनजीओ जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है खास तौर पर कैंसर पेशेंट्स के लिए। इसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग की और मदर टेरेसा क्लब के साथ तो ये लंबे समय से एसोसिएटेड भी हैं। अब अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो वर्तमान समय की महिलाओं के बारे में है। शशि जी, हम ना एक लंबा सफर तय करके आ गए हैं। एक जमाना था बच्चियों को पैदा होने का मौका नहीं मिलता था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत कॉमन रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़े, कन्या भ्रूण हत्या बंद हुई, फिर बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अब बच्चियां पढ़ पा रही हैं, यहाँ तक कि फ्री एजुकेशन भी उन्हें मिल पा रही है। फिर बच्चियों को एक और परेशानी आती थी कि वो थोड़ी सी जवान होती थी तो उनकी शादियां हो जाती थी, चाइल्डहुड मैरिज जिसकी मैं बात करती हूँ, बाल विवाह। सो वो भी खत्म हुआ, अब वो एक ऐसी पड़ाव पर हैं जहाँ वो अपनी शादी को शायद 18 साल की उम्र के बाद देख पाती हैं। और फिर एक पड़ाव आया जहाँ वो शादी के लिए कंपेल्ड नहीं होती हैं, वो अपना जीवन साथी खुद चुन पाती हैं, अपने लिए वो रोजगार ढूंढ सकती हैं। हम इस यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की कमी है। सो अगर मैं आज के चैलेंज की बात करूँ, सो क्या लगता है किस प्रकार का चैलेंज है आजकल की महिलाओं के साथ?
1: महिलाओं के लिए मेरे हिसाब से ना, उन्हें आज भी अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती है, और कई बार उन्हें ना परिवार, समाज और अपने आसपास के लोगों के हिसाब के साथ में समान अवसर नहीं मिलते।
0: वाकई
1: काम करने का समान अवसर नहीं दिया जाता है। एंड इसके साथ भी ना एक और है कि लोग क्या कहेंगे, वो आज भी एक कहीं ना औरतों के मन में, लेडीज के मन में, खासकर उनके मन में ये जरूर आता है। जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, उनके आइडियाज हैं, बट क्योंकि लोग क्या कहेंगे वो उन्हें कहीं ना कहीं रोक देता है। और फिर हम ना वो उस ढर्रे पे चलने लग जाते हैं कि ठीक है, पीछे से जो चीज होते आ रही है वो आगे भी हम करते जा रहे हैं।
0: वाकई
1: वो है एक चीज।
0: देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसके शिकार महिलाएं तो बहुत ज्यादा हुई हैं। अरे, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात की जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अक्सर महिलाओं को बहुत सारी चीजों पर रोक टोक लगाई जाती है। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की है, लेकिन वो घर पर बैठकर सिर्फ होममेकर के टैग के साथ जीती हैं, अपनी आकांक्षाओं का गला घोटकर जीती हैं। सो ये आज भी हमारी महिलाओं के लिए वर्तमान समय में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक महिलाओं का रोल डिफाइन किया गया है ना घर की चार दीवारी, तब तक शायद बहुत सारी परेशानियां महिलाओं के साथ रहेंगी। क्या किया जा सकता है? अगर आपके पास है सजेशन तो भेज दीजिए मेरे पास 8010781078 पर। आप जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। सुना रही हूँ आपको प्यारा सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड फील लाइफ।
2: हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको

0: 107.8 Feel Good Feel Life.
1: हो गया था कि आप घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे मेरे शाप का अंत हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे और इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा। इस समय तुम्हें फिर पुण्यों का फल प्राप्त होगा। महाराज तो ये है तुम्हारी भाई महाबली भीमसेन, तुम्हारा कल्याण हो और मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्लोक को जाऊंगा। ये कहकर राजा महेश ने अजगर का शरीर त्याग दिया, दिव्य देह धारण करके वे पुनः स्वर्लोक में चले गए।
2: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर जी ने जो है एक अजगर को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। राजा नहुष थे, वो स्वर्ग में विचरण करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उनको ये योनि मिली और किस तरह से युधिष्ठिर ने उनको उनके श्राप से मुक्त किया, ये कथा हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइफ।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: मशहूर हो जाए।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में आज मैं बैठी हूँ शशिकला कंकानी जी के साथ। शशिकला जी वैसे तो दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ के साथ, प्रेसिडेंट हैं राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग, और उसी के साथ साथ मदर टेरेसा क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं, माहेश्वरी मंडल के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं। लेकिन इन सब सोशल वर्क के कामों में ये महिलाओं को सशक्तिकरण देने का भी एक बहुत खूबसूरत सा काम कर रही हैं। सो कहीं जीवन दान देने की कोशिश करती हैं, कहीं अपनी केयर देने की कोशिश करती हैं, लेकिन साथ के साथ महिलाओं को एक नई सोच भी देने की कोशिश कर रही हैं। शशि जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमने बड़ी प्रगति की है, सो हमने बहुत सारा अगर देखें तो हमने जहाँ तक अपनी डेवलपमेंट हो सकती है महिलाओं ने की है। कुछ महिलाओं ने रिबेल करके, कुछ महिलाओं ने परिवार को मना के, जैसे कि अगर हम आपके केस में देखें सो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने शायद पेरेंट्स नहीं माने तो भी उन्होंने रिबेल किया, लेकिन वो आगे बढ़ी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मतलब बहुत सारी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हमारे समाज में वो इक्वालिटी नहीं है। आज भी शायद एक महिला अगर काम करके घर वापस आती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मुझे एक कप चाय मिल जाए, और कि अगर वो उसका पति ही है तो वो उसको ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे रोल्स को डिफाइन कर दिया है, महिलाओं पर कुछ जिम्मेदारी ऐसी डाल दी है कि हमें ऐसा लगता है कि आप इन जिम्मेदारियों के लिए ही बने हैं। और बहुत सारी चीज़ों की इक्वालिटी, एक घर में एक पुरुष है जो उतने पैसे नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है या उतना पोटेंशियल या प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसी घर में एक महिला है जो उतना प्रतिभा भी रखती है लेकिन उसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि समाज क्या कहेगा कि पुरुष घर पर बैठा और महिला कमाने के लिए जा रही है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आज भी हम देखते हैं समानता नहीं है। क्या कुछ किया जा सकता है इस समानता को लाने के लिए?
2: इस समानता को लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा हमें
1: जी,
2: हमारा जो थॉट प्रोसेस है। एंड आई थिंक लेडीज का एक बहुत अहम रोल रहेगा इस थॉट प्रोसेस को बदलने में
1: जी।
2: अगर घर की लेडी, सपोज मैं घर की लेडी हूँ,

0: और अगर मैं ये चीज कह दूं या इस चीज पे अपने बच्चों को ये दूं, मेरा बेटा है बेटी है दोनों को इक्वल राइट्स है और कोई हार्म नहीं है, और अगर मेरी बहू भी आती है घर में तो मुझे ये मतलब जो आपने बोला कि एक कप चाय नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, मेरे हिसाब से मुझे ये चीज फॉरवर्ड आके करना चाहिए। सो मुझे अगर घर की लेडी की सोच बदली हुई है तो आई थिंक वी कैन हम वो चीज बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे।
1: देखिए शशि जी ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि इसमें भी महिलाओं का हाथ है, और मैं तो ये कहती हूँ परवरिश में हाथ है।
0: यस,
1: क्योंकि परवरिश महिला का
0: रोल है, महिला का।
1: अगर हम जब एक लड़के की परवरिश कर रहे हैं और उसे उतनी ही जिम्मेदारियों के साथ उसे कहें कि वो उसका बचपन,
0: छोटा सा वाकया याद आ रहा है अपनी लाइफ का।
1: जी,
0: तो मैं अपने दादाजी दादी जी के पास पढ़ी थी फ्रॉम क्लास 4 to 9।
1: जी,
0: तो जब मैं क्लास 8 में थी 13-14 ईयर्स की रही हूँ, तो उन दिनों में मेरे जैसे जितने भी राजस्थान में मेरी जितनी भी क्लासमेट्स थी उनकी बाई 87, 86, 87, 88 शादी हो गई थी।
1: जी,
0: तो मेरे लिए भी किसी ने प्रपोजल भेज दिया।
1: जी,
0: तो मेरे दादाजी बोले अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं, और इमीडिएटली मेरी दादी जी बोली अभी ये पढ़ रही है और ये पढ़ेगी आगे। सो मेरा दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज कि ये चीज ना घर लेडीज के हाथ में ही है।
1: yes.
0: And, और हमें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ना गॉड ऑलमाइटी का भी एक पावर दिया हुआ है।
1: हाँ.
0: जिसे हमें रियलाइज करना है और उसे अप्लाई करना है। सृजन हमारे हाथ में है। मदर्स डे पे मैंने एक कोट पढ़ा कि 50% ऑफ द वर्ल्ड आर वुमेन, द अदर 50% आर हर चिल्ड्रन।
1: यस,
0: सो बेसिकली हमें ही वो चीज करना है। और जैसे आप कहते हो वी, तो वी का मतलब है हम।
1: यस, yes.
0: तो वुमेन एम्पावरमेंट हम अगर करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप ही आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का ना कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वी हैव टू अर्न, मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं एम्पावर्ड हूँ। नो, अगर मैं घर भी अच्छे से संभाल रही हूँ, मेरी मर्जी से बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, जहाँ मैं ये नहीं फील करती हूँ कि मेरे पे ये थोपा गया है,
1: yes.
0: तो इफ आई चूज लाइक आई हैव चोजन,
1: यस,
0: आई एम इक्वली, मैं अपने हस्बैंड के साथ में 92 से बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, प्रॉपरली टेक केयर करती हूँ। व्हेन ही इज एब्सेंट फॉर सपोज से 1 month, 1.5 months, आई हैंडल द बिजनेस ऑल बाय माई सेल्फ, टेकिंग ऑल द डिसीजंस।
1: यस,
0: सो आई थिंक दैट इज एम्पावरमेंट
1: एक्चुअली,
0: and at the same time I'm happy handling my house.
1: Yes. देखो यही सही सशक्तिकरण है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सशक्तिकरण का जो डेफिनेशन है ना वो हर महिला के लिए जुदा हो सकती है। सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे हिसाब से सशक्तिकरण नहीं है, ये उसका एक स्टेप हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुशी से अपने लिए ले सकते हैं, विदाउट अ प्रेशर आप जी सकते हैं। भाई मान लीजिए कि आप बहुत टैलेंटेड है लेकिन आपको एक सबैटिकल लेना है, आपको लगता है जी बहुत काम कर लिया, मुझे 10 साल का ब्रेक लेना है, मुझे आराम करना है, तो आप अपनी डिसीजन ले रहे हैं। अब ऐसे में कोई आकर कहे ये तो तुम्हारे करियर का पीक है, तुम कैसे इस डिसीजन को ले सकते हो, अभी तो तुम्हें कमाना चाहिए। सो यहाँ पर आपका सशक्तिकरण खत्म होता है, जहाँ आप किसी और के डिसीजन से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप काम करना चाहती हैं, और आपको ये कहकर घर पर रख दिया जाए कि आप इस घर की बहू हैं, इस घर में बहुत पैसा है, हमें तुम्हारे पैसे की या तुम्हारी सैलरी की जरूरत नहीं है इस घर को चलाने के लिए, सो वी डोंट वॉन्ट यू टू गो आउट एंड अर्न, ये कहते हैं सशक्तिकरण ना होना, यह आप पर थोपा जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी मर्जी से, चाहे आप होम मेकर बनना चाहती हैं, आप एक क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहती हैं, घर बैठकर काम करना चाहती हैं, ये इसमें कोई अर्ज नहीं है, आप उतनी सशक्त महिला हैं। बट परेशानी ये है कि हम सशक्तिकरण की सही डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं या नहीं, और क्या समाज हमें ये सही डेफिनेशन दे पा रहा है, यानी क्या हमें वो ये अधिकार दे पा रहा है। सो कहीं ना कहीं अधिकार नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। देखिए शशि कला जी की बड़ी खूबसूरत सी कहानी जो आपने सुनी है, आई एम श्योर हम बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर्ड होंगे। मैं तो इस बात से इंस्पायर्ड हूँ कि अगर आप एक ऐसी महिला है जिनके पास पूरे घर की अथॉरिटी है, सो प्लीज अपनी डाउन दी जनरेशंस को वो लिबरेशन दे दीजिए, वो एम्पावरमेंट दे दीजिए जिसकी उन्हें जरूरत है, और फिर धीरे धीरे ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी। डाउन द लाइन हर सास, हर माँ, हर बड़ी बहन, हर भाभी, हर जेठानी शायद लोगों को, आने वाली पीढ़ी को लिबरेशन देगी, सपोर्ट देगी देन कि हम ये सोचें कि वो उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। शशि जी, आप ना बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है सोशल सर्विस में, ढेर सारे काम, मतलब मैं अगर देखूं तो आप फ्रेंड्स ऑफ मैक से तो करीबन 2000 से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं मदर टेरेसा क्लब की, मैं राजस्थान एसोसिएशन की, माहेश्वरी मंडल की बात करूं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एक लंबे समय से और बहुत ही समय से आप सोशल वर्क के काम कर रहे हैं। सो इस सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई और ये आपके अंदर कैसे आया?
1: इसके लिए मैं श्रेय दूंगी मेरे फादर को
0: जी,
1: बिकॉज मैंने ना उनको बचपन से देखा है एज अ गिवर
0: जी,
1: तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज इनहेरिट हो गई। और मेरी दादी जी, मेरी मदर, एंड देन इट वाज सपोर्टेड, मतलब वो चीज मेरे हस्बैंड में भी है, सो इट जस्ट कंटिन्यूड लाइक दैट। और मेरा जो मैंने किया गिविंग, जैसे छोटी छोटी चीजें तो हम करते ही थे
0: जी,
1: कुछ भी, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग,
0: यस।
1: तो मैंने ना शुरू से ही क्लासरूम में भी, तो आई हैड सो मेनी, जिसको भी कोई जरूरत होती कभी भी, वो पूरे क्लास में सबसे पहले मेरे पास आता,
0: वेरी गुड
1: शशि, डू यू हैव दिस,
0: यस
1: आई नीड दिस। सो और आज भी वही होता है
0: जी,
1: जैसे हमारा मदर टेरेसा ग्रुप है, 50 लेडीज का ग्रुप है
0: जी,
1: बट अगर उसमें मैं नाम नहीं लूंगी, बट उसमें अगर किसी को भी कोई तरह की हेल्प चाहिए, उनके दिमाग में सबसे पहले नाम जो आता है वो शशि कंकानी का होता
0: है, यस।
1: सो दैट इज द थिंग। और जैसे मैं क्लास 11th में थी
0: जी,
1: तो मेरी एक क्लासमेट थी, शी वाज फाइनेंशियली वीक,
0: यस।
1: तो हम एक्सकर्शन ट्रिप पे जा रहे थे एंड शी कुडंट गो
0: जी,
1: तो मैं जब मुझे आई ओवरहर्ड, शी वाज जस्ट माय क्लासमेट, मुझे मतलब मैं उससे उसके बाद में कभी मेरी उससे बात भी नहीं हुई है, जैसे मैं बाकियों से कनेक्टेड हो गई, बट उससे मैं अभी भी नहीं कनेक्टेड हूँ। तो उस वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल रही थी कि यार तुझे पता है मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं आना चाहती हूँ बट मैं नहीं आ पाऊंगी
0: जी।
1: तो आई जस्ट ओवरहर्ड इट एंड देन आई वेंट टू माय क्लास टीचर
0: जी,
1: आई सेड मैम मैं ना इसका पैसा मैं भर देती हूँ, दिस इज वे बैक इन 84,
0: जस्ट इमेजिन
1: 500 रुपीस वाज अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम,
0: हां या एक्चुअली।
1: तो मैंने वो दिया अपने पॉकेट मनी से निकाल के, एंड आई डिडंट टेल माय पेरेंट्स आल्सो, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस,
0: वाओ,
1: nobody knows about it. So and the happiness on her face, she was so happy and she kept asking my class teacher,
0: kisne diya
1: ki ma'am kisne diya mera paisa, please aap mujhe bata do, so I want to thank her,
0: yes,
1: and I said nahi aap batana mat ma'am, so till date she also doesn't know, you are the first person to
0: do it. Wow, to bhai dekhiye agar wo radio manav rashta 107.8 fm sun rahi hai to ab aapko pata hai ki aapki classmate shashi gankani ji ne wo 500 rupaye diye the aapko excursion par le jane ke liye, but yes यहीं से शायद बीज शुरू होता है। सो क्या आपने डाउन योर जनरेशन अपने बच्चों में भी इसे डाला है?
1: यस, माय चिल्ड्रन आल्सो हैव, जैसे मेरा बेटा है, उसने अपनी फर्स्ट सैलरी पूरी की पूरी बॉम्बे में था, एक्सेंचर में, सो ही यूज्ड टू गो नियर बाय, देयर वाज एन एनजीओ फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन
0: जी,
1: सो ही वुड गो देयर, वहां जाके उनको बुक्स देना, फूड देना और किताब, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो yes. मेरे दोनों बच्चे करते हैं, इवन व्हेन दे वर हियर स्कूल में थे तब भी वो जैसे झुग्गियों पे जाके और कुछ कुछ बांट के आना करते थे।
0: तो देखिए भाई, ये ना कुछ चीजें हैं जो आप सिखा सकते हो। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, एक जीवन मिलता है, मान लीजिए कि आपका जीवन 80 साल का है, सो आप इस 80 सालों में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लेंगे, किसी से प्यार लेंगे, किसी से रिश्ता लेंगे, कहीं से आप पैसा लेंगे, और उसी के साथ साथ इस समाज से आप बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिकग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आपको जानेंगे, लेकिन इन सबको वापस देने का भी तो समय होता है, और वो समय होता है उन लोगों को रिकग्नाइज करने का, उन लोगों को भी रियलाइज करवाने का जिनके पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और शायद इस डगर पर शशिकला कंकानी जी बहुत ही खूबसूरती से चल रही हैं, और इसीलिए सही मायने में मैं इन्हें सशक्त महिला कहती हूँ। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। ना सिर्फ आपने अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटे, कुछ कहानी हमें सुनाई, बहुत सारी महिलाओं को आपने मोटिवेट किया, लेकिन जाने से पहले क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी उन सभी को?
1: मैं कहना चाहूंगी एक महिला को सशक्तिकरण के लिए किसी भी स्टैम्प की जरूरत नहीं है। वो गॉड गिफ्टेड ऑलमाइटी ने उसे ऑलरेडी सशक्त करके भेजा है
0: जी,
1: क्योंकि सृजन की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ लेडीज में है।
0: एग्जैक्टली।
1: तो हमें, हम दुनिया रचा सकते हैं, बना सकते हैं, तो हमें उसे बनाए रखने के लिए भी हमें किसी के स्टैम्प की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर की जो शक्ति है उसे हमें पहचानना है और उसी को ग्रो करना है। आप भी ग्रो करिए, आने जैसे मदर्स हैं तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बराबर वो समझाइए कि ये दोनों काम बराबर, सब काम सब कर सकते हैं
0: जी।
1: और बहू है तो उसे भी अपनी स्पेस दीजिए, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे देरानी जिठानी हो, सबको अपनी अपनी स्पेस दीजिए। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, नॉट वो हमेशा ना बाई मॉनिटरी टर्म्स में आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है।
0: Yes.
1: अगर किसी ने आपको मान सम्मान दिया, आप उसे ये याद रखिए और उसे भी वापस लौटाइए
0: जी।
1: और जो भी डिसीजन आप अपने लिए लेते हो उस पे खुश होके लीजिए और उस पे खुशी खुशी स्टैंड करिए। आई थिंक दैट इज वॉट इज एम्पावरमेंट अबाउट
0: एक्चुअली। सो भाई मैं तो यही कहूंगी कि इस सशक्तिकरण की राह पर ना हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें जीवन की सीख दे जाते हैं, कुछ लोग नसीहत दे जाते हैं, कुछ लोग हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाते हैं। बट सशक्तिकरण तब तक ही बहुत खूबसूरती से बनी रह सकती है जब तक आप हर इंसान को उसका फ्रीडम जरूर देते हैं, फिर चाहे वो रिश्ते में हो, फिर चाहे वो आपके आसपास के लोगों में हो, उन्हें उनका फ्रीडम भी दीजिए, उन्हें उनका स्पेस दीजिए। और ध्यान रखिए कि भाई हर इंसान वैल्यूएबल है और हर इंसान बिल्कुल अलग है। सो कभी भी कंपेयर मत करिए किसी को भी, ना इन टर्म्स ऑफ रिश्ते, ना इन टर्म्स ऑफ आपकी अपनी नॉलेज या किसी भी तरीके से। सो जब तक आप ये सब नहीं करेंगे ना, ये लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बिल्कुल इस प्रोग्राम की तरह। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
1: धन्यवाद भावना।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। अगले हफ्ते मेरी आपसे होगी मुलाकात। टिल देन फील गुड, फील लाइफ।

0: तीर मार गोरी,
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर आता है रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारी आपकी हम सबकी जिंदगी से, और विशेष तौर पर हमारा प्रयास रहता है कि हम उन

विषय ऐसा ही एक मुद्दा लेकर के हम आ जाएं आपके साथ, और वो मुद्दा अगर हम बात करें कि एक आपदा में जैसे अवसर कोई एक प्रक्रिया होती है आमतौर पर हम कहते हुए सुनते हैं, तो ऐसी ही एक आपदा हमारे ऊपर सभी के ऊपर पूरे विश्व स्तर पर आई थी, वो थी कोरोना की महामारी। लेकिन उसी महामारी के दौरान एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, और वो परिवर्तन आया था हमारे ऑफिस की जिंदगी को लेकर के, जहां पर आमतौर पर एक परिभाषा रहती है कि जब कभी हम बात करते हैं किसी भी वर्क की तो हमें हमेशा दिखाई देता है ऑफिस एक कार्यालय और जिसमें सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना ने हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां दे दी थी कि हमने उस ऑफिस के पूरे सेटअप को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया अपने घर पर ही, और वो कल्चर डेवलप हुआ जिसे हम सब ने नाम दिया वर्क फ्रॉम होम का। तो आज हम बात करेंगे उसी वर्क कल्चर की जिसने ऑफिस की परिभाषा ही बदल दी, यानी वर्क फ्रॉम होम, जिसने वर्क में होम को ऐड कर दिया। अदरवाइज जब कभी भी हम काम की बात करते थे तो केवल और केवल ऑफिस की बात होती थी। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये सच में बेहतर है, या ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी में नई नई समस्याएं ला रहा है। आइए अब कुछ डेटा और अनुभव दोनों के साथ समझते हैं आखिर वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की जो एक प्रक्रिया है वो वास्तव में कितनी सुविधा है, क्या इसके पीछे का सच है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इन सभी को जानने की एक कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे तलाशने की एक नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमारे जीवन में आए हुए इस परिवर्तन को एक अच्छे प्रकार से हमें एक अच्छा प्रभाव दे करके हमारे साथ जाए। दोस्तों अगर हम डेटा की बात करें तो आज के समय में हमारे देश में पर्टिकुलरली हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 12.7 यानी 12.7 जो परसेंट लोग हैं वो पूरी तरह घर से काम करते हैं, यानी वो करते हैं वर्क फ्रॉम होम। लेकिन साथ ही साथ 28.2% लोग हैं जो हाइब्रिड मॉडल अपनाते हैं, यानी घर भी और ऑफिस भी, कभी कभी घर कभी कभी ऑफिस, जो एक प्रक्रिया है कि वर्क फ्रॉम होम भी है लेकिन कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है। और एक जो प्रिडिक्शन लगाई जा रही है आज के हालात को देख करके तो आने वाले समय में तकरीबन 9 से 10 करोड़ भारतीय यानी इंडियंस जो हैं पब्लिक है वो रिमोटली काम करेगी, यानी टोटल जो संख्या कामगारों की है जो वर्क करने वाले लोगों की है उसमें से तकरीबन 9 से 10 करोड़ लोग रिमोट काम करेंगे यानी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और यदि वर्ल्ड लेवल पे हम ग्लोबली बात करें तो ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, ये वैश्विक स्तर पर सभी ने इसको अपनाया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेट कंपनीज ने अपनाया। और उसमें एक इजाफा जो था कि यदि कोरोना में 2020 में वो संख्या 20% थी तो आने वाले वर्षों में आते आते वो 28-30-35% तक पहुंच गई। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया हमारे वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में पूरे विश्व स्तर पर, यानी कोई एक नया जो एक अनुभव था उसको एक तरह से एक्सेप्ट किया गया काम करने वाले लोगों द्वारा और साथ ही साथ कंपनियों के द्वारा भी। तो आमतौर पर हम जब चर्चा करते हैं वर्क फ्रॉम होम की तो अगर किसी से पूछा जाता है कि आपको ऑफिस कहाँ पर है तो एक सीधा सा जवाब अक्सर होता है कि जहाँ भी वाईफाई है वहीं पर ऑफिस है, यानी केवल और केवल इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए और आप अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं अपने ऑफिस का काम करने के लिए। तो दोस्तों इसी चर्चा को और डिटेल में आपके साथ करेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट जो कोरोना के बाद हमारे वर्क कल्चर में आया, जिसे हमने नाम दिया वर्क फ्रॉम होम का। दोस्तों, जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया कि ये कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली थी क्योंकि कोरोना का कहर एक तरह से पूरे विश्व में फैला हुआ था। तो उससे बचकर के या उसको उसके पैरेलली चलते हुए हमें क्योंकि अपनी सारी व्यवस्थाएं बनाकर रखनी थी, तो एक ऑप्शन के रूप में इसको तलाशा गया और वो ऑप्शन निकल गया ही वर्क फ्रॉम होम के तरीके से, कि जिसमें कोई भी व्यक्ति केवल एक इंटरनेट की सुविधा के जरिए अपने जो ऑफिस के सर्वर हैं, ऑफिस के जो काम है, जो ऑफिस की जो एप्लीकेशन है, उनका यूज़ करके अपनी पूरी वर्किंग कर सकता था। क्योंकि हम जानते हैं जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है या एक आधुनिक जो युग आरंभ हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं तकनीक को लेकर के, और इंटरनेट के माध्यम से अक्सर हमारे सारे काम होते हैं। यानी कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो बहुत आसानी से हो जाती है वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के जरिए। तो उसी के द्वारा किया जाने लगा वर्क फ्रॉम होम, और धीरे धीरे जिस प्रकार से एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया इस सुविधा ने कि आपको काम भी करना है और साथ ही साथ आपको घर पर भी रहना है, तो वो एक तरह का बोनस या एक तरह की एडवांटेज उनको दिखती थी। और दूसरी तरफ यदि हम कंपनियों की बात करें, तो कंपनियों को ये लगता था कि क्योंकि यदि कर्मचारी उनके जो ऑफिस के लोग हैं यदि आते हैं, तो उनके लिए एक ऑफिशियल स्पेस भी अरेंज करना पड़ता है, ऑफिस की जो सुविधाएं होती हैं, चाहे वो एयर कंडीशनिंग की है या उनको किसी तरह की जो फैसिलिटी है स्नैकिंग की एंड ऑल, जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, प्रॉपर बैठने का स्पेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो हर प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट थी या जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, उसमें भी कंपनीज को किसी तरह का एक बेनिफिट नज़र आने लगा। तो उन्होंने भी खुले दिल से इसका स्वागत किया और इस वर्क कल्चर को, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अपनाया। लेकिन अब इसमें बदलाव वाली क्या बात है कि जो हम बात करते हैं 77% जो लोग हैं वो मानते हैं कि वो घर से बेहतर काम करते हैं। यानी उनको लगता है कि ऑफिस में काम करने की अपेक्षा यदि वो घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने मुख्य काम पर जो ध्यान देते हैं वो 9% ज़्यादा समय देते हैं। यानी अगर हम बात करें जो वर्क फ्रॉम होम में आप अपने काम को जो समय देते हैं वो आपके ऑफिशियल आवर्स के मुकाबले 9-10% एक्स्ट्रा होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है, जो इसकी एक सुविधा है, वो कंपनीज को इनडायरेक्टली मिलती है। तो वो अगर हम कंपनीज के पार्ट पे देखें तो एक बड़ी विन विन सिचुएशन होती है कि आपको खर्चा भी कम करना पड़ रहा है एम्प्लॉयज के लिए और साथ ही साथ आपको उनसे प्रोडक्टिविटी भी बेहतर मिल रही है। लेकिन यदि हम एम्प्लॉयज की बात करें कि उनके पीछे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के पीछे का जो एक कारण था, एक मानसिकता ये थी कि आपको काम करते समय भी आप घर पर हैं तो एक फील रहती है कि यू आर एट होम, तो आपके ऊपर जो एक मानसिक दबाव रहता है ऑफिस के माहौल का वो नहीं रहता है। और साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा आराम है, अक्सर हमने देखा है कि जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं, तकरीबन ज़्यादातर लोगों का जो घर है वो उनके ऑफिस स्पेस से लगभग 1-2 घंटे की दूरी पर होता है। तो डेली के 2-3 घंटे उनके जो कम्यूटिंग का जो टाइम है वो बचता है। और साथ ही साथ यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो अगर हम एक एवरेज 200 से 250 दिन की भी बात करें और डेली आपने 2 घंटे बचाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि पूरे साल में आप 500 घंटे का एक एक्स्ट्रा लाइफ आपकी हो जाती है जो आप केवल व्यर्थ कर देते हैं ऑफिस आने और जाने में। साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक का इशू नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, और अगर जो एक आम धारणा रहती है ऑफिस में कि बॉस का प्रेशर रहेगा, तो उससे भी बहुत हद तक जो मानसिक दबाव है वो कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी हंसी वाली बात है कि आपका पहनावा भी मैटर नहीं करता। बहुत रेयर ऑफ द रेयरस्ट केसेस में वीडियो कॉल पे बात होती है तब भी आप केवल और केवल आसानी से शर्ट और लोअर में भी बैठ सकते हैं। तो एक अलग तरह का माहौल, एक तरह का रिलैक्सिंग वाला जो फील है वो आ जाता है। और कहीं ना कहीं यही कारण बनता है जो हमने भी आपसे बात की कि अपना जो मुख्य काम का जो समय रहता है ऑफिस का, उसके मुकाबले तकरीबन 10% एक्स्ट्रा समय हमारे जो लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, वो दे पाते हैं जब वो वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन में होते हैं। साथ ही साथ एक जो डेटा है कि तकरीबन जो रिमोट वर्कर्स हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी का रेशो है वो तकरीबन ऑफिस में काम करने वाले लोगों की अपेक्षा तकरीबन 13-15% एक्स्ट्रा होता है। तो बहुत सारी एक पॉजिटिव साइड भी इस बात की है कि यदि इस तरह की कोई परिस्थिति आती है कि वर्क फ्रॉम होम कराना पड़ रहा है किसी कंपनी को, तो वो दोनों ही पार्ट पे एक बड़ी सुविधाजनक सी स्थिति दिखाई देती है। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और
उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे वर्क फ्रॉम होम के कल्चर पर कि ये सुविधा में सच कितना है और इसकी सीमाएं कितनी हैं। तो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल और अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस सुविधा में आखिर सच कितना है और इसकी सीमाएं कितनी हैं, यानी ये हमारे लिए कितना सुविधाजनक है और साथ ही साथ इसके नुकसान भी हमें क्या हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि प्रोडक्टिविटी 13-15% एक्स्ट्रा होती है, और साथ ही साथ जब वर्क फ्रॉम होम वाला एनवायरनमेंट होता है तो आमतौर पर ऐसा माना गया कि तकरीबन 10% समय ज्यादा दिया जाता है जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। लेकिन दूसरे पार्ट पे अगर हमने एम्प्लॉयज की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो उनका जो डेली के 2 घंटे आने जाने के बचते हैं, तो अगर हम वर्ष भर की बात करें तो लगभग 500 घंटे अतिरिक्त उनको मिलते हैं अपना जीवन जीने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वर्क फ्रॉम होम की अगर हम बात करते हैं तो केवल ये काम ही नहीं बदलता, आपकी लाइफ को भी बदल देता है। जितनी बातें हमने आपको बताई वो हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और जिन पर हम ध्यान देते हैं, और हमें समझ आता है कि वास्तव में वर्क फ्रॉम होम से किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आते हैं। साथ ही साथ जब हम रिमोट काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार की खुशी भी देता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया अभी कि जब आप घर में बैठ करके काम करते हैं तो एक मानसिक तौर पर आप जो आपकी प्रेजेंस है वो घर में होने के कारण एक तरह का रिलैक्स वाला फील आपके मन में आता है। कार्यालय में जिस प्रकार का जो काम का दबाव होता है, चाहे आपके सीनियर्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, वो सब आप किसी तरह से नहीं महसूस करते हैं जब आप घर में काम होते हैं, घर से काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको खुशी और संतुष्टि भी ज़्यादा देता है। साथ ही साथ जब फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, आमतौर पर आपने देखा होगा जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर होता है तो वो शिफ्ट के हिसाब से भी कंपनी उसको एडजस्ट कर देती है, तो एक तरह से जो आपकी वर्क लाइफ है वो बड़ी बैलेंस हो जाती है। जब आपका एक वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है उसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से शेड्यूल ऑप्ट कर लेते हैं, तो यदि आपको घर पे या आपके जीवन में और भी जो विभिन्न कार्य रहते हैं यदि उनके लिए आपको शेड्यूलिंग करनी होती है तो वर्क फ्रॉम होम में ये सुविधा कंपैरेटिवली बेहतर होती है। क्योंकि जब कभी भी यदि हम ऑफिस की बात करते हैं तो वहां पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो निश्चित तौर पे आपको बिल्कुल फिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर एक ही स्थान पर बहुत सारे लोग काम करने आते हैं, तो वहां पर कोई भी नीति नियम जो बनेंगे वो सभी पर अप्लाई होंगे। लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम की बात आती है तो इंडिविजुअली आप अपनी सुविधा के हिसाब से एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस कल्चर ने, जो वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, हमने सुविधाएं देखी हैं, पर सबसे बड़ी जो कमी है, एक सर्वे के अनुसार यदि हम उसका रिजल्ट आपसे शेयर करें तो करीबन 25% लोगों ने अपनी एक समस्या जाहिर की है कि उनके अंदर सोशल स्किल्स, जो एक समाज के साथ जुड़कर के रहना या उनके जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं लोगों से मिलने जुलने में, उसकी उन्होंने कमी महसूस की। और साथ ही साथ बहुत से लोगों ने आइसोलेशन और अकेलेपन का भी एक जो बदलाव है वो अपने जीवन में महसूस किया है, तो वो कहीं ना कहीं अकेलेपन के शिकार भी हो जाते हैं। तो यानी एक तरह से यदि हम बात करें तो कि जो हम पीस की बात करते हैं, जो एक मेंटल पीस, एक रिलैक्स वाला जो माहौल मिलता है घर में, लेकिन वही शांति कभी कभी एक तरह के सन्नाटे का रूप ले लेती है। तो आप अंतर समझ के देखिए कि जब हम शांति की बात करते हैं तो एक पीसफुल फील आती है, शांति वाली, रिलैक्स वाली, लेकिन साथ ही साथ जब वो शब्द सन्नाटे में बदल जाता है तो एक सूनापन और एक खामोशी आपके जीवन में आ जाती है, जो किसी भी रूप से आपकी मानसिक और शारीरिक परिस्थितियों के लिए एक बेहतर स्थिति नहीं होती है, ना ही आपका पारिवारिक माहौल उससे बेहतर होता है। और साथ ही साथ जब कभी हम कुलीग्स की बात करते हैं, जब आप किसी भी कार्यालय में काम करते हैं तो आमतौर पर हमने देखा है कि जिस प्रकार से कॉलेजेज में, स्कूल्स में आप अपने सहपाठियों के साथ हंसी मजाक करते हैं, ऐसा ही एक वातावरण आपके ऑफिस में भी होता है जो आपके कोलीग्स के साथ होता है। लेकिन जब आप वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में चले जाते हैं तो वहाँ उन्हीं की कमी भी आपको सताती है, एक तरह का जो ये जीवन का बदलाव है वो आपको परेशान भी करता है। और साथ ही साथ पूरा पूरा दिन कई बार ऐसा होता है कि जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि आपके आजू बाजू आसपास कोई है नहीं, तो आप बिना किसी से बात किए हुए केवल और केवल एक मशीन की भांति केवल अपने काम पर लगे रहते हैं। तो जिस प्रकार का एक वातावरण मिलता है कार्यालय में आपके आसपास के लोगों का, काम करने का ढंग देख करके भी हम कई बार मोटिवेशन फील करते हैं अपने अंदर, तो उन सब जो गुणों का जो विकास होना होता है हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो एवरी टाइम खाली हम इस बात को देखें कि हमने साल में 500 घंटे बचा लिए, पॉल्यूशन से बच गए, लेकिन उसकी कीमत
कहीं ना कहीं हम चुकाते हैं, जैसे हमने कहा कि सोशल स्किल्स की कमी हो जाती है या लोगों से जो मिलना जुलना जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो सब पाने से आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल, और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवन के एक ऐसे बदलाव की जो वो हमारे जीवन में आया कोरोना की महामारी के बाद से, यानी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आया हमारी ऑफिशियल वर्किंग पे, और जिसे हमने नाम दिया वर्क फ्रॉम होम का। जैसा कि हमने अभी कार्यक्रम के पिछले भाग में आपसे चर्चा की कि इसमें किसी तरह की जो बेनिफिट्स है, अगर हम एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम्यूटिंग जो आवर्स हैं वो बच जाते हैं, आपको एक वातावरण अच्छा मिल जाता है, ऑफिस का कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ उसकी कहीं ना कहीं हम एक कीमत चुकाते हैं, जो सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, एक अकेलापन आपको महसूस होने लगता है, और दूसरी तरफ जो एक तरह का मोटिवेशन आपको अपने कुलीग के साथ बैठ करके काम करने का जो वातावरण है वो मिलता है, या कई बार आप अपने मन के दुख सुख आप शेयर कर लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग हट जाते हैं और एक मशीन के रूप में काम करने लगते हैं। साथ ही साथ एक जो बड़ी समस्या वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में डेवलप हुई वो ये कि काम और जिंदगी के बीच की एक तरह की रेखा जो बाउंड्रीज है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप घर में रह रहे हैं और घर में रहकर भी काम कर रहे हैं तो वो ना आप घर में रह पाते हैं ना आप ऑफिस वाला वातावरण महसूस कर पाते हैं, तो एक तरह की सारी चीजों की ना मर्जिंग हो जाती है। तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि काम और जिंदगी के बीच की जो रेखा मिट जाती है, जो बाउंड्रीज खत्म हो जाती है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करने लगती है एक समय के बाद। शुरू में बहुत निश्चित रूप से सभी को बहुत प्रसन्नता हुई थी, बड़े खुशी का वातावरण हो गया था, पेरेंट्स को और बच्चों को लगता था कि चलो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ही हैं और

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की महामारी के बाद हमारे जीवन में आए हुए एक बहुत बड़े बदलाव यानी वर्क फ्रॉम होम को लेकर के। हम चर्चा कर रहे हैं कि सुविधा में कितनी सच्चाई और इसकी आखिर बाउंड्रीज हैं क्या, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और कैसे हम इसको अपने जीवन में बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारी जो पारिवारिक जिंदगी है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, वो और वर्क लाइफ को बैलेंस किया जा सके। उसमें हमने बताया कि आपको वर्किंग आवर्स आप लिमिट करने पड़ेंगे, आपको स्पेस सेपरेट रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक डिजिटल डिटॉक्स भी आपको अपनाना चाहिए, और साथ ही एक डू नॉट डिस्टर्ब का एक टाइम जोन, नो वर्क जोन जो है उसका एक टाइम डिसाइड करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकती हैं। साथ ही साथ हम जो अब आज की बात करें कि आखिर आने वाला भविष्य है क्या, अब कंपनियां पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस नहीं बल्कि हाइब्रिड मॉडल पे चली गई हैं, यानी जिसमें 91% कर्मचारी जो हैं वो या तो रिमोट को पसंद करते हैं या हाइब्रिड को पसंद करते हैं। लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर इनकी परफॉर्मेंस का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। तो एक समझने वाली बात है कि जब आप किसी भी चीज की सुविधा, जो भी आपने मॉडल अपनाया, यदि उसका इम्पैक्ट बेहतर आ रहा है तो निश्चित रूप से कंपनियां उसको अडॉप्ट करती हैं। तो हमने ये पिछले जो कुछ समय में देखा कि जब ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ तो उस समय हाइब्रिड पे जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोरोना का एक आपातकाल परेशानी चल रही थी कि उसमें उस एमरजेंसी में हम इस प्रकार से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिस्थितियां बेहतर हुई तब कंपनीज ने इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपनाया कि हाइब्रिड मॉडल। लेकिन अब उसमें निकल के आती है ये बात कि जब कभी भी हमने बदलावों को चुना या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लिया या हाइब्रिड मॉडल को हमने अपनाया, तो उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव जो आया था कि जो एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी थी, जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कंपनीज में, वो तकरीबन जो कंपनियां छोड़कर अक्सर लोग चले जाते हैं, स्विच कर लेते हैं, तो उसमें 33% की गिरावट भी आई थी इस वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वाले कल्चर के बाद से। तो यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आने वाला समय है, जो भविष्य का जो ऑफिस है, वो एक तरह से कभी घर और कभी बाहर, लेकिन बड़े बैलेंस के साथ होगा। दोस्तों, हमें बड़े गहराई से इस बात को समझना पड़ेगा कि जो वर्क फ्रॉम होम है वो एक सुविधा तो है लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये आपको आजादी तो देता है लेकिन उसी आजादी में आपसे उम्मीद करता है डिसिप्लिन की, यानी अनुशासित रहने की। यदि आप सही संतुलन बना लेते हैं तो ये काम नहीं बल्कि आपके लिए एक बेहतरीन लाइफस्टाइल बन सकता है, एक अच्छी जीवन शैली बन सकता है। याद रखने की जरूरत है कि काम आपके लिए है, आप काम के लिए नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर होता है इन दोनों बातों में और उसको हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखिए, इस परिस्थिति को और बेहतर बनाइए और इसकी सुविधा पूरी तरह से लाभपूर्ण रखिए।

वो कर सकते हैं केवल और केवल जब आप इसकी बाउंड्री सेट करें। जो टिप्स हमने आपको दी उनको यदि आप अपनाएं तो आपको एक जीवन में एक बेहतर पारिवारिक और जो हमने ऑफिशियल एनवायरनमेंट की बात की वो मिलेगा और आप एक बेहतर तरीके से जीवन को जी सकेंगे। तो दोस्तों इस बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और मिलकर तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

रेडियो माने वृष्णा 107.8 FM पर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास में. मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आप सभी का स्वागत है, जहाँ मैं होती हूँ आपके पास 1 बजे से 3 बजे तक, जहाँ गाने आपको सुनाती हूँ और होती है ढेर सारी बातें. और आज बातों के साथ साथ मैं सिर्फ अकेले ही आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरे शो में आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होने वाली है, स्टूडियो में होने वाली है, जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने जानने सुनने को मिलेगा. ये कौन है इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी. चलिए पहले नाम बता देती हूँ आपको. इनका नाम है डॉक्टर शेफाली गुप्ता, लेकिन इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है. और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही जैसे हम शुरुआत करते हैं तो एक गाना सुनाते हैं, और वो गाना होता है मेरी पसंद का. तो आज भी मेरी पसंद के गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. और साथ के साथ आप अपनी पसंद सुनना चाहते हैं, या कोई आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, या कोई गाना किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई दूर बैठा है उसको आप गाना सुनाना चाहते हैं, अपने दिल की बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना. मैं हूं प्रियंका आपके साथ, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर.

0: ये गाना आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ ब्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज स्टूडियो में हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता और ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं. साथ के साथ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में ये यूथ को मोटिवेट कर चुकी हैं और समाज और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं. और इनका बहुत बहुत स्वागत है. और ये तो सिर्फ चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अभी तो बहुत कुछ इनसे जानना बाकी है. इनसे हम जानेंगे ढेर सारी बातें, हम इनकी लाइफ से जुड़े जो ऐसे कुछ ऐसे मुश्किल भरे पल रहे हम सब की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ये कैसे उनको पार करके आज इस मुकाम पर पहुंची है हम इनसे जानेंगे. सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं जी बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का और श्रोताओं से बात करने का मौका दिया. उन सबसे मैंने बहुत सीखा है और आगे भी सीखती रहूंगी. यही मेरा एक एम है समाज के लिए कुछ
0: जी. समाज में जब कुछ कर दिखाने की बात आती है बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर के कुछ काम करने की चीज वो बात आती है ना, तब बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि कौन ही हमारा साथ देगा या इससे क्या ही बदलाव होने वाला है या इतने सारे लोग हैं हम क्या ही कर पाएंगे. ये सोच ही कई बार ना हमें जो हम अच्छा कर सकते हैं उसको हमें पीछे कर देती है. लेकिन ये चीज शेफाली जी ने नहीं सोची, आज इसीलिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हैं. शेफाली जी, अब तक का सफर आपका कैसा रहा ये तो मैं जरूर जानूंगी, लेकिन यहां तक आप पहुंची इसके लिए एक सोच जरूरी होती है. वो सोच डेवलप जो होती है ना वो बचपन से होती है. आपके केस में भी ऐसे ही हुआ होगा, तो अपने बारे में बताइए, अपनी जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, कैसे आपने कैसे अपना मुकाम शुरू किया बताइए इसके बारे में.
1: मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, बस जीने की जरूरत है.
0: करेक्ट.
1: इसी के सहारे मैं आगे बताना चाहूंगी कि मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, शिक्षा विशेषज्ञ, स्टूडेंट काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, और इसके साथ साथ मैं एक ईयर टू ईयर NGO है जिसके साथ मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ. वो मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं और मैं ब्यूटी पेजेंट ग्रूमर, मीडिया पर्सनैलिटी, एक क्षितिज इंडियन आइकोनिक पोएट की संस्था है उसमें मैं जुड़ी रही हूँ फॉर लास्ट 7 ईयर्स एंड RN Talks के जुड़ी रही हूँ. ईयर टू ईयर मैं आपको बताया रिलेशनशिप काउंसलर हूँ.

0: एवीएम में टीचर्स ट्रेनर, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ पहले, टीआईएम में कंटेंट राइटर हूँ, मैं अपने आज के समाज को प्रेरित करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। यूएलबी में स्टूडेंट काउंसलर हूँ, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मैं ग्लोबल पब्लिक स्पीकर हूँ, मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन लिए हैं, दुबई, कैलगरी, कैनेडा और बहुत सारे अलग अलग तरह की जगह से यूनिवर्सिटीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सो आजकल के दौर में नए जमाने के स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं जैन जी के साथ जुड़े, मुझे बहुत पसंद है। वो मुझे एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनसे बात करके नई चीजें सीखने मिलती हैं और एक तरह से उनको मार्गदर्शन देने का काम मैं हमेशा करती आई हूँ। इसके साथ साथ क्योंकि मैंने पीएचडी किया है पॉलिटिकल साइंस में, मेरा टॉपिक मीडिया से रिलेटेड था, इसीलिए मीडिया मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, मेरा पैशन है। सो मैंने रेडियो द्वारिका में काम किया है, न्यूज एक्स में थोड़े दिन काम किया है, वेयर आई वाज करेक्टिंग द कंटेंट्स एंड ऑल। सो इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत में इंस्पिरेशन मुझे पेरेंट्स मेरे 21-22 ईयर्स तक तो साथ थे ही, उसके बाद भी उन्होंने, कभी भी हम दो सिस्टर्स हैं, उनको ये नहीं फील होने दिया कि हम गर्ल्स हैं। आजकल बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने उस टाइम में हम सबको इतना एजुकेट किया कि आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और हम इस समाज में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में हैं, जगह जगह पोस्टिंग रही हमारी, तो हमारे साथ जितनी सीनियर लेडीज थे, जितने हमारे साथ फ्रेंड सर्कल बना, हमारी फ्रेटर्निटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जहां हम हाई और लोज ऑफ लाइफ साथ में शेयर करते हैं। सो उनसे हमने बहुत सीखा, सीखते सीखते बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए, फिर बच्चों ने हमें सिखाया, बच्चों ने मुझे सिखाया आज के टाइम में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है।
1: Correct.
0: कैसे हम लर्निंग को अपडेट कर सकते हैं। हमारी लर्निंग उस टाइम की है जहां हम लिखा करते थे, आजकल लैपटॉप आ गया है आपका, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, फिर आपको सोशल मीडिया में एवरीडे अपलोड करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इतना ज्यादा प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना सेफ रहना है एआई के जमाने में, इतने फ्रॉड्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने अपने दोनों बच्चों से सीखी। आज भी दोनों मेरे को यही बोलते हैं, मम्मी यू हैव गिवन योर लाइफ टू अस, नाउ इट इज योर टाइम टू फ्लरिश एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे साथ में खड़ी है, जो हूं आज मैं वो उनकी वजह से, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स, हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, ऑल आर एट द बैक ऑफ मी।
1: तो बिल्कुल इतना सब कुछ आपने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप रिलेशनशिप कोच भी हैं और बहुत सारी चीजें, आप एनजीओ भी चला रही हैं, फिर आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, मतलब इतना सब कुछ कि मैं किसी एक चीज से तो आपको नहीं आपको कुछ कह पाऊंगी। हाँ ये जरूर कहूंगी कि मल्टीटास्किंग लेडी से हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने जो है हाथ आजमाए हुए हैं और अभी भी काम कर रही हैं। कभी जब आप पीछे मुड़कर खुद को देखती हैं और जब आप ये देखती हैं कि मैंने कितना सब कुछ कर लिया है, एक ख्याल तो मन में आता ही होगा, तो क्या थॉट आता है पहले आपके दिमाग में?
0: सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसका श्रेय पूरा मेरी आर्मी फ्रेटर्निटी को जाता है। जब आप आर्मी में होते हैं, आपके हस्बैंड आगे पोस्ट होती है, तो आप अपने आप खुद बच्चे मैनेज करते हैं, घर मैनेजमेंट होता है, तो हाफ ऑफ द मैनेजमेंट हमें इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन वी ट्रैवल अलोन, वी डू एवरीथिंग अलोन। ये एक जो पावर आर्मी ने मुझे दी है, उसमें मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जितने भी काम हम मल्टीटास्किंग के आज कर पाए हैं, इट वॉज द ग्रूमिंग डन बाय दैट। सो आई ओ माई मल्टीटास्किंग एबिलिटी एंड मेनी मोर थिंग्स टू माई आर्मी फ्रेटर्निटी, माई थैंक्स टू माई जूनियर्स एंड सीनियर्स, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे। और दूसरा उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, आई हैव ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट मोर देन 2000 स्टेज शोज, आई हैव कंपेयर्ड अ लॉट मोर देन 4000-5000 शोज देयर। सो एक अंदर जो आत्मविश्वास होता है, मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया था, उसमें था मेरे में आत्मविश्वास, पर मैरिज के बाद कभी बच्चे हो जाते हैं, आप अपने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आर्मी ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को आगे बढ़ने के लिए कि मैं अपने ऊपर खुद सबसे पहले भरोसा करूं। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आज तक मैं अब खुद को पहली प्रायोरिटी देती हूँ, माई सेल्फ केयर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, देन एनीथिंग एल्स कम्स इन माई लाइफ, इवन फॉर द फैमिली ऑल्सो। जब मैं अपनी केयर कर पाऊंगी तभी मैं फैमिली की केयर कर सकती हूँ।
1: करेक्ट, बहुत सही बात आपने बोली कि जब मैं अपना ध्यान रख पाऊंगी, जब मैं स्ट्रांग रह पाऊंगी, तभी मैं दूसरों का ध्यान रख सकती हूँ। और ये एक बहुत ऐसी गहरी सच्चाई है जो हम सब जानते भी हैं, वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को ताक पर रखते हैं दूसरों की वजह से। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे मैं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सुननी चाहिए। मैम से जरूर बात करेंगे। डॉक्टर शेफाली गुप्ता हमारे साथ में इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम है ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांगाम के साथ।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानवर्ष नाउ 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रांक आपके साथ और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मेरे बिल्कुल सामने स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जिनसे आज हम बहुत सारी बात कर रहे हैं. ये काफ़ी प्रेरणादायक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शिक्षा से, अपने अनुभव से काफ़ी कुछ अचीव किया है. तो इनसे हम बात कर रहे हैं. अभी जैसे आपने कहा कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं, ये सच्चाई भी है कि खुद को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है. फैमिली को तभी हम टेक केयर कर पाएंगे, तभी हम अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, हम खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे, राइट. आज की जो महिलाएं हैं वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, परिवार को देखने में, अपने करियर को बनाने में इतना डूब जाती हैं कि अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं रहता. और कहीं ना कहीं फिर जब एक एज आती है, जब हम उस चीज़ को अनुभव करने का, जब वो एक्सपीरियंस करने का जब वो पल आता है ना, तब हम अपने हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, अपने आप को लेकर परेशान होते हैं. आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को?
1: आपने बिल्कुल सही कहा. आज के दौर में हम आर्टिफिशियल दुनिया में इतना आगे भाग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक इतने खूबसूरत इंसान हम थे. आप सोचो जब हमारा बचपन था कितना सुंदर होता था, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बेफिक्र रहते थे हम. आज के टाइम में बच्चों का बचपन भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है, बाहर गेम्स कोई नहीं खेलने जा रहा है. अब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई है लोगों में, समाज में, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा. और जहां तक आज की नारी की बात करते हैं, आज की नारी मल्टीटास्किंग जैसे आपने बोला वो करते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, आपको अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं. जब हम क्लास में जाते हैं, हम कुछ सुनते हैं, फिर हम होमवर्क करते हैं घर आकर, ऐसे ही हमारी बॉडी एक हमारा पार्ट है जिसको हमें लुक आफ्टर करना है. वो बेबी की तरह है, उसके लिए हमें बहुत सारा होमवर्क करना होता है. आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, योगा करना चाहते हैं योगा करिए, निकालिए अपने लिए टाइम. ब्यूटीफुल सुंदर वर्ल्ड है, कितनी सुंदर दुनिया है वहां सुबह की, ऑक्सीजन मिलती है सीधा. अपनी बॉडी के लिए जो सुबह काम कर सकते हैं आप, एक घंटा नहीं, एक घंटा शुरुआत होती है, आप 5 मिनट से तो करिए. स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स बढ़ाइए, नेक्स्ट वीक 20 मिनट्स बढ़ाइए. कुछ चंद लम्हे उस इंसान को दीजिए जिसको सुबह उठ के आप शीशे में देखते हैं और वो आप हैं. लुक एट द मिरर एंड से यस दिस इज मी, टुडे इज गोइंग टू बी माय डे. आज मैं जो चाहती हूँ वो मैं लेकर आऊंगी. शाहरुख खान ने भी बोला है ना, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे मिलाने में आपका साथ देती है. तो यही अगर आप अपनी बॉडी के लिए केयर करना सीखेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे. और शायद मैंने प्रियंका बताया था आपको, आजकल बटरफ्लाई हग बहुत चल रहा है. That is, you put your right hand on your left shoulder, put your left hand on your right shoulder and say, this is me, I love you, I love myself. So, ये जो butterfly hug है, ये एक magical hug होता है. आप शीशे में उस इंसान को, जिसको आप 24 आवर्स चलाते हैं किसी दुनिया में बाहर की, उसमें थोड़ा सा टाइम देके देखिए, देखिए ये मैजिक दिखेगा आपको. दिखना शुरू विद इन सेकेंड शुरू हो जाता है, बिकॉज ये अफर्मेशंस हैं, इनको अफर्मेशंस बोलते हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं. अफर्मेशंस होते हैं ना, दिस इज मी, आई इट, द डे इज बाउंड टू बी माई डे टूडे एंड इट विल हैपन. यू आर गिविंग द यूनिवर्स ऑल दीज, यू नो, ऑरा, योर ऑरा इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. तो आपकी चीजें अच्छी होंगी.
0: बिल्कुल,
1: सोच पे निर्भर करता है. मैं कहती हूँ आजकल की जितनी नारी हैं उनको यही बोलती हूँ कि आपके पास वो पावर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें डीपी लगाते हैं. मैं उसको बोलती हूँ डिस्प्ले पॉजिटिविटी. आप क्यों पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं. आपका आधा 50% काम उस पॉजिटिव सोच रखने से खत्म हो जाएगा. अगर आप सोचते हैं आज मुझे ये करना है, तो आपका आधा काम तो हो गया, उसके बाद तो आपको थोड़ा सा काम ज्यादा आगे करना है. तो सभी नारियों से मेरी यही एक मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अपनी इस खूबसूरत इंसान को, जिसको आप शीशे में देखते हैं, उसे टाइम दीजिए, उसको ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए और खुश रखिए.
0: बिल्कुल,
1: तो आप अंदर से मन खुश होगा तो आप बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे.
0: जी, तो जादू की झप्पी बहुत जरूरी है, ये मैम भी कह रही हैं. तो अपने आप को पहले जादू की झप्पी देना शुरू कीजिए और अपने लिए अच्छा कहना, अच्छा सोचना शुरू कीजिए. और ये ना मैं बहुत मानती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के साथ में कोई झगड़ा हो गया या कोई ऐसी बात हो गई है ना, और उसके बाद दिमाग में वही चीजें चलती रहती है और आप जैसा फिर सोचते हो ना वैसा ही आप रिएक्ट करने लगते हो. आप आपके जो एक्शंस है ना वो भी बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं. अगर आप अग्रेसिव कुछ सोच रहे हैं तो वो अग्रेसिव जो एक्शंस हैं वो दिखाई देते हैं. तो इसीलिए इसके उलट आप सोचिए. आपको हमेशा अपने मन में प्यार रखना है, अच्छापन रखना है. अच्छा हर इंसान होता है, लेकिन उस चीज को बस अब आपको उस शैडो से निकल करके सामने लाना है. फिर आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी, आपने खुद भी कभी यकीन नहीं किया होगा, और ये खुद मैम कह रही हैं, और इतना एक्सपीरियंस. अभी हम और बहुत सारी बातें मैम से जानेंगे, साथ के साथ मैं सुना रही हूँ गाना. तो इस वाली बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत मोटिवेट करेगा आपको ये गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ.

0: गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 8010781078 रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट काउंसलर है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD किया हुआ है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ ही के रिलेशनशिप कोच हैं और बहुत सारी चीजें जो लगता है जो ये कर रही हैं उनसे अभी जानना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पहली चीज जो सबसे पहले मेरे दिमाग में, जैसे कि आपने कहा कि आप आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और कहीं ना एक ये सवाल सबके जहन में रहता है कि मुश्किल होता होगा ना, ऐसे कि एक डर रहता है हमेशा, राइट? एक मन में हमेशा डर बना रहता है, साथ में बच्चों को भी टेक केयर करना है, घर भी देखना है, तो कैसे मैनेज, मतलब सबसे पहले तो सल्यूट है आपको, कैसे आप मैनेज कर पाती हैं इतना सब कुछ और कैसे उस डर से आप बाहर निकल पाती
1: हैं? कहते हैं खुदा ने शायद हम लोगों को चुना है इतने सारे लोगों में जो स्ट्रांग लेडीज हैं कि हम इस डर से ऊपर निकल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आर्मी ऑफिसर्स की पत्नियों के लिए चुना है शायद, क्योंकि हमारा जो डर है वही हमारी ताकत है।
0: करेक्ट।
1: हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे यूनिट है, ब्रिगेड है या कोई भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी में, वो सब इतना साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम अकेले हैं या डर हमें कभी साथ लेगा। जैसे हम सिस्टर्स आपस में एक घर की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, वैसे ही हमारे साथ हमारे सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो कभी अकेलापन नहीं लगता। इट्स अ बिगर लार्जर ब्यूटिफुल फैमिली विच वी कैरी विद अस, सो डर का तो सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा डर हमें इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि हमारे हस्बैंड एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वो एक बहुत गर्व की बात है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जो जो इंसिडेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए बहुत गर्व से सर ऊंचा करने वाली बात है, देश के गौरव के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, गरिमा के लिए। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ ये कहते हुए कि बाकी सब चीजों से ऊपर जो मेरी आज पहचान है वो यही है कि मैं आर्मी ऑफिसर की पत्नी पहले हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं वो केयर, वो प्यार, वो भी कहीं की आगे बढ़ने में सपोर्ट देती है। वही एक सपोर्ट और होता है जो हमारे लाइफ सिस्टम होते हैं, हमारे जो अपने परिवार वाले होते हैं, आप इसे जो भी नाम दे सकते हैं मुझे बताना अगर आपने कोई नाम दिया हुआ है अपने किसी लव्ड वन का, लेकिन इनका सपोर्ट ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में और जितना आपने अचीव किया है इसमें अपनों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सही कहा। हाँ,
0: जी,
1: इस सपोर्ट के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ता।
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: मेरे फादर हमेशा कहते हैं हमारे पास कुछ सर्कल्स होते हैं, हमारा जो इनर सर्कल है उसमें सिर्फ हम है, इट्स मी आई, जिसके ऊपर सारे लोग टिके हुए हैं। सेकंड सर्कल में आपके हस्बैंड और बच्चे आते हैं जो आपकी फैमिली बनते हैं, उनका भी आपके ऊपर बहुत सारी निर्भरता रहती है, उनको मेंटली सपोर्ट करना है, फिजिकली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है बच्चों को आपको, तो हस्बैंड और वाइफ मिलकर ये चीजें आगे प्लान करते हैं। अब बच्चों का साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा बच्चे रहेंगे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, सो ये सपोर्ट हमारे सेकंड सर्कल का है। थर्ड सर्कल में हमारे आते हैं हस्बैंड के पेरेंट्स और गर्ल के पेरेंट्स, सो इन चारों भी हमारे ऊपर डिपेंड है क्योंकि हम ये इनको सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी लुक आफ्टर करना होता है उनका, उनकी आज की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। और दो आजकल मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स और सब हैं जो अपने आप में खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो कर लेते हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केयर के लिए भी हमें मिल जाती हैं। उसके बाद फिर हमारा आउटर सर्किल आता है जहां हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी जिंदगी हैं। आजकल की दुनिया में फ्रेंड्स होना और फ्रेंडशिप खत्म होना मैंने बहुत यंग बच्चों में देखा है। आप लोग फ्रेंडशिप को सिर्फ वहां तक देखते हैं जहां आप एंजॉयमेंट देखते हैं, आप वहां तक फ्रेंडशिप को देखते हैं जहां आप ये चाहते हैं कि अच्छा आज हम यहाँ चलेंगे, आज हम यहाँ खाना खाएंगे, आज हम मूवी साथ में देखेंगे, पर फ्रेंडशिप इससे ऊपर है। ये फ्रेंडशिप आपकी जो बनती है आपके इस सर्किल में ये आपके फैमिली बन जाती है। कुछ टाइम के बाद आपका फैमिली फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रेंड्स फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं. आप देखिएगा 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ लाइन ही फ्रेंडशिप फ्रेंड्स होते हैं. वो लुक फॉरवर्ड करते हैं आज सुबह आज कहाँ जाएंगे, आज हमारी किटी पार्टी, स्पेशली लेडीज का, इवन जेंट्स का भी स्टैग पार्टीज होती है. सो उनके लिए फ्रेंड्स उनकी जान है हम लोगों के लिए, जिनसे हम सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में सुख दुख को आपस में करते हैं. तो कहा भी ये गया है, एवरी मोमेंट हैज लव इन इट, एवरी आवर हैज हैप्पीनेस इन इट, इफ यू लूज इट इट बिकम्स मेमोरी एंड इफ यू लिव इट इट बिकम्स लाइफ एंड आवर लाइफ इज आवर फ्रेंड्स. सो ये सारी सर्कल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसके बाद हमारा मिला के जो बनता है दैट इज हमारा राष्ट्र निर्माण, जहां हम अपनी फैमिली के साथ अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: हमने जितना सीखा बचपन से आज तक, क्या हम उसका 1% भी अपनी सोसाइटी में गिव बैक कर पाए हैं. आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा. कई बार होता है हम डोनेशन के लिए जाते हैं, कहीं ओल्ड एज होम में जाते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं. बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं, स्पेशल नीड्स के हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, कैंसर पेशेंट्स के साथ बातें करते हैं. इतनी सारी चीजें अगर हम करते हैं ये आपके दिल को सुकून देती हैं. ये सारी चीजें आपके लिए खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि हमें इतना कैपेबल आज समाज ने बनाया है कि हम उसका बहुत आभारी है कि हम उसको वापस भी ये करेंगे. दुनिया बहुत छोटी है, छोटी सी जिंदगी है, इसी में हमारी जिंदगी एक अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ निकल जाती है. सो मैं हमेशा एक मेरा बहुत मंत्र है मेरा प्रियंका, वो शेयर करती हूँ श्रोताओं के साथ, आपके साथ. मैं अपना जीपीएस खुद लेकर चलती हूँ. आप मोबाइल उठाते हैं, आप जीपीएस लगाते हैं, मेरा जीपीएस मेरे साथ रहता है. जी इज फॉर ग्रेटिट्यूड, पी इज फॉर पॉजिटिविटी एंड एस इज फॉर स्ट्रेंथ, नो योर स्ट्रेंथ. बहुत सारे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि वो कंपटीशन में आ जाते हैं.
0: जी, जी, जी.
1: पर उनको अगर अपनी स्ट्रेंथ आज पता चल जाए, आज लाइनें खुली हुई हैं बच्चों के लिए करियर में. आप म्यूजिक में अच्छे हैं, ड्रम बजाने में अच्छे हैं. आप पहले टाइम में होता था डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस और यही सब चलता था. आज तो लाइन्स ही लाइन्स हैं, जहां आप जाएंगे वहां जा सकते हैं. सो आई कैरी माई जीपीएस विद माई सेल्फ एंड आई रिक्वेस्ट आपके सारे श्रोताओं से, अपने जीपीएस को अपनी एक कीवर्ड बना लीजिए और दुनिया देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत हो जाएगी.
0: वाओ, अगर थॉट चेंज हो जाए तो सब कुछ हम ही हैं. ये थॉट ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है, लेकिन जिनके अंदर होता है ना, उनके बात करने का तरीका, उनका उनकी प्रेजेंस ही बहुत स्ट्रांग होती है. या आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने लिए जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि अच्छे वर्ड्स जो हैं वो हमेशा, और ये हर कोई डिजर्व करता है, हम जो हैं या जिस भी पोजीशन पे हैं हम सब अच्छा डिजर्व करते हैं. राइट, आप जो भी कर रहे हैं आप उसको प्रेज करें. राइट, और कभी भी ग्रैटिट्यूड मत भूलिए, उसको हमेशा रखिए. तो ये छोटी सी चीज जो समझ लेता है वो अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है. रेडियो वाणा वैष्णव 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरे लाइफ, और मैं हूं प्रियंका आपके साथ.

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूं ब्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. शेफाली, बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं. अच्छा, कभी एक ऐसा पल आया जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ना कभी ये आता है कि वो चार लोग क्या कहेंगे. तो ये वाली चीजें ना सभी की लाइफ में होती है, है ना. कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है, और आई एम श्योर मुझे पता है आपके पास भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा. तो बताइए कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है इंटरेस्टिंग.
1: बिल्कुल, इंटरेस्टिंग तो कई बार हुआ है, पर अब मुझे उन लोगों पे बहुत दया आती है, तरस आता है कि कैसी सोच है.
0: और यहाँ पता है मैं क्या कहती हूँ, यहाँ मैं कहती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता.
1: बिल्कुल, मैं अपनी फेवरेट हूँ.
0: सो
1: कुछ लोगों की सोच वहाँ वहीं तक सीमित होती है.
0: करेक्ट.
1: और मैंने अपनी आउटर लेयर इतनी स्ट्रांग की हुई है कि मुझे उनकी सोच से फर्क नहीं पड़ा. कुछ सोच थी, पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी में थी, उसके बाद आर्मी ऑफिसर से मैरिज हुई, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर जैसे जैसे मुझे सक्सेस धीरे धीरे मिलती गई, बहुत काम किया है. आई हैव डन ऑन फील्ड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत काम किया है मैंने, और अभी भी मैं करती रही हूँ. पर कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये कैसे आगे बढ़ गए, इनमें तो शायद ये खूबी थी नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही वहीं तक है. सो आने वाले टाइम में, पिछला टाइम, अभी का टाइम, अब ये नहीं मैटर करता मेरे लिए, बिल्कुल नहीं मैटर करता है, क्योंकि वो उनका ब्रॉटअप है, उनकी सोच है, और वो वहीं तक है. मैं कहां से कहां पहुंच गई, बट वो वहीं की वहीं है. सो दैट वे आई डोंट इवन कंपेयर विद एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. मैं कर रही हूँ, मेरा सोल सेटिस्फेक्शन है, मेरा अपना जिंदगी है, और मैं अपनी तरह से अपनी जिंदगी को डील करती हूँ.
0: अगर कोई फेस कर रहा है अभी करंट और हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, बड़ा परेशान के चार लोगों ने दिखते नहीं है लेकिन परेशान कर रखा है, और वो उभर ही नहीं पा रहे इस चीज से, और इस वक्त वो हमें सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: ऑलवेज रिमेम्बर, आई एम द बेस्ट.
0: नोबडी
1: इज बेस्ट देन यू. यू नो, हमें जब मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल टाइम में, मुझे याद है मेरे फादर बोलते थे आप शीशे में देखकर अपनी प्रैक्टिस करो. तो मैं हमेशा शीशे में देख के वर्बेटम पूरा प्रैक्टिस करती थी. आई ऑलवेज यूज टू स्टूड फर्स्ट देयर. सो मैं एक ही चीज उनकी याद रखती हूँ, बोलते हैं जब आप अपना काम कर रहे होते हो तो ये सोचो दूसरे को किसी को कुछ नहीं आता. बस. सो आई एम द बेस्ट. रिमेम्बर दिस थिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. जिस तरह से आपको एक यूनिक इंसान भगवान ने बनाया है, कि हमारे तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मैच होते आपस में. सो हाउ कैन वी से कि चार लोग क्या कहेंगे, सोचना ही नहीं है. हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक है, मीन्स हम यूनिक है, हमसे आगे कोई नहीं है दुनिया में. सो ऑलवेज रिमेम्बर, हम एक ब्यूटीफुल सोल है, बहुत सुंदर है, और बहुत अच्छा काम दुनिया के लिए करके जाएंगे, कुछ नाम कमा के जाएंगे, कुछ यादें छोड़कर जाएंगे.
0: आप रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, रिलेशनशिप की जब बात आती है आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इसको लेकर?
1: कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, हमने एक सर्वे भी किया था इस बारे में. सो रिलेशनशिप को लोग आजकल सीरियसली नहीं ले रहे हैं. उनके मन में कि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज्यादा है. बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, सो दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ईच अदर. अगर आप जिंदगी को हल्का फुल्का ले लेते हैं तो क्या चला जाएगा? इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर. एंड हमने देखा होगा हमारे पुराने टाइम में लोग ये सब सोचते ही नहीं थे. किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे बार में सॉरी बोल दिया, बात आगे चली गई. अभी वो थोड़ा सा भी अगर कोई बोलते हैं सॉरी तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है. सो हमारे मेरे हिसाब से तो डिप्रेशन कुछ नहीं है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, होता है साइंटिफिकली, इट इज प्रेजेंट, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, कितना डीपली आप अपने अंदर उसको ले रहे हैं, और उसकी भी टेक्निक्स हैं. सो मैं ये बोलूंगी रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत स्ट्रांग देना पड़ेगा. एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए. आपने शायद, मेरे ख्याल से शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें था कि कभी भी वो अपनी फ्रेंड से भी तू करके बात नहीं करते हैं. इवन काजोल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम, बट वो कभी भी तू करके बात नहीं करते, हमेशा आप करके बात करते हैं. या शाम को यार आ जाए, शाम को चाय पीते हैं, उन्होंने कभी यार नहीं बोला. ये ऑलवेज इज आज शाम को टाइम है तो आ जाए ना, साथ में बैठते हैं. यूज अ रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज विद ईच अदर. एक दूसरे को आप सम्मान देंगे तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है जहां आप एक दूसरे को कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं. एक लड़की है जिसने अपनी जिंदगी पूरा टाइम पेरेंट्स के पास दी है, उसके बाद वो आपके पास आई है. एक बॉय है जिसने पूरा टाइम अपने पेरेंट्स का साथ दिया है, वो आपके साथ रहने के लिए आया है. सो ये दोनों का एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप साथ में है. इस बीच में ये नहीं आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने ये किया, मेरे पेरेंट्स ने ये किया, या मेरे घर में ऐसा हुआ, आपके घर में ये हुआ. दोनों का ब्रॉटअप अलग है, दोनों का स्टडी मटेरियल अलग है जहाँ आप पढ़े हैं, हो सकता है साथ में पढ़े हो. सो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना आजकल के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी टंग से क्या बाहर जा रहा है या इन अ वे हेल्दी के लिए अंदर क्या जा रहा है, दोनों चीजों का डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे पार्टनर को ये नहीं आता. आपने उसको जज किया, जजमेंट खत्म कर दीजिए. जहाँ जजमेंट खत्म हो गया वहीं आपको ले गए, तो बहुत सुंदर इंसान है. और जिससे आपने मैरिज किया वो कैसे गलत हो सकता है. हमारे यहाँ डिवोर्स वर्ड नहीं होता काउंसलिंग में, रिलेशनशिप में. हम चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा उन्होंने कम्प्रोमाइज किया, थोड़ा इधर से कम्प्रोमाइज हुआ, थोड़ा वो हैप्पी हो गए, थोड़ा हम हैप्पी हो गए. ऐसे करते करते लाइफ कब में निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो शायद सारे रिश्तों से ऊपर है.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: सही. तो मेरे हिसाब से आपको पहले रिलेशनशिप में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. डॉक्टर शेफाली, हेल्दी रिलेशनशिप को अगर रन करना है तो उसकी की क्या है?
1: हेल्दी रिलेशनशिप की एक बहुत अच्छी की है कि खुश रहिए. क्योंकि आजकल की जिंदगी में सबसे एक्सपेंसिव चीज खुशी है.
0: करेक्ट.
1: जिसका कोई मूल नहीं है. और आपके पास तो भगवान ने फ्री में स्माइल दी है. कुछ भी कोई बोलता है, छोटी सी स्माइल देके प्यार से बात कर लो.
0: करेक्ट.
1: चीजें अपने आप सुधर जाएंगी. छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाना खत्म कर दीजिए. चीजें आपको लगेगा बहुत सिंपल हो गई है. किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो जस्ट ब्लेस देम, एक दूसरे को. छोटी छोटी चीजों में, आज मैंने देखा था, आई थिंक 2 दिन पहले किसी एक कपल के बीच में लड़ाई हुई. इतना गुस्सा आ गया, इतना एंगर हो गया उसमें कि उन्होंने उसको थप्पड़ी मार दिया, तो वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया. सो इतनी सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम स्टेप पर क्यों जाने दें हम इन चीजों को? जब हम दोनों की लाइफ है तो हम दोनों अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है. है ना? सो आप छोटी छोटी खुशियों को बांटिए. आज नहीं मन हो रहा उसका खाना बनाने का, कोई नहीं, बाहर से खा लीजिए, बाहर चली जाइए. आज नहीं आपको हो रहा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है हस्बैंड का मूड हो अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, तो गिव हिम सम स्पेस. ऐसी आपका मन है तो गिव हर सम स्पेस. यू नो इट्स अ वाइस वर्सा. आपको स्पेस देनी है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, ईगो साइड में रखनी है. आजकल हम सभी, आपने देखा है, सभी वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है. सो ये जो ईगो आ जाती है ना 30 इयर्स के बाद, ईगो से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. इन सबको साइड में रख के अच्छी जिंदगी बिताइए एंड दिस इज द की.
0: करेक्ट. एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है एक दूसरे को स्पेस देना. राइट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन करता है कि आप अकेले बैठो. बहुत सारे सवाल जो हम अकेले में ही उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन ये चीज ना समझ में नहीं आती है आज के टाइम पर. और एक चीज जो मुझे लगता है अगर रिलेशनशिप में ये हो जाए तो एक बेहतर रिलेशन चलेगा, वो ये है कि जो अच्छी चीज है ना हमेशा उस पर ध्यान दें. हम क्या करते हैं, बुरी चीजें हम याद रखते हैं.

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वरिष्ठ 107.8 एफएम पर. मैं हूं ब्रांका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. डॉक्टर शेफाली, आपने नेशनल इंटरनेशनल कई सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, आप स्पीकर रही हैं, है ना. तो आज का जो यूथ है, आप उनको क्या कहना चाहेंगी और क्या आप अपने सेमिनार्स में यूथ को बताती हैं, क्या उनको आगे के लिए करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए.
1: हमने सब जगह ये सुना भी है, पढ़ा भी है और ये सच है कि आज का यूथ देश का निर्माण करता है, देश का भविष्य बनाता है. हमारे हर सेक्टर में जहां जहां आज यूथ है, कुछ कॉलेजेस में है, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ बटरफ्लाई एग्जीक्यूटिव्स हैं, अलग अलग ओहदे पर हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं. सो मैं यूथ से यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास रखिए. और मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें से हंस के जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये हम सभी जानते हैं. इस पर अमल करिए. ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन. पिछला कल क्या था उससे सीख कर हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेवलपमेंट में, हमेशा लर्निंग कभी खत्म नहीं होती. आप कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं. इवन आप अगर रोड पर भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको एकदम अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको लगता है ये तो ठीक ही नहीं है. सो हर जगह से आपकी लर्निंग होती है, हर जगह से. आप अपने पर विश्वास रखें, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट एंड प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए. इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है मेंटल हेल्थ पर, माइंडफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, योगा है, मेडिटेशन है और बहुत सारी अलग तरह की कलाएं हैं, पेंटिंग है, गो इन द गार्डन. आजकल तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं हैदराबाद जैसी जगह में, जहां आपको एक प्लेस अलॉट कर दी जाती है, वहां पर आप जाकर मेडिटेट करके वापस आ सकते हैं. ये ऑफिसेज में भी उन्होंने शुरू कर दिया है, छोटा सा जंगल टाइप बना दिया, वहां पर आप एक राउंड लेकर भी वापस आ सकते हैं. तो इस तरह की स्पेसेस हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई है बिग सिटीज में. इसी तरह आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, पर रुकना नहीं है, चलते जाना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है. जहां आप रुक गए वहां आपको लगेगा अब बस हो गया.
0: करेक्ट.
1: तो यहां से निकलना हमारे हाथ में है, ये पावर सिर्फ हमारे हाथ में है, अपने आप को, खुद को मोटिवेट रखने की.
0: और सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, मतलब जब तक आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, तब तक आप लर्निंग जारी रखिए, क्योंकि एक बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए, राइट. तो बातें बहुत सारी हैं और आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मैम से, तो नंबर है हमारा 8010781078.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता। आपने एनजीओ के बारे में भी बात की कि आप एनजीओ से जुड़ी हैं, तो ये एनजीओ क्या करता है और इसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं काफी सारी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। एक एनजीओ है ईयर टू ईयर, जिसमें वो सिर्फ मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं।
0: okay.
1: लोगों से सुनते हैं, लोगों को आजकल लिसनर्स चाहिए, तो लोग उनसे अपनी प्रॉब्लम को जस्ट डिस्कस करते हैं। कोई जजमेंट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, दे जस्ट गिव देयर टाइम।
0: और ये एंड कोई भी जाकर
1: कर सकता है। देन दे गिव अ प्लेटफॉर्म टू अ पर्सन कि आप आइए, अपनी शर्म को साइड में रखकर आप ओपन अप होइए, बी कॉन्फिडेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। सो इट्स ईयर टू हियर। एंड देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज कार्या केयर। वहां पर मैंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मैं आप सबसे श्रोताओं से आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगी। आगरा में इनका एक अवार्ड फंक्शन था। सो ये मेरे कजिन का है, मेरे हस्बैंड के कजिन है, उन्होंने किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहां हम एक पुअर बच्चों को एजुकेट भी करते हैं, उन्हें दुनिया दिखाते हैं। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो वहां उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाइए उधर और जाकर आप अवार्ड फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट रहिएगा। सो मैंने उसको अटेंड किया, इतना मुझे सुकून मिला वहां जाकर, क्योंकि वो सारे बच्चे ऑलमोस्ट उस टाइम में वो 150 से ज्यादा बच्चे थे
0: जी।
1: उनको ताज में बैठाया, ताज होटल में आगरा।
0: nice.
1: उनको वही प्रोग्राम, उन्हीं से प्रोग्राम भी कराया, उनको एज अ सेलिब्रिटी फील कराया, खाना खिलाना, उनको रूम्स दिखाना, उनको ताज के अंदर की सारी चीजें विजिट कराना
0: जी।
1: मुझे इतना अच्छा लगा। उसमें से एक बच्चा था जो मे बी शायद 18 ईयर्स का था, वो उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ इस ताज के सामने दूसरी साइड बैठकर मैं भीख मांगा करता था, लेकिन मुझे किसी ने इस एनजीओ के बारे में बताया, यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। आज मुझे ताज के अंदर आके लग रहा है कि मैंने सपना जो देखा वो पूरा होता हुआ लग रहा है। अब मैं कुछ बनूंगा आगे और मैं यहाँ आऊंगा बनने के बाद अपने बलबूते पर। तो मतलब उन्होंने उन 150 बच्चों को सपने दिखाए कि आप अच्छा पढ़िए, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, अच्छी जिंदगी को जीजिए। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मजदूरों के बच्चे थे, बहुत सारे थे जो स्लम एरिया से आए हुए थे कुछ, सो आगरा में सीमित थे वो सारे। मुझे बहुत अच्छा लगा उन बच्चों से बात करके। एक ऐसा इनिशिएटिव जो शायद हमें करते रहना चाहिए। एक और यहाँ पर एक है जो ब्लाइंड लोगों के लिए काम करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करने में आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है।
0: अच्छा, एक के सोचने वाली स्थिति भी है कि किसी टाइम पर लोग बातें किया करते थे, सुना करते थे, लेकिन आज के टाइम पर कितनी कमी हो गई है कि हमें अपनी बात शेयर करने के लिए कोई हमें सुने, उसके लिए हमें जाना पड़ रहा है। जबकि एक टाइम पर लोग आसपास होते थे, अपने अपने परिवार वाले, दोस्त, पड़ोसी, सभी जो मिलकर एक
1: इसमें प्रियंका न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई ना,
0: बिल्कुल
1: उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है।
0: यस यस यस, तो ये एक चीज। लेकिन हाँ, कभी कोई आपके आसपास ऐसा हो जो हमेशा चुप रहता है और ज्यादा बात नहीं करता है, कभी भी उससे कुछ ऐसी बात ना कहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ मन के अंदर होता है। और कभी बैठ करके सिर्फ उसकी बात सुनिएगा। ऐसे भी हम कहते हैं ना कि हम कैसे हेल्प करें, आप ऐसे भी मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज जो बहुत बढ़िया होगी उसके लिए भी और आपके लिए भी। रेडियो माना वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्राग आपके साथ।

0: गया।
1: फिर कोई बावर मुहब्बत की

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रांका आपके साथ और इस वक्त काफी सारी बातें हम डॉक्टर शेफाली गुप्ता से कर चुके हैं और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे साथ में है ये और ये जो हैं ये एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करते हैं। आप सोचिए कि कितना सारा एक्सपीरियंस इनके पास में है और उसी एक्सपीरियंस से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जान रहे हैं कि अपने आप को कैसे बढ़ाना है। और जब भी हम ये चीज सोचते हैं ना कि हमें अपने आप को किस तरह से आगे लेकर जाना, समाज में कैसे अपने आप को वो दर्जा देना है, इसमें काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं ना। तो आप क्या कहेंगी जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, यूथ हैं या जो भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
1: बहुत सारे श्रोताओं को मैं यही एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे पर उनसे भागना नहीं है, एक तो उनका सामना करना है, दूसरा उन चैलेंजेस को ब्रेक करिए। अगर आप एक ही बार में वो चैलेंज फेस करते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, इसे कैसे पार हो पाएंगे, लेकिन उस चैलेंज को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में लेते जाएंगे तो आपका चैलेंज नीचे नीचे ही सुधरता जाएगा। अगर आप उसको ओवरलोड करने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा हीप बन जाता है उसका।
0: Correct.
1: तो आप हमेशा ब्रेक करिए, अपने दिन को प्लान करिए। अगर चैलेंज आता है आपके पास कि चलो आज हमें ये चैलेंज आया, इसको किस समय पूरा करना है, तो आपका माइंड उसमें उलझ गया। उसका सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी क्योंकि आप चैलेंज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो तो नहीं निकलना है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। पर अगर आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे तो वो चैलेंज और बड़ा हो जाएगा। इसको सबसे पहले छोटे छोटे उसमें ब्रेक करिए, पार्ट्स में एक एक करके उन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक प्लान बनाइए, एक डिसिप्लिनरी प्लान बनाइए कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे। उस बीच में थोड़ा सा अपने लिए एंटरटेनमेंट का भी टाइम रखिए जिससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, एंड देन अगेन कम ऑन टू दैट चैलेंज। ये हर फील्ड में होता है, कोई ऐसी फील्ड दुनिया में बनी ही नहीं है जो चैलेंज के बिना प्रोग्रेस नहीं हो।
0: करेक्ट।
1: आप आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें भी एक चैलेंज है, सीईओ बैठकर कहीं मीटिंग दे रहा है वो भी एक चैलेंज है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए, आप एज अ मीडिया पर्सनैलिटी है आपका कौन सा टेक्निकल ग्लिच आ जाए, यू नेवर नो।
0: बिल्कुल।
1: सो इस तरह से हर फील्ड के चैलेंजेस है, उनका सामना बहुत हिम्मत के साथ करना है और उसका सोल्यूशन निकालना है, चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं समझना है, उसके सॉल्यूशन के साथ उसको देखना है। प्रॉब्लम देखेंगे तो वो बड़ा लगेगा। इस तरह से आप उसको ब्रेक कर करके प्लान बना के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जहां आप नहीं कर पाते हैं वहां अपने सीनियर्स की मदद लीजिए। बिल्कुल, अगर आपके लाइफ में हर तरह से हमारे पास काउंसलर्स हैं, रिलेशनशिप काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर हैं, और भी आगे आप जाना चाहते हैं, आपके हो सकता है बॉस बहुत अच्छे हो, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, पूरा समाज आपकी हेल्प के लिए खड़ा है, आप अकेले नहीं हैं। चैलेंजेस में अकेला मत समझिए अपने आप को, आपके सराउंडिंग, आपका समाज, सब आपके साथ है।
0: जी, तो ढेर सारी बातें आज हमने डॉक्टर शेफाली गुप्ता से की। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। चलते चलते सभी लोगों का
1: प्लेजर एंड
0: जी
1: ऑनर टू बी हियर। थैंक यू।
0: तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप चलते चलते आपका क्या मैसेज होगा उन सबके लिए?
1: आई ऑलवेज से कैरी योर जीपीएस ऑलवेज विद यू, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी एंड नो योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन इट। सो कैरी योर जीपीएस एंड डिस्प्ले पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड। Care of yourself.
0: जी.
1: Your self-care is very important.
0: जी.
1: And we lead a happy life. This life is beautiful. बहुत खूबसूरत जिंदगी है. जितना happiness के साथ आप जिएंगे, उतना ही इस जिंदगी को आप बहुत कुछ देकर जाएंगे.
0: जी. इस प्यारे से मैसेज के साथ में चलिए, मेरे चलने का भी वक्त हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM। दीजिए इजाजत, बाय।

0: हर पथ पर जो है एक मिस्ट सा छाया हुआ है और हर एक जगह ना मतलब वो
1: हम किन किन कैटेगरीज में हम काम कर सकते हैं। नव सृजन जो वेस्ट क्राफ्ट है, हमारे घर और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जिस भी प्रकार का जो भी वेस्ट है, हम मानव समाज तक हर इकाई उस हर

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी श्रीधर पाठक के बारे में। उनकी कुछ रचनाएं थीं जिनका नाम मैंने आपके साथ साझा किया था, जैसे वनाष्टक, आराध्य शोकांजलि, काश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, गोपिका गीत, मनोविनोद, जगत सच्चाई सार, बाल विधवा, भारत प्रशंसा, भारोत्थान, गुणवंत हेमंत और स्वर्गीय वीणा। ये उनकी रचनाएं थीं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ उनकी और रचनाओं का जिक्र करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन। दुई दिवी धूति पूरी राजत, भोरी भ्राजत भगन। नखत अवली प्रकाश पुर्वत, दिव्य सुरपुर मगन। सुनमुन किलिमंदार महकत अमर भौनन अगन। निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन। मिलन प्रिय अभिसारी सुरतिये चलत चंचल पगन। छिटकी छूटत तार किंकिनी टूटी नुपुर गगन। निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन। निहरत गंधर्व निरतत उमग भरी अंग अगन। तहां हरि पद प्रेम पागी लगी श्री धर लगन। निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन। लेकिन इस कविता के अलावा उनकी एक और कविता है जिसका शीर्षक है हिंद महिमा। हिंद महिमा के बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, श्रीधर पाठक की एक कविता है जिसका शीर्षक है हिंद महिमा। हिंद महिमा में वो कहते हैं, जय

एति प्राचीन हिंद जय नगर ग्राम अभिराम हिंद जय जयति जयति सुखधाम हिंद जय सरसिज मधुकर निकट हिंद जय जयति हिमालय शिखर हिंद जय जयति विंध्य कंदरा हिंद जय मलयज मेरु मंदरा हिंद जय शैल सुता सुरसरी हिंद जय यमुना गोदावरी हिंद जय जयति सदा स्वाधीन हिंद जय जयति जयति प्राचीन हिंद। तो ये थी उनकी वो कविता जिसका शीर्षक है हिंद महिमा। इसके अलावा उन्होंने स्वदेश विज्ञान की बात की है। अब स्वदेश विज्ञान के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, श्रीधर पाठक अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ बताना या समझाना चाहते हैं। अब उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है स्वदेश विज्ञान। इसमें वो कहते हैं, जब तक तुम प्रत्येक व्यक्ति निज सत्य सत्य ना ही जानोगे, त्यों नहीं अति पावन स्वदेश रति का महत्व पहचानोगे। जब तक इस प्यारे स्वदेश को अपना निज नहीं मानोगे, त्यों अपना निज जान सतत शुश्रूषा व्रत नहीं ठानोगे। प्रेम सहित प्रत्येक वस्तु को जब तक नहीं अपनाओगे, समता युत सर्वत्र देश में ममता मति ना जगाओगे। जब तक प्रिय स्वदेश को अपना ईष्ट देव ना बनाओगे, उसके धूलि कणों में आत्मा को समूल ना मिलाओगे। पूत पवन जल भूमि व्योम पर प्रेम दृष्टि नहीं डालोगे, हो अनन्य मन प्रेम प्रतिज्ञा पालन व्रत नहीं पालोगे। तन मन धन जन प्राण देश जीवन के साथ नसानोगे, सोपयुक्त विज्ञान ज्ञान का सुखद वितान ना तानोगे। तब तक क्यों कर देश तुम्हारा निज स्वदेश हो सकता है, स्वतत्व उसी का रह सकता है, रख उसको जो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, उन्होंने अपनी इस कविता यानी स्वदेश विज्ञान के माध्यम से लोगों को स्वदेश की जानकारी दी और स्वदेश के बारे में जागरूक किया। लेकिन इनका एक गीत है जो देश प्रेम के रंग में डूबा हुआ है, उस गीत के बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: आइए दोस्तों, श्रीधर पाठक के उस गीत की बात कर लेते हैं जो देश प्रेम के रंगों से सराबोर है। जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जग सौभाग्य सुदेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। प्यार देश जय देशेश, अजय अशेष सदै विशेष, जहां न संभव अघ कालेश, संभव केवल पुण्य प्रवेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का, प्रेम मूल प्रिय लोक त्रिय का, सुललित प्रकटी नटी कटी का, ज्यो निशी का राकेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। जय जय शुभ्र हिमाचल श्रृंगा, कलरव निरत क्लोनिन गंगा, भानु प्रताप समत्कृत अंगा, तेज पुंज तपवेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। जग में कोटि कोटि जुग जीवे, जीवन सुलभ अमीरस पीवे, सुखद वितान सुकृत का सीवे, रहे स्वतंत्र हमेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा।

0: जाने से अच्छा धरती माँ को सुरक्षित और स्वच्छ रख सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम के।
1: पूरा देश भी परेशान हो सकता है। हम इस बात को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा, हमारी एक सोच के द्वारा अगर हम एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, वह है वेस्ट मैनेजमेंट। और वेस्ट मैनेजमेंट ही हमें पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व में एक ऐसा अलौकिक स्थान दिला सकता है जो कि सोच भी बहुत बड़ी एक कल्पना आप उसको करिए तो आप हमारे इस देश को पूरे विश्व में ऐसा सुंदर बना सकते हैं। इसी बात को लेकर के हमने एक बीच में एक प्रश्न हमसे छूट गया था कि नवसृजन टूरिज्म, नवसृजन टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा संदेश यह है कि अगर आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जाना चाहते हैं, खूबसूरत जगहों को ढूंढना चाहते हैं और खूबसूरत सा आप भोजन ढूंढते हैं, खूबसूरत रहना ढूंढ सकते हैं और अच्छा शुद्ध पानी ढूंढ सकते हैं, तो यह हमारी डिमांड होती है वहाँ जा करके। तो इसको वहाँ पर जा करके हम शुद्ध कैसे पाएंगे? जब हम करेंगे तब हमें वो शुद्धता मिलेगी। हम एक उदाहरण के तौर पर और आपको बताना चाहूँगा कि अगर सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर आप उत्तराखंड में, मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ, आप नैनीताल की झील पर आइए, घूमिए, किसी भी स्टेट में आप जाइए, वहाँ पे जा करके अगर आप अपने द्वारा कुछ भी वेस्ट अगर करके आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा एक पाप करके आ रहे हैं और इस धरती माँ पे आप जो बोझ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं और जो उसके द्वारा उसको वहाँ पे उसको इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद वो बहुत सारी प्रोसेसिंग के जरिए जाता है, बहुत अज्ञानतावश वहाँ पे अभी भी, आज भी हमारे देश में इतना सब काम होने के बावजूद, स्वच्छता अभियान होने के बाद भी, देश के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, उसके बावजूद भी आज हम एक ही गलती कर रहे हैं। जो इस गलती को हम सुधार सकते हैं वह है हमारा नवसृजन प्रोजेक्ट का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, कूड़ा न जलाएं, न बहाएं, न फैलाएं, इसे विश्व कल्याण के लिए उपयोगी बनाएं। अगर इस मुहिम को आप अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं, उसका अनुसरण करना चाहते हैं, तो आइए धरती माँ ट्रस्ट के साथ जुड़िए और आप हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं। हमारे धरती माँ ट्रस्ट के वॉलंटियर न बन करके आप अपने वॉलंटियर बनिए, अपने पूरी फैमिली के लिए, अपने पूरे राज्य के लिए, पूरे विश्व के लिए, यही मेरा संदेश है। आइए हम सब मिलकर अपनी धरती माँ की रक्षा करें, सुव्यवस्थित करें और सुंदर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तहे दिल से धन्यवाद बिश जी, आज आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि ऐसे धरती माँ ट्रस्ट के शायद 150 वॉलंटियर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना इनके साथ जुड़कर या इनके बिना भी हम अपने घर पर सिर्फ एक छोटा सा प्रण लें कि आज के बाद से हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वेस्ट को उस धरती पर न जाने दें जहां दरअसल जिस धरती को हम अपनी माँ कहते हैं। अगर एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लेते हैं, एक माइंडसेट में बदलाव लेकर आते हैं, तो ये पर्यावरण यूं ही ठीक हो जाएगा, धरती खूबसूरत हो जाएगी और बहुत सारी परेशानियों का हमें हल मिल जाएगा। इसी बात पर मैं यानी आरजे भावना ले रही हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम, लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम ऑफ रेडियो मानव रचना। और इस कार्यक्रम में मैं आपको बहुत सारी सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ। इन सशक्त महिलाओं की जिंदगी के कुछ पन्नों को हम पलटने की कोशिश करते हैं, इनकी कहानी सुनने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप जिंदगी में सशक्त कैसे हो सकते हैं। सो आज सशक्तिकरण में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है राधिका वर्मा जी। राधिका वर्मा डायरेक्टर हैं द सेंट लैब की, यानी ये खुशबू से ओतप्रोत हैं और साथ के साथ की लोगों के जिंदगियों में खुशबू फैलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस खूबसूरत सी महक के साथ ये लोगों के जीवन को कैसे महका रही हैं और अपने जीवन को इन्होंने खुशनुमा कैसे बनाया है, आज हम इसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। राधिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
1: राधिका जी, इस कार्यक्रम का सबसे पहला सवाल ना एक स्टैंडर्ड सवाल है जो मैं हर महिला से पूछती हूँ, अमीर गरीब, मोटी पतली, खूबसूरत या नॉर्मल लुकिंग, हर महिला से मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके लिए सशक्तिकरण क्या है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके लिए महिला सशक्तिकरण इसकी क्या डेफिनेशन होगी, क्या परिभाषा होगी, मतलब आपको एग्जैक्टली क्या लगता है कि बहुत सारा पैसा होना सशक्तिकरण है, फ्रीडम होना सशक्तिकरण है, बहुत सारा ऐशो आराम होना सशक्तिकरण है, एग्जैक्टली आप किसे सशक्तिकरण मानती हैं, आपके लिए एम्पावरमेंट क्या है?
2: पहली बात, ये बहुत बहुत डीप सवाल है, इसका आई थिंक आज तक कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा, आई थिंक मैं भी नहीं दे पाऊंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण बहुत ही सिंपल और सरल है। इट्स लाइक हमारी आम जिंदगी में ही हमें सशक्तिकरण या फिर वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम बोलते हैं वो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सशक्तिकरण सिंपली कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर मैं कोई दो काम या तीन काम या चार काम एक साथ कर रही हूँ तो कोई मुझसे ये नहीं पूछे अरे तुम औरत होके ये चार काम कैसे एक साथ कर रही हो। बार बार बार बार बार बार किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे अपने आप को प्रूव ना करना पड़े, क्योंकि हम कहीं भी देख ले, घर देख ले, कॉर्पोरेट्स देख ले, गवर्नमेंट सर्विसेज देख ले, कहीं पर भी देखें, एक उसी सेम सीट के लिए एक महिला को अपने आप को ज्यादा प्रूव करना पड़ता ही है। और अगर इस चीज का मैं एक बहुत ही सिंपल सा अगर एग्जाम्पल दूं, शायद हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं वो शायद रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, मी एंड माई हस्बैंड वी वेंट फॉर अ हाउस व्यूइंग
1: जी।
2: ओके, अब वहां एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको नहीं पता कि इस घर के पैसे कौन देने वाला है, जो भी
1: जी,
2: वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन और उसके बीच में हर एक चीज ही इज रेफरिंग टू माई हस्बैंड, बिल्कुल इनविजिबल हूँ मैं, वो मुझे देख ही नहीं पा रहे। And I'm putting my questions and he's not even like answering those questions.
1: Yes.
2: So questions उन्होंने अगर answer भी किए तो वो भी सिर्फ मेरे husband को address करते हुए।
1: Yes.
2: तो ये जो सभी चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत तोड़ती हैं। ये चीजें औरत को मजबूत भी बनाती हैं।
1: जी।
2: पर शुरुआत में ये चीजें औरत को तोड़ती हैं। तो आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें आप औरत से सवाल मत करो कि अरे आप कैसे करोगे, अरे वो कर लेगी और वो करती आई है।
1: आई नो वाकई राधिका जी बिल्कुल सही, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक बड़ा सही एग्जांपल था। आज भी बहुत सारी चीजें हैं जहां ये माना जाता है कि महिलाएं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। डिसीशन जो वर्ड है ना, मैं हमेशा क्यों कहती हूँ सशक्तिकरण डिसीशन है, महिलाओं के डिसीशन की रिस्पेक्ट ही नहीं है, या मुझे लगता है रिस्पेक्ट से भी ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग सोचते हैं कि महिलाओं को क्या डिसीजन लेना है, उनके ऊपर तो हमें शायद कोई डिसीजन थोपना है।
2: और ये बात मैं आपको बड़ी बड़ी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स के बारे में भी बता सकती हूँ। हम अभी जो कहते हैं ना कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, देश बहुत आगे बढ़ चुका है, सोच बहुत आगे जा चुकी है, ऐसा नहीं है। अगर सेम चीज एक मेल काउंटर पार्ट को रखनी है तो उसे उसके पीछे की रीजनिंग उतनी नहीं देनी पड़ेगी जितनी एक फीमेल काउंटर पार्ट को देनी पड़ेगी।
1: वाकई सो देखिए, महिलाएं बहुत सारी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेती हैं, सॉफ्टर सेक्स कहलाती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जब हक की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, डिसीशंस की बात आती है, तो एक महिला पैदा होने का हक भी खुद नहीं ले सकती है। फिर आगे नेक्स्ट जब वो जननी बनती है या माँ बनती है, उसका उसका अधिकार भी उसके पास खुद के पास नहीं है। थोप देती है समाज कि आपको बच्चा पैदा करना है। और बिल्कुल ऐसे ही शादी है, आपका बिजनेस है, आपके पढ़ाई है, आपका करियर है, ये सब डिसीशन आज भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कोई और ले रहा है। पिता ले रहे हैं, भाई ले रहे हैं, पति ले रहे हैं, या फिर कोई परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जैसे बहुत समझदार माना जाता है, बट महिलाओं के डिसीजन खुद महिलाएं ले रही हैं, ये बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए मैं ये कहती हूँ, महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे, करेंगे ढेर सारी बात द सेंट लैब की डायरेक्टर राधिका वर्मा के साथ। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। आज हम बात कर रहे हैं राधिका वर्मा जी से, जो डायरेक्टर हैं द सेंट क्लार्क। भाई, हमने उनसे सशक्तिकरण के बारे में तो पूछ लिया, लेकिन चलिए अब एक बड़ा अहम सवाल। हर सदी, हर युग और हर एरा में मैंने देखा है कि महिलाओं के जो चैलेंजेस है ना, वो बदलते आए हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा ब्रेक पर जाने से पहले कि महिलाएं पहले पैदा ही नहीं हो पाती थी ना, पैदा होना एक चैलेंज था। फिर धीरे धीरे पढ़ाई एक चैलेंज बना, चलिए पढ़ने भी लग गए, अपने पैरों पर भी खड़े होने लग गए, थोड़े बहुत डिसीजन शादी के, आप लव मैरिज कर लें, मना लें परिवार को, थोड़ा बहुत समाज बदला। बट हर एरा में महिलाओं के जो चैलेंजेस हैं वो बदलते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। राधिका जी, आपसे जानना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि आज के जमाने के, करंट टाइम्स के, क्या चैलेंजेस हैं जो महिलाएं फेस करती हैं?
1: तो आज के जमाने के चैलेंजेस ऑफ कोर्स बड़े हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे एक मौका मिला कि मेरे घर में कभी भी मेरे और मेरे भाइयों में कोई डिफरेंस नहीं किया गया। मुझे अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मिली, मैं बाहर गई पढ़ने के लिए एंड एवरीथिंग। मैंने अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। पर आई थिंक आज की महिला में जो अभी भी चैलेंज है वो ये है, एक इंटरनल गिल्ट है कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे ऊपर रखने की। मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी मम्मी जो है वो हमेशा से एक वॉकिंग वुमन रही है एंड शी इज डन रियली वेल फॉर हर सेल्फ, फॉर आवर फैमिली, शी इज प्रोवाइडेड फॉर अस। और अभी मैं अगर बोलूँ कि

0: provided us as a man, तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी एक inequality कर रही हूँ. पर आप सबकी समझ के लिए इसी तरीके से उन्होंने ये सब किया है. And I have seen her also taking this guilt of not being able to present, of not being able to emotionally provide, or not being able to, मतलब जो होता है ना, एक अपने आप को चुनने के लिए तुमको कुछ छोड़ना पड़ता है, वो एक अंदर की गिल्ट नहीं जा रही है आजकल की औरतों में भी. फॉर एग्जाम्पल मैं भी काम करती हूँ और आई हैव हेल्प एंड एवरीथिंग, बट स्टिल हर दूसरे तीसरे दिन लगता है अरे यार आई नीड टू गिव बैक टू माई होम एज वेल, आई नीड टू बी देयर, आई नीड टू बी प्रेजेंट. जबकि यही सेम थॉट प्रोसेस किसी आदमी या किसी मर्द के दिमाग में नहीं आता.
1: Yes.
0: अब काम को उतनी ही तवज्जो और उतना ही रिस्पेक्ट और क्रेडिट दे पाते हैं. कहीं ना कहीं एक औरत वहां पे पीछे रह जाती है, क्योंकि मैं कुछ भी काम कर लूं मैं उस गिल्ट को नहीं छोड़ पाती एंड मैं वो क्रेडिट ग्रैब नहीं कर पाती, उस क्रेडिट का फल भोग नहीं पाती, क्योंकि मुझे पता है कि उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं कुछ छोड़ा है, क्योंकि इनेट वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी.
1: दरअसल फैक्ट है ये राधिका जी, इसे कहा जाता है वर्क लाइफ बैलेंस. सो हमारा वर्क जो है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उसे कभी भी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना ही नहीं गया है. करियर हमेशा महिलाओं के लिए सेकेंडरी माना गया है. और ये जो बात है ये घर पर तो अप्लाई करती है. घर वाले ये सोचते हैं आप घर का जब तक सारा रख रखाव, खाना बनाना, बच्चों का देखभाल सब कुछ करने के बाद आप नौकरी पर जाइए, आप वहां से वापस आएंगे तो आप सारे पूरे परिवार का ख्याल रखिए. लेकिन अगर खुदा ना खासा घर को अगर जरूरत है तो आप सबसे पहले होनी चाहिए जो छुट्टी लेंगी, क्योंकि आपके करियर का क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो ये जो सोच है, इसी सोच के कारण महिला को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई उसकी पहली प्रायोरिटी शायद उसका घर है, और अगर वो उसके बियॉन्ड जा रही है तो ये नौकरी तो वो अपने लिए कर रही है या ये बिजनेस तो वो अपने लिए कर रही है. इसमें शायद मतलब पूरा परिवार चला सकती है वो इस बिजनेस से, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्रेडिट जरूर होगा. इंदिरा नुई जी, मतलब मुझे कहना चाहिए, मैं हर बार अक्सर उन्हें कोट करती हूँ, बट वो खुद ये कहती हैं कि भाई मैं जब बोर्ड मीटिंग्स में बैठी होती थी तो एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे ऐसा लग रहा होता था कि मेरी हाउस हेल्प को जो इंस्ट्रक्शन देने हैं वो मुझे ही देने हैं, मेरे बच्चों के रख रखाव के लिए मुझे जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो मुझे ही देने हैं. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई और नहीं लेगा क्योंकि मैं एक महिला हूँ. एंड डिस्पाइट कि मैं एक इतनी बड़ी कंपनी की और कहना चाहिए इतने सारे देशों को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी वहीं रह जाती है. और इस गिल्ट के साथ जो राधिका ने कहा, एक्चुअली महिलाओं में अंदर ये गिल्ट है, और यही कारण है कि महिलाएं करियर में बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर पाती हैं और फिर वो सेकेंड इनिंग्स हमेशा छोड़ देती हैं. उनको ऐसा लगता है कि चलिए भाई पहले परिवार है, बाकी सब कुछ बाद में है. क्या ये सही है?
0: पर यहाँ मैं एक और चीज ऐड ये करना चाहूंगी भावना जी.
1: जी,
0: बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बदल भी रहे हैं.
1: Yes.
0: बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं एंड जैसे मेरा परिवार भी बहुत बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव है. पर गिल्ट की बात कर रही हूँ, ये वो है कि महिला इंटरनली खुद से नहीं छोड़ पा रही है.
1: जी
0: ओके, तो यहाँ पर हमें उन लोगों को भी थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ आप लोग बदल रहे हो, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग कि ये मेरे मैंने बचपन से देखा है, तो इसे छोड़ने में अब शायद अगली जनरेशन.
1: बट वो राधिका जी तब पॉसिबल होगा जब उस जिम्मेदारी को कोई होल हार्टेडली ले लेगा. जब आपको ये पता होगा कि इफ नॉट मी देन ये जिम्मेदारी ले रही है. जैसे अगर आप देखेंगे कि हम अपने घर को निश्चिंत होकर तब छोड़ते हैं जब हमें पता होता है हमारी जो हाउस हेल्प है वो निश्चिंत रूप से हमारा सब काम करेगी. गर्मा गर्म खाना परोस दिया जाएगा, बनाकर रख दिया जाएगा, घर का रखरखाव किया जाएगा, बर्तन साफ हो जाएंगे, पूरा घर चमक रहा होगा. सो हमें ऐसा लगता है अब हम आराम से अपने ऑफिसेज में समय बिता सकते हैं, हम अपने बिजनेसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. लेकिन अगर घर पर वो नहीं है तो हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी हमेशा वही रहती है. सो दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्राइमरी जिम्मेदारी को शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ खाना बनाना, खाना खाना और घर का रखरखाव बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, ये किसी महिला की जिम्मेदारी नहीं है. और सोचिए आज की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है. आप क्या मानते हैं मुझे जरूर बता सकते हैं. अपनी प्रतिक्रिया, अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस भेज दीजिए मुझे 8010781078 पर. वक्त एक बड़े प्यारे से गाने का, सुना रही हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन सा गाना, बड़ा कहीं मत जाना. जुड़े रहना अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। और जब मैं वी कहती हूँ ना, तो मैं गर्व से कहती हूँ, महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकती हैं और सशक्तिकरण तो डेफिनेटली ला सकती हैं। चलिए भाई, आप सुनते हैं राधिका वर्मा जी की कहानी को, डायरेक्टर हैं द सेंट लैब की। सो राधिका, मुझे बताइए कि आपने द सेंट लैब कब शुरू किया और इसके पीछे की कहानी क्या है?
1: जी बिल्कुल, अगर हम द सेंट लैब की बात करें तो ये मेरे जो फादर साहब हैं उनकी ही कंपनी का एक ब्रांड है। तो अगर मैं बोल सकती हूँ तो शायद 30 साल पहले शुरू हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर एक और नया वर्टिकल शुरू किया, विच इज अ परफ्यूम, जो हम लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। मेरे पापा की एक ख्वाहिश थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अलग दूसरे बिजनेसेस के लिए कोई चीज लाते हैं, लेकिन वो आम पब्लिक के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। तो वहां पे हमारी थोड़ी सी एक इनोवेशन आई कि क्यों ना हम इसको आम पब्लिक तक भी लेकर जाए। अगर हमारे पास कोई हुनर है, कुछ है, तो हम डायरेक्ट अपने भारतीयों के लिए कोई एक ऐसी चीज बनाए। दूसरा, इसमें एक पैट्रियोटिज्म भी था एक फैक्टर, कि परफ्यूम एक ऐसी चीज है कि हम ही लोग बनाते हैं और हम ही लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और बाहर के लोग उनको मेड इन पेरिस, मेड इन दुबई लगा के और दुगने तिगने दामों पे हमारे ही लोगों को बेच देते हैं
0: जी।
1: तो एक ये भी एक इंस्पिरेशन थी कि नहीं, हमें मेड इन इंडिया बना के अपने लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बनाना है, और अपनी इंटरनल टेक्निक्स यूज करके हम किसी और को अपनी चीजों का क्रेडिट क्यों दें।
0: Yes.
1: जो कि भारतीय और औरतें दोनों ही हमेशा से देती आई
0: है। Actually, yes.
1: तो ये एक बिल्कुल चीज थी इसको शुरू करने से करने के लिए।
0: बड़ी खूबसूरत सी कहानी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ना, ये हम सबको, शायद ये पूरे भारत को जोड़ने वाली है। क्योंकि ये फैक्ट है कि जब कभी भी हम महंगे परफ्यूम्स की बात करें तो हमने कभी भी भारत को नहीं देखा। यानी कि अगर इत्र की भी बात करें तो वो भी हम बाहर जाते हैं, और इनफैक्ट जैसे खुद राधिका जी ने कहा कि हम दुबई जाते हैं, पेरिस जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, हम अलग अलग देशों में जाते हैं, और वहां जाकर हम क्या करते हैं, वहां के परफ्यूम्स लेकर आते हैं ये सोचकर कि ये जो बड़ी ब्रांड्स है ना, ये बहुत अच्छे परफ्यूम्स बना रही हैं। और आप खुद सोचकर देखिए कि अगर आपको ये पता लगे कि जिस परफ्यूम को आपने खरीदा है ये दरअसल भारत में ही बना है, बस ब्रांड किसी और का है, हमने किसी और के लिए काम किया है, सो अंदर से कैसी फीलिंग आएगी कि अरे हमारी चीज है। इमेजिन करिए ना, आपने आलू का पराठा बनाया और कोई आपकी प्लेट में से लेकर चला गया और फिर उसको वापस लेकर आया और फिर उसको चौगुने दाम पर आप ही को दे रहा है, तो आप कहेंगे तो मैंने ही बनाया था, ये मेरे ही पराठे को आपने नया नाम दे दिया है। सो कुछ इसी तरीके से हम बरसों से परफ्यूम्स के साथ करते आए हैं, बट अब शायद जमाना बदल रहा है। राधिका जैसी बहुत सारी एम्पावर्ड वेमेन आगे आ रही हैं और एक सपना पूरा कर रही हैं, और शायद ये सेंट लैब का सपना हमारे भारत के लिए एक नई पहचान भी लेकर आए। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत सी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं इक्वली ब्यूटीफुल राधिका वर्मा जैसे, जो कि डायरेक्टर हैं द सेंट लैब की। राधिका, एक अहम सवाल, बीइंग अ वुमन, देखिए हमें बड़े सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस है, चाहे वो हमारी नौकरी है, चाहे वो हमारा घर है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने जब द सेंट लैब शुरू किया, सपना पापा का था, लेकर आगे गई, सोचा कि हम थोड़ा पेट्रियोटिज्म डालें, लेकिन जब आप ये लेकर गई तो एज अ वुमन आपने कभी कुछ चैलेंज फेस किया? कहीं आपको लगा हो कि लोगों ने कहा हो कि अगर इसे कोई और रिप्रेजेंट कर रहा होता तो ज्यादा अच्छा होता, या मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग, कभी ऐसा लगा हो कि ओ आप तो एक महिला हैं, आपके साथ भी कोई और है, ऐसा कभी सवाल आपसे पूछा गया हो?
1: टू बी ऑनेस्ट भावना जी, मुझे मेरी इंडिविजुअल जर्नी में बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे भाइयों का, मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, तो मुझे डायरेक्टली इतना कोई चैलेंज अभी तक मुझे नहीं आया है, और ये आई थिंक बहुत अच्छी बात है बाकी सभी महिलाओं के लिए कि हाँ अब ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं आ रहे चैलेंज। पर मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी जरूर शेयर करूंगी, जो महिलाएं हमारे लिए काम करती हैं, जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके चैलेंजेस को शेयर करना चाहूंगी
0: जी।
1: आज भी उन चैलेंजेस से जूझ रही हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा इंदौर में एक स्टोर है और वहां पर उस स्टोर की देखरेख करने के लिए एक लेडी है, उनका नाम है दुर्गा
0: जी।
1: ठीक है, नाउ शी केम टू मी फॉर लुकिंग फॉर अ जॉब, और वो जिस तरीके से बात करती है, शी इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन शी टॉक्स, शी ब्यूटिफुली ट्रांसलेट्स एवरीथिंग एंड डज एवरीथिंग, शी इज अ महाराष्ट्रियन लेडी। धीरे धीरे उनसे बात करके मुझे पता चल, एंड शी वॉज वेरी ब्लेटेंट अबाउट इट कि दीदी मुझे परफ्यूम के बारे में कुछ नहीं पता, आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। और पता है, टू बी ऑनेस्ट, ये बात भी सिर्फ एक औरत ही बोल सकती है। तो उन्होंने मुझे ये कहा एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी। बट धीरे धीरे उनसे बात करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि उनके घर में उनको बहुत दबाया जाता है, जिस वजह से वो जो वो कहना चाहती है, जो वो बोलना चाहती है, कर नहीं पाती। वो बाहर आई, उन्होंने हमारे साथ एक महीना बिताया, आई थिंक उनके 28th डे ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट। ओके, हम दोनों इस तरीके से खड़े थे क्योंकि जो भी हमारे स्टोर पे आता है मोस्टली मैं उनको हैंडल करती हूँ। हम खड़े थे, जैसे ही कोई आया अंदर, वेरी यूजुअल मैं खड़ी हुई अपनी जगह से कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पीछे किया और उन्होंने मेरे कान में बोला, दीदी इनको मैं देखूं? I was like, बिल्कुल दुर्गा दीदी देखो। दुर्गा दीदी ने उस 15 मिनट के कॉन्वर्सेशन में, उन्होंने इंग्लिश में भी बात की उनसे, ठीक है, और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा कि सर क्या आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं। उन्होंने हमारी पूरी कहानी बताई, एवरीथिंग शी इज बीन ग्रास्पिंग इन द पास्ट 1 month। ओके, एंड शी कन्वर्टेड दैट क्लाइंट एंड द स्माइल दैट वॉज देयर ऑन हर फेस, She was like, आज मैंने अपना फुल पोटेंशियल जाना है, आज मैंने उसे महसूस किया है, आज मैंने कुछ किया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो, और ये कुछ चैलेंजेस हैं जो वुमेन फेस कर रही है। वो अपने घर पे अपनी पोटेंशियल नहीं दिखा पाती, पर वो यहाँ पर अपना वही सेम पोटेंशियल पूरे मन से, पूरे तन से दिखा पाती है, क्योंकि वहाँ अब यहाँ पर उनके पास वो प्रेशर नहीं है, वो आईज नहीं है।
0: yes.
1: तो ये एक चीज है जो मैंने महसूस की है, और इसीलिए अब हम ये भी चाहते हैं कि हम मोस्टली अपने प्रोडक्शन लाइन में,

करना कि जब कभी भी हम देखते हैं एक महिला अपनी जर्नी जब अचीव करती है तो उसे पता है कि उसने किस स्ट्रगल को देखा है, उसने किस अप्स एंड डाउन्स को देखा है, और उसके बाद वो चाहती है कि मैं कुछ महिलाओं की जिंदगी, देखिए आप पूरे जीवन में आप सारे विश्व को तो नहीं बदल सकते, आप पूरे देश को भी नहीं बदल सकते हैं, बट हाँ आप कुछ जीवनों को बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो इस कार्यक्रम के थ्रू मैं हर बार ये महसूस करती हूँ कि एक कहानी और कितने सारे लोगों के लिए मोटिवेशन, कितनी महिलाएं ये महसूस कर रही हैं आज कि हम अगली राधिका वर्मा हो सकते हैं, हम भी वो एक सपना पूरा कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा था, हम एक बिजनेस करेंगे, अपने पैरों पर खड़े करेंगे अपने आप को और अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे कि दुनिया में याद रखा जाए। भाई देखिए जब कभी भी आप द सेंट लैब का नाम सुनेंगे तो आप एकदम याद करेंगे ओ हाँ राधिका वर्मा की कहानी हमने सुनी थी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप भी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हैं एक नाम के साथ तो आपको सशक्त होने की जरूरत है, लेकिन ये सशक्तिकरण तभी हो पाएगा जब कोई आपके लिए मार्गदर्शक बने, कोई आपकी मदद करे, और शायद ऐसी ही बहुत सारी महिलाएं कोशिश करें तो बहुत सारी महिलाएं आज अपने आप में बहुत सशक्त हो सकती हैं। राधिका जी आप एक बहुत ही अच्छी पहल के साथ बहुत ही नेक काम कर रही हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं राधिका वर्मा जी के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं द सेंट लैब की। राधिका जी, अब हमने बहुत सारे चैलेंजेस की, सशक्तिकरण की बात करी, अब बात करते हैं सपोर्ट की। देखिए भाई, इस समाज में महिलाएं हैं तो पुरुष भी हैं, सो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा और आप अपनी सशक्तिकरण की जर्नी को, एम्पावरमेंट की जर्नी को कैसे डिफाइन करेंगी।
1: भावना जी, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट, आई थिंक सपोर्ट प्लस इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स मेरी माँ रही है, बिकॉज शुरुआत के 13-14 सालों में जब उनकी शादी हुई थी, मैंने उनको एज अ हाउसवाइफ देखा है, एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग एंड द काइंड ऑफ यू सी एन इमर्जेंस आउट ऑफ नथिंग आई हैव सीन दैट इन हर। कि आप एक नॉर्मल घरेलू परिवार में एक महिला हो और फिर उसके बाद आपने कुछ बिल्ड किया और कुछ इतना खूबसूरत, इतना बड़ा बिल्ड किया है, और उनके चैलेंजेस भी मैंने देखे हैं, उन्होंने किस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट किया है, अपने आप को बार बार बार बार बार बार चीजें सिखाई हैं, सपोर्ट की हैं विदाउट एनी सपोर्ट, तो वो मेरी एक इंस्पिरेशन रही है। तो शी इज बीन द ग्रेटेस्ट सपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक द मैन इन माई लाइफ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, माई ब्रदर्स, माई हस्बैंड, माई फादर, इंक्लूडिंग माई फादर इन लॉ, ओके, एंड ऑल्सो मतलब माई मदर इन लॉ एज वेल। I think all of them have created such a safe ecosystem, a very robust ecosystem for me, कि मैं उसमें पल फूल सकती हूँ, खेल सकती हूँ, अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वो एक सेफ स्पेस दिया है, एक इक्वल इन्वायरमेंट दिया है। तो आई थिंक यस, अगर मैं नंबर वन पे रखूँ तो अपनी माँ को रखूंगी, और दूसरा मेरी पूरी फैमिली, बहुत बहुत बहुत थैंक यू उन सभी को। हेलो,
0: हाउ स्वीट। वाकई दोस्तों, बहुत बड़ा संदेश है ये। देखिए, जिस प्रकार से खुद राधिका जी कह रही हैं, भाई मैं इंस्पायर हुई अपनी माँ से, लेकिन ये मेरा पूरा परिवार है जिसने मेरी मदद की और आज मैं यहाँ तक पहुँच सकी। सो कहीं ना कहीं हम भी किन्हीं का परिवार हैं। और अगर आप ये देखें, आप अपने परिवार में झांक कर देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम उन्हें जिम्मेदारियों में बांध देते हैं, हम उन्हें कहते हैं आप एक पत्नी पहले हैं, आप एक माँ पहले हैं, या फिर और कुछ नहीं तो आप एक महिला पहले हैं, आपकी जिम्मेदारी घर है। सो जरूरत कभी पड़े तो कोशिश करिएगा कि आप भी उन्हें पंख देने की कोशिश करें, जिससे वो भी एक ऊंची उड़ान उड़कर अपने सशक्तिकरण को महसूस कर सके। राधिका ने महसूस किया, उनकी माँ ने महसूस किया, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस सशक्तिकरण को महसूस करना चाहती हैं, पर जरूरत है आपके विचार और आपके सोच के बदलने की। सो अगर समाज बदलेगा तो महिलाओं के लिए जीवन और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज इस खूबसूरत सी कड़ी में हमने ढेर सारी बातें की राधिका वर्मा जी के साथ, जो कि डायरेक्टर है द सेंट लैब की। राधिका जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, इस खूबसूरत सी कहानी को शेयर किया और साथ के साथ बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेट किया अपने जीवन के कुछ पन्ने पलट कर। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
1: आई थिंक मैं एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है और स्पेशली सभी महिलाओं के लिए, वैसे ही एप्लीकेबल सभी पे होता है, कि अगर जिंदगी में कभी भी आपको मौका मिले कि आप किसी को हाथ पकड़ के ऊपर ला सकते हो, तो प्लीज वो हाथ जरूर बढ़ाना। गो बियॉन्ड योर लिमिट्स टू अपलिफ्ट समवन एंड यू विल सी द वर्ल्ड, यू विल सी पीपल अराउंड यू, यू विल सी थिंग्स चेंजिंग। दैट्स इट, ये छोटा सा मैसेज है एंड आई थिंक दिस विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट।
0: वाकई ये बहुत पावरफुल मैसेज है, क्योंकि देखिए अगर एक हाथ आपने बढ़ाया और एक हाथ किसी और ने बढ़ाया, सो आप सोचिए ऐसे ही धीरे धीरे सारे हाथ बढ़ते रहेंगे। और जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के लिए और पुरुषों के लिए भी, मुझे ऐसा लगता है जीवन बदल जाएगा। बस जरूरत ये है कि पुश मत करिए, ऊपर उठाने की कोशिश करिए, कॉम्पिटिशन में मत पड़िए। कहा जाता है एक महिला दूसरी महिला से हमेशा जलन रखती है, जेलस रहती है, सो वो सारी जो सोच है ना उसे पीछे छोड़ दीजिए। महिलाओं में जेलसी की नहीं लेकिन शायद प्यार की जरूरत है, और यही एक बहुत बड़ा संदेश है जो हम सशक्तिकरण के लिए फैला सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच राधिका जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।
0: सो दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

आखिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम साथी। भाई आप सभी को पता है साथी आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम मैं लेकर आती हूं जो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। लेकिन जब ये सॉल्व करने की बात कर रही हूं तो इसे मैं तो सॉल्व नहीं कर सकती हूं, तो मेरे साथ होती हैं एक साथी यानी हमारी एक्सपर्ट। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है और उस टॉपिक को इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन और कॉम्पिटिटिवनेस में हम सभी में कहीं ना कहीं एक चीज़ घर कर रही है और वो है लो सेल्फ एस्टीम। सो आज इस पर ढेर सारी बातें करने वाले हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लो सेल्फ एस्टीम के बारे में। और इस पर ढेर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर अमनप्रीत कौर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी स्कूल ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। स्वागत करूंगी आपका डॉक्टर अमनप्रीत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: डॉक्टर मनप्रीत मुझे बताइए कि हम लोगों को कैसे समझाएं लो सेल्फ एस्टीम या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता क्या है, मतलब किसको हम लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं।
2: लो सेल्फ एस्टीम एक हमारा परसेप्शन है खुद के लिए, जिस परसेप्शन में हम खुद को वैल्यू नहीं करते हैं
0: जी।
2: ठीक है, जब हम हमारी खुद की आप लो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो कि आत्मविश्वास कम हो जाता है, हम खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम ये कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे में यह कैपेसिटी नहीं है, हम अपने आप को वर्दी इम्पॉर्टेंट नहीं समझते और अपने आप को वैल्यू नहीं करते, तो वो लो एस्टीम होता है।
0: देखिए हम सब कहते हैं ना कि हम अपनी नज़रों में अपने आप को आंकते हैं या आकलन करते हैं। सो जैसा जजमेंटल हम दुनिया के लिए होते हैं ऐसे ही जजमेंटल हम अपने लिए भी होते हैं। सो कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में बाकी लोगों से या तो थोड़े से कम हैं या कहीं एक इन्फीरियोरिटी वाली फीलिंग उनके अंदर होती है, और धीरे धीरे अगर ये फीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या बन जाती है, लो सेल्फ एस्टीम। यानी आपको ऐसा लगने लगता है कि आप औरों जैसे नहीं हैं, औरों जितने बेहतर नहीं हैं, और वहां से शुरू होता है आपके कॉन्फिडेंस में कमी आना। सो आज इसके बारे में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। ये तो आपको पता लग ही गया कि लो सेल्फ एस्टीम क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, और कभी आपके जीवन में ऐसा मौका आया हो, आपको ऐसा लगा हो कि आप एक ऐसे कमरे में घुसे हो, ऐसे लोगों से मिले हो जहां आपको लगा ओ माय गॉड इनके सामने मैं कौन कहां कैसे, मतलब शायद मैं खड़ा भी ना हो पाऊं या खड़ी भी ना हो पाऊं, या मैं ऐसे लोगों से कैसे बात भी कर पाऊंगी, तो कहीं ना कहीं ऐसी वाली जो फीलिंग होती है ना वो दस्तक देती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ एस्टीम को। चलिए अब डॉक्टर मनप्रीत से जानने की कोशिश करते हैं कि हमने ये तो जान लिया कि लो सेल्फ एस्टीम या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, लेकिन ये कब होता है, मतलब इसके क्या कारण हैं जो हमें ये महसूस होने लगता है कि हम और लोगों से बेहतर या और लोगों जितने अच्छे नहीं हैं।
2: जो लो सेल्फ एस्टीम है ये कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है, बट जनरली अगर बचपन में उनको कुछ एक्सपोजर ऐसा हो जो जब सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिला और बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है तो कभी कभी छोटे दिमाग बोलते हैं ना कि वो चिकना घर है किसी भी तरह मोड़ दो, तो अगर उस समय उनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाती तो वो धीरे धीरे वो जो लो सेल्फ एस्टीम है वो एक फीलिंग वो एक बिलीफ अपने आप के लिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं हो पाएगा मुझसे, या मेरे लिए ये बनी नहीं है चीज, तो धीरे धीरे ऐसे जो थॉट्स हैं वो आपका बिलीव बन जाते हैं, थॉट और स्ट्रांग होते जाते हैं क्योंकि अगर उसी तरह का एनवायरनमेंट मिलता है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एज सोसाइटी कभी कभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेंसिटाइज रियलाइज करें कि वो कितना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत ही आसानी से हम किसी की बॉडी पे कमेंट कर देते हैं
0: yes.
2: बहुत पतला लग रहा है, बहुत मोटा लग रहा है, कुछ खाता नहीं है, या इसके तो बहुत ही कम नंबर आए हैं, या इसको समझ नहीं है, बहुत ही सिंपल हम नहीं सोचते हैं कि वो चाहे छोटा बच्चा है बट उसको समझ में आ रहा है क्या है, तो वो उसके अंदर उसके दिमाग में ये जो एक छाप है वो रह जाती है इसकी, ना सिर्फ बॉडी अपीयरेंस बट उनका करियर अचीवमेंट या फिर उनका कोई भी एक्सपीरियंस जिसमें उनको क्रिटिसिज्म दिया गया है बट क्रिटिसिज्म से कोप करना नहीं सिखाया गया, तो वो ना सिखाने की वजह से लो एस्टीम धीरे धीरे उनके दिमाग में घर कर जाती है, तो इसीलिए उन जब वो बड़े होते हैं एज अडल्ट ऑल्सो दे एक्सपीरियंस द सेम थिंग, उन्हें लगता है क्योंकि वो ठीक नहीं किया कभी नहीं किया गया, सो तो वो धीरे धीरे लो सेल्फ इस्टीम में बदल जाता है। वो चाहे आपका करियर ग्रोथ है, चाहे आपके अकेडमिक्स हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे जैसे बचपन में बोल दिया जाता है कि तू तो किसी से बात नहीं कर पाएगा इस तरह से करता है, तो वो बचपन में वो सीखने की उम्र में अगर ये सीखने को मिल जाए कि मेरे में ये कैपेसिटी नहीं है, तो उसको लगता है कि मेरा वो लिटरली लेते हैं पेरेंट्स को या अपने से बड़ों को, क्योंकि लगता है जो बड़े कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, दे हैव सीन द वर्ल्ड। सो बट देन ये हम इम्बाइब कर लेते हैं और अपने साथ बड़े होते अपनी जर्नी में अपने साथ लेकर चलते हैं।
0: सो अब समझ में आया कि जब मैं ये कह रही थी कि किन कारणों से, किन बिहेवियर से या किस ऐसे इंसिडेंट से आप लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं, ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, ये तो सिंगल पसली है, ऐसी बातें हम बहुत कॉमनली बोल देते हैं, अरे ये तो बेवकूफ है, जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा। लेकिन हमारे ये कॉमन कमेंट्स, शायद हम कई बार इन्हें मीन भी नहीं करते, लेकिन ये किसी की जिंदगी में एक बदलाव ला देते हैं और उन्हें एक ऐसे पड़ाव पर धकेल देते हैं जहां वो ये सोचने लग जाते हैं कि शायद हम इसको करने के लायक नहीं है या शायद हम एक्चुअली इसे कर नहीं सकते हैं। सो जरूरी ये है कि हम इस चीज को पहचाने, इस चीज को जाने कि कई बार हम किसी को लो सेल्फ एस्टीम महसूस करा देते हैं और धीरे धीरे ऐसे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जो हैं वो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आ जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आज कोई बात कही सुनी और भूल गए, कुछ ऐसे बड़े होते हैं जो ये कहते हैं कि बाहर वाला कुछ भी कहे बट आई नो हु आई एम, बट देन कुछ तरीके के ऐसे लोग होते हैं, कुछ टाइप की ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो इसका बहुत जल्दी शिकार हो जाती है।
2: बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक इंसान की लो सेल्फ इस्टीम या हाई इस्टीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे पर्सनालिटी की बात कर रहे हो तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ होती हैं। मान लीजिए एक न्यूरोटिसिज्म पर्सनालिटी का एक डायमेंशन है। न्यूरोटिसिज्म में जो लोग बहुत हाई होते हैं वो ज़्यादा इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर वो स्ट्रेस छोटी सी बात को बहुत दिल पे लगा लेते हैं, वो ईजिली स्ट्रेस हो जाते हैं, इतना रिजिलिएंट नहीं होते। तो कुछ ऐसा कमेंट अगर उनको दिया जाए तो हाई चांसेस हैं कि वो न्यूरोटिक जो इंसान है वो उस बात को काफ़ी सीरियसली ले ले, और जो न्यूरोटिसिज्म पे बहुत लो होते हैं तो हो सकता है कि वो जो पर्सनालिटीज़ हैं वो थोड़ा हैप्पी गो लकी हों और वो सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला। तो इस तरह की और भी पर्सनालिटीज़ हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्जन पर्सनालिटी टाइप लेंगे तो वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो जब उनका जो परसेप्शन है, अगर उनका लो सेल्फ इस्टीम हो भी रहा है तो वो क्योंकि वो इतने लोगों से मिल रहे हैं उनको दूसरा परसेप्शन भी मिलेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात करेंगे जहां पर समझ आएगा कि यू नो देयर इज अनदर वे आउट आल्सो। बट जो इंट्रोवर्ट है प्रोबेबली, मतलब दे आर ऑफ कोर्स रिसर्चेस कि जो इंट्रोवर्जन साइड पे ज्यादा हाई होते हैं वो लोग जब इतना ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, सो कभी कभी अगर कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जो खुद से आप नेगेटिवली बात कर रहे हैं और उसको हम उस लूप से बाहर निकालने के लिए अगर हमारे पास कोई नहीं है तो हम उसी में घूमते रहते हैं, वो साइकिल इतना कभी कभी विशेष बन जाता है कि आप खुद उसके बाहर नहीं निकल पाते। सो दैट कैन बी वन ऑफ द वेज जहाँ पर आप यू नो ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट लें, और क्योंकि अदरवाइज इस तरह पर्सनालिटीज़ का अगर हमें समझ में आए, बिकॉज अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो शायद हम अपने सेल्फ एस्टीम को अकॉर्डिंगली बढ़ा भी पाएँ।
0: सो भाई, इसे ठीक किया जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि अगर आज आपकी लो सेल्फ एस्टीम है तो ज़िंदगी भर ही आगे कभी बढ़ेगी नहीं। आज आप किसी चीज़ को लेकर झिझक रहे हैं तो आप ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वक्त के साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें बदलती है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे मैथ समझ नहीं आता है, उसे इंग्लिश समझ नहीं आती है, उसे साइंस बहुत टफ लगती है, लेकिन एक टाइम के बाद वही लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा समय एक जैसा रहेगा, आपकी चीज़ें बदल सकती हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम मानसिक विकारों की बात करें या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये तो बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं, पर ज़रूरत ये है कि पहला कदम ज़रूर उठाया जाए। डॉक्टर मनप्रीत, अब हमें ये बताइए कि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाया कैसे जाए या ये जो लो सेल्फ एस्टीम है इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए।
2: देखिए, सेल्फ एस्टीम क्रिएट करने के लिए हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो जो हमारी इंगेजमेंट है, हमारा एक्सपोजर है, एक्सपीरियंसेस विद आवर फैमिली मेम्बर्स, विद आवर सराउंडिंग्स, तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर हमारे कनेक्शंस स्ट्रेंथन्ड है, स्ट्रांग है, तो हमें वो आइसोलेशन से या वो नेगेटिव सेल्फ टॉक से हेल्प करता है, वो हमें वहाँ से निकाल सकता है। तो कनेक्शन स्ट्रेंथन करने लो सेल्फ इस्टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल कनेक्शन हों या फिर आपके पर्सनल कनेक्शन हों। दूसरा, जैसे लो सेल्फ इस्टीम क्या है, बेसिकली एक हमारा थाट है, जो थाट बहुत स्ट्रांग होता जाता है तो हमारा एक बिलीफ बन जाता है। बिलीफ मतलब चाहे वो गलत है या सही है पर हम उसको सही मानते हैं, बिलीफ कैन बी रॉन्ग राइट वी डोंट नो, बट जिस बंदे का, जिस इंसान का वो बिलीफ है वो उसके लिए वो स्ट्रांग है, वो वही सच है। तो ये जो बिलीफ्स है कभी कभी फॉल्टी बिलीफ्स हो सकते हैं कि खुद के बारे में ऐसी धारणा रखनी जो चाहे सच भी नहीं है। शायद उस इंसान में बहुत कैपेसिटी है बट क्योंकि वो खुद से एक बिलीफ जो है उसको होल्ड बैक कर रहा है। तो उसे ठीक करने के लिए हमारे पास एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जहाँ पर हम फॉल्टी बिलीफ्स को जो ऐसे बिलीफ से रिप्लेस करते हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। सो ये एक तरीका है।
0: भाई देखिए, अगर मैं सही मायने में सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने की बात करूं तो सबसे पहली जरूरत जो आपकी होगी ना, वो होगी आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कर लें, अपने ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छा मानते हैं, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो ये हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या आपकी गलतियां निकालते रहेंगे, तो इररिस्पेक्टिव आपके अंदर कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, एक ना एक दिन आपको ये महसूस होने लगेगा व्हाई मी, हर बार अगर मेरे ऊपर ही उंगली उठाई जा रही है तो डेफिनेटली कहीं मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और आप अपने सेल्फ करेक्शन में लग जाएंगे। सो इन चीजों से बचना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो ओपन माइंडेड हैं, खुश रहते हैं, जो जजमेंटल नहीं है, ऐसे लोग जिन्हें दूसरों में गलतियां कम और खूबियां ज्यादा नजर आती हैं, जो अपने आप से सैटिस्फाइड हैं। दरअसल जो अंदर से खोखले लोग होते हैं ना, आप देखिएगा कि वो अक्सर लोगों के अंदर गलतियां निकालते रहते हैं, उनको दूसरों की हर बात गलत लगती है और वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई पॉइंट ढूंढ लेंगे कि वो आपको नीचा कैसे दिखाएं। सो ऐसे लोगों के साथ जरूर एसोसिएट हो, वो चाहे आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके कॉलीग्स हैं, या फिर वो आपके कोई भी लोग हो सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन भी ऐसे लोग मिलते हैं ना, सो पूरे दिन में जब भी कभी आप उनसे बात करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सो चलिए अब जानते हैं इसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या होता है। सो डॉक्टर मनप्रीत, जानना चाहूंगी कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो जो ये लो सेल्फ एस्टीम है इसका हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता है?
2: देखिए, अगर लो सेल्फ इस्टीम सही समय पे ध्यान नहीं दिया जाए तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो, इट कैन गिव लॉट ऑफ एंग्जाइटी टू अ पर्सन। ये बंदा जो इंसान है वो बहुत एंक्शियस हो जाता है। एंग्जाइटी मतलब वो हमेशा उस समय के बारे में सोचता है जो अभी हुआ ही नहीं, वो हमेशा फ्यूचर में रहता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया और यू नो मेरे को बाहर से जजमेंट मिली बहुत। जैसे लो सेल्फ इस्टीम में क्या है, बेसिकली हम बहुत सारा एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख कर रहे हैं कि बाहर के लोग हमें कैसे जज करेंगे, बाहर के बारे में लोग क्या सोचेंगे। जो LKK लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम है वो काफ़ी हावी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनल वैलिडेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, कि हम अपने आप पे ध्यान दें और कोशिश करें कि, क्योंकि हर एक इंसान में एक खूबी होती है, तो हो सकता है अगर किसी और इंसान को देखकर उनको इनफीरियर फील हो रहा है, पर क्योंकि उस समय वो सिर्फ उन्हीं चीज़ को ध्यान रख रहे हैं शायद जिसमें वो खुद अच्छे नहीं है, पर दे कैन बी मल्टीपल वैल्यूज़ एंड क्वालिटी दैट पर्सन इज पोजेसिंग। उसके पास कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो दूसरा इंसान नहीं कर पाता, तो वो ज़रूरी है कि उस चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। और जैसे आपने बोला, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सराउंडिंग में उन लोगों को के साथ कनेक्शन रखें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपकी स्पिरिट को हाई करते हैं और आपको वैल्यू करते हैं एज अ पर्सन। जितने लोग आपको डी वैल्यू करेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और आप अपने आप से खुश नहीं रहेंगे और आपको लगेगा शायद आप दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते।
0: तो अगर आप ये महसूस करना चाहते हैं कि आप वैल्यूएबल हैं, लोग आपको पसंद करते हैं और दुनिया में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो आप कुछ अच्छा करने के लिए ही आए हैं, ऐसा अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो सबसे पहला थंब रूल, दूसरों को भी ऐसा महसूस कराइए, तभी आप एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा रूल कि आप लोगों की तरफ जजमेंटल मत होइए, क्योंकि आप दूसरों की गलतियां नहीं निकालेंगे तो लोग आपकी गलतियां नहीं निकालेंगे, आप दूसरों की तारीफ करेंगे तो आपको इन रिटर्न तारीफ मिलेगी। लेकिन यस, ये बहुत ज़रूरी है कि इसका मेंटल हेल्थ पर वाकई एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और फर्क पड़ता है। और कई बार ऐसे में हम मतलब बहुत लाइटली ये बात कह सकते हैं कि लोगों को कई बार अच्छा नहीं लगता है या फिर वो बहुत लो महसूस करने लगते हैं, लेकिन लो सेल्फ एस्टीम के कारण आप कई बार फंक्शनल ही नहीं होते हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपने ऑफिस का काम या फिर अपना डेली वर्क वो ही नहीं कर पाते हैं। मतलब महिलाओं के साथ अगर ऐसा हो जाए तो आपके अंदर एक दिन ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि आप ये भूल ही जाएं कि खाना बनाया कैसे जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी, एक महिला जो कि घर के सेटअप में रहती थी, होममेकर थी, उसके पति हमेशा उसके खाने की बुराई करते थे या फिर कहना चाहिए उनमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालते थे। सो एक दिन ऐसा आया कि रोज के क्रिटिसिज्म से वो खाना बनाना ही भूल गई। सो इमेजिन करिए कि वो यही भूल गई कि रोटी कैसे बनती है या सब्जी बनती कैसे है, उसमें क्या डलेगा। सो कंडीशंस ऐसी भी हो जाती हैं। ज़रूरी ये है कि हम इन्हें समय पर आइडेंटिफाई करें। कई बार क्या होता है ना, क्योंकि हम घर के सेटअप में हैं तो हमें ऐसा लगता है छोटी सी बात है, आगे वाले को बुरा नहीं लगा होगा और वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। सो ये ध्यान रखिए कि हमारे शब्द दूसरों पर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। क्या पता हम किसी की मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं मात्र अपने मजाक से या फिर अपने जजमेंट से या फिर अपनी भावनाओं से। और बाकी सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आईने में अपने आप को पहचानिए, दूसरों के वैलिडेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है या मुझे कहना चाहिए वैलिडेशन है या आपका आई कार्ड है, वो आईना है और आपकी आंखें हैं। वो आपको बताएंगी कि आप कितने अच्छे हैं और आप कितने लायक हैं। सो बहुत जरूरी है लोगों को ये रियलाइज करना, और वक्त रहते अगर आप इसे रियलाइज करेंगे ना, तो आने वाले समय में आप अपने आप को न सिर्फ कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे लेकिन जीवन को इन उतार चढ़ाव से आगे लेकर जाकर अच्छे से जी पाएंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुतों के साथ हो रही है, और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को तो पता भी नहीं है कि वो इसका शिकार है। सो जरूरी है कि इसे आइडेंटिफाई जरूर किया जाए। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर मनप्रीत, आज हमने कोशिश की कि हम लोगों तक ये जानकारी और ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि उन्हें ये पता लगे कि लो सेल्फ एस्टीम होता क्या है। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी?
2: मैं यही कहना चाहूंगी, अगर अब आपको पता है कि सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम क्या है, तो प्लीज पहचानिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, तो ऑलवेज जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उनकी हेल्प सीख कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मेजर मेंटल हेल्थ कंसर्न है तभी आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक है जिस लूप से आप बाहर नहीं निकल पाइए, प्लीज़ हेल्प सीख कीजिए। और दूसरी बात, जैसे हमने पूरी कॉन्वर्सेशन में बात डिस्कस की है कि सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, पीपल हु वैल्यू यू, पीपल हु कीप यू इन हाई स्पिरिट। एंड ऑल्सो थर्ड चीज़ ये है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी लगता है, ठीक है कुछ हद तक है इम्पॉर्टेंट, बट एक्सटर्नल वैलिडेशन सिर्फ उन्हीं से एक्सपेक्ट कीजिए, जो उन्हीं लोगों से जो आपको वैल्यू करते हैं, जो आपके क्लोज्ड वंस हैं, क्योंकि हमेशा चंक ऑफ द पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू क्रिटिसाइज यू, तो क्रिटिसिज्म से कभी आप बच नहीं पाएंगे, वो हमेशा रहेगा। सब लोगों आपको सब पसंद नहीं कर सकते, तो जो चंक ऑफ पीपल है हु आर अप्रिशिएटिंग यू ऑल्सो, फोकस योर एनर्जी टूवर्ड्स दैट, जो कुछ लोग आपको वैल्यू करते हैं और आपकी कुछ अच्छी बातों के बारे में भी बताते हैं। क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है, पर क्रिटिसिज्म कहाँ से आ रहा है और कितना प्रोडक्टिव है वो बहुत जरूर ध्यान रखें।
0: सो ध्यान रखिए दोस्तों कि आप इसका शिकार कभी ना हो, और अगर आपके आसपास कोई भी इसका शिकार है तो उसे भी इससे बाहर लाने की जरूर कोशिश करें। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर अमनप्रीत कौर का। लेकिन अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। सो आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मैं लूंगी आपसे इजाजत और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते प्रोग्राम साथी में। टिल देन फील गुड फील लाइव।
3: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
4: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
3: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
5: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
6: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 FM के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और दोस्तों, हर बार की तरह इस बार हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए आपसे, हमसे, हम सब से जुड़ा हुआ एक मुद्दा, एक टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तलाशेंगे एक नई सोच के साथ नई दिशाएं। जैसा कि आजकल हम देख ही रहे हैं, चारों ओर बारिश का मौसम है, मानसून आ ही गया है और जगह जगह पानी भराव और ये सब चीज़ें भी आती हैं चल के। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक बात जो कमोवेश हर किसी की नज़र में भी आती है और हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं उसके द्वारा इन चीज़ों को रोकने का या इन समस्याओं से उबरने का, जी हाँ बिल्कुल, और वो एक उपाय है पौधारोपण, ट्री प्लांटेशन। यदि हम बात करें प्लांटेशन की, प्लांटेशन ड्राइव की, तो आजकल आम तौर पर देखा जाता है कि जगह जगह विभिन्न संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनजीओ हैं या किसी भी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं। आखिर क्यों जागरूकता इतनी ज्यादा रहती है लोगों में और क्या चीजें ऐसी हैं जो पौधारोपण से या ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड हमें जाननी चाहिए, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, जो जरूरी बात है वो ये कि अगर हम वृक्षों की बात करें, यदि हम बात करते हैं पौधों की, पेड़ों की, तो वो जुड़े हुए हैं हमारे जीवन से। सभी को पता है कि पेड़ पौधे जितने भी हैं, हमारे जितने भी आसपास का जो हरित, जो हरा वातावरण, हरियाली है, जो वो एक बहुत बड़ा जीवन दान देती है हमें ऑक्सीजन के रूप में। और ये वही पेड़ पौधे हैं जो वातावरण के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सोख करके हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन वही जिसको हम बोलते हैं हमारी जीवनदायिनी हवा। तो उस वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं पेड़ पौधे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें इस चीज़ की कि एक उदासीन रवैया कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनाया हुआ है कि हम पौधारोपण की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अखबारों में, खबरों में इतनी हमारे पास सूचनाएं आती हैं, देखने में लगता है कि बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे अलग है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पौधारोपण या ट्री प्लांटेशन जिसकी हम बात करते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर किस प्रकार से वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और हम जानेंगे इस बात को भी कि आखिरकार पौधारोपण के प्रति एक नागरिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, और साथ ही हम ये बात भी जानेंगे कि कौन से वो उपाय हैं, कौन से वो तरीके हैं जिससे आप अपने द्वारा लगाए हुए पेड़ों, अपने वृक्षों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं, और अपने जीवन में, रूटीन में जो हम काम करते हैं उनमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जंगल, हमारे वन, हमारे आसपास के पेड़, हमारी हरियाली सुरक्षित रह सके। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस बात को कि आखिर पेड़ पौधे हमारे आसपास करते क्या हैं। पेड़ पौधे, सबसे पहला जो मैंने आपको बात बताई, जरूरी काम करते हैं वो ये कि हमारे आसपास की वायु को प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और साथ ही साथ यदि हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करें तो जिस प्रकार से आजकल खबरें सुनने में आती हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ गई या पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसमें जो मिट्टी का कटाव होता है, जो एक ऊपर की जो लेयर होती है मिट्टी की, उसको रोकने का काम भी पेड़ों द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी स्थान पर पेड़ नहीं है तो यकीन मानिए कि वो जगह बहुत ज़्यादा समय तक उपजाऊ नहीं रहती है। इस चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना केवल ये, बल्कि अगर हम बात करें पेड़ों के जड़ों की मजबूती के साथ ही साथ, वो कहीं ना कहीं हमें सुविधा देती है जल संरक्षण में। जो हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहता है पेड़ों का। और न केवल ये, लेकिन अगर एक बड़ी, एक मैच्योर सी बात है कि हमारा जो जनजीवन है उसमें जितने भी हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल भी पेड़ पौधे निभाते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि जिस प्रकार से हम इन पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, तो पैरेलली साथ ही साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनका विनाश या इनका जो इस्तेमाल करने के लिए हम इनको काटते हैं तो उनके उगाने में भी हमें उतना ही योगदान देने की आवश्यकता है। जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में आज से तकरीबन 75 साल पहले यानी सन 1950 में डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो कृषि मंत्री थे उस समय पर, उन्होंने एक साप्ताहिक अभियान चलाया था जिसको हमने कहा था वन महोत्सव, जिसको उन्होंने नाम दिया वन महोत्सव यानी पेड़ों का त्यौहार, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। और ये व्यवस्था चलाई केवल किस लिए, ताकि लोगों में जागरूकता आ सके पौधारोपण के प्रति यानी वृक्षारोपण के प्रति। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें ये अभियान चलाना पड़ा, या जो कन्हैयालाल मुंशी जी ने ये अभियान चलाया उसकी क्या आवश्यकता क्या पड़ गई। आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि वातावरण की जो हवा की, वायु की जो क्वालिटी थी वो दिन प्रतिदिन गिर रही थी। वन संरक्षण के प्रति जो लोगों का रवैया था वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक था, कोई इंटरेस्टेड नहीं था नए पेड़ पौधे लगाने में। लेकिन यदि हम बात करें अपने इस्तेमाल में आने वाली लकड़ी, तो उसके लिए वनों की कटाई पूरी तीव्रता से चल रही थी। तो इसी सोच को, इसी मेंटेलिटी को, इसी मानसिकता को बदलने के उद्देश्य से उन्होंने आह्वान किया आम जनता का, 1 जुलाई से 7 जुलाई का जो दिन है ये निश्चित किया उसको वन महोत्सव के रूप में मनाने के लिए। आप सोच करके देखिए, यदि आपके इर्द गिर्द पेड़ पौधे ना हो, हरियाली ना हो, तो आपका जीवन कैसा होगा? आप एक एहसास लेकर के दीजिए कि जब गर्मी के मौसम में हम बात करते हैं कि बेहद तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना हीट वेव चल रही है, एक कारण ये बहुत बड़ा है कि हमारे आसपास के वन खत्म हो रहे हैं। साथ ही साथ जब कभी किसी जगह पर पेड़ नहीं रहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी के साथ बहाव में वो उपजाऊ मिट्टी ऊपर की बह जाती है जो पेड़ों की वजह से सुरक्षित रहती है, तो धीरे धीरे करके वो ज़मीन एक सूखी ज़मीन में परिवर्तित हो जाती है और बंजर हो जाती है, जिसके ऊपर आप किसी प्रकार की फसल नहीं उगा सकते, ना ही आपको कोई शेडो मिलेगी, क्योंकि पेड़ छाया देने का काम करते हैं ज़मीन को भी और उस पेड़ के नीचे बैठने वाले लोगों को भी और पशुओं को भी। ना पक्षियों की चहचहाट आपको आसपास कहीं सुनने को मिलेगी, ना ही आपको कभी जो जिन जानवरों की हम बात करते हैं जो वन में रहते हैं उनके लिए जो रहने का ठिकाना है वो धीरे धीरे करके समाप्त होता जाता है। और एक बेहतर बात, एक आम बात है, जब कभी भी आप किसी चित्र को देखते हैं, चाहे आपके घर पे कोई सीनरी लगी हुई है या कभी आप हवाई यात्रा करते हैं ऊपर से देखने में, जहाँ कहीं भी आपको हरियाली नज़र आती है तो हर कोई जानता है कि वो बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन की खूबसूरती से, यानी हमारे जीवन को जो जीवन प्रदान करने का काम करता है वो वन करते हैं, पेड़ करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता है, ज़रूरत है, और शायद इसी आवश्यकता के चलते, इसी ज़रूरत के चलते हमारे वनों को, हमारे पेड़ों को पृथ्वी के लंग्स बोला जाता है, यानी हमारी अर्थ के जो लंग्स हैं, हमारी पृथ्वी के जो फेफड़े हैं, उनका नाम दिया गया है हमारे वनों को। तो एक आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से एक शरीर के अंदर जो लंग्स का काम है प्योर एयर देने का, ऑक्सीजन देने का, या जिस प्रकार से हमारे शरीर में फेफड़ों की जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर हमारे वन जो पेड़ों के समूह से बनते हैं वो उतने ही आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है उनके संरक्षण के ऊपर, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू आजकल हम सुनने में आता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पेड़ों के काटे जाने की वजह से। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इस मुद्दे पर इसलिए भी है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सीधे सीधे हमारे, आपके, हम सबके जीवन से। तो दोस्तों, हम अपनी चर्चा को दोबारा से जारी करते हैं, पौधारोपण, वृक्षारोपण, जिसका हमने अभी आपको सारी जानकारी दी। तो इसी के बारे में एक बड़ा एक विशेष तथ्य, विशेष जानकारी मैं आपके साथ, अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहता हूँ कि यदि हम इतिहास की बात करें, जिस प्रकार से हम आज का आधुनिक जीवन जी रहे हैं और हमें दिन प्रतिदिन देखा जाता है कि हमारे आसपास पेड़ काटे जा रहे होते हैं, कभी कोई सड़क बनाने के लिए, कभी कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, या जिस चीज़ को हम विकास का नाम देते हैं, डेवलपमेंट का नाम देते हैं, और उस डेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसमें पेड़ों का काटे जाना बड़ा एक आम बात हो गई है। उसी का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि यदि हम पुराने समय की बात करें तो एक रिसर्च में ये पता चला था कि लगभग 2000 साल पहले, यानी आज से 2000 वर्ष पूर्व, जो पृथ्वी का पूरा सिनेरियो था, पृथ्वी का जो वातावरण था, उसमें 80% भाग, यानी हमारी पूरी धरती का 80% भाग केवल और केवल फॉरेस्ट हुआ करते थे, वन क्षेत्र हुआ करता था, यानी हमारी धरती पर केवल 20% स्थान पर हम लोग रहते थे, बाकी 80% स्थान पूरी तरह से हरियाली भरा हुआ क्षेत्र था, वन क्षेत्र था। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी एक खतरनाक स्थिति में आज हमें, कि यदि हम आज की बात करें, जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, तो ये वन क्षेत्र सिमट करके मात्र 20-30% रह गया है। आप समझ के चलिए कि जो स्थान 80% कभी हुआ करता था आज से 2000 साल पहले, और जिस गति से विकास के नाम पर इन पेड़ों की कटाई और हम अपने प्रयोगों में लेकर के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उसके लिहाज से 80% से हम आ गए हैं 20-30%। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे शरीर में फेफड़े जिस प्रकार से काम करते हैं, हमारे वन क्षेत्र भी पृथ्वी के फेफड़े हैं। अब आप सोच करके देखिए, यदि आपके शरीर के फेफड़ों का साइज छोटा हो जाता है या सिकुड़ जाते हैं या वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो आप सोचिए कि एक शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। तो वही चीज़, वही व्यवस्था लागू होती है हमारे वातावरण पर। यदि ये वन क्षेत्र सिमट के 30% पे आ गया है, तो आप समझ सकते हैं जितनी चर्चाएँ आजकल आती हैं ग्लोबल वार्मिंग की, या AQI बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हमारी वायु दूषित हो गई है, या बहुत स्थान ऐसे हैं कि जहाँ के लोग, उनका जो जीवन का जो स्पैन है वो कम होता जा रहा है, बीमारियां रहती हैं श्वास से रिलेटेड, जो एक आम तौर पे बात आती है कि एक पर्टिकुलर सीजन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब देन है किस चीज़ की? वो देन है इसी 80% के 20-30% होने की। और ये समस्या शहरी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहाँ जिस जगह से आज हम निकल के जा रहे हैं वहाँ पेड़ दिखाई देते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है सड़क चौड़ी करने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए वो पेड़ काट दिए जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि विकास के नाम पर आप पेड़ काटते हैं या पेड़ कटते हैं या हमारी ज़रूरत के हिसाब से पेड़ कटते हैं, लेकिन समस्या का दूसरा पहलू ये है कि हम वृक्षारोपण, पौधारोपण के प्रति या ट्री प्लांटेशन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं। यदि हम अपना एक उसूल बना लें, अपना एक कर्तव्य समझ लें एक बेहतर नागरिक की तरह कि हमें पौधारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाए जाने चाहिए, तो हमारा पेड़ काटना भी एक समस्या नहीं रहेगा। हमें ये बात समझनी होगी कि जिन पेड़ों को, जिन पौधों को आज हम रोपित करते हैं, जिनको हम प्लांट करते हैं ट्रीज़ को, उनको कई वर्ष लग जाते हैं एक पेड़ बनने में, और यहाँ हम अपनी ज़रूरत के लिए किसी भी पेड़ को काटने में कुछ मिनटों का मात्र समय लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम इस समस्या को समझें, नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, और ये जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से। तो हम क्या दे करके जा रहे हैं अपने बच्चों को भविष्य में, ये चीज़ समझनी होगी हमें आज, और जागरूक होना पड़ेगा पौधारोपण के प्रति। तो दोस्तों, जैसे अब तक की जानकारी के मैंने बताया कि कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्री प्लांटेशन हमारे लिए, और ऐसा नहीं है कि समाज के सारे ही वर्ग, सभी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है। हम आमतौर पर देखते हैं बहुत सारी संस्थाएं इस चीज़ में आगे आई हैं। रोटरी जैसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम चारों तरफ देखने में आता है कि रोटरी के जो सदस्य हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स के माध्यम से, वो इसको एक प्रोजेक्ट की तरह से लेते हैं, और सभी क्लब इस पर्टिकुलर सीजन में या कुछ चुनिंदा महीनों के अंदर जब आवश्यकता होती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो बेहतर सराहनीय कार्य न केवल रोटरी, लॉयंस और अन्य जितने भी एनजीओ हैं वो भी बड़े ही जिम्मेदारी के साथ इस काम को निभाते हैं, लेकिन ज़रूरत है उसमें जन भागीदारी की, क्योंकि ये कोई मुद्दा किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसा हमने पहले भी आपसे जिक्र किया कि पर्यावरण का कोई भी सीमा नहीं होती, पर्यावरण की ना पर्यावरण का कोई क्षेत्र होता है। यदि आपके यहाँ कोई दूषित वायु है तो वो कहीं भी जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की समस्या है पेड़ों के काटे जाने से, तो उस समस्या का असर केवल और केवल उस क्षेत्र पर नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ की जो उस क्षेत्र का जो वायुमंडल है वो कहीं ना कहीं एक हिस्सा है पूरी पृथ्वी का, आसपास के क्षेत्रों का। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, और इसी मुद्दे की वजह से, जैसा मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसका पर्पज था कि जब सभी देशों ने बैठ करके इस समस्या के बारे में विचार किया तो सबको समझ में आया कि वास्तव में पर्यावरण की जो देख रेख है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी रक्षा अगर हो सकती है तो वो हो सकती है केवल और केवल अपने वनों को संरक्षित रख के, हमें पेड़ों के ट्री प्लांटेशन के ऊपर लोगों को जागरूक करके। तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता हमें इस चीज़ को समझने की है कि ये मुद्दा केवल क्षेत्रीय नहीं है, ये पूरे के पूरे विश्व का, वैश्विक स्तर का मुद्दा है। और दूसरी ज़रूरी बात, सरकार के स्तर पर भी, यानी प्रशासनिक स्तर की अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस मुद्दे की गंभीरता को समझने की कि उनके द्वारा ऐसे नियम, ऐसे कानून, हालांकि वन अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी जो ट्रीज रहते हैं उनको काटने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कानून हैं कि यदि आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ ट्रीज काटते हैं तो उसके मल्टीपल में आपको इतने ट्री प्लांट्स करने पड़ेंगे, ट्रीज को लगाना पड़ेगा। लेकिन कितनी कड़ाई से और कितनी सफलतापूर्वक इन नियमों का पालन होता है, ये देखने वाली बात है। धरातल पे अगर हम बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको डाटा बताया कि 80% से हम 20-30% पे आ गए हैं फॉरेस्ट लैंड के मामले में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें गंभीरता से इन नियमों का पालन कराने की। मैं इसी विषय में आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रीनिंग ऑस्ट्रेलिया नामक एक एनजीओ है जिसने तकरीबन 10 लाख पेड़ लगाए

आएंगे अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को और ज्यादा बेहतर। वृक्षारोपण आज की हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसके प्रति हमें जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वृक्षारोपण को लेकर ट्री प्लांटेशन के ऊपर हमने बहुत सी चीजें जानी, बहुत सी चीजें आपको बताई। और इसी कड़ी में जो लोग वृक्षारोपण से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग ट्री प्लांटेशन करना चाहते हैं, कई बार एक मन में प्रश्न उठता है कि आखिर यदि पौधे लगाने हैं तो कौन सा समय उचित होना चाहिए और पौधे आखिर हमें मिलेंगे कहाँ से। तो दोस्तों, एक जानकारी हम मानव रचना रेडियो के माध्यम से देना चाहते हैं कि जो आपके क्षेत्र के जिला वन अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पर ये सुविधा हर व्यक्ति, हर संस्था के लिए उपलब्ध होती है। आप वहां जाकर के आवेदन कर सकते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं और नर्सरी से आपको अपनी मर्जी के या जो पौधे वहां पर उपलब्ध हैं पूरी जानकारी के साथ आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। ना केवल पौधे देने का काम ये नर्सरी करती है, बल्कि आपको पूरी जानकारी देंगे, आपको पूरी गाइडेंस देंगे। लेकिन एक जो आप कमिटमेंट उनको चाहिए होती है वो ये कि आप उन पौधों को किसी भी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर वो पेड़ बनने तक सुरक्षित रह सकें, यानी कि उस जिम्मेदारी की पालना आपसे अपेक्षित की जाती है। लेकिन उस पेड़ के लिए, उस पौधे के लिए नर्सरी द्वारा, जिला वन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का चार्जेज आपसे नहीं लिया जाता है। तो एक बहुत बेहतरीन सुविधा है जिसको एक आम नागरिक हमारे शहर के और साथ ही साथ संस्थाएं भी इस चीज़ का लाभ उठा सकती हैं। और एक ज़रूरी बात कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जब भी हम फल खाते हैं, तो वृक्षारोपण का एक बहुत बेहतरीन तरीका ये भी है कि जब कभी भी हम किसी फ्रूट को खाते हैं तो उसकी गुठलियां, जिसके अंदर बीज होते हैं, जिन फलों के अंदर वो बीज होते हैं, उनको हम व्यर्थ में कूड़े में ना डालें। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि उनको साफ करके हमारे आसपास का, यदि कोई सीड बैंक है, एक बीज का जो भंडार गृह है, बीज जो सीड बैंक्स डेवलप किए हुए विभिन्न संस्थाओं ने हैं, उनको हम जा करके वो बीजों को सौंप दें ताकि वो किसी भी अच्छी जगह पर उनको लगा सकें। या उन बीजों को, उन गुठलियों को हम ऐसे स्थान पर भी डाल सकते हैं जहाँ पर कि आप वृक्ष रोपण करना चाहते हैं, तो कुछ समय में वो रोपण होकर के वो पौधे वहाँ पर धीरे धीरे करके वृक्ष का रूप भी ले लेते हैं। ये भी एक तरीका है, हालांकि कोई संभावना इस बात की नहीं होती है कि ये तरीका 100% सफल ही होगा, पर संभावनाएं इसलिए भी बेहतर हो जाती है कि उस बीज का वहां पर डाले जाना कूड़े में डाले जाने से लाख गुना बेहतर है। और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात होती है कि जब कभी भी आप कहीं पर ट्री प्लांटेशन करते हैं तो उसको आपको एक पर्टिकुलर समय तक टेक केयर करना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी एक अनजान वीरान जगह पर कहीं प्लांटेशन करते हैं तो प्रॉपर ट्री गार्ड वहां पर लगाएं ताकि आसपास घूमने वाले कोई भी आवारा पशु उसको ना खाएं या हल्के फुल्के किसी भी हवा के झोंके से या किसी भी अन्य कारण से वो पौधा वहां पर मरे ना, ताकि आप उसमें पानी, खाद जो भी है प्रॉपर दे करके उसको जीवन प्रदान करते रहें जब तक कि वो सक्षम ना हो जाए अपने आप को संभालने का तेज हवाओं के आगे या तेज बरसात के आगे। तो एक बहुत आवश्यकता है इस बात की कि पौधों को लगाना ही मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक निश्चित समय तक उनका टेक केयर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो मैंने अभी आपसे चर्चा की सीड बैंक के बारे में, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पिछले कुछ वर्षों में आया निकल के, तो हमें जानना चाहिए और बहुत ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि हम इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं अपने स्कूलों से। छोटे बच्चों को सीजन में, जब कभी भी ये सीजन होता है कि आप ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं या सीजन नहीं भी है, उस समय पे बच्चे जो घर में फ्रूट्स खाते हैं उनके बीजों को साफ़ सुथरे तरीके से ला करके स्कूल में दें। और स्कूल ये व्यवस्था कर सकते हैं कि उन बीजों को एक पैकेट के माध्यम से या जैसे भी है उन सीड बैंक्स पे या सीड बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर उनको जमा कराएं, ताकि एक बहुत बड़ी वेस्टेज जो हो जाती है फ्रूट्स के या अन्य प्रकार के जो पेड़ हैं उनके बीजों की, वो बचाई जा सके और हम लाभ उठा सकें इस बात का कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है उसमें हम फलों के वृक्ष भी लगा सकें। और यकीन मानिए कि कुछ समय बाद जब ये एक जागरूकता यदि शहर में आती है, लोगों में आती है, तो एक समय आएगा जब हमें आसपास फलों से लदे हुए वृक्ष दिखाई देंगे। आमतौर पर कुछ क्षेत्र ऐसे होते भी हैं, काफ़ी सारे हमने एरिया ऐसे देखे हैं जहाँ पर जामुन के, आम के बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। वो पेड़ हैं उन प्रयासों का फल जो आज से लगभग 2 दशक पहले या 1 दशक पहले हमारे किसी बुजुर्ग ने, हमारे किसी बड़े ने इस थॉट के साथ लगाए थे। तो अब हम चर्चा करते हैं इस बात पर कि आखिर पौधे लगाने का बेहतर तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि
कि जब हम बात करते हैं कि किस समय पर पौधे लगाए जाने चाहिए, यानी साल के 12 महीने यदि हमारे सामने होते हैं, तो हम कौन से महीने में वृक्षारोपण कर सकते हैं, कौन सा

बेहतरीन समय है, तो उसके बारे में हम जानकारी देते हैं जो हमने, जो वरिष्ठ सलाहकार हैं जो इस बारे में ज्ञान रखते हैं ज़्यादा, जिनसे हमने बात की, तो उन्होंने एक बड़ी ही व्यवस्थित एक चर्चा उनके साथ हमने की, तो हमें पता चला कि सबसे बेहतरीन जो महीने 12 महीनों में होते हैं वो होते हैं फरवरी, मार्च और जून। इन तीन महीनों की खासियत, फरवरी जैसे हमने बताया वसंत ऋतु का समय रहता है, मार्च में भी कमोवेश वातावरण वही होता है, मिट्टी एक बड़ी उपजाऊ स्थिति में उस समय होती है, एक नमी की स्थिति मिट्टी में रहती है ताकि आप पौधे अपनी जड़ पकड़ सकें, और जून में भी हमारे साथ यही एक प्लस पॉइंट होता है। और दोस्तों खास बात ये कि जब जून के महीने में आप पौधारोपण करते हैं तो उसके बाद चूँकि मानसून आ जाता है जून में, जुलाई अगस्त सितंबर तीन महीनों में जो बारिश का पानी है वो एक औषधि का, एक न्यूट्रिएंट का काम करता है, जो एक पोषक जो पानी की बरसात है वो मिलती है पौधे को, जो उसको पनपने में और बढ़ने में सहायक होती है। आप कितना भी ट्यूबवेल से पानी दे लें लेकिन जो सही आपूर्ति पौधों की होती है वो बरसाती पानी से होती है। तो एक बहुत विशेष बात ये कि फरवरी, मार्च और जून में हमें सबसे ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, या जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हम कर सकते हैं, जैसा हमने अभी आपसे शेयर किया कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव हम लोग मनाते हैं। साथ ही साथ एक जरूरी बात ये कि जब कभी भी आप पौधे लगाते हैं तो उसको लगाने का एक तरीका होता है जिसके लिए विशेषज्ञ, जैसे हम आसपास के क्षेत्र में देखते हैं माली होते हैं, तो उनका सहयोग, उनकी देखरेख में लगाएं ताकि हम पौधे को प्रॉपर तरीके से जमीन में, धरती में लगा सकें एक निश्चित गहराई के साथ। हर पौधे की अपनी एक क्वालिटी होती है कि उसको कितना गहरा रोपा जाना चाहिए, पेड़ की हाइट कितनी है। 3-4 फुट का पौधा यदि है तो उसको हम 1 फुट दबाएं, 2 फुट दबाएं या 6 इंच दबाएं। यदि कोई छोटा पौधा है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको हम जरूरत से ज़्यादा ज़मीन में दबा दें ताकि वो पनप ना पाए। तो एक बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आसपास के बागवानी जो विशेषज्ञ हैं, जो माली हैं, उनको हम अपने साथ में लगाएं। और साथ ही साथ प्लांटेशन का काम जब कभी भी करें किसी ना किसी संस्था को जोड़ करके करें, चाहे आप किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी की बात करते हैं, चाहे आप किसी स्कूल की बात करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसके पीछे प्लांटेशन में उनको इन्वॉल्व करने के पीछे का कारण है कि उन पेड़ों की, उन पौधों की जो सुरक्षा है, उनकी जो देख रेख है, वो किसी ना किसी प्रकार से सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि वो उनके पास कर्मचारियों की भी कमी नहीं होती है और साथ ही साथ कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जुड़ा होता है, चाहे वो माली के रूप में या कोई देखरेख करने वाला, जो उन पौधों का समय समय पर ध्यान रख सके, खाद पानी जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके, चाहे वो ट्री गार्ड की बात करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही समय का चयन करें। हालांकि बात ये भी है कि 12 महीनों में आप प्लांटेशन कभी भी करें, लेकिन ये जो समय आपको बताया गया उसमें आपको कंपैरेटिवली कम देखरेख करनी पड़ेगी उन पेड़ पौधों की जो आपके द्वारा लगाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम एक बेहतर प्लांटेशन कार्यक्रम बना सकते हैं और अपने क्षेत्र को हरा भरा बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं, साथ ही साथ लोगों को इस बारे में जागरूक भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्री प्लांटेशन को लेकर के, बरसात का मौसम और हमारी आवश्यकता, आज की ज़रूरत कि हमारे जो वन क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं उसको देखते हुए हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस गति से हम पेड़ों को काट रहे हैं उसके मुकाबले में प्लांटेशन के प्रति हमारा रवैया बहुत ज़्यादा उदासीन है, हम बहुत बेहतर नहीं हैं परिस्थितियों के हिसाब से। तो आखिर क्या बदलाव हमारे जीवन में हमें लाने की आवश्यकता है जिससे कि इस संतुलन को बनाया जा सके। जो मैंने आपके सामने एक फिगर रखी थी कि आज से 2000 साल पहले जो वन क्षेत्र 80% होता था पूरी धरती का, आज वो सिमट के केवल 20 या 30% रह गया है। और आप समझ सकते हैं इस दुविधा को कि यदि आपके शरीर के फेफड़े प्रॉपर काम ना करें तो आपके शरीर का क्या हाल होगा। कहीं ना कहीं वही हाल है हमारी इस धरती का, जो समस्या भुगत रही है, जो परेशानी भुगत रही है, वो ये हमारे 80% वन क्षेत्र का 20 से 30% हो जाने की वजह से। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अपनी जीवनचर्या में सुधार लाने का, ताकि हम ट्री प्लांटेशन के प्रति जो हमारा रवैया उदासीन है या जागरूकता की कमी की वजह से प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो उसको एक तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं पेड़ों की कटाई को रोककर। अब पेड़ों की कटाई को रोकने के तरीके क्या हैं? पेड़ों की कटाई को रोकने के तरीके कि जिन चीज़ों में पेड़ों का इस्तेमाल होता है, लकड़ी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो हमारा फर्नीचर है या वो और हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आती हैं, नैपकिन है, पेपर है, बहुत चीज़ें ऐसी जिनका ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं
मिलता है जाकर के हमें हमारे पेड़ों से, और पेड़ों की कटाई इसका एक बड़ा मुख्य कारण है। तो आवश्यकता हमें है अपनी आदतों को बदलने की। हम कम से कम प्रयोग करें ऐसी वस्तुओं का, ऐसी चीज़ों का जो पेड़ों द्वारा बनाई जाती हैं या जिनके बनाने में पेड़ों का इस्तेमाल होता है। एक बहुत बड़ा चेंज, एक बदलाव हम इस प्रकार भी ला सकते हैं। और साथ ही साथ आवश्यकता है हमें जागरूक होने की पौधारोपण के प्रति। हम अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं इस बात को कि ये फ्यूचर की कितनी बड़ी नीड है। और जिस प्रकार से आमतौर पर देखा जाता है कि हम स्वागत में या सम्मान में बुके देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, उस व्यवस्था को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं कि उपहार में हम पौधे देने की एक प्रक्रिया अपनाएं, ताकि लोगों में जागरूकता या हमारे जीवन से जुड़े हुए जो विशेष अवसर होते हैं, चाहे किसी का जन्मदिन है या हमारी एनिवर्सरी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम यादगार बना सकते हैं पौधारोपण से, वृक्षारोपण से। अपने आसपास के किसी पार्क में आप अपने उस विशेष दिन पर पौधारोपण कीजिए और उस रिश्ते को, उस याद को बनाए रखने के लिए उनका ध्यान दीजिए, उन पौधों का, ताकि वो आपके रिश्तों की मजबूती की तरह वो पेड़ भी एक मजबूत स्थिति में आए और आपके वातावरण को शुद्ध बनाएं, आपके पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारी भागीदारी की, हमारे अपने पर्यावरण के प्रति कर्तव्य के पालन करने की। दोस्तों, यदि हम मिलजुल कर इस चीज़ का बीड़ा उठाएं और यदि हम एक शपथ लें कि हम अपने इस्तेमाल में होने वाली जो भी जिन चीज़ों में पेड़ों का इस्तेमाल होता है बनाने में, जिन वस्तुओं का, हम उन पर रोक लगाएं, तो धीरे धीरे व्यवस्था बदलेगी। एक एक बहुत बड़ी समस्या किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर के रहती है कि जब दाह संस्कार होता है किसी भी मृत व्यक्ति का, तो उसमें भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब चूँकि आधुनिक व्यवस्थाएं ऐसी आ गई हैं जिनमें गैस के इस्तेमाल से या विद्युत शवदाह गृह बन गए हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी तरफ भी डाइवर्ट हों, ताकि कोशिश की जा सके कि जितना हम लकड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, उतना ही हमारा जो वन क्षेत्र है, जो हमारे पेड़ हैं, वो सुरक्षित रह सकेंगे, हमारा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा और हमारी पृथ्वी इन स्वस्थ वन क्षेत्र, यानी पृथ्वी के जो फेफड़े, मैंने आपको कहा लंग्स हैं, उसके द्वारा एक अच्छी सांस ले पाएगी, अच्छा जीवन ले पाएगी, ताकि हमारा सबका, हम सबका जीवन भी स्वस्थ रह सके। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम इस चैलेंज को, इस व्यवस्था को सुधारेंगे और अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, वृक्षारोपण में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ करके सहयोग लेंगे, सहयोगी बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त अपने कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल को, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्रोग्राम में जहां मैं आप लोगों के पास होती हूं पूरे 2 घंटे के लिए, जहां होती हैं खूब सारी बातें और खूब सारे गाने मैं आपको सुनाती हूं। तो आज के प्रोग्राम में भी आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, जहां आपके पसंद के गाने मैं आपको सुनाने वाली हूं। और इसी के साथ ही आज के इस खास मौके पर, जी हाँ, चिल्ड्रंस डे के इस मौके पर आप सभी को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम में वही कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपको बहुत सारे भाव मन के अंदर आने वाले हैं। क्या होने वाला है ये आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और एक गाना सुनाती हूँ मैं आपको। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आपका कोई सवाल है या कोई मैसेज आपको हम तक या बाकी लिसनर्स तक पहुँचाना है या कोई गाना आपको सुनना है या किसी को डेडिकेट करना है तो हमारा नंबर है 8010781078। चलिए गाना एंजॉय करते हैं और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।
1: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

कहते हैं बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है, जहां ना कोई चिंता ना कोई डर, बस खेल, सपने और ढेर सारी मासूमियत। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। ये एक ऐसा शो जो दिल से जुड़ता है और आज तो दिल को छू लेने वाला दिन है। जी हाँ, आज है चिल्ड्रंस डे और आज इस मौके पर मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ जिंदगी को दूसरा नाम मिलता है। जी हाँ, यहाँ वो बच्चे रहते हैं जिन्हें शायद अपना कोई ना मिला, लेकिन अब इनके पास है मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी का प्यार भरा परिवार। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की, जहाँ हम गए, हमने ढेर सारी बातें की और इस संस्था के प्रेसिडेंट है श्रीमती सिमरन लांबा, जो पिछले कई सालों से इन बच्चों की जिंदगी में माँ जैसी ममता और मार्गदर्शक जैसी शक्ति लेकर आई है। सिमरन, जिसे आज हमने बहुत सारी बातें की, इनसे जाना मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी किस तरह से इन बच्चों के लिए काम करता है, आप किस तरह से सहयोग दे सकते हैं और भी बहुत कुछ, यहाँ तक कि बच्चों की कहानियाँ हम सुनेंगे इस प्रोग्राम में कि किस तरह की कहानी है उन छोटे छोटे बच्चों की जिन्होंने शायद कुछ देखा ही नहीं अभी, जो अभी देखना बाकी है, लेकिन एक मोड़ पर उन्हें कोई अपना छोड़कर चला गया। तो आज हम करने वाले हैं सिमरन लांबा जी से ढेर सारी बातें और साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई सवाल है आपका, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। तो आइए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और इस वक्त हमारे साथ में है सिमरन लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
1: थैंक यू प्रियंका जी।
0: जी मिरेकल के प्रेसिडेंट हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बात करने वाले हैं, आपसे जानने वाले हैं आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में, मिरेकल की नींव कैसे रखी गई, किस तरह से आज ये वर्क करता है और भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। सबसे पहले आप हमारे रेडियो के माध्यम से जुड़ी हैं, सभी लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, सभी लोगों के लिए मैसेज क्या होगा आपका?
1: सबके लिए मेरा मैसेज ये होगा कि बच्चों को थोड़ा बच्चों के तरीके से देखें और थोड़ा इंसान को ह्यूमैनिटी ग्राउंड में होना चाहिए और जितना हम बढ़ चढ़ के आप सपोर्ट कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भविष्य में हमारे देश के लिए या संसार के लिए ये जनरेशन है, क्योंकि ये अभी हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, नींव है हमारे बच्चे, है ना। आज ये इनका भविष्य अगर अच्छा होगा तो कल आने वाला हम सबका भविष्य अच्छा होगा, देश के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए उन्नति वो होगा ये।
0: जी मैम, सबसे पहले मिरेकल की नींव कैसे रखी गई, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है एक ड्रीम से, तो क्या आपका भी कोई सपना था या किस तरह से आपने मिरेकल की नींव रखी?
1: मिरेकल की नींव तब स्टार्ट हुई जब मैंने मास्टर्स किया MSW, तब हम लोग इंटर्नशिप करने के लिए होम्स में जाते थे, तो जब हमने ऑर्फनेजेस के अंदर इंटर्नशिप किया, मैंने वहाँ एक चीज़ महसूस की कि बच्चों को ना मतलब माँ बाप की कमी कहीं ना कहीं खलती थी, अगर किसी ने कोई डोनेशन दिया या कुछ भी दिया तो उनको पता रहता था, और वो चीज़ कहने के ना हम बड़े तो बड़ों की तो डिग्निटी होती है पर हम ये भूल जाते हैं बच्चे की भी अपनी एक डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और हम कहीं ना कहीं उसको ना हार्म कर रहे होते हैं उनके हाथों में कुछ ना कुछ दे के और फोटोज़ क्लिक करके। आजकल ये ट्रेंड भी है कि हमें देना है या हमने कोई पुण्य का काम करना है जी तो हमें बच्चों को देना, तो वो कहीं ना कहीं हार्म करती है और वो बच्चा डीमोटिवेट होता है, वो सोसाइटी में जेल नहीं हो पाता
0: जी।
1: तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कैसा होम बनाऊंगी जो जीरो होगा, यहाँ बच्चे नहीं रहेंगे और हर बच्चे को उसका घर मिलेगा। फिर हमने स्टार्ट किया, तब गवर्नमेंट का साथ टाई अप करके हमने एडॉप्शन देना स्टार्ट किया कि होम के अंदर एक भी बच्चा नहीं हो, बच्चे की सही जगह उसका घर हो, फैमिली से बेटर कोई जगह नहीं है। तो तब हमने फिर इसको 2015 में इसको स्टार्ट किया था,
0: तो करीबन इसे 10 साल हो गए।
1: 10 साल हो गए इसको, 10 साल हो गए, और कम से कम मैंने 250 बच्चों को अडॉप्शन में दे दिया हमने, इन कंट्री इंटर कंट्री, 40 बच्चों के तो खुद के उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ के उनको वापस किया। कई बार बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, या मियाँ बीबी का कभी झगड़ा हो जाता है तो वाइफ रोड पर छोड़ के चली जाती है बच्चे को, तब हमने 40 बच्चों को तो उनके बायोलॉजिकल को वापस किया, बाकियों को हमने जो स्पेशल नीड हैं या आपके नॉर्मल बच्चे हैं तो हमने एडॉप्शन में दिए हैं सारे।
0: तो कई बार ऐसा होता होगा कि काफ़ी ब्रूटल केस भी आते होंगे आपके पास में, तो कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहें?
1: काफ़ी केस है, एक बार कोविड में हुआ था कि दो भाई बहन को उनके सगे ताऊ ने जला दिया था बिल्कुल बम बांध के, और BK चौक पर उनको फेंक दिया था बच्चों को, और एक बच्चा है जो 9 साल की लड़की है वो सेक्सुअली असोल्ट भी है, 3 बहनें हैं, हमारे अकॉर्डिंग शायद बाप ने ही दारू के लालच में उस बच्चे को बेच दिया। तो बहुत वर्स्ट केसेस में आते हैं बच्चे, बहुत ट्रोमाटाइज भी होते हैं बच्चे, उन्हें कभी कभी अपने उस पास से निकलने के लिए साल साल दो दो साल लग जाता है, पर जब वो निकलते हैं फिर बहुत अच्छा निकलता है।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज हम हैं मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी, जहां पर हम बात कर रहे हैं इस संस्था के प्रेसिडेंट श्रीमती सिमरन लांबा जी से, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस जान रहे हैं और किस तरह से हर एक बच्चे की कहानी है जो ये हमें बता रहे हैं और कितनी तकलीफें बच्चों की जिंदगी में और उनको कैसे उभारने का काम करते हैं सिमरन जी, तो काफी कुछ हमें इनसे जानने को मिल रहा है। ये वाकई ऐसा होता क्यों है, क्यों इस तरह से बच्चों के साथ में चीजें होती है, बच्चों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है या उसके माँ बाप कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनको वापस से आपने वो किया, तो कितनी खुशी होती होगी ना ये देख करके कि जो बच्चे खो गए हैं वो वापस से अपने माँ बाप के पास पहुँच गए।
1: काफ़ी कई बार कई पेरेंट्स के बच्चे मिसिंग हो जाते हैं पर वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं और बच्चा यहाँ तड़पता है अपने माँ बाप के लिए और जब वो मिलता है और उसके बाद वो बहुत टाइटली पकड़ के रखता है कि मैं दोबारा नहीं खो जाऊँ, कि देखो बच्चे के अंदर एक फियर होता है, डर होता है उसके अंदर कि मैं दोबारा नहीं कहीं जाऊँ। अब कई बार लोग कहते हैं बच्चा वहाँ से भाग गया, मेरे यहाँ होम में गेट खुला रहता है, उसको पता है वापस आना है, कहीं घूमने भी जाते हैं ना तो वहाँ पर वो ढूंढते हैं कि बड़ी मम्मा कहाँ है, हम कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि उनको लगता है एक बार खो के हम दोबारा नहीं खोना चाहते। तो बच्चा बहुत मासूम होता है और ये सच में आपसे सच में प्यार करता है। देखो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पैसे वाले हैं, सुंदर हैं, नहीं है, वो जो आपको सच में हम लोग कहते हैं ट्रू लव आपको बच्चा ही कर सकता है लाइफ में और कोई नहीं कर सकता।
0: बहुत बहुत बढ़िया आपने ये बात बोली है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अभी मिरेकल में कितने बच्चे हैं अभी जो यहाँ पर हैं?
1: 95 बच्चे हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, तो 95 है जिसमें से आप एज बताएंगे कैसे कैसे?
1: हाँ, मेरे पास 0 से लेके 16 साल तक के बच्चे हैं, 62 गर्ल्स हैं, बाकी 33 मेरे पास बॉयज हैं और नॉर्मल बच्चे हैं प्लस स्पेशल बच्चे हैं और ओवरऑल हरियाणा के 0 से 6 वाले स्पेशल नीड बच्चे यहीं आते हैं, स्पेशल बच्चे ज्यादा हैं।
0: ओके, तो जब ये बच्चे इतने हैं तो कभी ऐसे खर्चे को लेके कभी ऐसे दिमाग में थॉट आया हो कि क्या कहीं से हम कुछ कर सकते हैं, या कितने लोग हैं जो आपके साथ इस जगह को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, कितने लोग फंडिंग दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपके मदद के लिए आगे आ रहे हैं कुछ सा?
1: हाँ, हमारे पास 2 कंपनीज जुड़ी हुई हैं, एक है ब्रिलियन, एक है फ्लोर। ब्रिलियन वो जो ऑल आउट कंपनी ऑल आउट बनाती है वो कंपनी हमें स्पॉन्सर करती है, एक फ्लोर कंपनी है जो बच्चों का स्पॉन्सर करती है, प्लस कुछ कभी कभी हमारे पास रोटरी है जो सामान के लिए हमें कुछ चाहिए काइंड्स के लिए तो हम रोटरी को, कुछ इंडिविजुअल डोनर्स हैं, पर फिर भी क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, मेडिकल एक्सपेंस ज़्यादा हैं क्योंकि स्पेशल नीड है और इन्फेंट्स हैं तो उसमें हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, फंड्स की तो दिक्कत आती है छोटे बच्चों बहुत, क्योंकि हर चीज़ फ्री में नहीं आती, हर चीज़ में पैसा लगता है। जी। बच्चों के दूध है, लैक्टोजन है, डायपर्स हैं, खाना है, मेरे 30 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका लंच है, सब कुछ है, मेरी बिल्डिंग है जो ये रेंटेड बिल्डिंग है इसमें बिजली है और जो स्टाफ है उसकी सैलरी है, कोई फ्री में नहीं करेगा ना, क्योंकि सबका अपना अपना घर है, कोई 1 महीना 2 महीना कर देगा कैसे करेगा, सर्वाइवल कैसे करेगा, तो टिल ऑफ द एंड जो लास्ट में क्वेश्चन आ जाता है पैसा, तो पैसा कहीं ना कहीं तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
0: वाकई में किसी संस्था को चलाना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ। आप अगर चाहते हैं इनके साथ जुड़ना तो मैम कैसे जुड़ सकते हैं लोग आपके साथ?
1: आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, हमारे मिरेकल की वेबसाइट पे जाके डोनेशन दे सकते हैं, आप फिजिकली आके दे सकते हैं, किसी एक बच्चे को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं 5,000 पर मंथ, या आपको लगता है हमें किसी का लंच स्पॉन्सर करना है लंच कर सकते हैं बच्चों के लिए, ये काइंड्स में कुछ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ये किसी बच्चे का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का है एक्सपेंस आप वो उसको बेयर कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई एक बंदा 500 रुपये पर मंथ भी देता है तब भी वो हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए वो 500 रुपये छोटा है पर वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा।
0: क्या कोई यहाँ क्राइटेरिया है कि मतलब बच्चा इतनी एज के बाद वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा या कब तक बच्चा यहाँ रह सकता है?
1: हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है वो 0 से 6 तक है। अच्छा। पर मेरे पास बड़े बच्चे भी हैं जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, और मेरा मानना कि भाई बहन अलग नहीं होने चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से यहाँ थे अब वो बड़े हैं, तो उसके लिए भी हमने एक CCI के लिए फाइल चलाई हुई है कि मेरा एक्सटेंड कर दो 25 बच्चों का, एटलीस्ट मेरे बच्चे मेरे पास ही वो रहेंगे क्योंकि उनके लिए ये घर है, और मैं नहीं चाहती कि वो पहले से उनके पेरेंट्स नहीं है, फिर हम भाई बहनों को भी अलग कर दें, या एक बच्चा बचपन से यहाँ से पला है, सडनली आप किसी को चेंज करते हैं। आप सोचो ना, हम एक न्यू जॉब भी शिफ्ट करते हैं ना, तब भी हमें कैसा लगता है, और वहाँ तो वो बच्चा है, यहाँ उसकी अटैचमेंट है, पता नहीं दूसरी जगह उसकी अटैचमेंट होती है, वहाँ पे वो मिक्सअप होता नहीं होता है केयर टेकर से, या और बच्चे कैसे हैं। तो ये है, ये आपको पलट के थैंक्स भी नहीं कर सकते, इनको पता, इनको ये भी नहीं पता है कि इनके लिए लड़ा कौन, बच्चे को क्या पता, शायद उसको आगे से पता भी नहीं चलेगा। तो लोग जो है आजकल शायद बेनिफिशियरीज के लिए काम करते हैं, या हमको यहाँ से कुछ थैंक्स मिलेगा, या हमारी वाहवाही होगी, तो उसके लिए लोग ज्यादा करते हैं, पर इनके लिए ये भी नहीं सोचते। मैं हमेशा कहती हूँ, डिपार्टमेंट से भी कुछ भी डिसीजन किसी बच्चे के लिए लेना है तो अपने बच्चे को हमेशा आंखों के आगे रखो कि अगर ये चीज मेरे बच्चे के साथ है तो उस पर कैसा इम्पैक्ट करेगा, तब जाके यहाँ सोचो। हमारे JJAC में लिखा तो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, पर क्या हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं? हम उस बच्चे को एज अ पेपर के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर, वहाँ से वहाँ। वो ये नहीं सोचते, मैंने अभी घर शिफ्ट किया, उसमें मछलियाँ ट्रांसफर हुई हैं, तो मछलियों ने दाना नहीं खाया क्योंकि उनके लिए नया घर था, तो वो मछलियाँ हैं, और यहाँ तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं। मेरे स्पेशल नीड रूम में जो बच्चे हैं उनका रूम बिल्कुल सेटअप है, अगर आप उसको एक रूम से या उनकी केयर टेकर भी हटा देते ना, वो खाना नहीं खाते दूसरों से। सोचो, परमात्मा ने अगर कोई चीज़ छीनी है ना, तो दूसरी चीज़ दी भी है। तो हमारे केयर टेकर्स बहुत मुश्किल होता है जो स्पेशल बच्चों के पास हैं, कि भैया नहीं, दूसरे के हाथ से वो पानी मुंह बंद कर लेते हैं, दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको वही केयर टेकर चाहिए, वही रूम चाहिए जिस रूम में वो लोग रह रहे हैं,
2: वो तो उनको माता पिता मान चुका है।
1: यस, तो मैंने क्या कहा, परमात्मा कुछ चिंता ना कुछ देता भी है एक सेंस, और जो हमारे तरफ पास बच्चे आते हैं ना, उनके अंदर एक ऑलरेडी डर होता है अबेंडन होने का, कि वो ऑलरेडी पहले से उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, और फिर वो यहाँ जेल होते हैं, यहाँ एडजस्ट करते हैं, अपनाते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर एक डर होता है। तो क्या हम इन बच्चों को ये डर ही दें हमेशा? कुछ अच्छा नहीं दे सकते क्या हम लोग? दे सकते हैं
3: बिल्कुल। जो भी इस धरती पर आया है और आ करके अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो आप गलत है, क्योंकि अगर आपने जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर अच्छा है जिसे आप देख नहीं रहे हैं। अब जैसे ये बच्चे हैं, इनके साथ बचपन से ही बहुत गलत होता आया है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो इस तरह से माँ या बाप के रूप में आगे आता है। तो चलिए अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचनाओं 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और आज के इस प्रोग्राम में यानी आज इस खास मौके पर हम हैं मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी। एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है और वो बच्चे जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं या अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को यहाँ पर पनाह दी जाती है। और सिर्फ पनाह ही नहीं बल्कि हर तरह का ख्याल रखा जाता है, फिर चाहे हम मेडिकल की बात करें या फिर उनकी एजुकेशन की बात करें या फिर उनकी हम हर एक चीज़ की बात करें, सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और इस संस्था को, इस पूरे मिरेकल को चलाती हैं यानी कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिमरन लांबा जी, इनसे आज हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं बच्चों के बारे में। सिमरन लांबा जी जो काम कर रही हैं, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला ये काम है, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देने वाला है। मैं दोबारा कहूँगी, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैम एक बार आप अपने बारे में और बता दीजिए।
1: मेरी तो संस्था का नाम है मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी है, ये सूरजकुंड लेकवुड सिटी के अंदर है। आप गूगल पे जैसे सर्च करेंगे, आप एडॉप्शन एजेंसी डालें या मिरेकल डालें तो आपको आएगा हमारा। वहाँ मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ किसी को कोई अबैंडेंड बच्चा मिलता है, और आपसे मैं एक चीज़ और भी ये कहूँगी कि अगर कोई लड़की लगता है कि अनवेड है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो बच्चा डिलीवर करके उसको फेंके नहीं, उसको हमारे पास आए और हमारे पास बताएं और हम उस बच्चे को सेफ सरेंडर करवाएंगे।

0: उसमें उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। कई बार बच्चों में होता है कि हमें पता नहीं होता और अब बच्चा पैदा किया और फेंक देते हैं। कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके लिए आप अबॉर्शन ना कराएं। क्योंकि आप अबॉर्ट कराते हैं, बच्चा अबॉर्ट नहीं होता, फिर उसको फिर फेंक देते हैं, फिर बच्चा वो स्पेशल नीड हो जाता है, पूरी जिंदगी उसकी बेड पे निकल जाती है। तो कोशिश करें, आपको लगता है नहीं, आप गूगल पे जाएं, मेरा नंबर है उसके अंदर, मैं नंबर बोल भी देती हूँ, 7291-977-831। कोई भी लगता है कि प्रेग्नेंट है, बच्चा है, हम नहीं रखना चाहते हैं, इवन कपल भी कि गर्ल चाइल्ड हम रखना नहीं चाहते, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आके लेके जाएंगे। आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, गवर्नमेंट का प्रोविजन है, कुछ में नहीं होगा, आप अपना बच्चा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
1: एडॉप्शन की बात करें तो कितने परसेंटेज पे है यहाँ पे
0: एडॉप्शन? तो ठीक है, रेशियो पर डिपेंड करता है कि बच्चा लीगल फ्री कैसा है, केसेस कैसे हैं। तो पेरेंट्स हैं हमारे पास, पर बच्चे भी हैं, पर लीगल फ्री के ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करते हैं हम जितने ज्यादा से ज्यादा हों, जैसे अभी इस महीने हम लोगों ने 5 बच्चे रिलीज किए हैं, नेक्स्ट मंथ हम 2 करेंगे। कुछ बच्चे हमारे स्पेशल नीड है, तो हमने स्पेशल नीड बच्चों को भी किए हैं, उनके लिए माता पिता हमें यहाँ नहीं मिलेंगे पर बाहर अब्रॉड मिल जाते हैं। तो फॉरनर्स हमेशा स्पेशल बच्चा लेते हैं। तो है रेशो, कोशिश तो है कि हमारे साल में कम से 10 से 15 बच्चे तो बच्चों को घर तो मिले, परमानेंट घर मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और प्रोसीजर क्या है? कई सारे माता पिता हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं बट अडॉप्शन के प्रोसीजर से डरते हैं। कई बार बहुत सी चीज़ें उनके सामने आती है कि आपसे ये पूछताछ होगी, वो होगी, बहुत सारी चीज़ें। और तो क्या इस तरह के लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों?
0: अडॉप्शन के लिए गवर्नमेंट की साइट है मिशन वात्सल्य, बहुत ईजी साइट है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ आप पेरेंट्स का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, आप संस्था में आए, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेके हम रजिस्टर करके देंगे आपको। ऑनलाइन प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, शॉर्टकट जाने की जरूरत नहीं है किसी भी पेरेंट को, और लीगलाइज बच्चा लेने चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं कि आपकी इतनी इनकम देखी जाएगी, या आप गरीब हैं या रईस हैं, हमें बच्चों के लिए अच्छे माँ बाप चाहिए। एक नॉर्मल फैमिली भी अपने बच्चे को पाल लेती है, हम सिर्फ इतना वो देखते हैं कैलकुलेशन कि अगर ये एक बच्चे को पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, या कभी कोई सिंगल कपल रह जाता है कि एज अ सिंगल स्पाउस क्या बच्चे को पाल पाएंगे। तो हर एजेंसी देती, कहीं बच्चा वापस तो नहीं आएगा। आप समझो, बच्चा को पहले उसके बायोलॉजिकल ने छोड़ा, फिर यहाँ से वो फिर अडॉप्शन में गया, फिर पेरेंट्स वापस, तो उसके लिए बहुत नुकसान है। तो ये सब क्राइटेरिया देखते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है, कोई डर नहीं है। एडॉप्शन को लेके लोगों के दिमाग में बहुत मिथ है कि हम छुपाएंगे, बच्चा लेके आए कुछ पे, क्यों छुपाना, आप क्राइम थोड़े ना कर रहे हो, अच्छी बात है एडॉप्शन कर रहे हो, है ना। तो एडॉप्शन को खुल के करना चाहिए, बता के करना चाहिए, प्राउडली करना चाहिए, ये काम हो रहा है। और खून का रिश्ता क्या होता है? मियां बीवी का खून का रिश्ता नहीं होता, कोई खून का रिश्ता नहीं होता। मुझे लगता है सब सफेद होते हैं, रिश्ता दिल से बनता है, और बच्चा ना पेट से कभी नहीं पैदा होता, बच्चा पैदा ही दिल से होता है। अगर बच्चा पेट से पैदा होता तो मेरे पास होम में बच्चे नहीं होते। तो कभी भी ये सोचे कि हम एडॉप्शन ले रहे हैं, हम खुल के ले रहे हैं भाई, समाज क्या कहेगा, समाज का काम है बोलने का। समाज आपके दुख को नहीं देखता, ना किसी को देखता है, आपको एक परिवार मिल रहा है, एक अधूरी परिवार को एक पूरे परिवार मिल जाता है, बच्चे को माँ बाप, माँ बाप को बच्चा। तो एडॉप्शन के लिए हमेशा मैं सबको ये कहूंगी कि लीगल जाएं, गवर्नमेंट की साइड है मिशन वात्सल्य, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, वहाँ पे पास में DCPOs हैं, आपको नई फॉर्म फिल करना आता, आप DCPOs के पास जाएं, वो आपको फॉर्म फिल करके देंगे। साइबर कैफे या कोई भी ऐसे इन जगह पे नहीं जाएं, सरकारी जो सरकार ने चीजें बना रखी है, सरकारी बंदों के पास आए, क्या पता दूसरा बंदा आपको फ्रॉड करे, आपका डाटा लेके बैठे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कह के नहीं जी हम आपको बच्चा दिला देते हैं जी, आप कैसे कर देते, वो फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा हो जाता है। बच्चा खरीदे नहीं, पैसा देके बच्चा नहीं, फिर आपने सामान लिया, बच्चा नहीं लिया। सरकार ने यहाँ पे एक नॉर्मल फीस रखी हुई है कि आपका हर कोई बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है, तो यहाँ कोई रईस गरीब नहीं है, एक नॉर्मल फीस है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, आपके आधार कार्ड, आपका ID प्रूफ वगैरह, आपकी इनकम का प्रूफ, तो इतना मुझे नहीं लगता कोई इतना डिफिकल्ट है जितना लोगों ने बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वेटिंग पीरियड ज्यादा है, वेटिंग इसलिए ज्यादा कि 2 साल कोविड में बंद हो गया, वो बैकलॉग बढ़ गया, पर ऐसा नहीं, आप रजिस्टर करें, बच्चा मिलेगा जरूर, चाहे 3 साल बाद मिले, मिलेगा जरूर।
1: मतलब इतना लंबा टाइम पीरियड भी जाता है
0: क्योंकि कोविड में पहले 1.5 साल की ही वेटिंग थी, पर कोविड में 2 साल बंद था। हम अडॉप्शन देते कैसे ना, पेरेंट्स आते कैसे, वो 2 साल से हमारा बैकलॉग बढ़ गया। अब गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है पर टाइम तो लगेगा हर चीजों को करने के लिए।
1: अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और हमारे साथ इस वक्त हमारे शो में हैं सिमरन लांबा जी, जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं।
1: तो जैसे ये रिक्वेस्ट आती है तो क्या कोई रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, किस तरह की नीड है उनकी?
2: आती है, फैमिलीज बहुत चूजी होती हैं। गर्ल और बॉय चूज करने का ऑप्शन होता है, बाकी किसी चीज का नहीं होता कि सुंदर है, गोरा है, काला है, पीला है, कुछ नहीं। आपको जो रेफरल में आएगा, क्योंकि रैंडमली रेफरल आता है, हमको भी नहीं पता किसके पास जा रहा है किसके पास नहीं जा रहा, तो वो है। तो अदरवाइज लोगों की तो बहुत चॉइस होती है कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। फिर हम काउंसलिंग करते हैं, नहीं परमात्मा आपको बच्चा देता तो हम बोलते कि हमें लड़का दो जी, लड़की दो, गोरी देना, काली मत देना, ऐसी देना, तो इसको भगवान का एक तोहफा ही मानो ना, तोहफे की तरह एक्सेप्ट करो। करती हैं फैमिलीज।
1: अभी जैसा कि कहा आपने कि कोरोना के टाइम पर ये बंद रहा था, तो पीछे से इतनी रिक्वेस्ट आई हैं तो वो अभी पेंडिंग में चल रही हैं, तो टाइम लगेगा और भी बहुत कुछ के। एक समाज जो है अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ जो आपको पीछे खींचेगा। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप ये काम कर रहे हैं और इस बीच कोई ऐसा you know, आपने अपने बारे में सुना हो, या कभी ऐसा लगता हो कि यार ये समाज ही होकर ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर कैसे कोई आगे बढ़ पाएगा?
2: कभी ऐसा हाँ, कोई किस्सा? बहुत चीज़ें सुनते हैं हम लोग को। मेरे को तो काम का, अच्छा मैडम को तो इंटरेस्ट है, पैसा आता होगा इसलिए मैडम बच्चे अडॉप्शन में दे रहे। ऐसा कुछ नहीं, बहुत नेगेटिव। मैं कभी कभी अच्छा भी बोल लूँ, हमारे समाज में है कि जो इंसान अच्छा करता है उसे करने भी नहीं देते हैं। आप सोचो ना, बच्चों को घर मिलेगा। और रही बात फीस की, फीस तो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई, मैंने तो डिसाइड नहीं की हुई ना, और वो फीस भी सोसाइटी के अकाउंट में जाती है, मेरे पर्सनल अकाउंट में तो नहीं आते ना। मेरा क्या बेनिफिट है? मेरा ये बेनिफिट है कि मेरे बच्चे को घर मिल रहा है, मेरे बच्चे को घर। घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए, शायद आपके लिए या किसी और समाज के लिए घर का इंपॉर्टेंस नहीं होगा, पर मेरे बच्चों के लिए घर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग सोचते, क्योंकि जब मैंने उनके मुंह से सुनना शुरू किया कि घर, तो मुझको भी रियलाइज हुआ यार घर, ये वर्ड तो मेरे दिमाग में इतने साल में कभी नहीं आया। जब बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और जब स्कूल से वो बच्चे वापस आए, एक बच्चा मेरा सो गया, दूसरे बच्चे ने उसको कहा कि उठ जाओ, घर आ गया, और मुझे तब रियलाइज हुआ हाँ घर। मैं तो आज तक अपना एनजीओ की तरह ही चला रही थी इसको, पर मुझे नहीं पता चला उस बच्चे के लिए घर कब बन गया। और एक परमानेंट फैमिली बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, माँ बाप से बेटर कुछ नहीं है, माँ बाप ही होते हैं।
1: हम भी जब कुछ दिन के लिए घर से बाहर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हमें अपने माँ बाप चाहिए, हमें उनको देखना है, हमारे पेरेंट्स, हम उनसे दूर हैं। तो सोचो कि ये तो बच्चे परमानेंट दूर हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि इनके माँ बाप कहाँ हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, या क्या कहानी है, क्या हमारा पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं पता,
2: कुछ नहीं पता। और जिन बच्चों को पता है वो अपने बैकग्राउंड से बहुत नफरत करते हैं। जो बड़े बच्चे जिनको पता है या कोई ट्रोमा है उनको बहुत करते हैं, पर जो छोटे से बड़े हो जाते हैं, बड़े के पूछते हैं कि बड़ी मम्मा वाई मी।
1: अच्छा, आपको बड़ी मम्मा कहते हैं?
2: बड़ी मम्मा कहते हैं। बड़ी मम्मा ऐसा क्यों हुआ, हमारे पापा मम्मी क्यों मर गए, हमें क्यों छोड़ गए, कब आएंगे या आप कब ढूंढोगे हमारे लिए? तो बोलते हैं अच्छा नए पापा मम्मी ढूंढ दो। सोचो तो वाई मी, घर। मैंने क्या कहा ना, घर, माँ बाप सब बच्चों को चाहिए। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मैं यहाँ बैठी होती हूँ, मैं संडे को भी यहाँ आती हूँ, क्योंकि उनको अपनी हर चीज़ें बतानी होती हैं। स्कूल से आते ही मुझे बच्चे अपनी डायरीज दिखाएंगे, आज ये मिला, या दोस्त चार मिले, आज स्माइली मिला, या कोई अवार्ड मिला, कोई मेडल मिला, तो उस मेडल को उतारते नहीं, सीधा आते भाग पहन के यहाँ के दिखाते, बड़ी मम्मा देखो। सोचो कितना है, तो उन फैमिली क्यों नहीं चाहिए उनको? फैमिली देखो, ये होम, ये लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए बच्चे के लिए। हम देखा जाए है तो ये अनाथ आश्रम है ना, और ये परमात्मा किसी का बच्चा यहाँ ना भेजे, परमात्मा किसी का बच्चा नहीं भेजे, आना ही नहीं चाहिए बच्चा। और मेरा तो बस चले, मैं तो सारे बच्चे रिलीज कर दूँ, सारे बच्चे अडॉप्शन में, तो सबका अपना अपना घर खाली होना चाहिए। क्या करना है बच्चों को उनका घर, ताकि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें बता सकें। यहाँ मेरी जान खाते रहते हैं, बड़ी मम्मा ये

0: किया, उसमें ऐसे किया, देखो मुझे आज ये मिला, आज मुझे वैसे मिला। तो कितनी चीज़ें हैं जो उनको बतानी है, उनको उनको सुनने वाला कौन है? होम्स में, मैं ये नहीं कह रही होम्स रख नहीं रहे, हम लोग एक शेल्टर दे रहे हैं सब कुछ, पर वो प्यार माँ बाप कहाँ से दें?
1: कई बार ना ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं, कई बार की चीज़ें जब समझ नहीं आती, बच्चे को इस तरीके से इस कंडीशन में छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप उनको देखती हैं, जब आप तक खबर पहुँचती हैं, तो आप किस किस केस में, किस किस सिचुएशन में बच्चों को देखती हैं? और मैं चाहती हूँ कि आपने जो जो केसेस देखे हैं बुरे से बुरे, वो आप सबके साथ शेयर करें, ताकि कल को किसी के जहन में अगर ये बात आती भी है तो उसको बच्चे का क्या हर्ष होता है उसके बारे में भी पता।
0: जब हम लोग बच्चों के केसेस की बात करते हैं, जब कुछ बच्चे के साथ बहुत ट्रेजेडी होती है, और कई बार बच्चे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बहुत नफरत करते हैं, कई बार माँ है, फादर ने छोड़ दिया, मदर ने दूसरी शादी कर ली, यहाँ बच्चे को छोड़ गए, फिर मदर ने तीसरी शादी कर ली, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वो जाता नहीं। अब एक मेरे पास एक है, दो भाई बहन, बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी मदर ने कहा मैं लेके जाऊँगी, उससे मुझे बोला बड़ा, बड़ी मम्मा मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊँगा। यस, और उसको पहचानता है कि वो मेरी मम्मी है, मैं कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, उसने ये बोला बड़ी मम्मा मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊँगा, इस औरत, मैं औरत नहीं बोलते बेटा, औरत किसने बोला? कह रहे नहीं बड़ी मम्मा वो मेरी मम्मी नहीं है। मैं कह नहीं वो आपकी मम्मी है उसके, नहीं। तो माँ बाप ऐसी हरकत करते हैं या ऐसी चीज़ें बच्चों को छोड़ देते हैं। बच्चे को जब इनिशियल स्टेज में माँ बाप की ज़रूरत होती है ना, तब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, फिर जब वो अपने बुढ़ापे में जाते हैं फिर उनको बच्चे याद आते हैं, फिर वो चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे पास आए और हम जाएँ। तो उसने कहा बड़ी मम्मा मैं यहीं रहूँगा, शैतानी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, पर मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। तो मैं ना हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमें बड़ों को इमोशंस होते हैं, हम ही डिप्रेशन में जाते हैं, हमें एंजाइटी होता है, सब कुछ होता है। नहीं, बच्चों का अलग लेवल की एंजाइटी है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। हमारा बच्चों की तरफ से कोई गौर ही नहीं है, बच्चों की तरफ हमारा कुछ नहीं है। बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं, बच्चों को भी एंजाइटी है, उनकी अपनी दुनिया और उनके अपने इतने सवाल हैं, उसका शायद आंसर किसी के पास नहीं।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा।

0: रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका, आपके साथ प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ इस वक्त हैं सिमरन लांबा जी, जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं।
1: बच्चों के अपने सवाल, अपनी बहुत सारी बातें होती हैं, उनको सुनने वाले घर में पेरेंट्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो नहीं है उस स्थिति में, वो कहीं ना कहीं आपको ही माँ, आपको ही पिता, सब कुछ आपको ही समझते होंगे। और मैं समझ सकती हूँ कि वो फील कितना प्राउड मोमेंट होता होगा आपके लिए कि आप कितने सारे बच्चों की बड़ी मम्मा हैं।
2: यस, अब जैसे मेरे पास एक बड़े ब्लड की आशा, तो उसने उसका बर्थडे था, तो मैंने कहा क्या, क्योंकि मैं यहाँ पर हर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, तो उनसे पूछ के उनके अकॉर्डिंग केक वगैरह आते हैं। तो उसने कहा बड़ी मम्मा मुझे ना BTS का केक चाहिए। मुझे लगा BTS कोई फ्लेवर होगा, मैं कहा ये कौन सा फ्लेवर है, नया फ्लेवर है। तो फिर मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मी, आजकल कोरियन ग्रुप है BTS। तो मुझे लगा यार बच्चा बड़ा हो गया, कोरियन ग्रुप मतलब वो देख रही है, तो सोचो उसकी फीलिंग्स है ना। तो फिर मैंने उसके लिए वो BTS का दो उसका बनवा के दिया प्रॉपर। फिर उसने कहा बड़ी मम्मा मुझे BTS की टी शर्ट चाहिए, ऐसी चाहिए, फिर वो लेके आई। तो पता भी नहीं चलता बच्चे कब आते हैं और कब बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इच्छाएं किसको बताएंगे वो, किसको बताएंगे वो, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना माँ बाप। और जब उस लड़की की मदर एक्सपायर हुई थी, तो उसकी मदर ने लास्ट उसको एक चप्पल दी थी, और वो उस चप्पल को वो अपने पास ही रखती है, सोचो। और हर मदर्स डे में उसको निकालती है। कई बार मेरे बच्चे मदर्स डे फादर्स डे में भी ना थोड़ा मायूस हो जाते हैं। स्कूल्स में थोड़ा सा है कि आप ये भी देखो कि हमारे जैसों के बच्चे भी जा रहे होते हैं स्कूल के अंदर। तो शायद ये मदर डे फादर डे हम एक दिन ही क्यों सिखाएं, हमेशा सिखाएं ग्रैंड पेरेंट्स डे, क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनको बहुत मुश्किल होती है।
1: और सबसे बड़ी चीज बच्चों के साथ सहानुभूति,
2: क्योंकि जब मदर्स जाता तो कह रहे हैं बड़ी मम्मा किसका नाम लिखे, मतलब लिखो तो बच्चे मेरा नाम लिखते हैं, फादर जिसमें लिखते हैं, पर कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं हैं।
1: कितने बच्चे हैं जो अभी इस वक्त स्कूल जाते हैं, किस किस एज के?
2: वो 30 बच्चे हैं, 3.5 साल से 12 साल तक का बच्चा स्कूल जाता है।
1: अच्छा।
2: स्कूल जाते हैं यहाँ पे, मुरारी लाल स्कूल है उसमें जाते हैं, हमारे बस आती है प्रॉपर, बस में जाते हैं। पढ़ाई में अच्छे हैं, और मैं तो जो बड़े बच्चे बीच में आए थे उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने किया। एक को तो डॉक्टर बनना है, तो बहुत मेहनत कर रही है वो लड़की, क्योंकि बड़ी एज में आके फिर फर्स्ट करना, फिर सेकंड करना, फिर मैं तो उसको फोर्थ में करा रही थी क्योंकि हम जंप करा रहे थे। उसने कहा नहीं मुझे ना फिफ्थ में ही आप कराओ, उसको फिफ्थ में ही आप करवाओ उसको। तो मैंने मना किया उसको आशा को कि नहीं बेटा, तो उसने कहा नहीं बड़ी मम्मा मुझे फिफ्थ में करा। तो प्रिंसिपल से उसने बात की और उसे फिफ्थ में कराया। अब वो फिफ्थ करेगी, फिर फिफ्थ के बाद उसने खुद कहा कि मैं सेवन्थ करूँगी, फिर एट्थ नहीं सीधा मुझे नाइन्थ में करना, ताकि उसकी उसको उसकी उम्र भी बढ़ गई ना, बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। तो ये है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे और बच्चों से पीछे हैं, क्योंकि उनकी स्कूलिंग लेट शुरू हुआ, उनका वैसा अलग से ट्रेजडी थी, अपनी मेहनत अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं।
1: आपके अभी तक जितनी भी बातें मैंने सुनी हैं, मतलब आप अपने बारे में कम और इस ऑर्फनेज के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। सबका अपना ड्रीम होता है, मुझे बड़े होके ये बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे अच्छा अच्छा पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी अच्छी फैमिली बनानी है मुझे। मुझे लगता है कि आपका सपना सिर्फ और सिर्फ मिरेकल को आगे बढ़ाना है, राइट?
2: मेरा सपना बस ये।
1: तो आज से अगर मैं 5 साल आगे आपको देखती हूँ, क्या सपना है आपका, आप मिरेकल को कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं?
2: मैं मिरेकल को काफ़ी आगे लेके जाऊँगी। मेरा सपना है अपने बच्चों को IAS दुनिया बनाती है, क्योंकि मैंने अपने होम से 2 IAS भी नहीं निकाले तो क्या फ़ायदा। काफ़ी आगे लेके जाऊँगी, इवन नॉर्मल बच्चे नहीं, स्पेशल बच्चे भी। मेरे स्पेशल बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, बस एक बच्चा है बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि स्पेशल बच्चे आइए अब दान दीजिए और रोटी चावल, नहीं, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है। मेरे पास स्पेशल एजुकेटर है, वो अच्छे से उनको ट्रीट कर रही है, अच्छे से उनको समझा रही है, पढ़ा रही है, और उनमें काफ़ी चेंजेस भी आए हैं ताकि अपने पैरों पे खड़े। मेरा मानना है कि 18 साल के बाद उनको पता होना चाहिए कि लक्स साबुन भी हमने खरीदना है, इंडिपेंडेंट। मैंने यहाँ अपाहिज नहीं बनाने, हमारे यहाँ डोनेशन देने का तरीका भी अलग है भाई, आप हाथों में बांट के लेके नहीं जाओगे, आप दे के जाओ और रिसीट लेके जाओ। बच्चों को हम वैसे देंगे, एक एक चीज हाथों में नहीं, या फोटोशूट नहीं करना चाहिए। आपने देना दो, नहीं देना मत दो, क्योंकि उससे क्या है, देखो उनकी ग्रूमिंग नहीं होती, बच्चों में ना बिहेवियर इश्यूज भी बहुत होते हैं, फिर वो डिपेंड हो जाएंगे, उनको लगेगा हमें तो कोई देगा। उनको पता होना चाहिए हमें अर्न करना है भाई, हमें हर चीज अर्न करनी है, मेहनत करनी है, इंडिपेंडेंट बनाने हैं बच्चे। अब जैसे सैटरडे संडे को ऑफ होता है तो अलमारियां वो अपनी अपनी आप साफ करते हैं, जिसकी सबसे बेस्ट अलमारियां होगी उसको उसका डायपर को गिफ्ट चाहिए या बाहर जो भी चाहिए सैटरडे में क्या बॉयज मेरे हमेशा जीतते हैं, क्योंकि वैसे वो हमेशा कभी अच्छे नहीं रखते, पर उनको पता है सैटरडे को उनको रखनी है, सबसे लड़कियों से भी अच्छे से सेट करके रखते हैं हमारे यहाँ। गाड़ी चाहिए, रिमोट कंट्रोल वाली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इससे क्या उनको इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि सच्चाई क्या 18 साल के बाद तो देखो एक ना एक दिन तो करना ही है ना, अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। तो आदत मुझे वही डालनी है कि मेरे होम से जब बच्चा बाहर निकले उसको दान की आदत नहीं है, उसको इंडिपेंडेंटली कि हाँ मैं ये करके इतना कमा के इतना करके मैं खड़ा हो सकता हूँ।
1: तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे बच्चे जो आज इंडिपेंडेंट हैं?
2: हाँ, है मेरे पास इंडिपेंडेंट बच्चे हैं मेरे, पर भी मैंने एडॉप्शन ज़्यादा दिए हैं, तो मैंने बड़े होने नहीं दिए, कोशिश मेरी थी कि एडॉप्शन हो जाए। ये वो बच्चे जो कोविड में भाई बहन आ गए, सिबलिंग्स हैं या माइनर स्पेशल नीड हैं, तो ये वो बच्चे हैं, अदरवाइज तो मेरे पास सारे बच्चे एडॉप्शन में, क्योंकि पहली प्रायोरिटी मेरे लिए है बायोलॉजिकल फैमिली, दोबारा उसके बाद एडॉप्शन नहीं है, फिर तो अपने पैरों पे खड़े होंगे वो, इसलिए मैंने पढ़ाई पे फोकस किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्कूल को भी फीस देते हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि हम फंड्स ले रहे हैं और फीस दे रहे हैं, दो ट्यूटर हैं, पढ़ाई की वैल्यू शायद मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पढ़ेंगे तो अपने पैरों पर खड़े होंगे, पढ़ाई है। और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मैं ड्रीम देखती हूँ, देखो ना आशा का ड्रीम है डॉक्टर बनना, और उस डॉक्टर बनने के लिए वो बच्ची सच में बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि बड़ी एज में आके फर्स्ट में बैठना छोटे बच्चों के साथ इतना इजी नहीं है, वो सबसे बड़ी है। और फिर मैथ पकड़ना वहाँ काफ़ी टफ सब्जेक्ट है मेरे लिए, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है मैथ, और मैथ को निकालना करना, और वो कर रही है बच्ची, सोचो उनका अपना एक ड्रीम है, तो मैं जो ड्रीम जीती हूँ मैं अपने बच्चों का ड्रीम जीती हूँ, क्या करूँगा। वो आशा डॉक्टर बनती है, इससे बड़ा बेटर क्या है, क्या अचीवमेंट, और कुछ भी नहीं है।
1: कितना प्राउड मोमेंट होता होगा ना जब आप अपने आप को शीशे के सामने देख के ये सोचते होंगे कि लोग तो एक दो तीन या चार बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मैं तो कितने सारे बच्चों की पेरेंट्स हूँ, और बड़ी माँ दर्जा हाँ। ही आपको बड़ी माँ का मिले।
2: हाँ, मेरे को तो वाकई में लगता है, मुझे कोई कहता ना आप ऐसे वैसे, मैं कहा मुझसे ज़्यादा रईस कोई नहीं है, मैं इतने सारे बच्चों की माँ, क्योंकि वो बच्चे सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में कुछ भी, बड़ी मम्मा ये, बड़ी मम्मा ऐसे, बड़ी मम्मा ऐसे, देखो बड़ी मम्मा, और खुश है, और उनको बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे करना। हाँ, बीच में कोई प्रॉब्लम थी, अब हमारी अपने फंडिंग की प्रॉब्लम थी, तो दूसरे बच्चे बड़ी मम्मा को दुखी मत करो, बड़ी मम्मा के पास पैसे नहीं है, इस बैग को फाड़ना नहीं, इसको भी चलाना है, अपने आप ही समझ रहे हैं। मैं तो उनकी बातें सुन रही थी, मैं तुमको किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, अरे बड़ी मम्मा हमें पता है अभी फंड नहीं आया ना आपके पास, मैंने उसको बोल दिया वो बैग नहीं फाड़ेगा, मतलब सोचो अपने आप ही कॉस्टिंग करना, बजट की कॉस्टिंग करना उन्होंने खुद ही सीख लिया, कि बड़े मम्मा को दुखी नहीं करना, तो सोचो कितना प्यार करते हैं वो।
1: जी वाकई में एक बहुत प्यार, एक सम्मान की बात है, कि और बहुत खुशी भी मिलती होगी आपको कि बच्चे इस कदर प्यार करते हैं, जबकि आपका ब्लड से कोई रिश्ता नहीं है, बट उसके बाद भी आपको माँ कहना, आपकी फीलिंग्स समझना, एक वाकई में प्राउड मोमेंट होता होगा। आज की जनरेशन की बात करें तो बहुत ना ऐसे ज़रा सा दुख आए या ज़रे से असफलता मिली तो बहुत जल्दी हार जाते हैं, उसके बाद फिर या तो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं या फिर थक हार के बैठ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में लगता भगवान ने कुछ दिया ही नहीं हमें। आप उन बच्चों को, उस यूथ को, स्पेशली आज के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, जो लोगों को आप एक मैसेज दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी यूथ को?
2: आजकल के बच्चे जल्दी थक जाते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमारे पास अगर दुख आया तो सुख भी आया, और ये हमारी अपने अंदर की जंग है, और इसे हमें लड़ना है, हमें कमज़ोर नहीं बनना है कि हम वहाँ से, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं दोबारा हो जाएंगे, फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप टॉपर नहीं, बैक टॉपर नहीं थी अपनी क्लास की, मैं कर नहीं रही हूँ, और जो लोग टॉपर भी होते ज़्यादा क्या कर लेते हैं, तो ये मत सोचो कि प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में कंपटीशन आ गया, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपैरिजन करते हैं, या फलाने का बच्चा ये फलाने का, क्या ज़रूरत है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है भाई, आपके पास सबका बच्चा है, अच्छा है, अच्छे संस्कार हैं, वो ही बहुत है। और यूथ को तो खासकर मैं कहूँगी हारने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आप अंबानी को या किसी को देखते हो कि एलन मस्क को देखते हो, वो आज सक्सेस नहीं हुए, उनकी स्टार्टिंग देखो, सबकी स्टार्टिंग जीरो से होती है, तो इस चीज से मत डरो कि यार आज मुझे 10,000 की सैलरी मिल रही है मेरा ऐसे होगा, आज 10 से कल 50 भी होगी, पर उस 10 में आप काम कितना सीख रहे हो, काम सीखो, फोकस पैसे पे नहीं, काम पे करो, आपको काम आएगा तभी तो पैसा आएगा, और जल्दी हार जाते हैं या टाइमिंग ज्यादा है, ऐसे नहीं, काम करो, मेहनत करो, काम करो। और ये कुछ नहीं है, आपको कोई मोटिवेशन जरूरत नहीं, आप शीशे के आगे खड़े हो, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, क्योंकि आपसे बेटर कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई दूसरा इंसान नहीं जानता आपको। तो आपको कभी लगता है ना हम थक रहे हैं या हमें कुछ ऐसा मायूस हो रहा है, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, शीशे के आगे खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करो कि मैं इतना कायर नहीं, ठीक है। दुनिया में परमात्मा ने अगर हमें भेजा है ना, तो कुछ सोच समझ के भेजा, हर बंदे के लिए ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ बनाया। तो ऐसे नहीं कि अपनी जिंदगी से हार जाओ, सुसाइड कर लो, ऐसे डिप्रेशन में चले जाओ, ड्रग्स ले लो, नशे में चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता, और ऊपर वाले ने आपको जब भेजा है तो कुछ ना कुछ एम के लिए भेजा। क्या पता आप किसी रिक्शे वाले के लिए बहुत अच्छे हो, किसी को आप चाय पिलाते हो एक कप, वो चाय उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अपने लिए देखो कि आप कहाँ अच्छे हो
1: जी। तो आप मोटिवेट रहो, मोटिवेट करो लोगों को, मेहनत करो ऑफ कोर्स, और जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश रहो, कभी शिकायत मत करो। ये शिकायतें जो हम अक्सर भगवान से करते हैं, आज हम जहाँ पर हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, उनके पास तो वो मौके भी नहीं हैं कि वो शिकायत कर सकें। वो जितना उन्हें मिल रहा है उसमें वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, और हमारे पास भगवान ने इतना दिया है, लेकिन उसके बाद भी शिकायतें हमारी ख़त्म नहीं होती है। तो कभी शिकायत मत करो, जितना भी मिला है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा जरूर करो। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू।

ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस फील्ड में आना या कहें कि बच्चों के लिए काम करना, इस संस्थाओं के साथ जुड़ना अभी बाकी है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपके मन में भी ये है कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना है और या फिर ऐसे ही ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करना है, तो आप भी इस तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह के कामों में आगे आइए। और मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ पर लोग सभी जुड़ जाते हैं, वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ को अंजाम मिलता है। तो बस आप लोग भी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ें और इनके कामों के साथ जुड़ें, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। और अब मेरे चलने का वक्त हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानवरचना 107.8 FM। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस शहर के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, उनको जाना जाता है शहरयार के नाम से। पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे तो चाहते थे कि बेटा भी यही बने, मगर ऐसा हुआ नहीं। हॉकी के दीवाने अखलाक मोहम्मद खान ने जब कलम थामी तो वो शहरयार हो गए। शहरयार ने जान लिया था कि वो क्या कर सकते हैं, और ये जानकर उन्होंने जो किया उसने उन्हें शायरी का शहरयार यानी बादशाह बना दिया। उनके लिखे को पढ़ना हमेशा चैन देता है तो ठटकने पर मजबूर भी करता है। बहुत सारी बातें आज करूंगा मैं शहरयार के बारे में, और दोस्तों शहरयार की उन गजलों को याद करेंगे जो कि इतनी मशहूर हैं, सुनने के बाद एकदम आप चौंक जाते हैं कि अच्छा, ये शहरयार साहब की लिखी हुई हैं। कराऊंगा उन गजलों से भी आपका तारुफ करवाऊंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। देखिए दोस्तों, शहरयार का जिक्र करते ही कोई भी पूछ सकता है कौन शहरयार, और जब कहें कि उमराओ जान के गीत, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, लिखने वाले शहरयार, तब सामने वाला कहेगा अच्छा वो शहरयार जिन्होंने लिखा है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, वो शहरयार जो कम बोलते थे मगर उनकी शायरी जनता के सिर चढ़कर बोलती थी, जिनकी शायरी को साहित्य अकेडमी ज्ञानपीठ सम्मानों से भी नवाजा गया, वो शहरयार वो उर्दू के चौथे साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला। उनके पहले फिराक गोरखपुरी, कुर्तुल एन हैदर और अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वो शहरयार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के बीच का पुल कहा जाता है, आज उन्हीं शहरयार के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूं, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अखलाक मोहम्मद खान यानी शहरयार साहब की बात हो रही है आज। और शहरयार साहब के हम पैदाइश की बात करें तो 16 जून 1936 को अलोनी जिला जो कि बरेली में पड़ता है, 1948 में उनके बड़े भाई का तबादला अलीगढ़ हुआ तो वो अलीगढ़ आ गए और वहीं के होकर रह गए। घर परिवार में कोई शायर नहीं था, पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे और जाहिर है बेटे को भी पुलिस डिपार्टमेंट में देखना चाहते थे। अखलाक खान को पढ़ाई के दौरान हॉकी से जुनून की हद तक लगाव था। हॉकी बहुत पसंद थी शहरयार साहब को, मगर जिंदगी में कोई आया और शायरी भी दाखिल हो गई। शहरयार ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि अलीगढ़ में उनकी मुलाकात खलीलुल रहमान आजमी से हुई। आजमी की दोस्ती ने उन्हें शायरी से मिलवाया। खलीलुल रहमान के ही कहने पर अखलाक खान ने बतौर शायर शहरयार नाम अपनाया। ये तो है उनके नाम की दास्तान, लेकिन दोस्तों शहरयार साहब की एक से बढ़कर एक गजलें, नज़में और वो गीत जो हमारे भारतीय सिनेमा में आज भी गूंजते हैं, उन सब की बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, चुनिंदा मंचों पर अपनी शायरी से मुखर रहने वाले शहरयार निजी जीवन में खामोश इंसान थे, बातचीत थोड़ी सी कम करते थे, मुशायरों में भी कम ही जाया करते थे। उमराव जान जैसी फिल्म के गाने लिखकर रातों रात चर्चित हुए, लेकिन शहरयार को धुन पर गीत लिखना रास नहीं आया और वो अदब की दुनिया में ही रहे। डॉक्टर प्रेम कुमार की किताब बातों मुलाकातों में शहरयार ने अपने जीवन के कुछ राज खोले हैं। लेखन के शुरुआती दौर के बारे में बताते हैं कि जब मैंने तय किया कि मुझे थानेदार नहीं बनना है तो घर से अलग होना पड़ा। तब मैं खलीलुर रहमान के साथ रहने लगा। शुरू में मेरी जो चीजें छपी एक्चुअली वो मेरी नहीं है, बाद में अचानक कोई मेरी जिंदगी में आया। नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है। कहते हुए शहरयार उस व्यक्ति के बारे में अपनी बात को छुपा जाते हैं। उनकी संवेदनशीलता इस कहने में झलकती है कि इस उम्र में मैं कितना ही रुसवा हो जाऊं, किसी और को रुसवा नहीं होने दूंगा। ऐसा मिजाज था शहरयार साहब का, और सबका सम्मान करते थे और लोग भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। और उनका कलाम जो कि लोगों के सिर चढ़ करके बोलता था, उसी कलाम से उनको हर जगह इज्जत मिलती थी। शहरयार साहब के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, शहरयार साहब का जब कोई इंटरव्यू ले रहा था तो बहुत सारी बातें अपनी जिंदगी से संबंधित कर रहे थे, लेकिन एकदम अचानक किसी एक जगह पर आकर के ठहर गए और कहने लगे, नहीं भाई, कुछ बातों पर अगर पर्दा पड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। किसी को बदनाम करने से, रुसवा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो किसी का राज है, उस राज को राज रहने दो। वो इस प्रसंग को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि तब दुनिया मुझे अजीब लगने लगी और फिर मैं शायरी करने लगा। बीए के आखिरी साल में शेर लिखने की रफ्तार तेज हो गई। एमए में साइकोलॉजी में दाखिला लिया और जल्दी ही एहसास हुआ कि फैसला गलत लिया है। दिसंबर में नाम कटा लिया, फिर 4-6 महीने केवल शायरी ही शायरी की, और ऊपर वाला भी मुझ पर रहम करता रहा। कोई बड़ी ताकत है जो मेरी चीजों को तय करती रही है। उर्दू की बहुत अच्छी मैगजीन में मेरी चीजें छपने लगी, तेज रफ्तारी से सामने आया, फिर एमए उर्दू में ज्वाइन किया। दोस्तों, साफ गोई देखिए कि शहरयार जोर देकर स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं कि वो मार्क्सवादी हैं, मगर एक परम सत्ता पर भरोसा करते हैं। शहरयार निजी जीवन के मामले में कम ही बोले हैं। शहरयार की अपनी बेगम यानी कि नजमा के साथ मन नहीं मिला था। उनके एकांत और खामोश मिजाजी के पीछे इसे भी एक कारण माना जाता है। पत्नी नजमा के लिए वो क्या सोचा करते थे, उनकी नज्म नजमा के लिए में दिखाई देता है। अब वो जो नज्म है उसमें उन्होंने किस तरह से अपनी पत्नी का जिक्र किया है शायराना अंदाज में, वो अंदाज भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि शहरयार साहब ने एक नज्म लिखी थी जिसका नाम था नजमा, और वो नजमा के लिए यानी कि उनकी पत्नी के लिए थी। उसमें वो लिखते हैं, क्या सोचती हो दीवारे फरामोशी से उधर क्या देखती हो, आईनाए ख्वाब में आने वाले लम्हों के मंजर देखो, आंगन में पुराने नीम के पेड़ के साये में भैयू की जहाज में बैठी हुई नन्ही चिड़िया क्यों उड़ती नहीं, जंगल की तरफ जाने वाली वो एक अकेली पगडंडी क्यों मुड़ती नहीं, टूटी जंजीर सदाओं की क्यों जुड़ती नहीं, एक सुर्ख गुलाब लगा लो अपने जूड़े में और फिर सोचो। दोस्तों, शहरयार के मिजाज पर कमलेश्वर ने लिखा है, उन्होंने अपनी शायरी में मानवीय मूल्यों को सबसे आगे रखा। शायरी हो या अफसाना, शहरयार बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो लिखना है जमकर लिखो, और इतना लिखो कि अपने लिखे को भी जी भर के खारिज कर सको, जिससे साहित्य जो सामने आए तो खूबसूरत और असरदार बन सके। इसके साथ ही वो बहसों में ना हिस्सा लेते हैं और ना शरीक होते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपना सुकून खोना नहीं चाहते। ऐसे थे शहरयार साहब। जब

के इलेक्शन का मसला हो। उमराओ जान के गानों ने हमेशा मदद की है। मुशायरा चाहे देश का हो या विदेश का, शहरयार का सिर्फ एक ही परिचय काफी होता था, उमराओ जान के गीतकार। लेकिन दोस्तों, फिल्म उमराओ जान के अलावा भी उन्होंने गीत लिखे हैं, गजलें लिखी हैं, नज्में लिखी हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं उस शहर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं जिनको जाना जाता है शहरयार के नाम से। फिल्म उमराव जान में एक से बढ़कर एक गाने इन्होंने लिखे। बाद में दामन, फासले, द नेमसेक, इन फिल्मों में भी इन्होंने गीत लिखे, मगर मन फिल्मी दुनिया में रमा नहीं। इसका कारण शहरयार ने यूं बताया कि मेरा एक उसूल है, मैं किसी ऐसी फिल्म में गाने नहीं लिख सकता जिसमें गाना कहानी का पार्ट ना हो और जिसमें पोएट्री की गुंजाइश ना हो। हम दनादन धुन पर तुरंत नहीं लिख सकते। उन्होंने बताया था कि पिता का कहना था कि ये तो आदमी को मालूम नहीं हो पाता कि वो क्या कर सकता है, लेकिन ये बहुत आसानी से मालूम हो जाता है कि वो क्या नहीं कर सकता। जब ये मालूम हो जाए तो ऐसा काम करने के बाद सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, शहरयार ने जान लिया था कि वो क्या कर सकते हैं और ये जानकर उन्होंने जो किया उसने उन्हें शायरी का शहरयार यानी बादशाह बना दिया। और आज उसी बादशाह के बारे में आपसे मैंने बहुत सारी बातें की हैं, पर वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता, इसलिए अब आपका दोस्त फहीम चाहता है आपसे आज्ञा। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों, आज जिस किसान के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, उनका नाम है रोशन लाल विश्वकर्मा, जिन्होंने किसानों के लिए लगा दी मशीनों की कतार। वो खुद अपनी जुबानी बताते हैं कि गांव में मेरे दादाजी भैया लाल किसानी के साथ साथ लोहारी का काम भी किया करते थे। उनके छोटे बेटे धनीराम के यहाँ 1967 की 8 मार्च को जन्म हुआ। बड़े पिताजी भी लोहारी का काम किया करते थे। दोनों के बीच 18 एकड़ असिंचित जमीन थी। दादाजी के निधन के बाद उन्हें 9 एकड़ जमीन मिली। पारंपरिक खेती से जैसे तैसे घर चलता था। बहनों की तो कम उम्र में ही शादी हो गई थी। 8वीं पास करके गांव से 4 किलोमीटर दूर आगे की शिक्षा के लिए दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ पिताजी को खेती में सहयोग देता, गाय बैल चराता। आगे बढ़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर के कॉलेज में दाखिला लिया। 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से खेती के काम में जुट गया। और आगे वो बताते हैं कि 1990 में मेरी शादी कमला बाई से हो गई। आय बढ़ाने के लिए मैं खेती में नए प्रयोग करने लगा। स्प्रिंकलर सेट, छोटा ट्रैक्टर, थ्रेसर, इन सब चीजों को खरीद लिया। मोटर वाइंडिंग का काम भी सीख लिया। काम अच्छा लगा। कृषि यंत्र रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। 3 साल के बाद दुकान बंद करके जबलपुर में कार रिपेयरिंग का काम भी सीखा। इधर उधर भटक कर पिताजी से मशवरा लेकर गन्ने की खेती में नवाचारों में लग गया। अब तो आमदनी बढ़ानी ही थी, लेकिन आमदनी बढ़ी कैसे, ये दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा और बात करूंगा किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा बताते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए मैं कई तरह की जुगाड़ों में जुट गया था। 1999 में निश्चित समय में सिंचाई के लिए टाइमर विद ऑटो स्विच का निर्माण किया। इसके बाद आलू की तरह गन्ने की सिर्फ आंख निकालकर खेत में लगाने का परीक्षण किया। एक साल में स्वस्थ पौध तैयार हो गई। पूरे राज्य में इसे लगाने के लिए यंत्र बनाने की प्रेरणा मिली। और अगर मैं 2006 की बात करूं तो 2006 में हाथ से चलने वाली शुगर केन बर्ड चिपर मशीन की मार्केटिंग शुरू की। इसका पेटेंट भी जल्दी मिल गया। करीब 2000 मशीनें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दुबई, ब्राजील यानी इन देशों और गन्ना उत्पादक प्रदेशों में गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों, कृषि क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है रोशन लाल विश्वकर्मा ने। लेकिन इनसे जुड़ी और भी बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को प्रेरित कर सकती हैं। वो सारी बातें आपको बताता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रख कर दूसरों का पेट भरता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा का, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने गन्ने की आंखें निकालने का यंत्र तैयार किया था। अब आप कहेंगे कि गन्ने की आंखें? अरे भाई, जो आप देखते हैं, जो जॉइंट होते हैं, उनको गन्ने की आंखें कहते हैं। उन्हीं आंखों को निकालने के लिए रोशन लाल विश्वकर्मा ने एक यंत्र ईजाद कर दिया। 3 किलो की ये मशीन 1600 रुपए की है और इस यंत्र से गन्ने की चंद्राकार आकार की 250 से लेकर 300 आंख प्रति घंटे निकाल ली जाती है और निकाली गई आंख से पॉली बैग में पौधे तैयार करके उन्हें सीधे खेत में लगा दिया जाता है और जो बचे हुए गन्ने होते हैं उनका उपयोग गुड़ शक्कर बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यंत्र में गन्ने की मोटाई के मुताबिक समायोजन व्यवस्था है। यंत्र में स्प्रिंग और लंबा हैंडल होने से थकान कम होती है और वो बताते हैं कि इस यंत्र के लिए मुझे 2009 में NIF का प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस तरह से दोस्तों, रोशन लाल ने कृषि क्षेत्र में कुछ अलग काम करके कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया है और अपने काम से लोगों को प्रेरित भी किया है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। दोस्तों, किसान वैज्ञानिक रोशनलाल विश्वकर्मा कहते हैं कि अनवरत जारी हैं कृषि में नवाचार। वो कहते हैं कि 2010 में मैंने पांव से चलने वाली मशीन बनाई थी। वो प्रति घंटे गन्ने की 500 से 600 आंखें निकाला करती थी, लेकिन 2014 में पावर ऑपरेटेड मशीन बनाई और 80 किलोग्राम की ये मशीन एक घंटे में 2000 आंखें निकालती है और मेरे जरिए बनाई गई मोटर ऑपरेटेड शुगर बड चिपर सहसेट कटर 1 HP मोटर से चलती है। ये प्रति घंटे 1000 से 2000 आंख निकाल देती है। 1000-2000 टुकड़े प्रति घंटे काटे जा सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि काटे गए टुकड़ों में आंखें क्षतिग्रस्त नहीं होती, जबकि प्रचलित पद्धति में 10-15% तक नष्ट होती हैं और अन्य कृषि यंत्र शुगर केन लीफ स्ट्रीफर शुगर केन बगास ड्रायर यानी कि इन सब को भी विकसित किया है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। दोस्तों, आज बात हो रही है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में, जिन्होंने तकनीकी क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किसानों के लिए लगा दी मशीनों की कतार, और जो गन्ना होता है उसकी जो आंखें होती हैं उसके लिए एक मशीन तैयार कर ली। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। उनका कहना है कि भूसे से सानी बनाने की मशीन, डॉग ट्रीटमेंट बॉक्स, ग्रामीणों की रोजमर्रा सामग्री की सही तुलाई का वितरण के लिए सप्लाई यंत्र, मॉडिफाइड हैंड व्हील हो, पैडी मार्कर, एंटी लॉक और गाजर घास की कटाई के लिए भी यंत्र बनाए हैं। और आगे बड़े ही उत्साहित होकर के वो बताते हैं कि मैंने पावर इंजन से चलित गोबर से गमले बनाने वाली मशीन का आविष्कार भी किया है। गोबर से बने गमलों में पौधों को पूरे पोषक तत्व देने की उर्वरा शक्ति होती है, और प्लास्टिक या सीमेंट के गमलों में पौधा अंदर से सिकुड़ता चला जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, वो ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया आज की बहुत बड़ी ताकत है, अगर आप इसका सही से इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि सोशल मीडिया का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। पहले मैं गांव के लोगों से बात नहीं कर पाता था, अब रोजाना 8 से 10 प्रदेशों के लोगों से मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल पर बातचीत बहुत आराम से कर लेता हूं। और कई प्रदेशों के लोग गांव में घर तक तकनीक देखने आते हैं। मैं भी हर साल कई बड़ी कृषि गोष्ठियों में जाता हूं और बहुत कुछ सीखकर वापस आता हूं। तो दोस्तों, इस तरह का अंदाज है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा का। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिसने कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया हो तो उसको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी तो किया गया होगा। उन सम्मानों की बात होगी, उन पुरस्कारों की बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों, बात हो रही है किसान वैज्ञानिक रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। बातें तो मैंने आपको बहुत सारी बता दी हैं, लेकिन अब बारी है उनके सम्मानों की। तो वो अपने सम्मानों की बात खुद अपनी जबानी बताते हैं और कहते हैं कि गन्ना उत्पादकों के लिए विकसित यंत्रों के लिए 2005 में पहली बार ग्वालियर में सम्मानित किया गया और 2010 में ICAR ने जोन 7 में जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार प्रदान किया और 2012 में 10 लाख रुपए सम्मान राशि का राष्ट्रीय नबार्ड अवार्ड भी मिला। 2015 में 1 लाख रुपए सम्मान राशि का NIF का राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में मिला और 2018 में पैसिफिक विश्वविद्यालय और भाकिसन ने उदयपुर में खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया। तो इस तरह से बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। इन्हीं के बारे में कुछ और भी बातें हैं, बल्कि उनका एक संदेश है सभी किसान भाइयों के लिए। अब वो संदेश क्या है, कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी बातें कर ली हैं रोशन लाल विश्वकर्मा के बारे में। अब जाते जाते उनकी तरफ से सभी किसान भाइयों के लिए एक संदेश है। वो कहते हैं कि उन्नत तकनीक अपनाकर ही समय अनुसार खेती करनी चाहिए। खेती में ही सबसे ज्यादा स्वतंत्रता और सम्मान है। इससे खुद का, गांव का, देश का फायदा होता है। अगर किसान मन में ठान ले कि उसे कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी किसान वैज्ञानिक जैसा सम्मान पाना है तो ये संभव है। मेरे अलावा देश के बहुत सारे किसान ऐसा कर चुके हैं और आज सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। जाते जाते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड, फील लाइव। हमारे शो बहुत स्पेशल होता है, रीजन बीइंग यहां पर हम तो स्किल्स की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो टॉक अबाउट अ फ्यू मेजर थिंग्स जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। ये माइट बी आपके आसपास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको एड्रेस करने का काम इस शो में हम लोग करते हैं। आज अगेन वी आर हेयर विद अ स्पेशल गेस्ट विद अस, और आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है बिकॉज वी हैव मिस्टर धीरज शर्मा हु इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब अमूमन आप अगर हमारे शो सुनते हैं तो आपको पता होगा कि भैया कितने सारे फ्रॉड्स हमारे आसपास होते हैं, लोग ताक लगाए बैठे हुए हैं कि कैसे एक ब्रेक थ्रू मिले आपके फोन का, आपके व्हाट्सएप का, आपके वॉलेट्स का, और किस तरीके से आपके फंड्स को गायब कर दिया जाए। बट यहाँ पर आज के शो में हम यही एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, प्राइमरीली डिजिटल अरेस्ट। अगेन हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, कई बार ये बात बता चुके हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है कोई ऐसी टर्म इंडिया में, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टिंग एक एंटिटी है, स्टिल लोग उसका विक्टिम बन जाते हैं। सो विल एड्रेस ऑल दीज थिंग्स कि कैसे आपका फोन हैक हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, आपके एंड पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फोन के एंड पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। ऑन दिस नोट विल बिगिन द शो, आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ वैल्यूज मिलने वाली है। बट फर्स्ट विल वेलकम मिस्टर धीरज शर्मा। हाय सर, वेलकम टू आवर शो।
1: थैंक यू सागर टू ब्रिंग मी ऑन दिस शो, दिस इज यू नो वेरी डिलाइटफुल फॉर मी टू टॉक अबाउट द साइबर थ्रेट्स वी हैव नाउडेज।
0: सो अमेजिंग सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। I would like to start with very basic question. When we talk about cyber threats, इसमें primarily गलती किसकी होती है, यूजर की होती है, फोन की होती है, क्या वो चीजें हैं जो कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं?
1: कॉमन मिस्टेक इसमें सागर जो होती हैं वो होता है कि हम पैनिक में आ जाते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल फेयर है लेकिन इसमें उससे ज्यादा साइकोलॉजिकल जो रोल है वो ज्यादा प्ले करता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी केस को अगर आप एसेस करोगे तो उस केस के अंदर आपको सबसे ज़्यादा यूज़र का जो प्रेशर है, डर है, फियर है, राइट, उसका लालच है, वही उसको हेल्प करता है, हैकर को हेल्प करता है उसको हैक करने में। क्योंकि टेक्नोलॉजी बिना आपकी मदद के, बिना आपकी मर्जी के उसको आपके डिवाइस का एक्सेस नहीं दे सकती, कहीं ना कहीं आप ही अलाउ करते हो कि वो आपको हैक करे। उसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूं कि टेक्निकल रोल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है साइकोलॉजिकल रोल। वो आपके ऊपर एक प्रेशर बनाएगा, आपको कुछ थ्रेट्स देगा और उसकी हेल्प से वापसे आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर लेगा।
0: कुछ कॉमन थ्रेट्स क्या हैं साइबर थ्रेट्स?
1: अगर मैं कॉमन थ्रेट की बात करूँ, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन कहा कि आज की डेट में हमारे पास कई तरह के साइबर थ्रेट हैं, जिसमें से डिजिटल अरेस्ट एक थ्रेट है। जिसमें मैं अगर आपको एक रिसेंटली एक केस बताऊं, जिसमें एक लड़की थी, हमारी फरीदाबाद की ही लड़की थी, वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, तो उसको एक दिन एक फ़ोन आता है कि आप, उसका नाम बोला जाता है कि आपका नाम सो एंड सो है, आपके पास आपका आधार नंबर ये है, बोलते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेस हैं कि आप किसी ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हो। लड़की घबरा जाती है, उससे बोला जाता है कि आपका ये पासपोर्ट नंबर है, ये डिटेल्स हैं, आप उसकी सारी डिटेल वेरीफाई कराई जाती हैं, वो सारी डिटेल वेरीफाई करती है कि हाँ मेरी सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट पे हो, आप मूव नहीं कर सकते हो, आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, अपने फोन को, मोबाइल को आप चार्ज पे लगा लो, और वो बहुत घबरा जाती है। उसके बाद उससे बात करी जाती है, नेगोशिएट किया जाता है, कई घंटों तक उसको डराया जाता है, और क्योंकि उनको पता था, हैकर को पता था कि उसके अकाउंट में पैसे हैं और तकरीबन 3.5 लाख रुपये उससे 2 या 3 ट्रांजेक्शन में वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। शाम तक जब वो दरवाज़ा नहीं खोलती है तो घर वाले थोड़े पैनिक होते हैं, वो बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं, पड़ोस से लोगों को बुलाते हैं और दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है, लड़की बहुत डरी हुई, सहमी हुई बैठी रहती है, जब उससे बात करी जाती है तो पूरा केस निकल के सामने आता है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म कराया जाता है, पुलिस आती है, जो यहाँ के SP थे उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वहाँ पहुँचा, तो हमने जो डायग्नोज किया वो ये था कि लड़की का मोबाइल हैक था, उसकी सारी ट्रांजैक्शन, सारी डिटेल्स उनके पास, हैकर्स के पास थी, और उससे वो आइडिया लगा पा रही थी कि वो किस स्टेट ऑफ मोड में है, क्योंकि लड़की के कैरियर का सवाल था। उसने बहुत साल शायद मेहनत करी थी कनाडा जाने के लिए और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इसी डर से, इसी फियर से कि कहीं उसका कनाडा का वीज़ा रद्द ना हो जाए, वो पैनिक में आने के बाद उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अगर मैं इस केस में कहूँ तो इस केस में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है रीज़न, वो होता है अनअवेयरनेस, क्योंकि हम बहुत सालों से इस पर बात कर रहे हैं राइट, साइबर थ्रॉट पर, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता है। कई बार लगता है कि मुझे पता है, मैंने 5 बार सुना है तो सबको पता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों को अगर हमारी बात होती है, लोगों को नहीं पता है। लोग बहुत से लोग हैं जो रेडियो नहीं सुनते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। अब इस पूरे केस में क्या होता है कि वो आपको प्रेशर बनाते हैं, ये सारे प्रेशर का गेम है। उनको पता है, ऐसा नहीं है कि वो रेंडम किसी को पकड़ के अटैक करेंगे और आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, वो ट्रेस करते हैं आपको, वो बहुत दिनों से आपको ट्रेस कर रहे होते हैं, वो आपकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं, वो टारगेट करते हैं ग्रुप ऑफ यूजर्स, उसमें से वो फाइंड आउट करते हैं कि हमें किसी को फाइनल करना है, कैंडिडेट को फाइनल करते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, समझते हैं कौन डर सकता है, किसी के पास पैसा है अकाउंट में, किस परिस्थिति में है, इसका क्या केस है जिससे उसको डराया जा सकता है, वो सारा डायग्नोज करने के बाद सारा

0: इसके थ्रू आपने हमें ये चीज बताई, बट यहाँ पर आप जो बोल रहे हो कि हमारे फोन को पूरा ट्रेस किया जाता है, क्या मैं पता लगा सकता हूँ किसी तरीके से कि मेरे फोन को ट्रेस किया जा रहा है या नहीं?
1: देखिए, आज की टाइम में फोन आपका जनरल, मैं कहूँगा कि सबका फोन मैक्सिमम हैक हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार फेसबुक का डेटा हैक हुआ है, राइट? और जनरली मैक्सिमम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। इवन क्या होता है कि आप एज ए यूज़र, आपके पास बहुत सारे लिंक आते हैं। वो लिंक आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिशिंग अटैक के थ्रू आते हैं, जहाँ पर वो एक अट्रैक्टिव ऑफर देके आपको एक लिंक देता है, वो आपको ट्रेस करते हैं। ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा कि आप घर में किसी से बात कर रहे हैं, बात करते वक्त आपने एडिडास शूज़ का बात करा कि मुझे एक एडिडास का शूज़ खरीदना, मैं देख रहा हूँ, और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे धीरे एडिडास के आपके पास ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों होता है? आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन आपको 24 आवर ट्रेस करती है कि आप क्या बात करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या आपका टेस्ट है, क्या आपका शौक है, वो सारी चीज़ें असेस करती हैं। वो डेटा कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के पास जाता है, और जो जो एप्लीकेशन कंप्रोमाइज हो जाती है, उस एप्लीकेशन का सारा डेटा उनके पास पहुंच जाता है। कई बार हैकर्स अपनी एप्लीकेशन भी बना के धीरे धीरे यूजर्स के उसमें लिंक के थ्रू या किसी और थ्रू इंस्टॉल कर देते हैं। तो इन सब के थ्रू आपका जो मोबाइल है उसका एक्सेस यूजर ले सकता है। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं आज की डेट में जिनके थ्रू आपका जो अकाउंट है, जो मोबाइल है, उसका एक्सेस लिया जा सकता है।
0: और ये आप कह रहे हो कि मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता है, वो मुझे डराएंगे, पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे, मर्जी मेरी ही होगी, चाहे सिचुएशन कोई भी बनाई जाए,
1: राइट?
0: प्रेसिंग सिचुएशन होगी मेरे सामने और मैं डर के उस चीज में एक्ट वैसे करूंगा।
1: बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। एक केस था जिसमें एक यूजर को लिंक आया, ठीक है, उस यूजर ने उस लिंक पे क्लिक किया, उसको

0: की बन जाएगी। अब क्या हुआ, उसने वेबसाइट पर ध्यान दिया, अपना आईडी डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन करा और कुछ दिन बाद उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में ओटीपी आता है और मेरा अकाउंट सेफ है। मैं मानता हूँ आपका अकाउंट सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार हमारी खुद की गलतियों से वो अकाउंट अनसेफ हो जाता है। हैकर्स ना कभी, देखो ये फिल्मी नहीं है, ये जो एनवायरनमेंट है वो फिल्मी नहीं है कि आदमी आया, एक चुटकी बजाई, किसी ने कुछ प्रेशर दिया, एक लंबे वाला आदमी आया और उसने लैपटॉप पे 5-10 मिनट की दबाई और हैक हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये एक लंबी एक्सरसाइज है। वो लोग आपको पूरा एसेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जब भी आप अपने लॉगिन ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, दूसरा होता है ओटीपी। तो वो दो पार्ट में इस पे काम करते हैं। पहले आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड लेंगे, राइट, फिर उसके बाद वो लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मोबाइल को हैक करके वो पासवर्ड या तो आपको चुरा लेंगे या उस पासवर्ड को बाईपास कर देंगे, राइट। तो और ये कोई एक टेक्निक नहीं है, एक ही तरीके से होता है। ऐसा 50 तरीके से हो सकता है, ऐसे 50 तरीके होते हैं जिससे आपको बाईपास किया जा सकता है। आपके अकाउंट जो SMS आएगा आपके पास, वो SMS आप पे ना आगे किसी दूसरे मोबाइल पे चला जाएगा, वो आपका ही क्लोन होगा। या आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं मोबाइल पर तो उनको पता पड़ रहा है क्या टाइप हो रहा है। आपके कुकीज़ होते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं अपने ईमेल आईडी पासवर्ड कुकीज़ में सेव रखते हैं। लोगों को लगता है मैं इतने पासवर्ड याद नहीं रख सकता, तो सेव एज कर देते हैं, एक कुकीज़ में अपने पासवर्ड सेव कर देते हैं। वो कुकीज़ किसके पास जाएगा, उस पासवर्ड, आपका आईडी पासवर्ड सब उसमें मिल जाएगा उसको। बहुत आसान है, आपके लिए कठिन है लेकिन हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सबके लिए भी कहीं ना कहीं आपको ही अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपके सिस्टम में घुसे। और वो उसका तरीका सिर्फ वही है, या तो वो आपको डराएंगे या आपको कोई लालच देंगे और आप किसी गलत लिंक पे आपको क्लिक कराएंगे।
1: सो इंटरेस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग की कॉन्वर्जेशन चल रही है, जो मुझे लगता है हम सब लोग रिलेट कर सकते हैं इस एक चीज़ से कि हमारे एंड पर क्या गलतियां होती हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

अपने परिवार को सारी खुशियां देते हैं, अपने बच्चों को सारे गुण, सारी अच्छी चीजें सिखाते हैं। लेकिन क्या आप अपनी तंबाकू की आदत अपने बच्चों को देना चाहोगे? नहीं ना, तो आज ही से तंबाकू को ना कहें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज हमारे साथ हैं मिस्टर धीरज शर्मा, और धीरज सर से हम लोग बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, बिकॉज ही इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अभी तक हमने बेसिक्स जाने हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं और कैसे बाईपास किया जा सकता है हमारे फोन की, हमारे सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसको। नाउ विल डिकोड फर्दर। सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, प्लीज मुझे ये बताइए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि किसी भी तरीके से मेरे सिस्टम में या मेरी किसी आईडी में या मेरे जीमेल में मेरे फोन में कोई हैकर ना जा पाए, उनके वो ब्रेक थ्रू ही ना मिले, ऐसा कुछ किया जा सकता है मेरे एंड पे एज अ यूजर?
1: देखिए, आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे हम उसको हम बेसिक हार्डनिंग बोल सकते हैं या बेसिक सिक्योरिटी बोल सकते हैं। पहला तो आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करते रहिए, राइट, पहला। दूसरा, आपके पास, मैं सबसे बात ये बात कहता हूँ सारे यूजर्स से, सारी ट्रेनिंग्स में, कॉर्पोरेट में काफ़ी ट्रेनिंग्स करता हूँ मैं, कि मोबाइल में एप्लीकेशन फ्री है। और ये देखो, हर यूज़र इसको रिलेट कर पाएगा कि फ्री की चीज़ इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लोग यू नो अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। सो हमको क्या चाहिए कि आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन आपके लिए जरूरी है, जिन एप्लीकेशन के बिना आपका काम नहीं चल सकता, आप उन्हीं को रखें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई एप्लीकेशन टाइम बींग के लिए इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद उसको आप इंस्टॉल कर दो कि लगता है कि आपको यूज नहीं करनी है फर्दर। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, कुछ लोग के घर में बुजुर्ग होते हैं जिनको पेंशन आती है, राइट, पेंशन में ईयरली आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, लोग उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की एप्लीकेशन भी होती है, राइट। आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है अपने सिस्टम में, जो कि एक्टिविटी साल में एक बार होनी है, लेकिन हम उसको वापस इंस्टॉल नहीं करते। तो हमको ऐसी एप्लीकेशंस जिनका हमें यूज नहीं करना है और टाइम बींग के लिए यूज है, तो यूज करने के बाद उनको अनइंस्टॉल कर दो। तीसरा टिप्स ये है कि आप जो भी एप्लीकेशन आपके इंस्टॉल करते हैं उसको रेगुलरली आप अपडेट करते रहो, आप उसमें देखते रहो कि किसी एप्लीकेशन का अपडेट तो नहीं आया है। एंड्रॉयड में, एप्पल मैक में, सब में एक फीचर होता है कि आप जाके चेक कर सकते हो किस एप्लीकेशन का कौन सा अपडेट आया है, आप उसे अपडेट करें। तीसरा ये है, आपको ये देखना है कि आपने किस एप्लीकेशन को किस लेवल का एक्सेस दिया हुआ है, और आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन को इस एक्सेस का जरूरत नहीं है, तो आप उसे डिसेबल कर दीजिए। हो सकता है किसी टाइमिंग आपको जरूरत रहे किसी भी एक्सेस की, तो आप उस एक्सेस को टाइमिंग सिर्फ उसे दीजिए और उसके बाद डिसेबल कर दीजिए। अगर आप ये बेसिक जानकारियां अपनी नॉलेज में रखेंगे और बेसिक सेटिंग आप करके रखेंगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है हैक होने की वो कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाएगी, क्योंकि और बहुत तरीके हैं करने के, पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर सिक्योर रहेगा तो आपके चांसेस कम है। और सबसे बड़ा, सबसे बेसिक नियम जो आपकी लाइफ में, वो ये है कि आपको क्लिक करने से बचना है, आपको अनअवॉइड अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आप क्लिक जितना करेंगे उतना आप अपने रिस्क को बढ़ाएंगे। जब तक आपको लगता नहीं ये जरूरी है मेरे लिए, किसी मेरे नॉन सोर्स ने आपको भेजा है आपको कोई लिंक, आप सिर्फ वही लिंक ओपन करिए, अदरवाइज जस्ट इग्नोर द लिंक्स। कई बार मैंने देखा है कि अमेजोन का एक मैसेज आता है कि अमेजोन पे एक शूज जो 10,000 रुपए मिल रहा था 1,000 रुपए मिलता है। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा प्रोबेबिलिटी होता नहीं है कि वो 10,000 की चीज 800 में मिल रही हो, 1,000 रुपए मिल रही हो। और अगर मिल भी रही है, प्रोबेबिलिटी है, तो आप अमेजोन की साइट पे जाके भी तो चेक कर सकते हैं ना, डायरेक्ट उस लिंक से ही जाएंगे, जरूरी तो नहीं है आपको तभी मिलेगा। आप अगर वो ऑफर है तो अमेजोन की वेबसाइट पर भी वो ऑफर है, ऐसा नहीं है कि उस लिंक पे ही ऑफर है। तो यूजर को थोड़ा वेट करना चाहिए, अपने लालच को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी है, तो आप अमेजोन की एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर है, आप वहां जाइए, वहां से आप उसे सर्च करिए और देखिए वो ऑफर है कि नहीं।
0: सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। सच बात है कि अगर आपको कोई ऑफर कोई कंपनी दे रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि छुपा के आपको देगी। अगर वो दे रही है, तो जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ी यूएसपी उस कंपनी की उस टाइम के लिए बनेगी। सो यू शुड चेक इट आउट ऑन दैट वेबसाइट। अगला सवाल मेरा रहेगा अबाउट पब्लिक वाईफाई। ये बहुत बार हम सुनते हैं कि इज इट सेफ टू यूज पब्लिक वाईफाई?
1: देखिए पब्लिक वाईफाई में जो एक रिस्क है वो ये बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि जब आप पब्लिक वाईफाई एक्सेस करते हो तो पब्लिक वाईफाई आपके लिए फ्री नहीं होता है, हैकर के लिए भी फ्री होता है। हैकर उस नेटवर्क में स्पूफ करके बैठ जाता है और जब आप उस नेटवर्क कनेक्ट करते हो तो वो उस कनेक्शन के थ्रू एक मालवेयर आपके मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकता है आसानी से। और वो जो मालवेयर जो वो इंस्टॉल करेगा उसको आज यूज नहीं करेगा, वो उसको आपको ट्रेस करने के लिए यूज करता है। अभी मैंने जैसे अपने डिस्कशन में बताया कि जो हैकर्स होते हैं वो आपको लंबे समय तक ट्रेस करते हैं, आपको एनालिसिस करते हैं, फिर आप प्लान करते हैं आप पे अटैक का। तो वो कैसे ट्रेस करते हैं? वो ऐसे ट्रेस करते हैं, वो साइलेंटली किसी लिंक के थ्रू, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, कहीं पर आपने वाईफाई एक्सेस किया जो अनसिक्योर था, उसके थ्रू आपके सिस्टम में एक छोटा सा मालवेयर डाल देंगे और उसके थ्रू आपका डेटा धीरे धीरे धीरे धीरे चुराते रहेंगे। जरूरी तो नहीं है ना कि आज आपने एक मालवेयर मैंने आपके सिस्टम में डाला, आज ही आपने लॉगिन कर लिया बैंक की साइट पे, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है आप 15 दिन बाद लॉगिन करो, हो सकता है आप 20 दिन बाद लॉगिन करो, तो मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप वो डेटा जो मैं चाहता हूं आप लॉगिन ना करें। आप लॉगिन करोगे डेटा को मैं चोरी करूंगा, उसको चोरी करने के बाद मैं नेक्स्ट प्लान करूंगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी है, मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, कैसे ट्रांसफर करना है पैसा, और उसके लिए मुझे इस बंदे को कैसे स्पूफ करना पड़ेगा। फिर वो अलग अलग तरीके से आपको स्पूफ करने की कोशिश करता है, हो सकता है कि एक बार में आप बच जाओ, वो बच जाओगे नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ट्राई करेगा। तो ये एक कॉमन तरीका नहीं है लेकिन बचने के कॉमन तरीके हैं। जो बेसिक हार्डनिंग अगर आप करोगे तो आप 80% रिस्क को रिमूव कर दोगे, 20% फिर भी रहेगा लेकिन फिर भी आप 80% उसको रिमूव कर पाओगे।
0: आप कह रहे हो पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए।
1: पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, आज की डेट में मोबाइल बहुत सस्ता है, इंटरनेट बहुत सस्ता है, अपन में हॉटस्पॉट यूज करके कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं पब्लिक वाईफाई की आज के टाइम में कोई जरूरत है।
0: सो इंटरेस्टिंग। ऑन दिस नोट वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइफ।
2: सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

0: मैं अर्जय सागर शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यूथ। हमारे आज के मेहमान है मिस्टर धीरज शर्मा, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पर हम सर से बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स के बारे में, कि कैसे अपने डेटा को हम बचा सकते हैं, कैसे हम अपना फाइनेंसिस को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर खासतौर पर स्कैमर्स, हैकर्स, जितने भी आप टर्म सुनते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, इनसे कैसे अपना बचाव किया जाता है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे अननोन नंबर से फोटो आती है हमारे पास, ठीक है। मेरी आदत ये है कि मैं जब तक मैं उस नंबर को नहीं जानता, मैं अननोन फोटोज डाउनलोड नहीं करता हूँ। व्हाट आर द थ्रेट्स इन्वॉल्व, क्या हो सकते हैं वहां पर थ्रेट्स?
1: देखिए, व्हाट्सएप पे ना दो बहुत कॉमन थ्रेट आज की डेट में एक्टिव है।

0: आपको लगेगा किसी ने मजाक करा होगा, वैसे ही कार्ड आया होगा, लेकिन आपने जैसे वो कार्ड पे क्लिक किया, उसको डाउनलोड किया, आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि वो मालवेयर आपके सिस्टम में आ गया। अब वो मालवेयर एक तरह का इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, वो इन्फेक्शन अलग तरीके से काम करते हैं, ऐसे मालवेयर भी अलग अलग तरीके से काम होता है। तो हर हैकर का एक अपना पर्पज होता है मालवेयर को भेजने का, कि मैं किस पर्पज से इस मालवेयर को किसी यूजर के पास दे रहा हूं, तो वो उसी पर्पज को मालवेयर काम करेगा, राइट। अब उसमें क्या होगा कि जैसे आपने मूवमेंट आपने, और दूसरा क्या होता है, कई लोग स्मार्ट होते हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं क्लिक करेंगे, लेकिन उनके यहाँ पर ऑटो डाउनलोड इनेबल्ड होता है मोबाइल के अंदर। आप देखोगे व्हाट्सएप में एक फीचर होता है कि आप जैसे कोई आता है ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है, वो सबको वो फीचर डिसेबल्ड करना चाहिए। अगर आप फीचर डिसेबल नहीं करते हैं तो आप क्लिक भी नहीं करते हैं, वो तभी भी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो बेसिक ये है कि सबसे पहले आप व्हाट्सएप पर जाइए अभी इमीडिएटली, जो लोग मुझे सुन रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए और डिफॉल्ट जो डाउनलोड है उसको डिसेबल कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसको, अगर कोई ऐसा केस आता हमको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर आपका कोई नॉन है तो आपको कॉल करेगा, राइट, वो आपको बताएगा कि भाई मैंने आपको शादी का कार्ड भेजा है। और जो लोग खाली व्हाट्सएप पे आपको कार्ड भेज रहे हैं, आपको फोन भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके जाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। तो आपको ये सोचना चाहिए अगर कोई कार्ड भेज रहा है तो आपको फोन भी जरूर करेगा। तो जब आपका फोन करे और बताए कि आपको मैंने इस नंबर से कार्ड भेजा है, तब आप उसको ओपन कर सकते हैं। जब तक आपके पास ये श्योरिटी ना आए किसी नॉन बंदे ने मुझे कोई चीज भेजी, आप उसे डाउनलोड नहीं करेंगे। दूसरा एक और थ्रेट आ रहा है आजकल, क्या हो रहा है कि मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आता है। मैं भी आपको एक केस बताता हूं, एक बेंगलोर का केस है, वहां पर एक 45-50 ईयर के बीच का एक आईटी प्रोफेशनल थे, उनके पास एक वीडियो कॉल आया। और वीडियो कॉल में जैसे उन्होंने वीडियो कॉल उठाया, एक एक लेडी थी जो कंप्रोमाइज स्टेज में थी, राइट, और उन्होंने उससे बात करा, थोड़ी देर बात करा कि भाई आप क्या है, उन्होंने फ़ोन काट दिया थोड़ी देर बाद ही। लेकिन जैसे उन्होंने डिस्कनेक्ट किया, थोड़ी देर बाद एक बंदे का फ़ोन आता है, उसको बोलता है कि आपके कुछ फोटोज़ हैं हमारे पास जो आप एक लेडी के साथ कंप्रोमाइज स्टेज में हो, और ये जो आपके फोटोज हैं आपको वायरल कर देंगे। डर जाता है बंदा, राइट, डर जाता है। उसके बाद उससे कुछ पैसा मांगा जाता है, वो दे देता है एक बार दो बार तीन बार, लेकिन वो कुछ अपने खास दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कशन करता है जिनको पता था कि ये फ्रॉड है। वो उसको समझाते हैं कि ये फ्रॉड है, फिर वो पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन इसमें क्या एज ए यूजर आपको समझने की जरूरत है कि ये फ्रॉड होता है जहां पर एक वीडियो कॉल आता है, या आपको पता होगा तो आप उन वीडियो कॉल को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। और दूसरा, अगर एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाता है तो इमीडिएटली आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको बेसिक समझना चाहिए, राइट। पुलिस का जो डर है ना हमारे मतलब जहन में, वो कई बार हमको गलत करने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसलिए हमको पुलिस से डरना नहीं चाहिए, राइट। वो जो आप, अगर मैं कहता हूँ बुरी से बुरी स्थिति में जो आप पैसा हैकर को दे रहे हो, अगर आप वो हैकर को नहीं दोगे तो पुलिस आपको कहीं ना कहीं सेफ करेगी। आप उनके पास जाइए, पुलिस को बताइए। अगर आप गलत हो तभी आपको डरने की जरूरत है, आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इतने पुलिस वालों को जानता हूँ, उनके साथ दिन रात काम करता हूँ, लेकिन मेरी अपनी नज़र में मुझे पता है कि पुलिस वाले अगर आप गलत नहीं हो तो आपको परेशान नहीं करते हैं। जर्नली कुछ लोग हर जगह होते हैं गलत, हर पेशे में गलत होते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप एक फियर बना लें कि पुलिस वाले के पास जाऊंगा तो कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा नहीं है। उसके चक्कर में आप अपने साथ गलत करा लेते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आपको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए।
1: सो वंडरफुल। तो कोई भी अगर ऐसी चीज होती है, कोई भी फ्रॉड होता है जहां पर आपने कुछ गलत नहीं किया है, जस्ट इमीडिएटली गो टू पुलिस। 1930 हेल्पलाइन नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉल करके सहायता जो है वो ले सकते हैं। सवाल हालांकि और बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है, इसलिए शो को यहाँ पर हमें कंक्लूड करना होगा। तो प्राइमरीली आज हमने बात करी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की, क्या होते हैं, कैसे अवॉइड किया जा सकता है इन सिचुएशंस को। खासतौर पर सेक्सटॉर्शन एक टर्म है जहां पर सर ने अभी जिक्र किया कि एक वीडियो कॉल आएगा अननोन नंबर से। तो बेसिकली अननोन नंबर कुकीज में अपने पासवर्ड आईडी सेव करना, या अननोन लोगों को रैंडम एंटरटेन करना, या कोई लिंक आपके फैमिली ग्रुप में आया उसको फॉरवर्ड करना, उसके ऊपर क्लिक करना, ऑल दीज थिंग्स आर यू नो मेकिंग अ

0: ऐप अराउंड यू जिसमें आप शायद फंस सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सर ने दो तीन चीज़ें और बहुत अच्छी बताई कि कोई एप्लीकेशन अगर आपके यूज़ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप साल में एक बार किसी एक चीज़ को यूज़ करते हैं, एक एप्लीकेशन को, उसको हटा दीजिए, वो आपका स्टोरेज घेर रही है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो एक थ्रेट के तौर पर है, अगर उसको यू नो बाईपास कर लिया गया किसी एक पॉइंट पे, तो वो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को भी बाईपास किया जा सकता है बहुत ईजीली। दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ इट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट मत करिए अपने फ़ोन्स को। आपको लग रहा है वाईफाई फ्री है, लेकिन भूलिएगा मत, सबसे कीमती चीज़ उस टाइम पर उस फ्री वाईफाई के थ्रू जा सकती है, वो है आपका डाटा, आपकी सबसे प्रेशियस चीज़ें वो वहाँ पर लीक हो सकती हैं। टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। इट मीन्स अ लॉट टू अस कि आप यहाँ पर आए और अपना यू नो ये इंपॉर्टेंट टाइम हमें देकर ये सब बताया। थैंक यू
1: सागर, थैंक यू।
0: ऑलराइट दोस्तों, वी आर डन विद आवर क्वेश्चंस। ऑन दिस नोट वक्त है शो का कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों तक हम पहुँचा पाए। इसी नोट पर इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर दोस्त एंड दिस इज योर होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रेडियो सुने।
2: रेडियो मानव रचना।
3: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं सागर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है मुसाफिर हूं यारों। अपने वादे के अनुसार मैं फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में लेकर एक नया सफर। मुझे पर्सनली ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और सच में ट्रैवलिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है यार। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिन लोगों ने दुनिया घूमी है उन लोगों ने भी बताए हैं कुछ, और मैं भी उन फैक्ट्स पर एग्री करता हूँ। जैसे कि अगर आप 5,000 रुपए ट्रैवलिंग पे खर्च करेंगे या 5,000 रुपए के आप कपड़े या जूते लेंगे, तो आपको ट्रैवलिंग में जो 5,000 रुपए खर्च हुए हैं उनमें ज्यादा खुशी मिलेगी। ठीक ऐसे ही ट्रैवलिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाती है। दोस्तों, हम अपने दायरे में सोच पाते हैं जितने दायरे में हम बड़े हुए हैं और जितना दायरा हमने देखा है आज तक। लेकिन अब ट्रैवलिंग करेंगे तो अपने दायरे से आप बाहर निकलेंगे, अपने दायरे को बढ़ाएंगे। और ट्रैवलिंग यार सच में बहुत कमाल की चीज है। अगर आपको भी ट्रैवलिंग पसंद है और ऐसा ही कोई फैक्ट आप जानते हैं ट्रैवलिंग के बारे में, तो प्लीज हमें जरूर बताइए। बहुत ही आसान सा हमारा नंबर है 8010781078। तो अब आते हैं अपने आज के सफर पर। दोस्तों, आज हम सफर करने वाले हैं एक ऐसे शहर का, उस शहर के नाम के हर शहर में आपने पोस्टर्स लगे देखे होंगे। वेल, मैं बता ही देता हूँ, आज हम सफर करने वाले हैं राजस्थान के बीकानेर शहर का। मैंने कहा था ना, आपने जरूर कोई होर्डिंग या पोस्टर लगा देखा होगा। भाई, बीकानेर की इतनी सारी शॉप्स हैं हर जगह पर, कहीं बीकानेर मिष्ठान भंडार, कहीं बीकानेर वाला, कहीं फ्रॉम बीकानेर, कहीं टेस्ट ऑफ बीकानेर। टाउन तो ये छोटा है लेकिन बहुत कलरफुल है, और इस छोटे से कलरफुल टाउन में जब हम विजिट करते हैं और कुछ डिस्कवर करते हैं ना, तो जो फील है, वो एसेंस है ना, वो हमेशा हमारे साथ रहता है एक स्माइल बनकर। मतलब अभी तक हमने राजस्थान की जितनी भी सिटीज को एक्सप्लोर किया है, जहाँ का भी सफर किया है, वहाँ पर बहुत सारा क्राउड हमें मिलता है, लेकिन बीकानेर में कंपैरेटिवली बहुत कम क्राउड होता है, और इसी वजह से हम अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। बहुत सी चीजें हैं बीकानेर की जो बहुत फेमस है। यहाँ पर हर साल बहुत सारे मेले लगते हैं। यहाँ पर इवन कठपुतलियों का एक मेला लगता है। माना जाता है कि वो भगवान शिव और माता पार्वती का कुछ प्रतीक है। लास्ट टाइम हम गए थे जोधपुर, और बीकानेर जोधपुर से काफी जुड़ा हुआ है, और जुड़ा यूं हुआ है कि जोधपुर घराने में से ही एक फैमिली मेंबर ने बीकानेर को बसाया था, जिनका नाम था राव बीका, और बीकानेर को उन्होंने 1488 में बसाया था। अरे, यहाँ के लोग बहुत स्वीट होते हैं। मतलब अगर आप बीकानेर में निकलेंगे तो वो आपकी सच में हेल्प करेंगे बीकानेर सिटी को एक्सप्लोर करने में, और जो खातिरदारी वो करते हैं ना, सच में बहुत कमाल। मैं गया था तो मेरा ऐसा मन हो रहा था, मतलब मैं NCR छोड़ के बीकानेर में ही घर खरीद लूं और वहीं पे रह जाऊं। इतने प्यारे लोग मुझे वहां पर मिले। वैसे बीकानेर इंडिया का ऑफिशियल स्वीट एंड स्नैक टाउन है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो इंडिया की देसी फूड चेन है ना हल्दीराम्स, उसकी जड़ें भी बीकानेर से जुड़ी हुई हैं। आज भी वहां पर बहुत बड़ी फैक्ट्री है हल्दीराम्स की, और वो जो हल्दीराम्स के मालिक हैं वो भी बीकानेर से ही बिलोंग करते हैं। बीकानेर में हमें ऊँटों की अलग अलग ब्रीड्स देखने को मिलती हैं। बीकानेर में हमें ऊँटों का खेल भी देखने को मिलते हैं यार। और एक करणी माता का मंदिर है बीकानेर में, जिसमें बहुत सारे चूहे होते हैं। तो और भी बहुत कमाल कमाल की जगह है बीकानेर में, जहाँ पर हमें जरूर जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर, और आपको बताते हैं कि बीकानेर में हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाने पर हमें कैसा एहसास मिलने वाला है। सच में ये सफर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बीकानेर के सफर में हमारी पहली मंजिल का नाम है जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। जो भी टूरिस्ट जाता है वो जूनागढ़ फोर्ट जरूर जाता है। वैसे जूनागढ़ फोर्ट का ओरिजिनल नाम था चिंतामणि महल, और ये नाम 20वीं शताब्दी तक था। 20वीं शताब्दी के बाद फोर्ट का नाम जूनागढ़ फोर्ट रख दिया गया, और ये इंडिया के वन ऑफ द रेयर फोर्ट्स में आता है। वो यूं कि हजारों बार वहाँ शासकों ने इस फोर्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश की, इस फोर्ट को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, और कोई भी आज तक इस फोर्ट को नहीं जीत पाया। वैसे अब इस फोर्ट का एक पार्ट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और वो म्यूजियम काफी बड़ा है। उसमें हमें काफी सारी जानकारी मिलती है और काफी सारी चीजें हमें वहाँ देखने को मिल जाती है। म्यूजियम में एक ऑडियो टूर फैसिलिटी भी हमें मिल जाती है, और बहुत नॉमिनल सा उसका एक प्राइस देना होता है। और ये ऑडियो टूर फैसिलिटी 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश। तो इसका मतलब ये है कि अब वहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा। मतलब अगर वहाँ पर आप ऑडियो टूर फैसिलिटी लेना चाहते हैं और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो वहाँ पे और 3 लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू आप वो ऑडियो टूर ले सकते हैं और जान सकते हैं बीकानेर के इतिहास के बारे में। वहाँ पर हमें आर्ट के बहुत सारे हिस्टोरिक पीसेस मिल जाते हैं देखने को और बहुत सारी कमाल कमाल की पेंटिंग्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर सिलसिला खत्म नहीं होता, इसके अलावा जो रॉयल्टी वाली चीजें हैं वो भी हमें काफी सारी वहाँ देखने को मिल जाती है। उनमें शामिल है राजाओं की बुग्गियाँ जो कि चांदी की बनी होती थी, जिन पर विराज कर वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। तो जूनागढ़ फोर्ट जरूर जाइए, आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। तो भाई आप सोचकर देखिए कि हजारों बार उस किले को जीतने की कोशिश की जा चुकी है लेकिन कोई जीत नहीं पाया। तो जाकर देखिए कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा और कितने प्राउड के साथ वो किला वहाँ पर आज खड़ा होगा। बिना देरी किए चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो दोस्तों बीकानेर में हमारी अगली मंजिल का नाम है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस जो कि पैलेस भी है और उसका एक पार्ट हेरिटेज होटल में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। और इस पैलेस को बीकानेर के महाराज सर गंगा सिंह जी के लिए बनवाया गया था 1902 से 1926 के बीच में। और ये पैलेस काफी बड़ा है, मतलब सच में काफी बड़ा है। और काफी बड़े का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पैलेस का छोटा सा एक पार्ट लक्ष्मी निवास लीज पर दे दिया गया, जिसको अभी एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये पैलेस थार डेजर्ट के बीच में मौजूद है। अब आप जरा इमेजिन करके देखिए कि रेगिस्तान के बीच में इतना आलीशान महल, कितना कमाल का फील आने वाला है यार। वैसे सर गंगा सिंह जी जिनके लिए इस पैलेस को बनवाया गया था वो तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो फील, वो रॉयल्टी आज भी वहाँ उस पैलेस में मौजूद है। अगर आप जाएंगे तो आई एम श्योर आप जरूर उसको फील करेंगे। और इस पैलेस को आज भी मोस्ट रिमार्केबल पैलेस कंसिडर किया जाता है उस टाइम का। पैलेस को सच में बहुत कमाल के स्ट्रक्चर पे बनाया गया है, मतलब इसका एक्सटीरियर जो है वो राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और इसका इंटीरियर जो है वो ब्रिटिश डिजाइन पर बेस्ड है। तो आप सोचिए कितना कमाल का आपको फील मिलने वाला है वहाँ जाकर। और सर गंगा सिंह जी बड़े शौकीन थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पैलेस में स्मोकिंग और कार्ड प्लेइंग के लिए अलग से रूम्स बनाए गए हैं। तो यार एक बार तो लालगढ़ पैलेस जाना जरूर बनता है। हमारी अगली मंजिल का नाम है देवीकुंड। वैसे देवीकुंड बीकानेर से थोड़ी सी दूरी पर है, यानी 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन देवीकुंड का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत कमाल है। और सिर्फ इसका आर्किटेक्चर देखने के लिए ही लोग 8 किलोमीटर दूर देवीकुंड जाते हैं। बस दोस्तों ओरिजिनलिटी की बात की जाए तो देवीकुंड एक शमशान घाट है जिसको वहाँ के रूलर्स की याद में बनाया गया था, लेकिन इसका आर्किटेक्चर सच में बहुत कमाल है। उनकी याद में वहाँ पर बहुत सारी छतरियाँ बनाई हुई हैं और उन पर बहुत सारा आर्ट वर्क किया हुआ है, जिसको जाकर आप देखेंगे तो आप उसको जरूर कैप्चर करना चाहेंगे अपने कैमरा में। वैसे पहले ये सभी छतरियाँ रेड सैंडस्टोन में बनाई गई थी, लेकिन बाद में इनको जब रिनोवेट किया गया तो इनको व्हाइट मार्बल में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे राजपूत और मुगल स्टाइल के आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं जो सच में बहुत कमाल का फील देते हैं। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मोमेंट्स मिलने वाले हैं जिनको आप जरूर कैप्चर करेंगे। यहाँ पर हमें काफी सारा पीस मिलता है, शोर शराबे से बहुत दूर है ये जगह। और अगर आप सनसेट के नज़ारे लेना चाहते हैं बीकानेर में तो ये जगह एक परफेक्ट स्पॉट है, जहाँ पर बैठकर आराम से आप डूबते हुए सूरज को देख सकते हैं और वो पीस जो अंदर से आता है ना उसको आप फील कर सकते हैं। तो अगर आप बीकानेर जाएं तो देवीकुंड भी जरूर होकर आए। हम चलेंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो दोस्तों हमारी अगली मंजिल का नाम है श्री लक्ष्मीनाथ टेम्पल। श्री लक्ष्मीनाथ टेम्पल बीकानेर का सबसे पुराना टेम्पल है। इसको 14th सेंचुरी में बनाया गया था, महाराजा राव लूनाकरण जी ने इसको बनवाया था और ये टेम्पल सच में बहुत खूबसूरत है। और 14th सेंचुरी से अब 21st सेंचुरी तक इसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। वैसे टेम्पल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। इसके अलावा इस टेम्पल में हमें बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारे स्कल्पचर्स और बहुत सारा हैंडवर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ के दरवाजों पर भी इवन चांदी का बहुत सारा काम हमें देखने को मिलता है। पर हाँ एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस टेम्पल में जाएं तो कोई भी लेदर से बनी हुई चीज अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि वो टेम्पल में अलाउड नहीं है। और अगर आप एक्सट्रीम पीस और एक्सट्रीम कामनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस टेम्पल में एक पार्क है, आप वहाँ पर वॉक करिए, सच में बहुत अच्छा फील होता है, काफी सुकून मिलता है और काफी शांति होती है। इस मंदिर में 4 बार आरती की जाती है और अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज इवनिंग आरती जरूर अटेंड करिएगा, आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा। दोस्तों हमारी अगली मंजिल का नाम है, दोस्तों एल्डर्स हक्सली ने एक बार कहा था कि ये कोई घर नहीं है, एक अच्छा खासा मार्बल का महल है जहाँ पर हमें बहुत ही कमाल के नज़ारे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामपुरिया हवेली की। रामपुरिया हवेली जिसको द प्राइड ऑफ बीकानेर भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर आप बीते समय की कुछ यादों को महसूस करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट प्लेस है, आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। रामपुरिया हवेली को एक परिवार के लिए बनवाया गया था और उस परिवार का नाम था रामपुरिया और वो काफी अमीर परिवार था और उनके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ही इस हवेली को बनवाया गया था। इस हवेली में हमें आज भी काफी सारी चीजें उस समय की देखने को मिल जाती हैं, जिसमें शामिल है आर्ट वर्क और भी तरह तरह की चीजें हैं। इस हवेली के जो इनर हॉल्स हैं वो काफी अच्छे से डेकोरेट किए हुए हैं, उनमें फर्स्ट क्लास पेंटिंग की हुई है और काफी सारा आर्ट वर्क हमें वहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। इस हवेली में काफी छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो ओपन हैं आम लोगों यानी हमारे लिए, तो हम जाकर हवेली पूरा विजिट नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं उनमें जाकर हम काफी कुछ देख सकते हैं। और दोस्तों ये हवेली 400 साल पुरानी है, तो प्लीज अगर आप बीकानेर जाएं तो रामपुरिया हवेली भी जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर सच में हमें बहुत कुछ देखने को और एक्सप्लोर करने को मिलता है और बहुत सी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो शायद आज हम अपने आसपास नहीं देखते हैं। जाकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले लोग कैसे जिया करते थे, कैसा लाइफस्टाइल था। और बीकानेर के इस सफर में हमारी अगली मंजिल का नाम है सदुल सिंह म्यूजियम। बीकानेर जाने वाले टूरिस्ट सदुल सिंह म्यूजियम भी जरूर जाते हैं और इस म्यूजियम को वहाँ के वीर जवानों की याद में बनाया गया है और ये म्यूजियम सच में उस चीज को जस्टिफाई करता है। मतलब काफी कुछ हमें इस म्यूजियम में देखने को मिलता है। मेजरली तीन जवान जिनका नाम था सदुल सिंह, गंगा सिंह और करनी सिंह, उनकी याद में इस म्यूजियम को बनाया गया था, जिनमें से जो सदुल सिंह जी थे वो लेफ्टिनेंट थे और काफी टाइम तक उन्होंने भारत माता की सेवा की। इस म्यूजियम में अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं जिसमें हमें बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी अचीवमेंट्स वहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि इन लोगों द्वारा की गई थी। और इस म्यूजियम में हमें उस जमाने की बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिल जाते हैं और भी अलग अलग आर्ट आइटम्स हमें देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं। म्यूजियम के पास एक लोकल मार्केट है जहाँ पर जाकर आप जरूर एंजॉय करेंगे और वहाँ पर हमें काफी सारी चीजें खरीदने को भी मिल जाती हैं, लाइक हैंडमेड साड़ियाँ, हैंडमेड टर्बन्स और भी बहुत कुछ। और उसके पास ही आप फ्री कैमल राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों आज हमने ट्रेवल किया बीकानेर का और हमने आपको बताया कि आप बीकानेर में कहां कहां जा सकते हैं और वहां जाने पर आपको कैसे नज़ारे मिलने वाले हैं और कैसा आपका अनुभव रहने वाला है। तो अगर आपको टाइम मिलता है आप जा सकते हैं, प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर जाइए। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, प्लीज अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है बीकानेर का या कोई और एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहें या अपना कोई फीडबैक हमें देना चाहें तो बहुत ही आसान सा हमारा नंबर है 8010781078। और दोस्तों लास्ट टाइम हम जोधपुर गए थे, जोधपुर के सफर में राहुल जी ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। राहुल जी ने बताया कि वो जोधपुर जा रहे थे, जोधपुर से 5 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी का टायर फट गया था और वहाँ पर आसपास कोई टायर शॉप भी नहीं थी, तो वहाँ पर उन्हें विवेक जी मिले जो कि जोधपुर के रहने वाले थे। विवेक जी से उनकी दोस्ती हुई और विवेक जी ने ही उन्हें जोधपुर घुमाया और आज वो काफी अच्छे दोस्त हैं। तो ये सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अगर दोस्तों आप भी कहीं जाएं और आपको दिखे ऐसे कोई सड़क पर खड़ा है तो प्लीज एक बार रुक के पूछ लीजिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, मैं फिर हाजिर होऊंगा लेकर एक नया सफर और हम चलेंगे एक और जगह के सफर पर। लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर और सुनते रहिए ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम्स।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे।
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर, शो का नाम है मुसाफिर हूँ यारो, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। और भैया आपका दोस्त आरजे सागर लेकर आ चुका है वही शो जिसमें बातें होती है घूमने फिरने की, बातें होती है ट्रैवलिंग की, और बातें वो होती हैं जो आपके मूड को काफी लाइटन अप करती है। सो आज का शो अगेन बहुत खास रहने वाला है, और आज का तो इंडीड सबसे अमेजिंग शो होने वाला है, क्योंकि आज मेरे हिसाब से इंडिया की जो सबसे खूबसूरत जगह है, जो जन्नत को डिस्क्राइब करती है, जिसको आप जन्नत से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, वो आज का सफर हमारा रहने वाला है। आज हम एक बहुत ही खास एक आलिशान सी जगह पर चलने वाले हैं, और जन्नत आपने बिल्कुल सही नाम सुना। अब अगर आप गेस कर पाए और आप समझ पाए बात कहां की हो रही है, तो 8010781078 पर मुझे व्हाट्सएप करके फटाफट बताइए, और अगर नहीं समझ पाए तो इंतजार करिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आज होने वाली हैं, और नाम जैसा मैंने कहा था जन्नत, कंपेयर कर सकते हैं आप जन्नत से। सो मेरी बात ना मानकर आप बात सुनने वाले हैं अभी अमीर खुसरो की। सो अमीर खुसरो कहते हैं, गर फिरदौस बार रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, गर फिरदौस बार रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। इसका मतलब पता है क्या है? अगर धरती पर कहीं जन्नत है, यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। बिल्कुल सही समझ पाए हैं आप, बात करने वाले हैं आज हम कश्मीर की। आज का सफर बहुत खास रहने वाला है, कश्मीर के सफर पर आज हम चलने वाले हैं, और इन डिटेल चर्चा करेंगे। सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कश्मीर में क्या कुछ है, कहाँ कहाँ पर आप जा सकते हैं। सो खुसरो के शब्द बिल्कुल सही जो है डिस्क्राइब करते हैं कश्मीर को, एक वाकई में जन्नत, मतलब एक ब्रेड टेकिंग जो व्यू आपको मिलने वाला है ना, जो फील आपको मिलने वाला है, वो आपको कश्मीर में मिलने वाला है। चाहे बात आप चिनार ट्रीज की करें, बात आप चाहे क्रिस्टल क्लियर लेक्स की करें, बात चाहे आप नदियों की करें, बात चाहे आप उन हरी भरी वादियों की करें, या फिर बात चाहे आप उन बर्फीले पहाड़ों की करें, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को वहां पर जो ढूंढना चाहें वो पा सकते हैं वहां पर। डेफिनेटली आप वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो वहां पर जी रहे होंगे, वो वहां पर आप कर रहे होंगे। सो बहुत मजा आने वाला है। कश्मीर वैसे तो फेमस है बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए, लेकिन आज मैं यहाँ पर इन डिटेल पूरी कोशिश करूंगा कि वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताने वाला हूँ, वहां के जो लेक्स है ना वो काफी लाजवाब है, मतलब काफी प्रेशियस लेक्स मैं उनको बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी यार आपको नाम मात्र का पॉल्यूशन भी देखने को नहीं मिलेगा वहां पर। अगर आप एक कॉइन डालते हैं ना और वो बिल्कुल डेप्थ में जाके बैठ जाता है उस लेक की, और अगर आपने पानी को नहीं छेड़ा, तो लिटरली आप ऊपर से कितना भी नीचे तक उस कॉइन को देख सकते हैं, इतना साफ है वहां का पानी। इवन जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर, इट मीन्स कि क्रिस्टल भी अगर आप डालते हैं वहां पर, तो क्रिस्टल्स भी आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाएंगे। ये है कश्मीर। सो वहां के चार्मिंग, चाहे डल लेक की बात करें, चाहे आप हाउस बोट्स की बात करें उनके बारे में आगे बात करेंगे, चाहे आप उन फ्लोटिंग गार्डन्स की बात करें जिन्हें आप वहां पर जो है खरीद भी सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको कश्मीर में देखने को मिलती है। तो ये पहली चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, वहां के लेक्स। अब आपको बताएंगे हम कि वहां पर लेक्स कौन कौन से हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको व्यूज मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप किसी लेक के किनारे बैठे और मैं आपको कहूंगा वहां पर पीर पांजाल के आपको वो बर्फीली जो चोटियां हैं वो देखने को मिल जाएंगी, और बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल खुला आसमान, बिल्कुल आपकी आंखों से आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि सामने वो पहाड़ है, और कितना खूबसूरत लग रहा है यार वो, क्या नजारा है वो। तो ये सब बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लेक्स हैं वैसे कश्मीर में, तो उन सभी लेक्स के ऊपर बात करेंगे। सो आज हम कश्मीर के सफर पर निकले हैं। कश्मीर मेरे हिसाब से अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यहीं पर है, ऐसा सब लोग मानते हैं जो भी वहां पर होकर आते हैं। मेरे हिसाब से आप भी इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाले हैं अगर आप वहां पर जाएंगे तो, क्योंकि आज सारी जगह आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बट ये जो होने वाला है ना ये सिर्फ एक वर्चुअल टूर होने वाला है। अगर आप वाकई में एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आप जीना चाहते हैं इन सब चीजों को, तो उसके लिए तो देखिए जहां पर आपको वहां पर जाना होगा। सो अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिकली वो कोई जगह नहीं है, वो एक एक्टिविटी है। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको वही पता करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से जब आप देखते हैं ना चीजें तो काफी लाजवाब लगती है। और जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ऊपर, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा तो कि बात क्या होने वाली है। सो अगली जो एक्टिविटी है वो है हॉट एयर बलून राइड। अब हॉट एयर बलून की अगर आपको वहां पर राइड मिल जाए और आपको देखने को मिल जाए वो हरी भरी वादियां, वो बर्फीली चोटियां, वो जो खिले हुए लेक्स हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जहां पर आपको वो हाउस बोट्स देखने को मिलने वाली है, जहां पर आपको फ्लोटिंग गार्डन्स देखने को मिलने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से आपका वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। देखिए हॉट एयर बलून की जो राइड है वो आपको बाकी अलग जगहों पर भी मिल जाती है, जैसे गोवा हो गया वहां पर भी आप कर सकती हैं, पांडिचेरी में भी आप कर सकती हैं, और इस तरह की तमाम जगहें हैं इंडिया में जहां पर आप कर सकती हैं। बट स्पेसिफिक अगर बात करूं, आपको मदर नेचर के बेस्ट व्यूज लेने हैं, अगर आपको वो ग्रीनरी, वो व्हाइटिश माउंटेन्स एंड उसके अलावा वो जो फ्लोटिंग हाउस बोट्स है, फ्लोटिंग गार्डन्स है, वो खिले हुए लेक्स है, वो फ्रोजन लेक्स है, वो वहां के जो प्यारे प्यारे से घर हैं, जो अलग अलग स्टाइल से बनाए हुए हैं, वो सब चीजों का मिलाकर एक समूह देखना है ना, वो एक जो कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है, वो जो व्यूज होने वाले हैं ऊपर से, वो मेरे हिसाब से कहीं और आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको कश्मीर ऑफर कर सकता है। तो कश्मीर के सफर में जो अगली चीज मैंने आपको रेकमेंड करी है वो बेसिकली कोई जगह नहीं है, वो एक हॉट एयर बलून राइड है जो आप एक्सेस कर सकते हैं जबरवन पार्क से, जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है। वहां पर जाकर आपको रजिस्टर कराना होगा और वहां से आपको सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बट एक बार अगर आपने इसको एक्सपीरियंस कर लिया ना, अगर एक बार आपने वो जो बर्फीले पहाड़ है उनको काफी क्लोज से देख लिया, उनकी चोटियों को, उस हॉट एयर बलून में आप बादलों के बिल्कुल करीब से गुजर गए और आपकी नजर नीचे पड़ गई कश्मीर की उन हरी भरी वादियों के ऊपर, सो यार आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। और मैं कहूंगा वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको वहां पर मिलने वाला है। सो कश्मीर जाइएगा, हॉट एयर बलून राइड जरूर लीजिएगा। इस सिलसिले को अगर आगे बढ़ाऊं तो अगला जो मैं आपको रेकमेंडेशन देने वाला हूं, अगला जो सजेशन है मेरा कि वहां पर आपको क्यों जाना चाहिए, तो वो है वहां का जो वेदर है, वहां का जो क्लाइमेट है उसको एंजॉय करने के लिए। आप पूरा साल कभी भी जाएंगे ना, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिमालय से ढका हुआ है कश्मीर, तो आपको चारों तरफ वो जो खुशनुमा नजारे हैं वो तो मिलने वाले हैं। बट अगर इसके अलावा आप जाते हैं नवंबर या दिसंबर में, आप नवंबर टू दिसंबर के महीने में अगर जाते हैं तो जो वहां पर आपको विंटर का वंडरलैंड देखने को मिलने वाला है ना, वो शायद आपने पहले कभी किसी वेब सीरीज में भी नहीं देखा होगा, शायद आपने कभी किसी फिक्शनल बुक में भी नहीं पढ़ा होगा, और शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एग्जैक्टली होना कैसे वाला है। मतलब वहां पर जो बर्फ है वो लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि जो पहाड़ है ना उन्होंने चद्दर पहनी हुई है, उन्होंने बर्फीला जो ब्लैंकेट है वो पहना हुआ है। उसके बाद अगर गर्मियों की बात करें तो

पर जो स्नो है, जो बर्फ है, वो पिघलने लगती है, जिसके बाद वो जो नदियां हैं वो भर जाती हैं पानी से। वो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो वहां पर जाकर आप कर रहे होंगे। मतलब पूरा साल आप कभी भी जाते हैं, डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस आपका जो पूरी जिंदगी में आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा वो आपको मिलने वाला है। हाँ, गर्मियों में और जो मानसून सीजन होता है यहाँ पर, उसमें अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे खिले हुए फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको वो खेत खलिहान देखने को मिलेंगे जिनका मैंने जिक्र किया कि जो हरियाली वहां पर आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इसके बाद अगली वजह मेरे पास है जो आपको कन्विंस कर सकती है डेफिनेटली, वो है कश्मीरी कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। कश्मीरी कल्चर मतलब एक अपने आप में एक मैं कहूंगा कि एक्सपीरियंस होने वाला है। जब आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ एक जगह पर बैठे होंगे और एक पॉइंट के बाद व्यूज आपके लिए मैटर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वहां का जो कल्चर है, वहां के जो ट्रेडिशंस है वो आपको मोह लेंगे। वहां के क्राफ्ट की बात करें, चाहे वहां के लिटरेचर की बात करें, वहां के चाहे म्यूजिक एंड थिएटर की बात करें, आप किसी भी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को उठाकर देख लें, वो वहां पर जाकर जो आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, वो आप ऑनेस्टली बताऊं शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको लगा कैसा। और अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो कश्मीरी जो है फेरन पहनते हैं वहां पर, जो वहां का ट्रेडिशनल ओवरकोट है, जो आपने काफी मूवीज में देखा भी होगा। मतलब होता है ना वो लंबा सा ओवरकोट जो कुछ भी ड्रेस पहनते हैं उसके ऊपर उसको पहन लेते हैं, वो यार अमेजिंग है। उसको तो मैं कहूंगा उसको आप कभी जाए तो खरीद कर जरूर लाइएगा। देन इसके बाद वहां की डिशेस है, जैसे कि रोगन जोश हो गया, याखनी हो गया, कश्मीरी साग हो गया, दम आलू हो गया, और इस तरह के वहां की जो डिशेस है ना वो भी काफी लाजवाब है और काफी फेमस है। सो ये रही वो सारी वजहें जो आपको कन्विंस कर सकती है कश्मीर जाने के लिए। अब फाइनली हम आते हैं उस खजाने की तरफ जिसका आप सभी को इंतजार है और जिसको बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब लिटरली यार, धरती पर कहीं जन्नत है, स्वर्ग है, तो ये कश्मीर में है। तो अब बात करते हैं पहली उस डेस्टिनेशन की जो सबसे ज्यादा फेमस है पूरे कश्मीर में, जहां पर जाकर अब वाकई में जिंदगी को जी रहे होंगे। श्रीनगर नाम है जनाब इसका, सिल्क सनसेट। आपको ऐसा लगेगा कि व्हाइट के कितने सारे शेड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको रोड ऐसे लगेंगे जैसे किसी ने तार बिछा दिया हो। आपको लिटरली वो लेक के ऊपर जो बोट्स चल रही है ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ऑयल के ऊपर एक लैंप जो है वो चल रहा होता है ना, ऐसे इतना खूबसूरत वो नजारा होता है क्योंकि पानी इतना शांत होता है। आपके रूम के मिरर्स के ऊपर फॉग जम चुका होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको मतलब वहां पर जाकर वो शायराना अंदाज मिल चुका होगा, आपका मन करेगा आप शायरी लिखिए, भले ही आप एक राइटर है भी नहीं तो भी आपका मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा आप स्प्रिंग के सीजन के किसी गार्डन में आ गए हैं। आपको ऐसा लगेगा आपकी आंखें कितनी खाली है। आपको ऐसा लगेगा आपके पास शब्द नहीं है। और लिटरली जो चीजें आप हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में याद रखने वाले ना, जो मेमोरीज हमेशा आपके साथ रहने वाली है, वो आप यहां से लेकर आएंगे। ये है श्रीनगर। इस जगह के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जिनको आप बहुत सारे शब्दों में डालकर बता सकते हैं, लेकिन श्रीनगर बस इतना कह सकता हूँ कि जन्नत है जमीन पर। तो वाकई में श्रीनगर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इससे ज्यादा श्रीनगर की तारीफ मैं नहीं कर सकता हूँ। श्रीनगर जब सुबह उठता है तो फजर के साथ उठता है, जो सुबह की वहां की प्रेयर्स होती है, और सर्दियां आपको ऐसा लगेंगी जैसे कोई मौसम जो है वो गीत गुनगुना रहा हो। सिटीज जो है वहां पर वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे जन्नत की कोई खुशबू है जो यहां पर किसी ने छोड़ दी है। इतनी महकती हुई सिटीज है वहां पर, जितनी भी आपको मिलेंगी। पूरे कश्मीर की बात कर रहा हूं यहां पर, सिर्फ श्रीनगर की नहीं कर रहा हूं। श्रीनगर अगर बात करूं पर्टिकुलर इस शहर की, तो यहां पर आपको झेलम नदी देखने को मिलेगी। झेलम, उसके पीछे आपको देखने को मिलेंगे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले पहाड़, जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये आपके सेनापति है, ये आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ये आपको घेरे हुए हैं। और जब उस वैली से गुजर कर आप उस पहाड़ के जब चारों तरफ खड़े होकर देखेंगे खुला आसमान, तो वाकई में आपको जो नजारा मिलने वाला है वो आप शायद कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं भुला पाएंगे। सो दिस इज श्रीनगर। इससे ज्यादा ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। बस एक चीज बोलूं तो, अगर आपको स्टोरी टेलर बनना है ना, अगर आपको देखना है कि स्टोरीज कैसे नैरेट की जाती है, तो आप यहां पर चले जाइए, क्योंकि आप खुद को एक स्टोरी टेलर के तौर पर पाएंगे। आप खुद जिस तरीके से उस जगह को नैरेट कर रहे होंगे ना, जैसे आप लोगों को बता रहे होंगे, मतलब आप खुद में पाएंगे कि आप कितने बदल चुके हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्रीनगर। तो अगली जगह जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं वो है गुलमर्ग। ये नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। ये नाम क्योंकि वो है जो हमारे टूरिज्म को डिफाइन करते हैं, जो हमारे टूरिज्म हम बात करते हैं ना कि भारत में आइए, भारत को विजिट करिए, एक्सप्लोर करिए। सो ये उस एक टर्म को जस्टिफाई करते हैं। ये वो नाम है
गुलमार्ग हो गया, श्रीनगर हो गया, एंड देन इसके बाद सोनमार्ग हो गया, एंड देन उसके बाद अब बात करेंगे तो बेताब वैली, मतलब बहुत नाम है यार। और सबसे ज्यादा जो आपको आज मिलने वाले हैं वो कश्मीर में ही मिलने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुलमार्ग की। सो गुलमार्ग एक और वो जगह है जो जन्नत को डिफाइन करती हुई आपको अब मिलेगी वहां पर। बहुत ही खुशनुमाई जगह है। अगर आप सर्दियों के महीने में जाती हैं तो बिल्डिंग्स के ऊपर जो बर्फ पड़ती है ना, जो शायद आपने फॉरेन की कुछ वीडियोस में देखी होंगी, फॉरेन की कुछ मूवीज में दिखाई जाती है, जिसको अक्सर लोग यहाँ पर मिस करते हैं कि यार मैं वहां पर जाकर वो सब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो उन्हें एक बार सर्दियां जो है गुलमार्ग में जरूर बितानी चाहिए। अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर मिलेंगी बहुत पुराने टाइम की चर्चेस देखने को आपको मिलने वाली है। एक चर्च वहां पर 1890 से वहां पर आपका जो है एज अ टूरिस्ट स्पॉट काम करती है, और आप जाएंगे तो आपको काफी खुशनुमा दिखाई देगी। इसका नाम है सेंट मैरी चर्च। देन इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो 1965 में नियो कॉलोनियल स्टाइल होटल्स आज भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जिनको बनवाया गया था 1965 में। फिर इसके बाद एक हिस्टोरिक गुलमार्ग गोल्फ क्लब है वहां पर, जो आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपका मन करता है कि आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो आपको अलाइव रखे, जो आपको लगे कि हाँ यार कुछ किया है लाइफ में, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ चीजें करने के बाद जिन्हें किक मिलती है और उन्हें लगता है कि हाँ यार पता चला है कि हम जिंदा है, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज आपको यहां पर करने को मिलने वाली है। जैसे कि आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप खुश नसीब हुए और वहां पर सही टाइम पर आप पहुंच पाए सर्दियों में, तो आप स्कीइंग भी कर सकते हैं। जैसे कि वहां पर आप टू स्टेज गोंडोला केबल कार जो है उससे आप वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर जाकर आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसके अलावा बात करूं तो गुलमार्ग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अकोमोडेशन के। आप ऑनलाइन बुकिंग बहुत सारी चीजों की वहां पर कर सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल यहां पर ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब कुछ बोनस पॉइंट है। मेन बेस तो ये है कि वहां पर जाकर यार नहीं डिफाइन कर सकते आप क्या है वो। पहाड़ है, पहाड़ी की बर्फीली चोटियां हैं, बर्फ गिर रही है, घर की छतों के ऊपर जो है बर्फ जम चुकी है, और आप बैठे होंगे जो लकड़ियां जलाकर घर के अंदर जो आलाप को आप महसूस कर रहे होंगे ना, तब आप पाएंगे कि हाँ आप कहीं आए हैं, आपने एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की है जो बहुत खुशनुमा है, और आप भी बहुत खुश नसीब पाएंगे खुद को। इसके अलावा आप जो मैंने कहा कि वहां पर आप केबल राइड ले सकते हैं, तो आप वहां पर नंगा पर्वत जो कि वर्ल्ड की 9th हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसको आप देख सकते हैं। वो मौजूद है पाकिस्तान में लेकिन भारत से आप उसको निहार रहे होंगे। सो मेरे हिसाब से यार एक बार आपको वहां पर जरूर जाना चाहिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया अगर कोई एग्जिस्ट करती है ना, तो वो ये जगह है गुलमार्ग। सो अगली जगह जो आपको वाकई में उस जन्नत को दिखाने वाली है, जो आपको महसूस कराएगी कि आप कहीं पर आए हैं, वो है सोनमार्ग। कई हजार मीटर ये जो है इसका ऑल्टीट्यूड है, अबव सी लेवल है ये, तो अपने आप में जाकर एक एडवेंचर है आपके लिए अगर आप इस जगह पर पहुंच भी गए हैं तो। इसके अलावा अगर बात करूं तो सिंध नदी के बिल्कुल किनारे पर ये जगह जो है मौजूद है, और ये श्रीनगर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। बट हाँ, ये एक ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट है जो आपको बहुत सारे हिमालयन पीक से कनेक्ट कराता है, जैसे कि कोलहल पीक हो गया, अमरनाथ पीक हो गया, सिरबाल पीक हो गया, और ऐसे बहुत सारे पीक्स हैं जो यहाँ पर जाकर आप कनेक्ट कर रहे होंगे। और इसके बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको वहां पर जाकर वो एडवेंचरस एक्टिविटीज करना पसंद है, जिनको जाकर चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, जिनको जाकर मदर नेचर की लैप में बैठना पसंद है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो आपकी जो लिमिट्स हैं, मतलब एक पॉइंट होता है ना कि मैं इतना एडवेंचर कर सकता हूँ, तो उसको पुश करने के लिए ये जगह बहुत खूबसूरत है, आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आप देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको वो गार्डन्स देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे वो घने जंगल देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको लिटरली वो देखने को मिलने वाली है जो पहाड़ों के बीच में आपको ऐसा लगेगा कि सूरज ने किस कर दी है। जब सनसेट और सनराइज होते हैं ना, सो जो लिटरली वहां पर व्यूज मिलते हैं ना, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट आपकी आंखों के लिए व्यूज होने वाले हैं। तो ये वो जगह है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप फिशिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप अलग अलग तरह के स्पीशीज देख सकते हैं जिनके नाम है विशनसार लेक, कृष्णसार लेक, गंगाबल लेक, और बहुत तरह के स्पीशीज है जो इन लेक्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा सोनमार्ग जो है यहाँ पर खत्म नहीं होता है। सोनमार्ग आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने का ऑप्शन देता है। ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, हाइकिंग आप कर सकते हैं, कैंपिंग आप कर सकते हैं, और ऐसी तमाम चीजें हैं जो आप वहां पर जाकर एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसके अलावा सिल्क रोड जो है, जो एक कनेक्टिंग रोड है कश्मीर और चाइना का, वो आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि आप कैसा लगता है वो ओवरऑल।
हालांकि अगर आप सिल्क रोड को एक्सेस करना चाहते हैं तो नवंबर टू फरवरी जो है बंद होता है, बागीपुरा सारी ओपन होता है, क्योंकि वहां पर आप समझ रहे होंगे कि टेम्परेचर कितना नीचे चला जाता है, तो इसके वजह से वहां पर बहुत सारे रोड जो है वो क्लोज कर दिए जाते हैं। सो ये है कश्मीर की ब्यूटी। अभी हमने जाना सोनमार्ग के बारे में, और अगली जगह जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कश्मीर के सफर में, उसका नाम उसको एक बॉलीवुड की मूवी से मिला। 1983 की बात हो रही है, मूवी आई थी बेताब, और उस बेताब मूवी से जो है ये नाम लिया गया था, क्योंकि उस मूवी की शूटिंग जो है वो यहीं पर हुई थी। बेताब वैली के नाम से आप इसको जानते हैं, उसके पहले इस वैली का नाम था हैगन वैली। हैगन वैली के बाद ये बेताब वैली बनी, बट लिटरली आपको ये बेताब करने वाली है, इतनी खूबसूरत ये जगह है यार। मैं मतलब किन शब्दों में इन जगहों को बयां करूं? ऑनेस्टली आप सोच रहे होंगे कि ये हर एक चीज में ऐसे बोल रहा है, बट ऑनेस्टली बताऊं ना, एक से एक खूबसूरत लाजवाब ये जगह है। आप इमेजिन करिए, नीचे पहाड़ है जो ऊपर नीचे जाते हैं, उन पहाड़ों के ऊपर हरियाली है, उन पहाड़ों के ऊपर लोगों ने घर बनाया हुआ है, उन पहाड़ों पर जंगल उगे हुए हैं, और उन पहाड़ों के पीछे ऐसा लगेगा आपको जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो है एक्चुअली वो इन छोटे छोटे पहाड़ों के पिताजी हैं। मतलब होता है ना कि बड़ा पेड़ उसके नीचे छोटा पेड़ आप खड़ा कर दे, जैसे कोई बड़ी गाड़ी खड़ी है किसी पापा की और उसके नीचे हमने बच्चे का छोटा सा जब खिलौने वाली गाड़ी होती है वो खड़ी कर दी, कैसा लगेगा ना व्यू? लिटरल ऐसा व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जिन बड़े पहाड़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन पहाड़ों में से आपको दिखाई देगी बर्फ, उन पहाड़ों के साइड से गुजरते हुए आपको दिखाई देंगे बादल, उन पहाड़ों के नीचे खड़े होकर आप पाएंगे कि यार क्या होता है सुकून, कैसे आप डिफाइन कर पाते हैं सुकून को। सो ये वो जगह है। बात अगर इसकी करें तो पहलगाम और बारामूला के काफी क्लोज ये जगह मौजूद है जम्मू एंड कश्मीर में, और बहुत खुशनुमाई जगह है। मतलब ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप मॉल सर्च करेंगे, ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर जाकर आप लैविश होटल सर्च करेंगे, ये ऐसी जगह है जहां पर बाय डिफॉल्ट आप जो है मदर नेचर की गोद में खुद को पाएंगे और ढेर सारा सुकून आप खुद को पहुंचा रहे होंगे, चाहे आप चाहें या फिर आप ना चाहें। सो ये उनमें से एक जगह है। सो आप जरूर जाइएगा यहाँ पर, जिसका नाम है बेताब वैली। तो अगली जगह जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कश्मीर के सफर में, वो है पहलगाम। पहलगाम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर आपको दूध की धारा जैसे बहता हुआ पानी दिखाई देगा, जहां पर आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखाई देगा, जहां पर जाकर आप पाएंगे 2740 मीटर अबव सी लेवल जो एलिवेशन है वो कितना होता है और वहां पर जाकर कैसा लगता है। ऑल्दो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज है, यहाँ पर जाकर आपको काफी कुछ मिल जाएगा, बट स्टिल आप काफी ऊंचाई पर होंगे। सो ये जगह अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर जाकर एक्सप्लोर कर रहे होंगे, जैसे कि वहाँ के स्टर्निंग लेक्स हो गए। एक लेक का अगर नाम दूं आपको तो शेषनाग लेक, सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा वहां पर कितना प्यारा वो लेक है। उस लेक के चारों तरफ आपको पाइन ट्रीज देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारी शांति, बहुत सारा सन्नाटा, जो अपने आप में आपको लगेगा आपकी आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपको लगेगा कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, मदर नेचर आपसे बात कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है, ऐसा कुछ वहां पर जाकर आपका ओवरऑल फील जो है वो रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप वहां पर बहुत अच्छी सी जो है अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप फैमिली हॉलीडे पर गए हैं तो आपको बहुत ही पीसफुल टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर क्राउड बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, एंड स्पेशली वहाँ के जो लोग हैं वो काफी कोऑपरेटिव है, काफी वेलकमिंग लोग हैं जो आपको काफी कुछ ऑफर वहां पर कर रहे होंगे। आप वहां पर जाकर कुछ और एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग हो गया, जैसे कि कुछ वहां की जो राइड्स है वो आप ले सकते हैं वहां के एम्यूजमेंट पार्क्स में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के लिए भी वहां पर अवेलेबल है। सो जाइएगा जरूर पहलगाम। सो अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कश्मीर के सफर में, वो है डल लेक। बिल्कुल सही नाम सुना आपने, जिसको द ज्वेल ऑफ श्रीनगर के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेक्स है पूरे इंडिया में। तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर जाना चाहिए, अगर आप उस तरफ गए हैं कहीं पर भी तो एक बार प्लीज यार डल लेक जरूर जाइएगा। वहाँ पे जो कलरफुल शिकाराज है, जो वहाँ के ट्रेडिशनल वुडन हाउस बोट्स होती है, वो आपको वहाँ पर फ्लोट करती हुई दिखाई देंगी, वहाँ पर आपको फ्लोटिंग मार्केट्स दिखाई देंगी, वहाँ पर आप जो प्यार लेकर जाएंगे और जितना प्यार आप बदले में लेकर आएंगे ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। बट इसके अलावा जो शिकारा जिनका मैंने जिक्र किया, वहां पर जो फ्लोटिंग जो बोट्स होती है ना, उनमें आपको मार्केट्स देखने को मिलेंगे, आपको होम स्टेज मिल जाएगा, उसमें आपको गार्डन्स फ्लोट करते हुए दिखाई दे जाएंगे, मतलब सब कुछ वहां पर, इवन फूड स्टॉल्स तक आपको वहां पर फ्लोट करती हुई इन बोट्स में दिखाई दे जाएंगी। वहां पर ऑथेंटिक जो कश्मीरी आइटम्स है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। पूरे उस लेक की बात कर रहा हूं मैं, मतलब वो लेक नहीं है यार, सिर्फ वो एक मार्केट है पूरी, जो अपने आप में बहुत खास है। ऐसा वंडरलैंड यार कहाँ होगा दुनिया में,
मैं ऑनेस्टली नहीं देख पाया हूँ आज तक। हम लोग बात तो करते हैं कि विदेश जाना चाहिए, हम लोग बात करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत कुछ है, बट ऑनेस्टली बताऊं हम अपनी जगहों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड जो प्लेसेस है वो

वो आप डल लेक के अंदर बोट में कर सकते हैं। सो डल लेक जरूर जाइएगा। इसके अलावा अगर व्यू की बात करूंगा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है ऑनेस्टली। चारों तरफ हरियाली, उसके पीछे पहाड़, उसके पीछे बादल, ऊपर खुला नीला आसमां, यार जन्नत और क्या हो सकती है, ढेर सारी शांति। सो इस सारा कुछ आपको मिलने वाला है डल लेक में, जाइएगा जरूर। तो अगली जगह जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है वैष्णो देवी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया। अगर आप विजिट कर सकते हैं तो वो वैष्णो देवी है, एंड लकीली ये कश्मीर में ही आपको फॉल करती हुई दिखाई देगी। मिलियंस ऑफ डेवोटीज वहां पर हर साल जाते हैं, वहां पर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली माँ, इन सब की पूजा वहां पर की जाती है। ऑल्दो अगर लोकेशन की बात करूं तो यार मतलब क्या बोलूं मैं, पहाड़ों के बीच में आप पहाड़ चढ़कर जा रहे हैं, मतलब एक तो आप एडवेंचरस एक्टिविटी वहां पर कर रहे हैं जाकर, दूसरा पूरी शिद्दत के साथ आप वहां पर जा रहे हैं। 13 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो अपहिल क्लाइंब आपको करना होता है और 6 से 9 घंटे आपको लगते हैं अगर आप पैदल वहां पर जाते हैं। ऑल्दो हेलीकॉप्टर सर्विसेज आपके लिए है, हॉर्सेज वहां पर अवेलेबल है आपके लिए जो आपको ऊपर तक ले जाते हैं, बट ऑनेस्टली बताऊं पैदल चलने में जो मजा है अगर आप चल सकते हैं, सो वो सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच चुकी है, वो बात फैक्ट है, पर कुछ चीजें है ना, मतलब कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए कुछ चीजों को वो रिप्लेस नहीं कर सकती। जैसे हार्डवर्क के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो आपको यहाँ पर मिलेगा पैदल चलने के बाद। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट्स, ये सब देखने को मिल जाएंगे जो सब वहां पर आप ले सकती हैं। बीच बीच में आप वहां पर स्टे भी कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली एक बार आप जरूर जाइएगा। कश्मीर की रियल ब्यूटी, वैष्णो देवी पहाड़, अमेजिंग, लाजवाब यार, वो आप जरूर देखिएगा वहां पर। सो अगली जगह जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कश्मीर में, वो है कुपवाड़ा। 1577 मीटर की ऊंचाई पर यह जगह मौजूद है अबव सी लेवल, और यहाँ पर जाकर आप पाएंगे घने जंगल। लिटरल मतलब जो वाइल्ड नेचर आपको देखना है, जो मदर नेचर का आपको वाइल्डेस्ट फॉर्म देखना है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी जगह मैंने आपको बताई वो सारी जगह बहुत खास है, उन सभी जगहों पर काफी कुछ आपको देखने को मिलता है, बट वहां पर आपको रेजिडेंशियल एरियाज वो सब मिल जाते हैं, वहां पर काफी सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। पर कुपवाड़ा अगर आप जाते हैं तो इस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में रेकमेंड कर रहा हूँ जिनको वाइल्ड नेचर देखना पसंद है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, जिनको फ्लोरा एंड फौना के जो वाइल्ड स्पीशीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो देखना पसंद है, तो उन्हें यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको डीप वैलीज देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको वो जो मैडनेस से भरी हुई स्ट्रीम्स होती है ना पानी की, वो आपको देखने को मिलेंगी, जो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, पर वो भी मदर नेचर का एक फॉर्म है, जाकर देखिए कैसा आपको लगता है। लगभग 2379 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये कुपवाड़ा जो टाउन है ये लोकेटेड है। हाई टाउन है, पर यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेजोरिटी ऑफ पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लेक्स देखने को मिलेंगे छोटे छोटे जो बर्फ से जम चुके हैं। ऑनेस्टली उनके ऊपर रेकमेंडेशन यही किया जाता है कि आप वॉक ना करें या उसके ऊपर कुछ भी ट्राई ना करें, पर एक बार जाकर जरूर देखिएगा। वहां पर जो रॉ फॉर्म है आपको मदर नेचर का वो देखने को मिलने वाला है। काफी सारे लेक्स हैं वहां पर, काफी सारी वहां पर वैलीज आपको देखने को मिलने वाली है, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, हर तरह की वैलीज आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए वहां पर बहुत सारी ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं। सो अगर आप बिगनर हैं, अगर आप प्रो हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आप यहां पर जाकर ट्रैक करेंगे तो आपके लिए वहां पर कोई ना कोई ट्रैकिंग रूट अवेलेबल है। सो आपके लिए बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, और जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे कि यार पूरा आपको रॉ फॉर्म में मदर नेचर देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली मदर नेचर के पास तो है ही काफी कुछ आपको ऑफर करने के लिए। यहां पर अगर क्रक्स निकालूं मैं इस पूरी बातचीत का, तो पहाड़ है, बर्फ है, लेक्स है, जंगल है, ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, इस तरह की तमाम चीजें आप यहां पर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सो ये है जिस जगह का मैंने जिक्र किया अभी, कुपवाड़ा। ये छोटा सा टाउन है बट अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बयां करता है। कश्मीर के सफर में जो अगली जगह मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है अनंतनाग। श्रीनगर से 53 किलोमीटर यानी कि 53 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह जो है मौजूद है, और इसको माना जाता है फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ कश्मीर, जहां पर बहुत कुछ है आपके लिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज भी आपको देखने को मिलेंगी, एंड एट द सेम टाइम मदर नेचर भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक ऐसी जगह जो काफी अनयूजुअल है हमारे लिए कि बहुत सारा मदर नेचर है, प्योरेस्ट फॉर्म में है, और उसके बीच में बहुत सारे आपको वर्क स्पेसेस देखने को मिलने वाले हैं, जो आई गेस बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मदर नेचर के बीच में काम करें तो कैसा लगेगा, जहां पर टेक्नोलॉजी भी हो और नेचर भी हो। सो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट प्लेसेस में से एक है, क्योंकि यहां पर ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको ब्रेथ टेकिंग जो लश गार्डन्स होते हैं ना वो देखने को मिलते हैं, काफी खिले हुए, मतलब सुनते होंगे आप।

जिंदगी गुलजार है। तो जिंदगी गुलजार का मतलब क्या है वो आप यहाँ पर जाकर पाएंगे। यहाँ पर तीन जो स्ट्रीम्स है उनकी मीटिंग होती है जिनके नाम दिए गए हैं बिरेंगी, संधरण एंड अरापट। यहाँ पर बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी काफी कुछ है यहाँ पर, मंदिर मस्जिद सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ फेमस मंदिरों की अगर बात करूं तो मार्तंड सन टेम्पल है यहाँ पर, खीर भवानी अष्टप्पन है यहाँ पर, इश्मुकम श्राइन है यहाँ पर एंड जियारात बाबा हैदर रेशी है यहाँ पर, यहाँ पर मस्जिद बाबा दाऊद खाकी है। सो देखिए मतलब एक प्लेस जहाँ पर कितनी सारी ब्यूटीफुल चीजें आपको देखने को मिलती है। और जो बात करते हैं कि भारत जो है एकता है, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सो यहाँ पर जाकर आप वो चीज पाएंगे। इसके अलावा जो तीन स्ट्रीम्स का मैंने जिक्र किया अभी, ब्रेंगी सांद्रण एंड अरापत, उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो काफी खुशनुमा है। वहां पर जाकर आप पाएंगे मतलब कितना अच्छा लगता है यार, तीन अलग अलग सोर्सेज से पानी आ रहा है और वो एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं और फिर आप पाएंगे कि सब एक है। और ये अपने आप में एक लर्निंग है हमारे लिए, एक मैसेज हमें देता है कि यार एंड में अगर आप पाएंगे ना सब कुछ आप निकाल दें, आप कास्ट निकाल दें, आप रिलीजन निकाल दें, आप यहाँ से फाइनेंशियल चीजें निकाल दें, आप यहाँ से मटेरियल्स निकाल दें, आप यहाँ से रंग निकाल दें, तो हम सब भी एक है। इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आप यहाँ पर जाकर पा रहे होंगे। और देखिए मैं अभी तो यहाँ फरीदाबाद में हूँ, अभी तो मैं वहां पर नहीं हूँ लेकिन बातें कर रहा हूँ वहां की, उसमें ही मैं शायर बन जा रहा हूँ। सो आपको काफी अच्छा लगने वाला है। तो अगली जगह जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो बहुत ही खास है क्योंकि ये ऐसा माना जाता है सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन। यहाँ पर आपको मुगलों की चीजें देखने को मिलने वाली है। इसको 1633 में बनवाया था और नूर जहां के बड़े भाई आसिफ खान ने इसको बनवाया था। ऑल्दो गार्डन की अगर बात करूं तो ठीक है, एक अच्छी डिसेंट सी जगह है, यहां पर आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब मुगलों की चीजें अगर आपको देखना पसंद है, गार्डन के बिल्कुल बीच में से आपको देखने को मिलेगी वहां पर एक फाउंटेन का वो बनाया हुआ है, पूरा एक सीरीज बनाई हुई है जिसमें से पानी होकर गुजरता है। मतलब एक डिसेंट प्लेस है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा कुछ है, पर हाँ कुछ लोग होते हैं जिनको कश्मीरी पानी देखना पसंद है, कश्मीरी पानी के पेटल्स देखना पसंद है, तो वो यहां पर आप देख सकते हैं। पर्शियन आर्किटेक्चर इसका आपको देखने को मिलने वाला है अगर डिजाइन की बात करें, और मुगलों के आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगली जगह है शालीमार गार्डन, ये भी एक और मुगल गार्डन्स में से गार्डन है जो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा है, और इस गार्डन को नाम दिया गया है क्राउन ऑफ श्रीनगर का। इसको बनवाया था 1619 में। यहाँ पर भी अगेन आपको सेम पैटर्न की चीजें देखने को मिलेंगी, बस ये थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। वैसे अगर शालीमार की बात करूं तो शालीमार का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है वो होता है एबोड ऑफ लव, तो बहुत ही प्यारी सी जगह है, मतलब प्यार की निशानी है, तो जाकर देखिए कैसा लगता है। एंड ये सारे जो है मैन मेड स्ट्रक्चर्स है, कुछ भी यहाँ पर नेचुरल नहीं है, लोगों ने इसको बनवाया है, किसी का डिजाइन इसमें जो है इंक्लूडेड है, किसी का यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स लगे हुए हैं और किसी ने इसको अपने हाथ से जो है बनाया है। जाकर देखिएगा आपको काफी सुकून मिलेगा। तो अगली जगह मैं आपको जो रेकमेंड करने वाला हूँ वो है युसमार्ग। युसमार्ग एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी जगह है, मतलब कश्मीर के थोड़ा सा आउटर साइड पर आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जो वहाँ पर लोग होते हैं लोकल लोग, वहाँ पर वो जो पशुपालन करते हैं, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो भेड़ रखते हैं, तो उनको जो चारा चराने के लिए वो लेकर जाते हैं, ये उन जगहों में से एक है। बट युसमार्ग यार अपने आप में एक पैराडाइज है, एक बहुत ही प्यारा सा टाउन है, खूबसूरत सा, क्योंकि इतनी ग्रीनरी शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे गाने, बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज के कुछ कुछ सीन्स जो है वो यहाँ पर शूट किए गए हैं, यहाँ पर फिल्माए गए हैं। सो ये जगह बहुत प्यारी सी है, जहाँ पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। इसके बाद अगली जगह है जो काफी अंडररेटेड है कश्मीर में, वो है आरू वैली। आरू वैली मतलब एक बहुत ही प्यारी सी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, पर उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मतलब आरू वैली एक ऐसी जगह है जहां पर ना बर्फ जमी हुई है, बर्फ के बीच में से ना रास्ते बनाए हुए हैं लोगों ने, और वहां पर आपको घोड़ों पर बिठाकर वो लेकर जाते हैं, और जब आप वहां से गुजर रहे होंगे, जब बर्फ की वो चद्दर को चीरते हुए वहां से निकलेंगे और आपकी आंखों पर जो वो हरियाली पड़ेगी, सो लिटरली यार आपके मुंह से सिर्फ वाव निकलने वाला है और कोई वर्ड बोलने का आपका मन नहीं करेगा, इतनी खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पर बहुत सारे हाइकिंग ट्रेल्स हैं, तो अगर आप थोड़े से एडवेंचर लवर हैं तो यहाँ पर आप हाइकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप स्कीइंग कर सकते हैं, क्योंकि स्कीइंग यहाँ का बहुत ही प्यारा एक गेम है जो यहाँ पर लोग एज एडवेंचर कंसीडर करते हैं, और वहाँ के लोकल लोग भी जो है वहाँ पर काफी अच्छे खासे खुशनुमा है जो आपके साथ घुल मिलकर ये सारे स्पोर्ट्स जो है परफॉर्म कर रहे होंगे। सो ये जगह है आरू वैली। देन इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कैसे बोल सकते हैं हम, उसके बारे में बताऊंगा आपको। जगह का नाम है अमरनाथ, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस प्लेसेस में कंसीडर की जाती है पूरे इंडिया में, काफी फेमस है।
हिंदूज की अगर बात करूं तो हर साल यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं, बट थोड़ा सा हमें यहाँ पर सतर्क भी रहना पड़ता है, थोड़ी ट्रैकिंग आपको करनी पड़ती है। वहाँ पर बर्फ जो है उसके फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो बर्फ पे से आप फिसल जाए, बर्फ पिघल जाए, इस तरह की चीजें हो, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा सेफ साइड पर चले। और अगर आप आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिट है, आप बैलेंस के साथ अपनी बॉडी को जो है ऊपर लेकर जा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, वहां पर पहाड़ों को उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, तो ही यहां पर जाना आपको जो है रेकमेंड किया जाता है। ऑल्दो साल के मेजॉरिटी ऑफ पार्ट में ये जो है बंद होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए खोला जाता है, और जब खोला जाता है तो अमरनाथ जो केव है जहां पर बर्फ से शिवलिंग बनता है उसको लोग देखकर वह धन्य हो जाते हैं। सो बहुत सारे लोगों की ड्रीम लिस्ट में शामिल होती है जगह जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अमरनाथ। तो दोस्तों ये था हमारा कश्मीर का सफर। बात करने पर अगर आए तो और भी बहुत सारी जगहें जो बताई जा सकती हैं, बट इससे ज्यादा स्ट्रेच इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि मेजर जो जगहें वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा तो बाकी आप वहां पर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको मजा आया, और अब चलते हैं इसी नोट पर अपने शो को खत्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा लेकर एक और मजेदार सा शो, और आपको बताएंगे प्यारी प्यारी जगहों के बारे में। बट तब तक आप लोग सुनते रहेंगे रेडियो वाचना 107.8। और शो को खत्म करना चाहूंगा मैं जिस लाइन के साथ मैंने स्टार्ट किया था, अगर फिर दोस्त बार रूए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, अमीर खुसरो ने बोला था कश्मीर के लिए। अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। इसी रोड पर मैं लूंगा आप लोगों से विदा, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। गुड बाय दोस्तों।

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna, 107.8 FM.
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. मेरा नाम है सागर, शो का नाम है मुसाफिर हूँ यारो, और इस टाइम आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव. और अभी तक अगर आपको फील गुड फील लाइव वाला फैक्टर नहीं मिला है तो चिंता मत करिए, क्योंकि हमारा जो शो है ना, ये ट्रैवलिंग के ऊपर बेस्ड है. और यहाँ पर बहुत सारा, मतलब लिटरली बहुत सारा, भर भर के हमें वो फील गुड वाला फैक्टर मिलता है. तो फील गुड वाला फैक्टर आप तक डेफिनेटली डिलीवर हम करने वाले हैं. मेरा नाम है सागर, या फिर आप मुझे मुसाफिर भी कह सकते हैं. और अगर इन बिटवीन आपको कोई बात है जो मुझसे करनी हो, या कुछ और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचानी हो, तो 8010781078 ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ. ख्याल जब भी वादियों का आता है तो मन करता है कि सुकून, शांति, पीस, नेचर के साथ कनेक्शन, जहां पर हम बिल्कुल थम चुके हो, जहां पर बिल्कुल भीड़ भाड़ ना हो. लेकिन ऐसा होता कहाँ है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट चीजें होती है. जब भी हम वादियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पर हमें बहुत सारा क्राउड देखने को मिलता है, बहुत सारे ब्लॉगर्स भी मिल जाते हैं देखने को. देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम पार्ट ये है कि बहुत सारी ऐसी भी वादियां हैं जहां पर आप बिल्कुल आइसोलेशन में जाकर वो जो आपकी खुद की कंपनी है उसको एंजॉय कर सकते हैं. अब यहां पर एक गैप है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है. जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो जगह कौन सी है जहां पर आप इस तरीके से जा सकते हैं, तो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? करेक्ट है. तो ऐसे में हम यहां पर लेकर आते हैं वो सभी अंडररेटेड जगहें जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए, और जहां जाकर आपको वाकई में वो सुकून जो आप ढूंढने निकले हैं वो मिलने वाला है. और ऐसी हमारी आज की जगह है जिसका नाम है मशोबरा. अगर आप मशोबरा जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आउटशाइन कराती है, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा वाटरशेड, जैसे कि यहाँ की जो पानी की सप्लाई है वो शिमला जाती है. यानी कि अगर आप शिमला में जाकर पानी पिएंगे तो आप पानी एक्चुअल में वो पी रहे होंगे जो मशोबरा से निकला होगा. यहाँ पर एक रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी है जो बहुत ही उम्दा है, और बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर. लेकिन एक चीज है जो यहाँ पर नहीं है, वो है क्राउड. बिल्कुल ये ओवर क्राउडेड जगह नहीं है, बहुत ही प्यारी सी जगह है. आपको जाकर बहुत अच्छा लगने वाला है. आप जो क्वालिटी टाइम सोचकर जा रहे हैं, जो आप वहां वादियों का मजा लेने जा रहे हैं, वो आप यहां पर ले पाएंगे. देखिए, शिमला के काफी करीब मौजूद है. ऑल्दो शिमला बहुत फेमस एक हिल स्टेशन है, शिमला जैसे ही हमारे पास मनाली भी है, और भी ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जो फेमस हैं. लेकिन क्या ये जरूरी है जिस इंसान को सुकून मशोबरा में जाकर मिलने वाला है उसको शिमला में भी मिल जाए? बिल्कुल नहीं. हर इंसान का अलग टेस्ट होता है, हर इंसान को अलग चीजें चाहिए होती है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको क्राउडेड जगहें पसंद है, जिनको लोगों के बीच जाना, उनसे बातें करना, उनसे दोस्ती करना, उनके साथ फोटोज क्लिक करना, नए नए रिश्ते बनाना पसंद है. तो उनके लिए ये जो फेमस जगह है वो बड़ी हुई है, वो वहीं पर है. वहां पर आपको डेफिनेटली क्राउड मिलता है 12 के 12 महीने. लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी है जो जाना तो चाहते हैं नेचर के बीच में, बट जिन्हें सुकून चाहिए, तो मशोबरा उसका एक एग्जाम्पल है. तो आपको डेफिनेटली इस जगह को कंसिडर करना चाहिए अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह पर जाकर आपको वाकई में सुकून मिले. सो मशोबरा जगह का नाम है, क्योंकि बात हो रही है मशोबरा की. और जैसा कि मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ किया है कि एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड नहीं मिलता है देखने को, जहां पर लिटरली आप उस पीस को एंजॉय कर सकते हैं. तो बिना अपना वक्त गवाए चलते हैं पहली मंजिल की तरफ. पहली मंजिल जो मशोबरा के सफर में हमारी रहने वाली है, वो है रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी. ये एक ऐसी जगह है जहां पर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि एशिया का सबसे बड़ा वाटरशेड है, मतलब यहां से जो पानी की सप्लाई है वो शिमला जाती है. बट सिर्फ इतना काफी नहीं है, यहां पर जाकर बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. देखिए, पॉपुलर है पूरे कॉन्टिनेंट में, ये बिल्कुल हम एग्री करेंगे इस चीज से. बट इसके साथ साथ यहां पर बहुत सारे आपको ऐसी सराउंडिंग्स मिलती है जहां पर जाकर आपको सुकून मिलता है, लाइक कि हरे भरे जंगल, घने जंगल आपको यहां पर जाकर मिलते हैं. साथ साथ अगर अपने टाइम को आप एक बर्ड वॉचिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए यहां पर एक ऑप्शन है. आप यहां पर जा सकते हैं बर्ड

वॉशिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और सबसे अमेजिंग फैक्टर जो मुझे लगता है वो है यहाँ का वेदर, जो मतलब 12 के 12 महीने आपको सुकून देने वाला है। बहुत उम्दा यहाँ पर मौसम रहता है, मतलब ना बहुत ज्यादा ठंड होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और अगर यहाँ पर स्नोफॉल हो तो मतलब सोने पे सुहागा, आपकी निकल पड़ी लिटरली। तो बहुत मजेदार ये जगह है। एंड हाँ, वेदर का जो आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिलने वाला है वो ये है कि आप अपने कैंपिंग बैग्स जो है पैक करके निकल सकते हैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ। तो बस निकल जाइए अपने बैकपैक्स लेकर और जाकर एंजॉय करिए कैंपिंग दोस्तों के साथ, वहाँ पर बोनफायर के साथ साथ गिटार प्ले करिए, गाने गाइए, जो भी आपको ठीक लगे वो करिए। बट हाँ, अपनी दूरबीन अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा अतरंगी सा जानवर वहां से गुजर रहा हो जिसको शायद आपने कभी मैगजीन्स में देखा हो या फिर टीवी पर देखा हो, और आज वो लाइव आपके सामने है। तो अगर दूरबीन नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसे में दूरबीन अपनी अपने साथ लेकर जाए, साथ साथ बंदरों का ख्याल भी रखे, क्योंकि वो चुपके से आते हैं, सामान उठाकर ले जाते हैं। तो ये जगह है रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी, जहाँ पर बहुत सी अतरंगी चीजें होने वाली है, नेचर मिलने वाला है, एक लार्जेस्ट वाटरशेड आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक की यहाँ पर जरूरत है, और उसके बाद अपनी अगली जगह पर हम चलने वाले हैं, जो एक बहुत ही अमेजिंग लाजवाब जगह है। मुझे पता है आपको इंतजार नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं हो रहा है, अगली जगह है ही इतनी मजेदार। तो जिस जगह का मैंने जिक्र किया उसका नाम है क्रैगनैनो। क्रैगनैनो एक पिकनिक स्पॉट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली ये एक पूरा विला है, जो एक टाइम पर शेवलियर नाम के एक इंसान थे जो बहुत ही फेमस फोटोग्राफर थे इटली से, और उन्हें इंडिया का कल्चर इतना पसंद आया कि वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर उन्होंने एक विला बना दिया। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो अपनी रूट्स को भी कैसे छोड़ते ना, तो इसीलिए उन्होंने अपने इस विला को नाम दिया जो उनका टाउन था इटली में उसके नाम पर, यानी कि इटली में एक टाउन है क्रैगनैनो, उसी के नाम पर इस विला को जो है रखा गया। ऑल्दो जगह बहुत ही अमेजिंग है, आज यहाँ पर लोग जाते हैं, स्टे भी करते हैं, और बहुत ही मजेदार फील जो है लेकर आते हैं। विला आपको लिटरली ऐसा लगने वाला है, बताऊं तो जैसे सिंगापुर में कभी आपने देखी हो कुछ इमेजेस जहां पर स्नोफॉल होती है, तो बहुत ही अमेजिंग एक मौसम हो जाता है, और घरों के ऊपर जो बर्फ गिरती है तो बहुत अच्छा सा लगता है। सो लिटरली ये वैसा है, और सही बता रहा हूं, इसको आप किसी ऑर्डिनरी विला की तरह कंसिडर मत करिएगा, क्योंकि ये एक अच्छी खासी हाइट पर मौजूद है, यानी 7700 फीट की ऊंचाई जो है इसकी है। यहां से आपको बहुत ही घने जो है पाइन और ओक के जो है फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यहां पर बहुत ही अमेजिंग आपको घर बने हुए देखने को मिलते हैं, साथ साथ यहां पर आप बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स को जो है वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक जैसे कि यहां पर आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो यहां पर आपको ऑप्शंस देती है, आप उनको जाकर एक्सपीरियंस करें। तो जगह का नाम है क्रैगनैनो, यहां पर भी जरूर जाइएगा। एंड जब जाए तो एक मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूं, अपना फोन अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां पर कैप्चर करने वाले होंगे। चलिए दोस्तों सफर को आगे बढ़ाएंगे। मशोबरा की बात हो रही थी, मशोबरा के सफर पर आज हम निकले हैं। तो मशोबरा में एक बहुत ही ग्रैंड होटल अवेलेबल है जहां पर आप जा सकते हैं। होटल का नाम है वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल। देखिए मैं अपने शो में होटल्स की बात तो नहीं करता हूं, आप यही सोच रहे होंगे, डेफिनेटली आज भी मैं नहीं करने वाला था, लेकिन इस एक जगह ने मुझे मजबूर कर दिया। आप यहां पर स्टे करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, बट हां यहां आप एक बार जाकर बाहर से जरूर देखिएगा इस होटल को, क्योंकि होटल बहुत ही कमाल है, और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये भी मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। ऑरिजिनली एक टाइम पर ये रेजिडेंस हुआ करता था वहां के लॉर्ड किचनर, जो खार्टोम के लॉर्ड किचनर थे उनका, और इस बिल्डिंग को बहुत पहले बनवाया गया था। एग्जैक्ट डेट मेरे सामने यहां पर नहीं है, लेकिन 1993 में इसमें आग लग गई थी। ये इस होटल का जो है एक मैं कह सकता हूं कि अलग पार्ट है। आग लग जाने के बाद इसको वापस से जो है रिस्टोर किया गया, सारी चीजें जो भी आर्किटेक्चर उस टाइम पर लगाए गए थे, यानी कि सपोज इसको 1800s में अगर बनवाया गया था, 1993 में अगर इसमें आग लगी, तो 150 साल पुराना आर्किटेक्चर वापस से रिस्टोर किया गया। ये इस होटल की जो है यूनिक चीज है। ऑल्दो अगर आज की बात करें तो एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स का। यहां पर आप जा सकते हैं, और यहां पर बाहर एक ना गार्डन मौजूद है जो बहुत ही अमेजिंग है, लाजवाब है। लिटरली जब आप यहां पर खड़े होंगे आपको ये नहीं लगेगा कि आप इंडिया में हैं, आपको लगेगा कि यार मैं मतलब कहीं आ गया हूं, और आपको प्राउड वाला फील जो मिलने वाला है कि यार मैं कोई किंग विंग मतलब कोई ऐसा बाहुबली शाहुबली हो गया जो इतनी बड़ी जगह पर खड़ा हो। ये मोमेंट आपको ये होटल देता है, साथ साथ यहां पर खड़े होकर आपको जो व्यू मिलने वाला है वो पूरे शहर का मिलने वाला है। बर्ड आई व्यू अगर आपको चाहिए पूरे शहर का, तो वो भी आपके लिए एक रीजन हो सकता है जो आपको यहां पर ले जाए और यहां जाकर आप खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो। वेल, इसी के साथ अगली जगह की अगर बात करूं, जगह का नाम है जाखू टेम्पल। हनुमान जी का टेम्पल है। जब भी बात शिमला की होती है, जिक्र जब भी शिमला का किया जाता है, तो सबसे पहले एक जो इमेज हमें दिखाई जाती है और हमारी नजर में भी आ जाती है अगर कभी हम शिमला गए हैं, तो वो है हनुमान जी का बड़ा सा स्टैच्यू। बिल्कुल आनी चाहिए क्योंकि यूनिक पॉइंट है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हनुमान जी का जो स्टैच्यू है वो यहां पर मौजूद है। बट
सिर्फ इतना काफी नहीं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है ऑफ कोर्स है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाइक जब आप यहाँ इस मंदिर तक पहुंच रहे होंगे तो आप बहुत सारे नेचर के बीच से होकर गुजरेंगे, और जब आपको उन पहाड़ों की खुशबू और उन पेड़ों की खुशबू आपकी नाक के जरिए होते हुए आपके दिल तक पहुंचेगी तो आपको सुकून मिलने वाला है। वो जो फील ऑफ फुलफिलमेंट है वो आपको मिलने वाला है इस जगह पर जाकर। तो यहाँ पर जाइएगा और आकर मुझे बताइएगा कैसा आपको लगा। वेल, बहुत सारे लोग हैं जो होकर आए होंगे क्योंकि ऑफकोर्स ये शिमला में मौजूद है, जाइएगा जरूर। और अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है महासु पीक एंड फेयर। अगर आप लिटरली बहुत छोटी छोटी चीजों को और जो कल्चरल चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करने के बहुत बड़े फैन है तो ये जगह आपके लिए है। इवन मैं कहूंगा ये जगह आप ही के लिए है, बिल्कुल ये जगह आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मई के महीने में जाएंगे तो आपको बेस्ट वर्जन उस चीज का मिलने वाला है, यानी कि बेस्ट जो चीजें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है महासु जटारा, जो होता है थर्ड ट्यूजडे ऑफ मई, जो भी मई का थर्ड ट्यूजडे होता है उस ट्यूजडे को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे चीफ गेस्ट आते हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं, साथ साथ यहाँ पर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपका मन मोह लेंगी, जैसे कि वहाँ के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, जैसे कि वहाँ का ट्रेडिशनल डांस, और सिर्फ वहाँ का नहीं अलग अलग जगहों का। अगर आप हरियाणा से हैं और आप कुछ रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। साथ साथ अगर आपको किसी और स्टेट का अगर डांस वहाँ पर देखना है या कोई और कल्चरल चीज देखनी है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे पेंटिंग बनाने के शौकीन है या फिर उन्हें तीरबाजी का शौक है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी यहाँ पर कराई जाती है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं, पर जगह का नाम आपको अभी लिखना होगा, महासु पीक एंड फेयर। यहाँ पर जाइएगा, मई के महीने में आपके लिए बेस्ट होने वाला है, बट स्टिल अगर आप वो एक चीज जो है आपको नहीं एक्सप्लोर करनी है तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास मशोबरा में एक्सप्लोर करने को। और इसी फैक्टर को आगे बढ़ाते हुए अगली जगह पर हम चल रहे हैं जिसका नाम है रिट्रीट बिल्डिंग। ये छाराबारा में मौजूद है, एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करूं मशोबरा से थोड़ी सी दूरी पर है ये, बट हाँ एक टाइम पर ये जो है इंडियन प्रेसिडेंट का रेजिडेंस हुआ करता था। इसको 1850 में बनवाया गया था, और जब इसको बनवाया गया था ये एक मेजर अट्रैक्शन था जो लोगों को विवश करता था कि वो दूर दूर से घूम कर जाए और शिमला जाकर या फिर इस एरिया में जाकर स्टे करें। ये बहुत बड़ा एक टाइम पर अट्रैक्शन हुआ करता था, और आज भी अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आज वो अट्रैक्शन नहीं है, बट हाँ आज शायद आप उससे उतना कनेक्ट ना कर पाए। जो चीजें आज आपको वहां पर देखने को मिलती है वो शायद आमतौर पर आपको देखने को मिल जाती है शहरों में। यूजुअली क्या होता है क्योंकि आर्किटेक्चर अब जो है काफी, मैं कहूंगा कि उसको काफी जो है एक्सपोजर मिल चुका है, बट यहां पर जाइए पुराने टाइम का आर्किटेक्चर जो आपको देखने को मिलेगा वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। वेल, अगर इसके हाइलाइट्स की बात करूं तो यहां पर वुडन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है विद दज्जी वॉल कंस्ट्रक्शन, ये एक टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था। आप जाइए और जाकर देखिए। और पर्सनली अगर बात करूं तो प्रेसिडेंट भी ना ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करते थे कि वो अपना टाइम यहां पर गुजारे, इसलिए समर हॉलीडेज का वो वेट किया करते थे उस टाइम पर और यहां पर आकर वो रहते थे। आप जाइए, जाकर देखिए, आपका जो भी अनुभव हो मुझे बताइएगा। वेल, अगर आप हिस्ट्री से प्यार करते हैं तो आपका अनुभव बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पर्सनली मैं करता हूं नेचर और हिस्ट्री से, और यहां पर दोनों ही चीजें हमें मिलती है। नेचर के बीच में ऐतिहासिक चीजें हमें एक्सप्लोर करने को मिल रही है। अब आपको देखना है जाकर कि आपको कैसा लगा। चलेंगे, शो को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही थी हमारे सफर की, जहां पर हमने बहुत सारी चीजें कवर करी हैं, और आज हम चलेंगे मशोबरा के सफर पर। अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है तत्तापानी। तत्तापानी अपने नाम से बहुत कुछ आपको क्लियर कर रहा है। तत्तापानी बेसिकली एक गांव है जो 60 किलोमीटर दूर है शिमला से, मतलब मशोबरा से इतना दूर नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट इतना आपको 40-50 इतने पड़ने वाला है। पर अगर आप इतनी दूर गए हैं तो यहाँ पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है भगवान शिव का वरदान है वहां पर एक तालाब को, वहां पर गर्म पानी आता है 12 के 12 महीने, और लोकल विलेजर्स से अगर आप पूछेंगे तो उनके हिसाब से ये बेस्ट प्लेस है पूरे रीजन में अगर आपको जो एक्सप्लोर करनी है तो। सो यहाँ पर जाकर यूजुअली लोग बोलते हैं ऐसा कि उनका जॉइंट पेन, उनका और कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो जाती है, दूर हो जाती है। तो भाई आप भी जाइए और जाकर देखिए कैसा आपको लगता है। इसके साथ साथ एक और जगह जिसका नाम है शाली तिब्बा। शाली तिब्बा एक और विलेज है जो शिमला से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और मशोबरा की बिल्कुल जड़ में मौजूद है। यहां से आपको बहुत अमेजिंग व्यू मिलता है। सो व्यू के लिए आप यहां पर जा सकते हैं, 360 डिग्रीज व्यू आपको यहां पर मिलता है, कुफरी का, फागू का, शिमला का, डारकंदा हिल्स का। 2873 मीटर की हाइट पर यह जगह मौजूद है, और यहां पर एक मंदिर भी है जहां पर लोग जाते हैं और जाकर पूजा प्रार्थना करते हैं। तो ये थी वो सभी जगहें जो मशोबरा में हमें कवर करनी थी। आई गेस हम कर चुके हैं सारा कुछ कवर। सो अब आपका वक्त है वहां पर जाने का। आप जाइएगा और आकर मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेल,
देखिए मैं एक होस्ट हूँ, मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो रिसर्च करके लाता हूँ, कोशिश करता हूँ अलग अलग फ्लेवर्स उसमें डालने की। माइट भी कुछ चीजें आपको इनमें से पसंद आएंगी और कुछ चीजें शायद आपको नहीं आएंगी पसंद, क्योंकि वो आपके टाइप की नहीं होंगी। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे टेस्ट हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें जो है कवर करनी होती है। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई जगह आपको आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मिली होगी। वेल फिलहाल मेरा वक्त हो चला है शो को यहाँ पर खत्म करने का, तो मैं चलता हूँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा लेकर शो को। तब तक के लिए गुड बाय।

0: जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे सागर, लेकर आ चुका हूं प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, जहां पर हम लोग बात करते हैं हर एक एपिसोड में एक नई कंपनी की, यानी कि केस स्टडी के तौर पर हम एक शो लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें आपको हम बताते हैं कंपनी के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंडस्ट्री को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये कंपनी क्या करती है, किस एक मार्केट सेगमेंट में डील करती है, कंपनी का फाउंडर्स कौन है, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से रिसर्च करके एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझा पाए। तो यहाँ पर फिर एक बार लेकर आ गए हैं एक और नई केस स्टडी आपके लिए। बात करेंगे कौन सी कंपनी है, कौन सा मार्केट सेगमेंट है, सब कुछ अच्छे से विस्तार से आपको बताएंगे। बस आप इतना करिए, अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी। तो कंपनी के बारे में बात करने से पहले हम इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहेंगे, जिस इंडस्ट्री में हमारी आज की ये कंपनी जो है वो डील करती है। तो इंडस्ट्री का नाम है एग्रीटेक इंडस्ट्री। अब मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई काफी पुरानी भी है और काफी नई भी है। तो पुरानी इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा है एग्रीकल्चर आगे बढ़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये बोलूं कि इवोल्यूशन में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था ही एग्रीकल्चर का, बिकॉज जब हमें ये समझ में आ गया था कि अब हम खाने को उगा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक, तो उसके बाद हमने बाकी चीजों में काम करना शुरू किया, जैसे कि साइंस, जैसे कि पॉलिटिक्स, जैसे बाकी जो भी चीजें हमारे पास हैं उनके ऊपर हमने काम तब करना शुरू किया जब हमारे पास टाइम था और हमारे पास इतना एक सुकून था कि चलो पेट तो भर जाएगा, खाना हमने स्टोर कर लिया है। और नई इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत नई है। अब एग्रीकल्चर में अगर टेक्नोलॉजी

लेकर आया जाए तो यकीन मानिए कितनी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो तो एक पॉइंट है, साथ साथ कितनी तेजी से तरक्की हो सकती है, कितनी तेज रफ्तार के साथ देश को आगे लेकर जाया जा सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है और आज की डेट में हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। लेकिन अब से कुछ टाइम पहले तक भी किसान जो है वो पुरानी जो ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल मेथड्स हुआ करते थे उनको यूज करके हार्डवर्क करते थे, जिसमें क्या होता था कि इनपुट बहुत ज्यादा होता था, आउटपुट उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। मतलब एफर्ट्स बहुत है, मेहनत बहुत है, लेकिन उस लेवल की क्रॉप्स नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है, तो काइंड ऑफ वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता था। तो उन एफर्ट्स को कम करने के लिए टाइम टू टाइम टेक्कोस में इनरोल करते रहे हैं लोग, और जिसका परिणाम है आज हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हो गई है। फॉर अ टाइम बीइंग अभी चल रहा है, लेकिन आगे चलकर ये चीजें और एक्सपेंड होने वाली है और मल्टीप्लाई होने वाली है। तो एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया गया, दैट्स हाउ ये एक नई इंडस्ट्री बन जाती है, एग्रीटेक। एग्रीटेक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, या फिर आप कह सकते हैं एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है, जहां पर टेक्नोलॉजी मल्टीपल चैलेंजेस को एड्रेस करती है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। हमारी जो आज की कंपनी है वो भी ऐसा सा ही कुछ करती है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जो गोल है वो है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना, और साथ साथ फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करना, सो दैट इसको एक सस्टेनेबल मोड बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आउटपुट ले पाए मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो ये है अल्टीमेट गोल एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने का। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री का नाम है एग्रीटेक, यानी कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को मिलाकर कुछ अगर बनता है तो बनता है एग्रीटेक। अब इसमें आप छोटा सा ओवरव्यू अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ है हमारे साथ साथ, और नई नई प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आई हैं। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ के निकाले हैं, जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग, जैसे कि फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो फार्मर्स के लिए जरूरी होती हैं। समटाइम्स उनके पास इतने पैसे नहीं होते, जिसको आप अगर बिजनेस फॉर्मेट में समझे तो कैपिटल उतना नहीं होता कि इन्वेस्ट कर सके, तो ऐसे में उनको अगर थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है सो दे कैन डू मच बेटर। उसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीजें भी है हमारे पास, जिसमें किसानों की काफी हेल्प हो जाती है, न सिर्फ क्रॉप्स को समझने में बल्कि कुछ नया क्रिएट करने में, कुछ ऐसा इनोवेटिव सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। तो इंडस्ट्री का जो एम है वो है इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा हम रेजिलियंट, एफिशिएंट और सस्टेनेबल बना सकें। ये है इस पूरी एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू, छोटे से रेफरेंस के तौर पे, बहुत छोटे माइन्यूट लेवल पे जाता हूँ यहाँ पे। और ये मैं जा रहा हूँ कि कुछ साल पहले जब किसान बैल का इस्तेमाल किया करते थे हल चलाने के लिए, अब वो चीज ठीक थी लेकिन फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा था उसमें, बहुत ज्यादा फिजिकल उनके एफर्ट्स लगते थे। तो उसके बाद ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर इनोवेट हुआ तो उससे काफी हेल्प हुई, जो बैल थे उनको बाकी कामों में यूटिलाइज किया गया, एंड जब ट्रैक्टर आया तो उनको बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करना पड़ा। ऐसे करते करते कि चीजें भी बदल रही हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी काफी चेंज हो जाती है, हर एक रीजन में अलग तरह का एक सॉइल होता है जहां पर अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। जैसे कश्मीर जैसी जगहों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ठंडे इलाके होते हैं, तो आप सेब, केसर, इस तरह की चीजें ज्यादा उगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ पर गेहूं, चावल, इनकी खेती थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं पर अगर आप राजस्थान जैसी जगहों की बात करते हैं तो वहां पर बाजरे की खेती थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस तरीके से अलग अलग चीजें बटी हुई हैं, क्योंकि सॉइल जिस तरीके का होता है उसी तरीके की फसल वहां पर उगाई जाती है। अब इसको और प्रिसाइजली समझने में जो हेल्प होती है वो टेक्नोलॉजी करती है। वहीं पर एक और चीज होती है, फार्मर शायद रिलेट कर पाएंगे, खेतों की लेबलिंग की जाती है, जो मिट्टी होती है उसको इक्वल किया जाता है। अब उसको पहले मैन्युअली किया जाता था, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि आप एक बटन दबाएंगे और पूरे खेत को वो एक लेवल में कर देगा विद इन अ फ्यू आवर्स। तो ऐसी टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प करी है, और बहुत बड़े पैमाने पर हमने इवोल्यूशन देखा है खेती बाड़ी का। अभी ये आलम है कि आप हरियाणा में, इवन यूपी में आप जाकर देखेंगे कि जैसे ही गेहूं कटते हैं लोग मूंग की दाल जो है वो बो देते हैं, उससे उनको काफी मुनाफा हो जाता है, एक थर्ड सोर्स बन जाता है उनकी इनकम का, यानी कि चावल और गेहूं के बीच में एक तीसरी फसल उगा दी गई। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तरबूज जैसी चीजें उगा देते हैं। तो ये हमने छोटे छोटे इनोवेटिव चीजें ढूंढ रखी है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी हेल्प करती है सॉइल को समझने में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके साथ डील करना होता है। जो हमने क्रॉप उगाई है वहां पर उसकी हेल्थ कैसी है,
और ये एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि कितनी फसल जो है इस बार निकल के आने वाली है, उसमें और प्रिसाइज हम हो जाते हैं कि ठीक है इस बार हम ये बजट लगा सकते हैं, इतना हो सकता है, या इसमें इतने एफर्ट्स हम और मार सकते हैं, या फिर इन प्लांट्स की जो आप कह सकते हैं पोटेंशियल है वो इतनी है। तो ऐसे करके किसानों की बहुत हेल्प हो जाती है। आपने अपडेट्स में ये भी देखा होगा कि कई जगह पर बहुत तेज बारिश हो गई, या फिर ओलावृष्टि हो गई, या फिर कहीं पर लंबे टाइम तक बारिश ही नहीं हुई, तो वहां पर फसल पूरी खराब हो गई। ऐसी भी चीजें सामने आती हैं, ये बहुत दुखद चीजें होती हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए काम करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे इस एक इंडस्ट्री के की ड्राइवर्स की, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से एग्रीटेक जो है वो चल रही है और इतना तेजी से ग्रो कर रही है। पहला है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसमें आप डेटा का यूज करते हैं, जीपीएस का यूज करते हैं, आईओटी का इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मॉनिटर किया जा सके और फार्म पर होने वाले सारे ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके। इसमें बहुत सारे की प्लेयर्स हैं, कुछ नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा, फैजल है, क्रॉपलिन है, देहात है, ये सब जो स्टार्टअप्स हैं ये फोकस कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके, कैसे डेटा को यूज करके जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प की जा सकती है, कैसे उनके फार्म में होने वाले डे टू डे एक्टिविटीज, चाहे वो खेती बाड़ी है, चाहे वो पशुपालन है, उनको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। देन सेकेंड इज सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेजेस। अब बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो फार्मर्स को कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली बायर्स के साथ, जिसमें मिडिल मैन का कमीशन कम हो जाता है, या वो जो किसान को होने वाला मुनाफा जो मिडिल मैन की जेब में चला गया वो डायरेक्ट अब किसान के पास आ जाता है, जिसमें इंश्योर कर लेता है किसान कि उसको उसकी जो फसल है उसका बेस्ट प्राइस मिला है। ऐसे में कुछ कंपनीज डील करती हैं निंजा कार्ट, वे कूल, जम्बो टेल। निंजा कार्ट हमारी आज की कंपनी, जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट इस एक चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। अभी तक क्या होता था कि किसान फसल उगाते थे, उसको काटते थे और उसको जो आढ़ते हुआ करती थी वहां पर ले जाकर उसको बेचते थे। इनफैक्ट अभी भी वही प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस बन चुकी हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो किसानों को डायरेक्ट अपने साथ एनरोल करते हैं और उनकी खेती को डायरेक्ट बिकवाते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप बायर्स या रिटेलर्स के पास जा सकते हैं अपनी फसल को लेकर जो भी आपकी निकल के आई है। तो ऐसे में मुनाफा आपका ज्यादा हो जाता है। अगर आप आढ़त की बात करेंगे तो आढ़त पहले उनसे लेगी, उसको सरकार को बेचेगी या आगे चलकर रिटेलर्स को बेचेगी, वहां पर एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन उसमें मल्टीपल मिडलमैन जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें किसान का जो मुनाफा है वो कम हो जाता है, जबकि सारा आउटपुट, सारी मेहनत, सारा इनपुट सब कुछ किसान का था। सो अल्टीमेटली उसके पास ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होना चाहिए। इस एक प्रॉब्लम को फिक्स करते हुए ये कंपनीज आई है, जिनमें हमारी आज की कंपनी भी डील करती है। देन उसके बाद है फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे टूल्स बना दिए गए हैं जो किसानों की हेल्प करते हैं उनके ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंटली करने में। ऐसे में कुछ मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा, कृषि हब, फार्म ईआरपी। देन नेक्स्ट मेजर सेगमेंट है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब ऐसे बहुत सारे सीड्स इनोवेट कर लिए गए हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स इनोवेट कर लिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल जो हैं वो इनोवेट कर लिए गए हैं जो खेती को बढ़ाते हैं, साथ साथ कीटनाशक के तौर पे भी काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पर्टिकुलर यही चीजें बना रही हैं, इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, जिससे खेती ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सके। क्योंकि आज भी दोस्तों आप रूरल एरिया में जाएंगे तो मेजर सोर्स आपको जो देखने को मिलेगा इनकम का वो अभी भी खेती है, और अगर खेती नहीं होगी तो हमारा खाना कहां से आएगा। इसलिए अल्टीमेटली हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाना हम सब लोग खाते हैं, चाहिए हम सबको, लेकिन उसको जो उगा रहे हैं उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको फिक्स करना भी जरूरी है। देन इसके बाद नेक्स्ट मेजर सेगमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फार्मर्स को कई बार लोन चाहिए होते हैं, फार्मर्स को कई बार क्रेडिट चाहिए होता है, तो ऐसे में कुछ कंपनीज हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो उनको ये सब सुविधाएं जो है प्रोवाइड करती हैं। इंश्योरेंस से ये होता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जो फार्मर्स की इस एक डायरेक्शन में इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रही हैं कि लेट्स से उन्हें मिड फसल में पैसों की जरूरत पड़ गई तो ठीक है आपको मिल जाएगा, जैसे कि इंश्योरेंस कराना है फसल का, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है तो ऐसे में इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा अगर फसल जस्ट इन केस खराब भी हो जाती है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जिनकी वजह से ये जो एग्रीटेक है ये निकल के इतना सामने आया है और इतना तेजी से ये ग्रो कर रहा है। हालांकि साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो एट द सेम टाइम सबके होते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे। बट फिलहाल अभी मैंने आपको बताया कुछ मेजर सेगमेंट्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेज, फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बिना किसी देरी के जिस इंडस्ट्री की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्रीटेक, उसके कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला चैलेंज आता है सबसे बड़ा जो है वो है एडॉप्शन एंड अवेयरनेस का।
जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या चीजें की जा रही दुनिया में। जैसे अगर मैं बात करूं आज की कंपनी की, जो है निंजा कार्ड। अब निंजा कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो डायरेक्ट रिटेलर्स से कॉन्टेक्ट कर सके, लेकिन अब जब फार्मर्स को पता ही नहीं है इसके बारे में तो कैसे वो उस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे, कैसे नई टेक्नोलॉजीज उनकी हेल्प कर पाएंगी। बिकॉज अल्टीमेटली उसको इनोवेट कर देना इज वन थिंग, लेकिन जन जन तक पहुंचाना, उनके फोन तक लेकर आना, उनको उसकी आदत लगाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सेकंड थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है तो वहां पर उतने इफेक्टिव तरीके से एग्रीटेक सॉल्यूशंस को नहीं एनरोल किया जा सकता। एज इन अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी मशीन्स हैं और लेट्स से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे वो काम करेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो बहुत सारी जगह पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरऑल यही सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, मैं कह रहा हूं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। ऑन एन एवरेज जो चैलेंजेस हैं मेजर, वो हम यहां पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। छोटे या फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो है थोड़ा मुश्किल बना देते हैं सिचुएशन को, जब बात होती है किसी भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को एक लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एक पर्टिकुलर या तो ढर्रे में खेत नहीं होते हैं, पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में खेत नहीं देखने को मिलते हैं, या मिलते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग जगह पर डिवाइडेड होते हैं। इसलिए कुछ ऐसी चीजें जो एक लंबे एरिया पे अगर इम्प्लीमेंट करें तो ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, इसलिए वहां पर वो एक चैलेंज आता है। देन उसके बाद कुछ रेगुलेटरी के हर्डल्स होते हैं, कुछ चीजें हैं जो अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको लेकर शायद आने वाले टाइम में बहुत सारी नई रेगुलेशंस जो है बनाई जाएंगी, नई गाइडलाइंस इश्यू की जाएंगी, बट अभी तक जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बिकॉज बहुत सारी चीजें नई है हमारे लिए, अभी डील कर रहे हैं या सीख रहे हैं। जैसे जैसे चीजें साबित होती जा रही है, प्रूव होता जा रहा है कि चलो ये ठीक है, ये देश के लिए ठीक है, किसानों के लिए ठीक है, तो उन तमाम चीजों को रेगुलेट कर दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई चैलेंजेस की। अब बात करते हैं आज की कंपनी की, जिसका नाम है निंजा कार्ट। निंजा कार्ट एक बहुत ही इनोवेटिव एग्रीटेक स्टार्टअप है। अभी तक आप एग्रीटेक को अच्छे से समझ चुके हैं एंड आई होप कि अब मुझे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लगभग सभी चीजें हमने कवर कर दी हैं। आपको इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे दिया है, की ड्राइवर्स आपको बता दिए हैं, मेजर सेगमेंट्स आपको बता दिए हैं, उसके साथ साथ आपको चैलेंजेस के बारे में भी बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कंपनी की, जिसका नाम है निंजा कार्ट। सो निंजा कार्ट एक ऐसे मॉडल पर काम करती है कंपनी जो फार्मर्स को डायरेक्ट मिलवाती है बायर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, मतलब मिडिल मैन को कम किया जाता है। मतलब इसको आप अगर समझना चाहें तो थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेजेस की, तो सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेजेस वाली जो प्रॉब्लम है उस सेगमेंट की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आई है ये कंपनी, जो किसानों के लिए बहुत ही कारगर है। लेकिन प्रॉब्लम अगेन मैं बता रहा हूँ कि चैलेंजेस हैं हमारे सामने, क्योंकि अभी किसानों को पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। अभी जाकर किसी को वहां पर बताना होगा या फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो वर्ड ऑफ माउथ होता है उसके थ्रू पहुंचेगा, बट इट विल टेक सम टाइम अगेन। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, एक अच्छा आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी मेथड है, जहां पर किसानों की जेब में जाएगा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, डायरेक्ट वो मिल सकते हैं बायर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, और ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी फार्मिंग को। दैट्स हाउ उनका एक मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा, साथ साथ वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ अपनी खेती के ऊपर ध्यान देंगे, और अब उन्हें पता है कि बेचना कैसे है, तो उनके लिए वो भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। सो दैट्स ऑल निंजा कार्ट इज डूइंग। दोस्तों आज की जो इंडस्ट्री है वो है एग्रीटेक, उसके बारे में सब कुछ आप लगभग जान चुके हैं, मतलब इन डेप्थ तो हम नहीं गए हैं, बट ओवरव्यू आपको मिल गया अच्छे से, जो जो उसमें मेजर आप कह सकते हैं पिलर्स हैं उस इंडस्ट्री को ड्राइव करने वाले, और जो जो सेटबैक्स हैं साथ साथ वो भी हमने आपको बता दिए। कंपनी के बारे में आपको हम बता चुके हैं निंजा कार्ट के बारे में, अब थोड़ा सा बात करेंगे हम फाउंडर्स के बारे में, बिकॉज रियल हीरोज ये लोग होते हैं जो इन कंपनीज को स्टार्ट करते हैं। तो निंजा कार्ट 2015 में स्टार्ट की गई और इसको 6 लोगों ने स्टार्ट किया था। पहला नाम है थिरुकुमारन नागराजन, दूसरा नाम है शरत लोगनाथन, तीसरा नाम है आशुतोष विक्रम, चौथा नाम है कार्तिस्वरन के, पांचवा नाम है वासुदेवन चिन्नाथाम्बी, और छठा नाम है शोभित जैन। ये जो फाउंडर्स हैं ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ को टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कुछ बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो सब लोगों ने अपने अपने एंड पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। दैट्स हाउ ये कंपनी इतनी बड़ी बन पाई और कंपनी स्टार्ट होकर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है फिक्स कर पा रही है। अगर यहां पर पहले नाम की बात करें जो है मिस्टर थिरुकुमारन नागराजन, वो इस कंपनी के सीईओ एंड को फाउंडर हैं। इनके अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने, एंड साथ साथ बिजनेस का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है क्योंकि मल्टीपल स्टार्टअप्स पहले कर चुके हैं। सेकंड नेम शरत लोगनाथन, ये हैं हेड ऑफ सप्लाई चेन एंड को फाउंडर।
इनकी एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी में एंड लॉजिस्टिक्स में, एंड एग्जैक्टली वही एक चीज है जिसको ये कंपनी एड्रेस करती है, वही एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ये कंपनी लेकर आई है फार्मर्स के लिए। तो इसमें लॉजिस्टिक्स के ऊपर बहुत स्ट्रांग होल्डिंग की जरूरत होती है, एंड ये कंपनी अगर सक्सेसफुल हो पाई है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब लोग अपने अपने एरियाज में कितने माहिर होंगे। तीसरा नाम है आशुतोष विक्रम, ही इज द CTO एंड को फाउंडर। ये टेक्निकल प्रोसेस लेकर आते हैं, टेक्निकल पावर जो है वो इनके पास है, तो इसलिए एक स्ट्रांग होल्डिंग है इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और टेक्निकल जो भी टर्म्स होती है कंपनी की उन सबको ये देखते हैं। देन उसके बाद अगला नाम है वासुदेवन चिन्नाथाम्बी, ही इज द VP ऑफ ऑपरेशंस एंड को फाउंडर है। ये फोकस करते हैं जितने भी ऑपरेशनल टास्क होते हैं उनके ऊपर। देन उसके बाद अगला नाम है कार्तिस्वरन KK, ही इज द COO एंड को फाउंडर। इनका भी एक स्ट्रांग बैकग्राउंड है इन ऑपरेशंस। देन उसके बाद लास्ट नेम है शोभित जैन, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड को फाउंडर। ये मैनेजमेंट एक्सपर्टीज लेकर आते हैं। तो ये अभी आपने जाना कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हुए जो लोग हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज लेकर आते हैं जो लोग एक टेबल पर, वो मिलाकर कैसे कमाल करते हैं। अब एक ऐसी प्रॉब्लम जो कई सालों से चली आ रही है, मतलब किसानों के साथ बहुत पहले से ये सब चला आ रहा है, पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है। किसान जो है वो खेतीबाड़ी करेगा, वो फसल उगाएगा, फसल काटेगा, देन उसके बाद उस फसल को एक ठेकेदार तक पहुंचा देगा, या एक आढ़ती तक पहुंचा देगा, या एक मिडल मैन तक पहुंचा देगा, आगे चलकर वो डील करेगा फिर इन सब के साथ। तो ऐसे में उनका मुनाफा कम हो जाता है, जबकि मेहनत सबसे ज्यादा उन्होंने ही करी है उसके लिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे लोग हैं जो ढूंढ कर लाए हैं और काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो ये वो छह लोग, ये छह वो आप कह सकते हैं हीरोज हैं जिन्होंने किसानों के लिए करने का सोचा कि चले कुछ अच्छा करते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम मार्केट को अच्छे से समझ चुके हैं, एग्रीटेक को, हम निंजा गार्ड को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हम फाउंडर्स के बारे में जान चुके हैं, फाउंडर्स का एक्सपीरियंस भी हम समझ चुके हैं, और अभी तक इतना भी हमें समझ में आ चुका है कि ये मार्केट कितनी पुरानी है और क्या क्या चीजें हैं अगर हम टेक यहां पर लेकर आते हैं तो क्या बैरियर्स हमारे सामने आते हैं, और जो इसके की ड्राइवर्स हैं वो क्या क्या हैं। अब इसी के साथ हम बात करेंगे निंजा गार्ड के बिजनेस मॉडल की। तो देखिए, निंजा गार्ड ने एड्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम को किया जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। जैसे कि एक मेथड बना हुआ था कि किसान अगर फसल उगाएगा, फसल को काटकर वो जाकर एक सर्टेन पॉइंट है जो फिक्स्ड है, वहां नियर बाय जितने भी एरियाज हैं वो सब किसान उस एक पॉइंट पर जाएंगे और वहां पर जाकर अपनी फसल को बेच देंगे और जो उन्हें दाम मिलेगा वो फिक्स होगा। अब उसके बाद आगे वो इंसान जाने जिसने फसल को लिया है उनसे, लेट्स से गेहूं की अगर बात करता हूं, तो वो इंसान गेहूं को स्टोर करेगा, सरकार को बेचेगा, आगे रिटेलर्स को देगा, वो उसका खुद का एक व्यापार है वहां पर। अब ऐसे करके बहुत सारे मिडल मैन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है सबका अपना एक इंसेंटिव होता है, तो वहां पर किसान का जो मुनाफा होता है उसको आप कह सकते हैं कि वो काफी कम हो जाता है। इस एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया निंजा गार्ड ने, जिसकी वजह से किसान को सही मूल्य प्राप्त हो, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंस्पायर हो और वो टेक की तरफ भी आए और खेती के ऊपर और ज्यादा फोकस करें और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से, नए इनोवेटिव तरीके से कुछ लेकर आए। हालांकि इसके बहुत सारे रेफरेंसेज हम आपको अपने जो हमारा मंडे टू फ्राइडे शो होता है टैक्सी नंबर 1078 शाम को 5 से 8, उसमें कई बार दे चुके हैं कि कैसे कैसे लोग नई चीजें लेकर आते हैं और अपनी रूट्स को अपलिफ्ट करते हैं। अब यहां पर निंजा गार्ड ने क्या किया कि फार्मर्स और जो रिटेलर्स हैं डायरेक्ट उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर दिया, जिससे क्या हुआ मिडिल मैन वहां पर काफी कम हो गए। अब डायरेक्ट जो किसान है वो रिटेलर को अपना सामान बेच सकता है। इसी के साथ मल्टीपल मिडिलमैन जो इन्वॉल्व थे उनको वहां से हटा दिया गया, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किसान के पास आए और एक फेयर अमाउंट उसके हाथ में हो एट द एंड ऑफ द क्रॉप, ताकि उसके पास मोटिवेशन हो वो नेक्स्ट ईयर अच्छे से और फसल को उगा सके। अब इसी के साथ रिटेलर्स को भी एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको फ्रेश फूड मिल जाता है, आपको ताजा फसल मिल जाती है जिसके ऊपर पेस्टिसाइड्स नहीं लगे हुए हैं, जिनको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं किया हुआ है, सीधा खेत से आ रही है, सीधा फार्मर की तरफ से आ रही है, और प्राइस भी उनको उतना ज्यादा पे नहीं करना होता है। अब इसका एक दूसरा फायदा रिटेलर्स को भी तो होगा ना, क्योंकि उसको भी मिडिल मैन को पे करना होता था। लेट्स से कि अगर वो उस एक सर्टेन पॉइंट से खरीद रहा है जहां पर किसान ने बेची थी, तो वो सर्टेन पॉइंट वाला जो बंदा है, अब आप उसको आढ़ती बोल लें या ठेकेदार बोल लें, जो भी है वो अपना इंसेंटिव रखेगा, वो रिटेलर से भी लेगा, फार्मर से भी लेगा। दैट्स हाउ ये पूरा लूप चल रहा था। अब इसको फिक्स किया निंजा गार्ड ने, जिसने लिटरली बहुत सारे फार्मर्स को काफी प्रोत्साहित किया, काफी इंस्पायर किया ताकि वो काम कर पाए।
इसी के साथ एक और चीज है जिसको निंजा कार्ड ने एड्रेस किया, दैट इज लॉजिस्टिक्स। वो अपने आप में एक नया चैलेंज खड़ा होता है सामने, क्योंकि किसान अपने ट्रैक्टर में लेकर जाएगा, लेकिन अगर उसको कहीं दूर देकर आनी है, दैट्स से कि किसी यूपी के किसान ने किसी दिल्ली के रिटेलर से बात की है, अब यूपी से दिल्ली तक लाने के लिए ट्रैक्टर एक तो अपने आप में बहुत मशक्कत है, ऊपर से बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, प्लस बहुत सारे टोल प्लाजा भी होते हैं, पुलिस

खरीद सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट भी पे नहीं करना पड़ा है क्योंकि मिडिल मैन वहां पर नहीं है। इसी के साथ अगर मैं निंजा कार्ड की यूएसपी की बात करूं यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तो वो उनकी एबिलिटी में ही लाई करती है क्योंकि उनका सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है और वेस्टेज काफी कम हो जाता है और फेयर प्राइसिंग जो है ये तीन उनके यूएसपी हैं जिन्होंने इस कंपनी को यूनिक बनाया है और टेक ड्रिवन सप्लाई चेन है। तो जाहिर सी बात है कंपनीज को ट्रैक कर सकती है, फार्मर्स को ट्रैक कर सकता है, रिटेलर्स को ट्रैक कर सकता है, तो काफी सारी चीजें, काफी सारी मशक्कत वहां पर कम हो गई जिससे एक स्मूथ आप कह सकते हैं कि प्रोसेस बन गया और सबके लिए बेनिफिशियल है। सो दैट्स हाउ टेक ने दुनिया को बदला है और इस एक इंडस्ट्री को भी बदला है। अभी शो को यहां पर हम कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन में हम आपको बता सकते हैं कि निंजा कार्ट ने एग्जैक्टली किया क्या है। तो निंजा कार्ट एक प्राइम एग्जाम्पल हो सकता है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को अगर हम मिला दें तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है। जैसे कि एग्रीकल्चर सप्लाई चेन बहुत बड़ा, बहुत पुराना नेटवर्क है, अब उसके अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। हालांकि हम लोग चैलेंजेस की बात कर चुके हैं बट स्टिल दे आर डूइंग गुड, दिस कंपनी इज डूइंग रियली गुड, जहां पर आपकी जो लाइवलीहुड है वो एनहेंस हो जाती है एज इन फार्मर्स की और साथ साथ रिटेलर्स को भी काफी फायदा हो जाता है, फ्रेशली प्रोड्यूस आइटम मिल जाता है जिससे कंज्यूमर को भी बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब आपको ताजा खाना मिल रहा है साथ साथ आपको उतना ज्यादा अमाउंट जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, तो साउंड्स गुड। तो ये एक चीज है जो निंजा कार्ट ने की है, एक अच्छी खासी बहुत ही पुरानी एक इंडस्ट्री को टेक के साथ इनलाइन करके उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। सो इसी को कहते हैं इनोवेशन जो निंजा कार्ट ने अभी यहां पर करके दिखाया। एंड विद दिस नोट दोस्तों हमारा वक्त शो को यहां पर खत्म करने का, आपको आज की स्टडी कैसी लगी 8010781078 पर बताइएगा। फिलहाल मैं चलता हूं, अपने शो को यहां पर खत्म करता हूं, तो फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खैरियत से रहें, गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम सत्यमेव जयते। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते में बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करता हूं, और कभी मैं अकेला होता हूं तो कभी मेरे साथ मेहमान होते हैं और बात करते हैं आप ही लोगों के अधिकारों के बारे में। अधिकार की जब बात आती है तो हमें एडवोकेट याद आते हैं, और आज मेरे साथ एडवोकेट हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं, नाम है शीला असवानी। शीला जी, सबसे पहले मैं आपका रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
1: नमस्कार सर। नमस्कार ऑडियंस, मैं एडवोकेट शीला असवानी रेडियो मानव रचना से बोल रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे।
0: जी, और देखिए शीला जी, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जब कानून की बात आती है, लोगों के अधिकारों की जब बात आती है। आज हम बात करेंगे जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को यही बताइए कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं ये क्या है?
1: क्या है ये?
0: जी
1: सर, देखिए हमारे इंडियन पेनल कोड और हमारा CRPC प्लस हमारा एविडेंस एक्ट, ये हमारे अंग्रेजों के टाइम के जमाने के बने हुए हैं लॉज। आप ये देखें कि इंडियन पेनल कोड IPC, शॉर्टकट में IPC बोलते हैं हम, ये हमारा 1860 का बना हुआ है, डेट मीन्स आज़ादी से पहले का ही है। और प्लस हमारा जो CRPC है वो 1974 का बना हुआ है, ये भी अंग्रेजों के टाइम का था लेकिन थोड़ा सा अमेंड करके इंडियंस ने अपना इसका इंडियंस के नाम दे दिया गया, लेकिन है तो ही अंग्रेजों के टाइम के जमाने का ही। और आप देखिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य, ये भी 1872 का बना हुआ है, ये हमारे सारे लॉज हमारे अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं सर। ये तो उस टाइम की कंडीशंस अलग थी, आज का जमाना अलग है, आज की टेक्नोलॉजी अलग है। आप ये देखिए कि उस टाइम पे किसी घर में फोन भी नहीं होता था,
0: बिल्कुल नहीं।
1: फोन तो बहुत दूर की बात है कि जो लैंडलाइन फोन वो भी नहीं होते थे, यानी एक घर में है तो चार घर में नहीं होगा। और हम उस टाइम बड़ी बेसब्री से वेट करते थे, अच्छा फोन आया है, बहुत इंतजारी होती थी। अब तो फोन की इंतजारी नहीं है क्योंकि हमारे पास मोबाइल्स आ गए हैं। और किसी को सूचना देनी होती थी, तार के माध्यम से सूचना जाती थी, जिसको हम टेलीग्राम से बोलते हैं। तो अगर किसी घर पे अगर तार आ जाए ना, तो समझो तो उसके हाथ पर फूलने लग जाते थे कि ये क्या क्या न्यूज, कोई बैड न्यूज आई है, कोई बुरी खबर आई है। तो अब आप देखिए कि आजकल के टाइम में, आजकल के टाइम छोड़िए, सबसे पहले हम क्या कहते थे कि फास्टेस्ट सर्विस किसकी होती थी? एरोप्लेन की। और आज के टाइम में फास्टेस्ट सर्विस है आपकी मोबाइल की, विद इन कुछ सेकंड के अंदर किसी के पास सूचना पहुंच जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये हमारे उस टाइम पे नहीं था। तो उस लॉज के अंदर भी, ये हमारे कानून के अंदर भी हमारी टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं था। तो इसलिए प्रावधान हमारे चेंज किए गए हैं, पनिशमेंट चेंज की गई है, बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो रिफॉर्म किया गया है। यानी हमारे जो न्यू लॉज है वो हमारे भारतीयों के फेवर के लिए हैं, भारतीयों के फेवर के लिए, कि भारतीयों को दंड ना मिले बल्कि उनको न्याय मिले। तो भारतीयों के न्याय के लिए ये हमारे लॉज बनाए गए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनाए गए।
0: तो ये जो लॉज बनाए गए हैं नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कहना है हमारी मेहमान शीला असवानी जी का। और शीला जी देखिए, क्रिमिनल लॉज की जब बात आती है तो बहुत सारे सवाल भी जहन में आते हैं, और उसी से संबंधित कुछ और सवाल हैं मैं आपसे करूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको सुनाता हूं एक गाना, और उसके बाद लौट करके आता हूं आज के मेहमान एडवोकेट शीला असवानी के साथ, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ सत्यमेव जयते। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी मेहमान है एडवोकेट शीला असवानी, हाई कोर्ट दिल्ली में है, और आज बात कर रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। देखिए दोस्तों, क्रिमिनल लॉज की जब बात आती है तो बहुत सारे सवालों का जहन में उठना स्वाभाविक है। शीला जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ये न्यू क्रिमिनल लॉज क्या है
1: जी।
0: लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, वारदातें हो जाती हैं घर में, घर से बाहर। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो लोगों के लिए हैं और लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, उससे अवगत नहीं है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई भी नागरिक देश का कंप्लेंट अपनी किसी थाने में देना चाहता है, उसके लिए उसके क्या क्या अधिकार हैं?
1: जी सर, थाने में अगर आप कंप्लेंट दे रहे हैं, मान लो कि किसी पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, हम एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए और बी है, उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, तो अगर वो क्रिमिनल नेचर का है, क्रिमिनल अपराध है, तो आप थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर थाने वाले आपके पुलिस स्टेशन अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रावधान ये है कि आप EFIR कर सकते हैं। पहले हमारे जो पुराने लॉज है CRPC, उसके अंदर ये प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी हमारी उस टाइम नहीं थी, आज के में टेक्नोलॉजी है, तो आप EFIR भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन EFIR दर्ज करने के बाद आपको तीन दिन के अंदर वहां पे साइन करने जाना होगा। बिना साइन के आपकी कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी।
0: ये तो जो आपने बताया EFIR, ये EFIR क्या है हमारे श्रोताओं को जरा ये?
1: ये इलेक्ट्रॉनिक FIR है कि आप अपने फोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप पुलिस स्टेशन में अपनी EFIR के थ्रू अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, और आपको 3 दिन के अंदर वहाँ पे थाने के अंदर साइन भी करना होगा। हमारी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पर्दे की आड़ में रहती हैं और जिनका पुलिस स्टेशन तक अप्रोच नहीं है, वो नहीं जा सकती हैं, या उन्हें कुछ बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन फ़ोन तो सबके पास होता है, वो अपने इस फ़ोन से पुलिस स्टेशन में मैसेज भी कर सकती हैं, फैक्स भी कर सकती हैं, ठीक है, या कोई टेक्स्ट मैसेज भी कर सकती हैं, या EFIR भी दर्ज कर सकती हैं। तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से कॉल भी आती है कि आपके यहाँ से ये ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, बताइए क्या बात है
0: जी।
1: ठीक है, तो डैट मीन्स कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये लॉ बनाया गया है। सपोज कि अगर एक पॉइंट और कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि जहाँ पे वारदात होती है आप उसी थाने में जाएंगे, लेकिन ये बात हमारे पुराने लॉज में थी। अब जो न्यू लॉज हमारा आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS
0: जी,
1: इसके अंदर एक प्रावधान और ये भी कर रखा है कि जहां पे घटना हुई है वहां पे तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे दूर है, उस घटना स्थल से दूर है, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई पर्सन अपने गांव में रहता है, गांव में कोई घटना हो गई है, या उसका मकान हड़प लिया है, या कोई वारदात हो गई है, वो अब दिल्ली में है, आप कमाने के लिए आया है, अब वो गांव जाएगा तो इतने में तो सारे सबूत मिट जाए।

0: जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? तो वो जहां अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में भी अपनी EFIR या वहां के लोकल थाने के अंदर भी अपनी कंप्लेंट या अपनी FIR दर्ज करा सकता है ताकि उसको इंसाफ मिले। गांव पहुंचते पहुंचते उसके 2 दिन लग जाएंगे। तो ये प्रावधान यहाँ पे दे रखा है कि आप कहीं पर भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि सपोज कि उस पर्सन का जिस थान जो पर्सन जहाँ पे रहता है, जहाँ घटना हुई है, वहाँ पे थाने के अंदर कोई मोनोपोली है, ठीक है, या फिर कोई प्रेशराइज है किसी पॉलिटिशियन का, वो उसकी दर्ज नहीं कर रहे कंप्लेंट, तो किसी और थाने से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। इरिस्पेक्टिव एरिया ये मेंशन किया गया है FIR के अंदर, इरिस्पेक्टिव एरिया EFIR हो गया आपका, ऐसी बातें इसमें दर्ज की गई। तो बहुत ही अच्छे प्रावधान बनाए गए हैं हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में BNSS में
1: जी। और दोस्तों देखिए क्या है कि धाराएं होती हैं, आपके अधिकार होते हैं, उनसे जुड़ी धाराएं होती हैं। और जैसा कि बताया शीला जी ने कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, और वहां नहीं होती है तो आप कहीं से भी करा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है शीला जी। और भी सवाल है, मैं आपसे करता रहूँगा, फिलहाल अपने दोस्तों को अभी एक गाना सुना देते हैं।
0: जी जी जरूर सर।
1: चलिए दोस्तों आप गाना सुनिए, गाने के बाद दोबारा से आता हूँ आज की मेहमान एडवोकेट शीला असवानी जी के साथ, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते में आज हमारे साथ एडवोकेट शीला असवानी हैं, हाई कोर्ट दिल्ली से। न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में बातें हो रही हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बातें पीछे बताई थी न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो कम्युनिटी सर्विस है
1: जी,
0: इसके बारे में क्या लॉज हैं?
1: जी जी, बहुत अच्छा है क्वेश्चन सर। कम्युनिटी सर्विस हमारा जो हमारे IPC है, इंडियन पेनल कोड, अब उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता नाम से पता लग रहा है कि भारतीयों को न्याय देना, और इंडियन पेनल कोड का मतलब अब इंडियन पेनल कोड, दंड प्रक्रिया, दंड इसको मिलेगा भारतीयों को। तो एक तो नाम चेंज किया गया है कि हमारा IPC हटा के हमारा अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता, की नागरिक जो हमारे इंडियंस हैं उनको न्याय मिले। और इसके तो बहुत सी बातें, बहुत प्रावधान जोड़े गए हैं, बहुत ही बढ़िया रिफॉर्म किया गया है। इसमें एक रिफॉर्म और भी किया गया पनिशमेंट में, कम्युनिटी सर्विस। हमारी 5 टाइप की हमारी पनिशमेंट पहले थी, और वही 5 पनिशमेंट यहाँ भी रखी गई है, साथ में एक पनिशमेंट और जोड़ दी गई है। 5 पनिशमेंट हमारी थी, जैसे डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया आपका, और आपका ये प्रॉपर्टी टू फॉरफीचर, फाइन्स हो गए, ठीक है। और इसमें एक पनिशमेंट और जोड़ दी, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया कि सपोज किसी ने पहली बार चोरी करी है, नाम कम्युनिटी सर्विस से लग रहा है कि सामुदायिक सर्विस करना, सेवा करना। तो सपोज किसी ने पहली बार चोरी करी है, ठीक है, और उसका जो चोरी का अमाउंट है वो लेस देन 5000 है, लेस देन 5 में 4999, लेस देन 5000 रुपीज, और पहली बार चोरी करी है। तो कोर्ट बोले कि भाई देखो, ये कहीं जेल में जाके कहीं बेस्ट क्रिमिनल बन के ना आ जाए, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसको रिफॉर्म करने के लिए कोर्ट उसको कम्युनिटी सर्विस देगी। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया कि चलो उससे पेड़ पौधे लगवा दिए, भाई इतने 100 पेड़ पौधे लगा दे जरा, ठीक है, और ये काम कर दो, वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पे जो वृद्ध होते हैं, ओल्ड होते हैं, उनसे अपना टाइम स्पेंड कीजिए, इतना टाइम दे रखा है, इतना टाइम स्पेंड कीजिए। मीन्स कम्युनिटी, जिसको कम्युनिटी को फ़ायदा हो, ऐसी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है अगर इसने फर्स्ट टाइम चोरी करी। और भी प्रावधान है इसके अंदर
0: जी,
1: ठीक है, इसमें ये ऐड किया गया कम्युनिटी सर्विस, ये बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया है इसमें। दैट्स कम्युनिटी सर्विस एक तरह की पनिशमेंट ही है। ऐसा नहीं है कि हमारा ये भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। आप देखिए कि जुवेनाइल जो एक्ट है, बच्चों के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, कोड बनाए गए, उसके अंदर भी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो अब इसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी कुछ हमारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर कम्युनिटी सर्विस दी जाती है।
0: जी, कम्युनिटी सर्विस क्या है और कम्युनिटी सर्विस आपको किस तरह के अधिकारों के साथ जोड़ती है? और देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं। अब साथ में हमारे वकील साहिबा हैं, तो आपको तो पूरी जानकारी है और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है शीला जी कि सवाल अभी ख़त्म हो गए।
1: नहीं, से पूछिए आप सवाल।
0: हाँ, मैं सवाल और भी पूछूंगा, लेकिन सवाल और जवाब के साथ साथ लोगों को गाने भी सुनवाते होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी एक गाना सुनते हैं, उसके बाद दोबारा से आते हैं आपके साथ आपके कार्यक्रम सत्यमेव जयते में।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं सत्यमेव जयते। आज की हमारी मेहमान है एडवोकेट शीला असवानी। बात हो रही है न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। शीला जी, आपने अभी कुछ बातें बताई थी, बहुत अच्छी जानकारी थी वो। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर दिया और पुलिस उसको सर्च करने के लिए उसके घर जाती है, तो उसको वीडियो बनाना या कोई ऑडियो बनाना, इस तरह से कवर करना, ये ज़रूरी होता है या वो ना करे तो चलेगा?
1: नहीं नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन जो ये बनाए गए हैं लॉ इसके ऊपर कि अगर कोई पुलिस सर्च करने जाती है किसी एक घर पे और उसमें सर्च में जो आर्टिकल्स निकलते हैं
0: जी,
1: उसकी पूरी ऑडियो या वीडियोग्राफी बनाई जाएगी।
0: ओके,
1: ये बहुत ज़रूरी है सर। वो इसलिए क्योंकि कहीं पुलिस कोई प्लांट खुद ना कर दे, खुद ना वहाँ पे लगा दे आर्टिकल्स की हाँ ये रिकवरी हुई है वहाँ से, तो उसकी एक ऑडियो या वीडियोग्राफी बनाई जाएगी कि हमने ये सामान रिकवर करा है, हमने ये आर्टिकल्स रिकवर करे हैं। और जो लिस्ट बनाएंगे उसकी भी ऑडियो वीडियो होगी उसकी, और प्लस जो दो विटनेस साइन करेंगे उनका भी रिकॉर्डिंग होगा। और ये पक्का है, ये पक्का उनको करना है, इससे वो अपनी ड्यूटी से हट नहीं सकते हैं। और ऐसा करने के बाद फौरन विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के वो ये रिपोर्ट और ये रिकॉर्डिंग आगे फॉरवर्ड करेंगे डीएम साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, या सब डिविजन मजिस्ट्रेट साहब को, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को फौरन फॉरवर्ड करेंगे, ताकि उस ऑडियो या वीडियो में कोई टैम्पर ना किया जाए।
0: लेकिन अगर पुलिस वाले गए हैं उनको सर्च करने के लिए और किसी भी तरह की वीडियो वो नहीं बनाते हैं, तब क्या होना चाहिए?
1: उन्होंने फिर राइट का उल्लंघन किया है सर, क्योंकि प्रावधान हमें यही कहता है कि उनको बनाना है
0: जी,
1: और जरूर बनाना है, 100% बनाना है। अगर वो ऐसे करते हैं तो उन्होंने अपनी ड्यूटी से ब्रीच किया है अपना, तो राइट्स तो वॉलेट हो ही रहे ना पब्लिक का, तो क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही ये प्रावधान दे रखा है, सेक्शन 105, तो ये प्रावधान दे रखा है, पुलिस वालों को करना ही करना है सर्च एंड सीजर के टाइम पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान दे रखा है।
0: जी
1: जी,
0: तो चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी है शीला जी। अब देखिए, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं लेकिन समय और ज्यादा नहीं है
1: जी,
0: इसलिए आखिर में मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से सभी सुनने वालों के लिए क्या मैसेज है?
1: मैं तो यही कहूंगी सर सबसे कि अपने अधिकारों को जाने, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो, जो सोता है वो खोता है। अगर आप सोए रहेंगे तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी कोर्ट में, उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहें हमें तो अपने कानून के बारे में पता ही नहीं है, आप इंडिया में रहते हैं, और कोई अगर पर्सन बोले कि मुझे तो पता ही नहीं अपने कानून के बारे में, तो ये बात गलत है, इज नॉट एक्सक्यूजेबल। आप अपने अधिकारों को जाने, आजकल तो सबके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल से हैं, लैपटॉप से हैं, आप उन पे भी अपनी क्यूरीज डाल के अपने क्वेश्चन, अपने आंसर सर्च कर सकते हैं। अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहे, यही मेरा मैसेज है। धन्यवाद।
0: बिल्कुल शीला जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ सभी श्रोताओं को दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद सर। कहना चाहूँगी कि रेडियो मानव रचनगा के आपने मुझे यहाँ बुलाया और रूबरू कराया ऑडियंस के साथ, थैंक यू सो मच सर।
0: जी, तो दोस्तों, अब फहीम भी आपसे इजाज़त चाहता है, लेकिन जाते जाते बस यही कहूँगा कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आप किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।
1: शुक्रिया।

0: बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक।
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को एक अलग पहचान दिलाई है. हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न केवल एक दो या दस मेडल जीते होंगे वो भी गोल्ड या सिल्वर, बल्कि अनगिनत मेडल्स उनके घर की एक वॉल पर लगे हुए हैं जो कि आर्चरी के फील्ड में उन्होंने अर्जित किए हैं. जी हाँ, हम आज के कार्यक्रम बियॉन्ड द गेम में बात करने वाले हैं देश के जाने माने आर्चर अर्जुन अवॉर्डी, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट अभिषेक वर्मा जी से, जो कि फिलहाल इंडियन आर्चर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स भी हैं. तो आज इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं. प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ.
1: अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में.
2: थैंक यू सो मच.
1: तो अभिषेक जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जिन्होंने आर्चरी के क्षेत्र में देश को एक अलग पहचान दिलाई है. और जब मैं आपके मेडल्स के बारे में देख रही थी इंटरनेट पर, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे टिपिकली फिंगर से काउंट करने पड़े इतने सारे मेडल्स थे आपके. तो कैसे ये आर्चरी की दुनिया में आपने कदम रखा, किस तरीके से शुरुआत हुई, ये हमारे लिसनर्स को आप बताएं.
2: देखिए, एट दी एंड अगर आपने मुझे भी मेडल याद दिलाए हैं कि इतने इतने इतने, मैं भी कैलकुलेट कर रहा था कि हाँ, इतनी वर्ल्ड चैंपियनशिप, इतने एशियन गेम्स और ऐसे खेला है, टाइम का पता ही नहीं चला कि कब कैसे, देखते देखते 20 साल बीत गए. और इन 20 इयर्स के सर्कल में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. मैं बात करूं 2006 में मैंने फर्स्ट अपना डेब्यू किया था एज अ सीनियर इंटरनेशनल टीम में मैं एंटर करके, और फर्स्ट मेडल मेरा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में आया था. तो आई सपोज वो स्टार्टिंग जर्नी थी, टिल अभी तक लास्ट मंथ ही हम फ्लोरिडा वर्ल्ड कप खेल करके आए हैं, उसमें मेरा मेडल रहा है. तो बैक टू बैक टूर्नामेंट आते गए, खेलते गए. तो मेरा बस यही है कि एक टूर्नामेंट बीत गया, नेक्स्ट टूर्नामेंट की सोचो और आगे बढ़ो. अगर आने वालों की खुशी या गम अगर हम करते रहेंगे तो आने वाले टूर्नामेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा सोचूं, चाहे वो इंटरनेशनल में एशियन गेम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड कप हो या कोई नॉर्मल नेशनल हो, हर एक को इक्वल ही सोचता आया हूँ. टूर्नामेंट को टूर्नामेंट की तरह सोचा है और आगे बढ़ता चला हूँ. एक टूर्नामेंट खत्म तो मेरे को दूसरे की प्रिपरेशन करनी है, दूसरा खत्म तो मुझे आगे एक और की प्रिपरेशन करनी है. तो बैक टू बैक मेरा ये रहा है. और फॉर श्योर, मतलब कोशिश करी कि अच्छा कर पाऊँ, मेडल ले पाऊँ, और बैक टू बैक में मेडल दिए भी हैं. और पर ये भी है कि इतने सारे मेडल लिए हैं पर इससे कहीं ज्यादा मैंने हार भी फेस करी है. ऐसा नहीं है कि मैं जाता हूँ और मेडल लेकर के आ जाना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वाइड प्लेयर आते हैं, परफॉर्म करते हैं. मेडल सिर्फ तीन ही होते हैं. तो अगर आपने दो जीत देखी है तो उसके पीछे तीन हार भी हैं, जो हार्ड वर्क होता है, जो चीजें होती हैं. तो वो भी एक प्लेयर की लाइफ में इम्पोर्टेंट लेसन है. अगर उस हार को अगर वो बना ले कि अपना फियर बना ले कि नहीं मैं तो हार गया, मैं कोशिश ही ना करूं, तो आने वाली जीत का वो मजा नहीं ले पाएगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और जितनी लंबी आपकी मेडल्स की लिस्ट है, ये आपने आर्चरी में जीते हैं, लेकिन शुरुआत आपने शायद आर्चरी से नहीं, लॉन टेनिस से की थी. आप लॉन टेनिस खेलते थे और उसके बाद आर्चरी में आए, क्या ये सच है?
2: नहीं, बिल्कुल सच है. ये लॉन टेनिस मेरा फर्स्ट गेम था. ऑल्दो मैं काफी सारे गेम्स मैंने खेले हैं अपने चाइल्डहुड में. मैं क्रिकेट खेलता था, हॉकी खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, स्केटिंग करता था, सारे काफी करे हैं. पर प्रोफेशनली मैंने एक बार एंटर, फर्स्ट जब मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जाना है, तो मैंने लॉन टेनिस लिया. 2 महीने करा, 2 महीने में 2-3 रैकेट तोड़े और 2 पैर मैंने खराब करे. फिर पेरेंट्स ने बोला नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा. कोई अपने स्कूल में जाना और अपने पीटी टीचर से जाकर के बोलना कोई ऐसा गेम बताए जिसमें फाइनेंशियल भी कम लगे, उनका कोई अमाउंट ना लगे, उनका कोई पैसे ना लगे. तो बाई चांस ही मेरे बस जो सीनियर, क्योंकि हमारा स्कूल हब होता था आर्चरी गेम का, तो उन्होंने भी बोल दिया, मेरे जो टीचर थे राम कुमार सरावस, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप आर्चरी ज्वाइन कर दो. कहने के लिए तो चलो बहुत अच्छा किया, मुझे आर्चरी में डाल दिया. पर ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी ना कि बहुत ये सबसे, मतलब इसमें अमाउंट नहीं लगता, वो है, पर एक्सपेंसिव गेम के मुझे लग रहा है कि टॉप एक्सपेंसिव गेम्स में आर्चरी, शूटिंग ये सब आते हैं. रहा इसमें, पर ठीक रहा, अच्छा राउंड का अच्छा डिसीजन था। उन्होंने प्लेयर को बखूबी नापा कि कैसा प्लेयर, क्योंकि आर्चरी या शूटिंग ऐसे गेम है जो वो होते हैं ना, कई तरह के बच्चे होते हैं हमारे, एक होता है चंचल वाला होता है, एक होता है शांत होता है, तो एक प्लेयर को देख करके जज करना कि कौन सी गेम के लिए सुटेबल है, जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ का, वो शायद पीटी टीचर ध्यान से देखते हैं कि कोई एक्टिव है कोई नॉन एक्टिव है, कौन चेस के लिए बढ़िया है, कौन क्रिकेट के लिए बढ़िया है, कौन रनिंग में बढ़िया है, कौन शॉर्ट पुट में बढ़िया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: फर्स्ट डिसीजन लाइफ का उन्होंने दिया था।
1: जी,
0: तो बहुत सारी बातें हम अभिषेक जी से कर रहे हैं, देश के जाने माने आर्चर जिन्होंने तीरंदाजी को एक नया मकाम दिया है, और किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी इससे लेकर, और किस तरीके से वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं आज भी, ये हम जान रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम। वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. नाम है मेरे दीक्षा और आपके लिए कार्यक्रम लेकर आई हूँ बियॉन्ड द गेम, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो खेल जगत की जानी मानी हस्ती हैं, देश का नाम विश्व पटल पर रोशन कर चुके हैं और आज भी उनकी कोशिशें जारी हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज अभिषेक वर्मा जी से, जो कि वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स विभाग में, लेकिन इसके साथ साथ जिस लेवल पर ये पहुंचे हैं वो अपने खेल के कारण पहुंचे हैं। और खेल इनका है आर्चरी यानी तीरंदाजी, एक ऐसा खेल जिसमें इन्होंने शुरुआत करी यूं ही मजे मजे में, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां तक पहुंच जाएंगे और मेहनत मशक्कत और अपनी सोच के साथ इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। दिन रात की कोशिशें, दिन रात की मेहनतें, पूरे परिवार का सपोर्ट लगता है तब जाकर एक खिलाड़ी तैयार होकर गोल्ड मेडल लेकर आता है। तो अभिषेक वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम।
1: तो ये स्कूल से शुरुआत करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी स्कूल के दिनों के बारे में, हमें कुछ बताइए कि आप गेम्स तो बहुत सारे खेलते थे, आपने अलग अलग स्पोर्ट खेले हैं और अच्छे खेले हैं। जब कोई रैकेट तोड़ने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो गेम भी बहुत सॉलिड तरीके से खेल रहा है ताकि रैकेट टूट चुके हैं। लेकिन फिर उसके बाद आर्चरी में आए, तो स्कूल के दिनों की कुछ यादें, फिर आर्चरी की शुरुआत आपने करी, उसमें क्या स्ट्रगल फेस करी या किस तरीके से कितना फोकस्ड रहना पड़ता है इस खेल के लिए, ये हमें थोड़ा सा बताएं।
2: देखिए ना, गेम लेना ना एक पैशन का काम होता है। वो फॉर एग्जांपल जब कोई जीत करके आता है प्लेयर और उसको सबके सब सम्मानित करते हैं, प्रिंसिपल ड्यूरिंग द प्रेयर सेरेमनी उसको अवार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको सबके सब जानने लग जाते हैं। तो मेरे जब सीनियर स्कूल नेशनल खेल करके आए तो उनको इमीडिएट माला पहनाई, कैश अवार्ड दिए, चीजें करी, तो बहुत एक तरह से वो प्रेरित, वो करने वाला इमोशन वो मेरे आज भी मेरे लिए है। मैंने जब देखा फिर हुआ कि नहीं ये तो हमें भी करना चाहिए, मुझे भी लाना है, मुझे भी करना है। तो एक वो जोश लाना कि स्पोर्ट्स के प्रति कि नहीं ये स्पोर्ट्स करना है, तो अपने घर में जाके बात करना, फिर पीटी टीचर, तो एक सबसे अहम भूमिका वो टीचर की रही है, स्पोर्ट्स टीचर की, क्योंकि जो और टीचर होते हैं तो फॉर श्योर एक बच्चे के भविष्य के लिए ही काम करते हैं, पर जो स्पोर्ट्स टीचर है एक ही स्पोर्ट्स टीचर होता है पूरे स्कूल में,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: एफर्ट करता है वो कि वो ना हो। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने 100%, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स इनिशियली जब करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, एकदम रिजल्ट आपका नहीं आता इनिशियली, उसका बेस नहीं रहता। मेरी अगर बात करें तो मैंने क्लास 8 क्लास में मैंने आर्चरी स्टार्ट करी थी, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैं जाता था ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि कोच वहीं पे थे लोकेश सर मेरे, तो वहां पे वो सिखाते थे। इनिशियली मुझे 2 साल 1 साल मतलब अप्रोक्सीमेट 18 महीने से 2 साल मेरे को लग गए एक नेशनल में परफॉर्म करने लायक बनने के लिए। तो उस ड्यूरिंग पीरियड क्लास 8 to 9 मुझे सपोर्ट चाहिए था मुझे, क्योंकि क्लासेस मिस भी होती थी, पीरियड भी मिस होते थे,
1: बिल्कुल।
2: तो उसमें हेल्प करने के लिए मेरे पे बस एक ही शक्ल होती थी मेरे पीटी टीचर की, सर प्लीज हेल्प मी। तो वो जाते थे, टीचर से बात करते थे, मेरे एग्जाम में भी उस टाइम पे रिजल्ट पे इम्पैक्ट आया। पहले मैं कह सकते हैं 60-70% वाला एवरेज स्टूडेंट था, फिर गेम, और उसको अगर एक गेम को आप 6 घंटे दे रहे हैं लाइफ के, उसके बाद थक हार के सो रहे हैं, तो उसके बाद इम्पैक्ट आएगा, तो वो एवरेज घट करके 40-50% पे आ गई, पर वो रही, रेगुलर रही। दो साल के बाद ही ड्यूरिंग द स्कूल टाइम ही एट द क्लास ऑफ 10th में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने, नेशनल चैंपियनशिप में, नेशनल था वो,

0: इमीडिएट ऐसा इफेक्ट हुआ कि मतलब आफ्टर द नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियन बनते के साथ ही मैंने न्यू मॉडर्न बोज में स्विच करते के साथ इंडिया टीम में नेक्स्ट ईयर मैंने सीनियर इंडियन टीम में मैंने अपना डेब्यू किया। वहाँ पे स्कूल में एकदम कैसे मतलब नाम फैल गया अभिषेक अभिषेक, तो
1: स्कूल में और आसपास के जो लोग होते हैं पड़ोस में अब एकदम हीरो बन जाते हैं, वो वाली सिचुएशन हो गई आपके साथ
0: फॉर श्योर। एक आप एक स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल में एक अच्छी एक अचीव करना और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में एक चैलेंजिंग काम था कि वहाँ पे
1: क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे होते हैं वहाँ पर।
0: कह सकते हैं हमारी 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी, फिर एटमोसफेयर भी वैसा ही होता है, बट ठीक है मैं खुश हूँ अपनी एकेडमिक जो मेरा हिस्ट्री रही है, मेरी क्लासेस रही है, मेरे टीचर्स रहे हैं, मेरे को सपोर्ट रहा है, शायद उसी के बदौलत मैं आज अच्छा कर पा रहा हूँ। तो स्कूल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, क्योंकि वो वही गाइडेंस देता है। वो कहते हैं ना कि बिफोर बिलो 18 तो मतलब एडल्ट भी नहीं, मतलब उनका माइंड काम ही नहीं करता, इसलिए गवर्नमेंट भी वही मानती है। मतलब सारा स्कूल एक तरह से फ्रेशर का स्कूल होता है, जैसा ढाल दो वो वैसा ढलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक बात कही आपने।
0: तो हमें भी नहीं मालूम होता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसमें अहम भूमिका जो लाइफ की जो चेंज करने वाले होते हैं शायद पेरेंट्स के बाद वो स्कूल के टीचर्स ही होते हैं जो गाइडेंस करते हैं, और उन्हीं की गाइडेंस पे हमारा पूरा थ्रू आउट द करियर डिपेंड होता है। कई लोग साइंस लेते हैं, कई लोग आर्ट्स लेते हैं, कई लोग गेम में जाते हैं, कई लोग कॉमर्स में जाते हैं, तो वो डिसीजन शायद स्कूल के टीचर देख करके करते हैं और वो वही एक लाइफ लॉन्ग बन जाता है।
1: जी जी
2: बहुत सारी बातें और भी जारी रहेंगी अभिषेक वर्मा जी के साथ, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और इस बातचीत को आप बार बार सुनना चाहते हैं, किसी खेल प्रेमी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो दिल में मत रखिए, शेयर कीजिए हमारी ऐप यानी हमारा इंटरनेट रेडियो ऐप, डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना जो कि प्ले स्टोर और iOS पर उपलब्ध है। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम, और बियॉन्ड द गेम में हर हफ्ते एक खास खिलाड़ी के साथ होती है मुलाकात, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर बनाई है अपनी एक अलग पहचान। और आज इसी कड़ी में हम बात करें हैं अर्जुन अवॉर्डी अभिषेक वर्मा जी से, जो कि देश के जाने माने आर्चर हैं। जी हाँ, आर्चरी को इन्होंने अपने खेल की श्रेणी में रखा। शुरुआत में कुछ और गेम्स खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आर्चरी की तरफ बढ़े तो दुनिया ने इनका लोहा माना। और आज की तारीख में ये असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स विभाग हैं, और साथ ही एक बहुत ही जाने माने आर्चर भी हैं, जो कि दुनिया भर में अभी भी भारत का परचम लहरा रहे हैं।
1: तो अभिषेक जी, ये तो स्कूल की बात हुई, स्कूल के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, तो उसमें भी आपके इस गेम का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना होता है तो स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है।
2: देखिए, ये बहुत हमारे पे एडवांटेज बोलते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन, अब अगर आप कंपेयर करोगे नॉन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स वाला जो मेडलिस्ट होगा उसके पास चॉइस होती है कि कौन से कॉलेज में जाए।
1: बिल्कुल।
2: पर जो नॉर्मल वाले जो होते हैं वो स्कोर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं मुझे ये कॉलेज मिलेगा।
1: बिल्कुल।
2: तो शायद मेरे लिए लाइफ में भी यही था कि मैं 2007 में मैंने स्टार्ट किया था हंसराज कॉलेज, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है हंसराज से 2007-10 में। तो मेरे पास एट द टाइम ऑफ 2007 मेरे पे ऑप्शन था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है।
1: Okay.
2: क्योंकि मैं एशियन चैंपियन बन चुका था, इंडिया टीम के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेडल ला चुका था, सीनियर नेशनल चैंपियन बन चुका था, मेडल ऑफ वो थे, और कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी गेम्स जो होते हैं वो मेन माने जाते हैं, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप लाना मायने रखता है, इनसे कॉलेज मायने रखता है। तो हर कॉलेज भी चाहता है कि हमारे कॉलेज में अच्छे प्लेयर्स आए जिससे कि हम चैंपियनशिप और आगे बढ़ पाए।
1: बिल्कुल।
2: तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन था, और थैंक यू हंसराज कॉलेज एक आउटस्टैंडिंग मेरे को सपोर्ट करने के लिए, आउट ऑफ द वे जाकर के सपोर्ट करने के लिए। उसमें सविता कोचर मैम हुआ करती थी मेरे टाइम पे, एमपी शर्मा सर आज तक मेरे हंसराज कॉलेज में आज भी हैं और सपोर्टिव रहे हैं हमेशा। तो बियॉन्ड दैट वो कह सकते हैं ना कि वो एकेडमिक भी आपकी चल रही है साइड बाई साइड, आपकी आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड था वो जो कि खोल रखा था उन्होंने कि आप कभी भी ट्रेनिंग करो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: जी, यानी फैसिलिटीज बहुत होती हैं, और कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में तो बहुत सारी स्पोर्ट्स की सुविधाएं होती हैं, ड्रामेटिक्स का, म्यूजिक का, हर तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं।
2: बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। एक अच्छा कॉलेज वही है ना कि आपको टाइम देता है, ऑप्शन देता है, आपको सपोर्ट करता है, स्कॉलरशिप देता है, स्कॉलरशिप में आपकी फीस रिफंड कराता है, आपको सपोर्ट करता है कि एक बच्चा का फ्यूचर अच्छे से बन पाए। इसमें अहम भूमिका अदर टीचर्स की भी रहती है, फिर अगेन वही कि इसमें हमारे स्पोर्ट्स टीचर का बड़ा रोल रहता है कि वो जाकर समझाता है, क्योंकि हर कोई टीचर अपने उसमें रहता है कि वो अच्छा करे, पर उसके लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम स्पोर्ट्स काफी सारा टाइम ले लेता है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन दे नहीं पाता। पर फिर भी इतना निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही पीछे हो जाओ। एटलीस्ट मैं 12th में 68% वाला स्टूडेंट रहा।
1: 68 तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अगर मैं कहूँ जिस तरीके से आपने अपना शेड्यूल बताया है उस दौरान रहा करता था।
2: नहीं, अगर आप कंपेयर करेंगे 80 वाले से तो शायद नीचे में आ जाते हैं,
1: पर 80 वाला सिर्फ ट्यूशन जाता है और पढ़ के एग्जाम देता है।
2: हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में 8 घंटे जुड़ गए थे स्पोर्ट्स के नाम के, और उसके बाद 8 घंटे रनिंग भी, एफर्ट भी, धूप में, क्योंकि आर्चरी आउटडोर गेम है।
1: बिल्कुल।
2: करने के बाद थक हार के जो बच्चे जो हालत होती थी कि रात में तो कुछ समझ में नहीं आया, 9 बजे तो बस लेटे, मतलब बैठे बैठे सो गए, ऐसा हालत होता।
1: तो पेरेंट्स खुश हो गए थे इसके बाद आपके बहुत ज्यादा?
2: मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, पेरेंट्स फॉर श्योर बहुत खुश थे नेशनल चैंपियन बनने के बाद, एक अवार्ड मिलने के बाद एक रिवॉर्ड उनको मिला कि इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ली, पर उनके लिए एक चैलेंजिंग था कि गेम स्विच करना। आरसीबी में ना 2-3 तरीके के गेम्स होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल में जो परफॉर्म करते हैं रिकर्व और कंपाउंड, और एक होता है जो सिर्फ नेशनल लेवल पे किया जाता है और यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडियन राउंड बोल, दैट इज कॉल्ड, मतलब वुड का बना होता है पर वो इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर सकते, वो बेसिक बो होता है। तो जब आपको स्विच करना होता है, एक बेसिक बो की कॉस्ट अराउंड उस टाइम पे 2000 थी,
1: पर एक उस समय आज से 20 साल पहले की बात आप बता रहे
2: हैं, पर एक प्रोफेशनल बो की कीमत 1,00,000 रुपए थी।
1: ओ, जो कि काफी महंगा रहा है, जैसे हम शूटिंग में अक्सर देखते हैं कि बहुत महंगा गेम है, बहुत महंगा स्पोर्ट है, वैसे ये भी महंगा ही है।
2: बिल्कुल महंगा स्पोर्ट है, और कह सकते हैं 1,00,000 रुपए उस टाइम पे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के, और जिसका जिसको हमें मालूम ही नहीं फ्यूचर हमें कैसा होगा या स्पोर्ट्स टाइम पे क्या होता था। आज के टाइम में तो गवर्नमेंट, स्टेट, यूनिवर्सिटी, मानव रचना जैसे इंस्टीट्यूट आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा हेल्प मिल पा रही है, पर उस टाइम पे कुछ भी नहीं था ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है कि फैसिलिटीज उस दौरान थी नहीं, और अब तो जिस तरीके से मेडल्स धीरे धीरे आ रहे हैं तो गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है, तो ये काफी बदलाव है आजकल के खिलाड़ियों के लिए।
2: बिल्कुल ठीक है, तो वही टाइम अगर याद करूं तो मैंने, मुझे भी नहीं मालूम कि पेरेंट्स ने कैसे, उन्होंने, मैंने बस मजाक में कहा था कि मॉडर्न बोज में आना है और ये करना है, और उन्होंने पता नहीं कहाँ से लेके आए, मुझे नहीं मालूम, उस टाइम पे नहीं थे अमाउंट, पर लेकर के आया और स्विच करवाया, और विद इन अ ईयर मैंने उनको रिजल्ट दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी सेटिस्फाई हुए हैं इस चीज से कि कहाँ से कैसे हुआ, पर अच्छा हुआ जो भी हुआ
1: जी
2: हुआ उस टाइम को,
1: और बहुत अच्छा हुआ तभी भारत को इतने मेडल्स मिल पाए और आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
0: तो अभिषेक वर्मा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, दोस्तों कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। बहुत ही कमाल की और बहुत ही रोचक बातें चल रही हैं, अभिषेक वर्मा जो कि जाने माने आर्चर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं आर्चरी के क्षेत्र में, उनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, प्रोग्राम का नाम बियॉन्ड द गेम।

0: गुड फील लाइव, मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम, जहां पर खिलाड़ी और खिलाड़ियों की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें, उनके करियर से जुड़ी बातें, उनके खेल में आई हुई स्ट्रगल्स और अचीवमेंट से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। और आज इसी कड़ी में इस प्रोग्राम में मैं दीक्षा लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खास मेहमान, अभिषेक वर्मा, जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, वर्ल्ड चैंपियन है और देश के जाने माने आर्चर हैं, जो फिलहाल बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल्स पर भारत को मेडल्स दिलवा चुके हैं। और मेडल्स की जो तालिका है वो तो मैं आपको शुरुआत में बता ही चुकी हूँ, लेकिन इनके करियर से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी अभी जाननी बाकी हैं। तो करते हैं और भी बातचीत।
1: बात करते हैं थोड़ी सी आर्चरी की फील्ड के बारे में। जब आप आर्चरी में कदम रखते हैं तो आपने जैसे कहा कि आपको तो लगा कि शायद सस्ता गेम है, लेकिन सस्ता स्पोर्ट है नहीं, ये काफी कॉस्टली है। आपको भी बहुत सारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट सुन रहे होंगे, उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो कैसे आर्चरी की फील्ड में एक स्टूडेंट को शुरुआत करनी चाहिए, पेरेंट्स क्या सोचे? क्योंकि हमारा देश वो देश है जहां पर क्रिकेट को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस बात के लिए मैं नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन हाँ, एक जो प्यार होता है लोगों को, एक जुड़ाव होता है, वो क्रिकेट से बहुत ज्यादा है। तो हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा क्रिकेटर बन जाए, बच्चे को सबसे पहले खिलौने में बैट दिला दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद बाकी चीजों की बारी धीरे धीरे आती है और आर्चरी के बारे में नॉर्मली लोग नहीं सोचते हैं।
2: देखिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हर कोई चाहता है क्रिकेटर बन जाए, ये एक चाहना एक अलग हो गया, पर एक मेरा इंडिया टीम में खेले, क्रिकेटर बन जाए, फेम आ जाए, पैसा आ जाए, वो एक चाहने वालों की मतलब वो ज्यादा हो गए परसेंटेज, 90% लोग ऐसे सोचते हैं। पर अगर आप देखें पूरे देश में क्रिकेट खेलने वालों की जनसंख्या कितनी है और उसमें से सिर्फ 11 खिलाड़ी खेल पा रहे हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए, देखिए स्पोर्ट्स करना, एक मेरे मायने में स्पोर्ट्स करने के दो रीजन होते हैं। हर कोई प्लेयर नहीं बन पाता, हर कोई मेडल नहीं ले पाता, पर
1: बिल्कुल
2: हर कोई अपनी सेहत को अच्छा कर सकता है स्पोर्ट्स करके। स्पोर्ट्स करा इसलिए जाता था कि पीसफुल माइंड के लिए, बॉडी रिलैक्स के लिए, एक कसरत के लिए, यही तो था मेन फंडा हमारा स्पोर्ट्स करने का।
1: फोकस बहुत अच्छा होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी
2: होती है। ये गेम टू गेम डिफर करता है। अगर आपको रनिंग कराई जाती थी तो आपको स्टेबिलिटी, आपको मतलब मींस आपको बॉडी में स्ट्रेच और सब चीजें कराने के लिए और फोकस करने के लिए, फोकस वाले गेम करवाए तो माइंड कंसंट्रेशन करने के लिए आपको चेस, आर्चरी, शूटिंग, ऐसे ऐसे गेम करवाए जाते हैं। तो उस टाइम पे अब तो कॉम्पिटेटिव आ गए कि हमें मेडल लाना है, हमें ये लाना है, पर गेम एक्चुअली गेम करने का रीजन यही होता था कि बच्चा एक्टिव रहे,
1: बिल्कुल
2: सेहत एक्टिव रहे। और अब आज की जनरेशन में दूसरे पॉइंट से स्पोर्ट्स हो गया है कि भैया बच्चा मीडिया में ना घुस जाए, वो बाहर निकले, आउटडोर एक्टिविटी करे, वो रनिंग करे, वो स्विमिंग करे, वो आर्चरी करे, वो फोकस करे, वो इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से बाहर निकले। वो आज की डेट में क्या हो रहा है, बच्चा फोन लेकर के चिपक गए या टैब में चले गए। आप कहीं पे भी चले जाइए, कोई से भी पेरेंट्स को देख लीजिए, रेस्टोरेंट हो तो बच्चे के हाथ में फोन होगा, या फ्लाइट हो तो भी बच्चे के हाथ में फोन होगा,
1: बिल्कुल
2: फॉर श्योर अट्रैक्ट करता है, फॉर श्योर ये शायद टाइम कंज्यूम, पेरेंट्स को अपना टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो एट द टाइम वो गलत। क्यों ना इसको हम दूसरे वे में देखा जाए कि एक बच्चा स्कूल के बाद आने के बाद, अपनी ट्यूशन करने के बाद, अपना एक दो घंटे के लिए कोई भी गेम पकड़ करके उसमें चला जाए, उसमें थक हार के दो तीन घंटे बाद थक हार के आए, उसको खाना खाते के साथ वो नींद आ जाएगी, वो सो जाएगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करा जाए उसकी,
1: बिल्कुल
2: ये भी हमें करनी चाहिए। ये शायद स्पोर्ट्स हमारे लिए एक हो गया जीतना और एक हो गया बॉडी के लिए, माइंड के लिए, अपने लिए, एक अच्छी फिजिक के लिए स्पोर्ट्स हो गया। तो आप क्या चूज करते हैं, वो आपकी सोच है
1: जी। और अगर आर्चरी की फील्ड में कोई बच्चा जाना चाहता है या उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो आर्चरी को एक्सप्लोर करें, तो क्या सही उम्र रहती है और किस चीज का ध्यान बच्चों को और पेरेंट्स को रखना चाहिए, कैसे शुरुआत करें इस फील्ड में?
2: देखिए, एट द एज ऑफ 6-7 आप स्टार्टअप ले सकते हैं कि हाँ आर्चरी में एंटर 7 ईयर्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि आर्चरी में अब अंडर 10, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 18, 21 ऐसी कैटेगरीज हैं। और जरूरी नहीं है कि इमीडिएट आते के साथ आप मॉडर्न बोज लीजिए, आप जो नेशनल लेवल पे किया जाता है, सीनियर नेशनल, यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल, SGFI, स्टेट, वो वाले सारे के सारा इवेंट कवर होता है इंडियन बोज किट में। उसकी कॉस्ट अराउंड 8,000-10,000 आती है।
1: ओके,
2: तो आउट द ईयर आप उसको कर सकते हैं, एक 1 or 2 or maximum 3 years के बाद आप देख सकते हो कि आर्चर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंटरेस्ट कैसा है, वो टाइम दे रहा है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप इसको मॉर्निंग बोर्ड में शिफ्ट कर सकते हो, तो आपको भी जजमेंट मिल जाती है कैसा बच्चा परफॉर्म करेगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो यानी शुरुआत 6-7 साल की उम्र से अब की जा सकती है।
2: बिल्कुल की जा सकती है
1: जी, और अपने आसपास की एकेडमीज को एक्सप्लोर करना चाहिए पेरेंट्स को, और स्कूल में अगर ये सुविधा है तो उसका जरूर फायदा उठाना चाहिए।
2: हाँ, स्कूल लेवल एक अच्छा है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, पर साइड बाय साइड आपको एक अच्छी एकेडमी में ज्वाइन करना एक इजी हो जाता है, आपको एक अच्छा कोच मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है कि आप कैसे कर सकते हैं।
1: जी जी, तो अभिषेक जी आपने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, आपने एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, ये सारी चीजों में आपने मेडल्स जीते, और उसके बाद आपने जो अर्जुना अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा, वो कुछ पल हमें बताना चाहेंगे आप?
2: 2014 में मुझे अर्जुना अवार्ड मिला था, मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि कंपाउंड इवेंट नॉन ओलंपिक इवेंट था, मैं मेडल्स तो काफी सारे ले आया था पर किसी भी नॉन ओलंपिक आर्ट कंपाउंड में किसी को भी आज तक हिस्ट्री में वो नहीं मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला नहीं था।
1: ओके,
2: मैं बहुत उम्मीद थी, चीजें थी, रिक्वेस्ट थी या परफॉर्मेंस थी, उस टाइम पे फेम था, सब चीजें हुआ था कि मैं इमीडिएट मतलब एशियन चैंपियन बना था, एशियन चैंपियन के साथ 3 ही गोल्ड होते हैं, तीनों के तीनों गोल्ड क्लिंच करे थे मैंने, फिर नेशनल चैंपियन बना था, वर्ल्ड कप मेडल लिए थे कॉन्टिन्यू, और एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट होकर के हमारा प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो बड़ा कह सकते हैं कि टाइम बड़ा उम्मीदों भरा था कि फर्स्ट में इंडियन कंपाउंड आर्चर बना जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो कह सकते हैं उसके बाद लाइन लगाने वाला ओपनिंग बेस्ट मतलब ओपनिंग वाला करने वाला अर्जुन अवार्ड का मैं बना था, उसके बाद कंटिन्यू क्योंकि हमने एशियन गेम्स में मेडल गोल्ड मेडल लिया, इमीडिएट फिर एक और को दिया गया, फिर हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया, फिर अर्जुन अवार्ड तीसरे को दिया गया तीसरे साल, तो कंटिन्यू कंपाउंड के लिए भी ओपनिंग हो गई थी फिर ये।
1: जी जी, और
2: अपने आप बहुत सबसे बड़ा अवार्ड आपको मिलना, मतलब जी जी, एक स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है अर्जुन अवार्ड मिलना,
1: बिल्कुल,
2: आर्चरी में हार्डली अभी तक 7-8 जनों को मिला है, और उसमें अपना नाम बनाना एक अपने आप में सबसे बड़ा मेडल है।
1: जी, और मैं हमारे लिसनर्स को ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि जब भारत के टॉप आर्चर्स की बात होती है, टॉप 10 आर्चर्स की बात होती है, तो उसमें अभिषेक जी का नाम उस लिस्ट में जरूर आता है, और ये बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, और हम रेडियो मानव रचना के माध्यम से सभी को आपकी ये बातचीत और आपकी जर्नी सुना रहे हैं आज।
2: हाँ जी,
0: बातों का सिलसिला जारी रहेगा अभिषेक जी के साथ। आर्चरी के क्षेत्र में अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं 8010781078। रेडियो मानव रचना की पहल, ऐसे ही कुछ जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से आपकी पहचान कराएं, मुलाकात कराएं, और क्या पता आप या आपके परिवार में कोई और भी कल देश का नाम रोशन करें इनसे इंस्पायर होकर। सो ऐसी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम में। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM। प्रोग्राम चल रहा है बियॉन्ड द गेम, और इस खास प्रोग्राम में हर हफ्ते मुलाकात होती है एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जिन्होंने भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है खेलों के क्षेत्र में। और आज इसी कड़ी में हम बातचीत करें हैं अभिषेक वर्मा जी के साथ, जो कि आर्चरी के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना माना नाम है। और साथ ही अगर आप देश के 10 आर्चर्स की बात करेंगे तो उस श्रेणी में ये आते हैं काफी ऊपर लिस्ट में, और अर्जुन अवॉर्डी हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। मेडल्स की लिस्ट तो आप पूछिए ही मत कितनी बड़ी है, जिसको शायद मैं एक प्रोग्राम में पूरा बता भी नहीं सकती हूँ। तो अभिषेक जी से जुड़कर बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारी बातें उनसे हम जाने हैं आर्चरी के क्षेत्र के बारे में।
1: तो अभिषेक जी, अब अर्जुना अवॉर्डी तो आप बन गए और आपने इतना कुछ अचीव भी कर लिया, लेकिन उसके बाद आप आज असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर कार्यरत हैं इनकम टैक्स विभाग में। ये किस तरीके से जो है अपॉर्चुनिटी आई और किस तरीके से आप उस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि खिलाड़ियों का करियर खेल में बन गया तो बन गया, वरना फिर नहीं बन पाएगा।
2: देखिए, पहले तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आज का टाइम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत गोल्डन पीरियड का टाइम कह सकते हैं आप। अगर एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लेवल की आपको जॉब मिलती है। अगर कोई नेशनल लेवल में अचीवर है तो उसको क्लास सी की जॉब मिल सकती है। कोई इंटरनेशनल में एक्सप्लोरर है, मेडलिस्ट है, तो उसको ग्रुप बी की जॉब मिल सकती है। और अगर कोई अच्छे गेम्स मीन्स एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऐसे इवेंट में मेडल आता है तो उसको उसके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर की जॉब मिल सकती है।
1: जी।
2: तो ये अप टू स्पोर्ट्स पर्सन के हाथ में होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% सपोर्ट कर रही है स्पोर्ट्स पर्सन को, उनके कोटा दे रही है, सीट दे रही है, सब चीजें दे रही है। अगर मेरी बात मानी जाए, मतलब मेरी बात करी जाए, तो मैं एकेडमिकली मैंने कहा आपको कि मैं आफ्टर द ग्रेजुएशन मैंने अपनी पोस्ट ग्रेड मैंने अपनी बीपीएड एमपीएड मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करी थी।
1: जी।
2: मैंने अपनी एकेडमी को कंटिन्यू रखा, साइड बाय साइड मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट टीए ग्रुप सी की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली थी 2014 में।
1: ओके।
2: मैंने उसको ग्रैब किया क्योंकि स्पोर्ट्स में उस टाइम पे जॉब थी ही नहीं, बहुत कम थी। मैंने इमीडिएट मैंने ग्रैब करी, मैंने वेट करा अपना साइड बाय साइड। मैं डिपार्टमेंट का थैंक यू करता हूँ अगेन, वही मेरे स्कूल कॉलेजेस, और अब डिपार्टमेंट की बारी आई कि उन्होंने मुझे 100% सपोर्ट करा, फ्रीडम दी कि आप खेलो, अच्छा परफॉर्म करो। और मैंने रिजल्ट दिए एशियन गेम्स 2014 में। मैंने इमीडिएट डिपार्टमेंट ज्वाइन करते के साथ ही मैं डबल मेडलिस्ट बना, बैक टू बैक 15 में मैं वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड कप विनर बना, बैक टू बैक एशियन चैंपियनशिप में मैंने फिर अगेन चैंपियन बना। तो मेडल मैंने कंटिन्यू रखे। फिर 2016 में अगेन एक अपॉर्चुनिटी आई जो स्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई ग्रुप बी की।
1: ओके।
2: मैंने इमीडिएट मैंने ज्वाइन करा, उसके एक टेस्ट होते थे,
1: एग्जाम देने पड़ते हैं इसके, जो लोगों को नहीं पता है शायद,
2: मैंने क्लियर करें। उसके बाद एक जब आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, इंस्पेक्टर बनने के बाद भी आपको कंफर्मेशन एग्जाम होते हैं।
1: ओके।
2: चार एग्जाम होते हैं कंफर्मेशन, जो कि आपको विद इन अ 10 ईयर आपको करने हैं।
1: जी जी।
2: मैंने डिपार्टमेंट में रहते हुए उस ट्रेनिंग करी, उन एग्जाम की तैयारी करी, साइड बाय साइड मेरा गेम भी चल रहा था, साइड बाय साइड में इसकी भी, जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं इसकी भी तैयारी करता था। अपने चारों एग्जाम क्लियर करे मैंने कंफर्मेशन के, उसके बाद मैं एलिजिबल हुआ ITO इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्जाम देने के लिए।
1: ओके।
2: मैंने अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के मैं एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और मैंने अपने एशियन गेम्स 2018 का आ गया था, मैंने उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी। दोनों प्रिपरेशन चल रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 5 एग्जाम होते हैं उनमें से 4 क्लियर कर लिए थे।
1: ओके।
2: और एक एग्जाम मेरा रह रहा था क्योंकि मेरा वो टूर्नामेंट से क्लैश कर गया था, मैं दे नहीं पाया था। टाइम पीरियड दिया जाता है कि जो क्लियर कर लिया वो नेक्स्ट ईयर आप आपको, जो नहीं क्लियर करा वो नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं। पर 2018 में मैंने अगेन मैंने मेडल ले लिया एशियन गेम में। तो भारत सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि DOPT में स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेरित करती है, देती है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन।
1: ओके।
2: किसी भी स्पेसिफिक इवेंट्स जैसे कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक, वर्ल्ड कप नहीं,
1: वर्ल्ड चैंपियनशिप,
2: वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन चार इवेंट में कोई भी अगर आप मेडल अचीव करते हो, क्योंकि बहुत बड़ा मेडल है, तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा।
1: ओके जी।
2: मैं स्पेक्टर तो बनी गया था, मेरे को आउट ऑफ, मैंने एग्जाम भी क्लियर कर लिए थे, ऑल्दो मैं नेक्स्ट ईयर कर भी लिया था, पर मुझे आउट ऑफ टर्न एग्जाम के, मतलब आउट ऑफ टर्न देने के बिहाफ से मुझे आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, मुझे प्रमोट किया गया
1: जी।
2: अब आउट ऑफ टर्न के बाद मैंने, मतलब मैंने ज्वाइन करते के साथ अपना गेम को कंटिन्यू रखा और साइड बाय साइड मैंने अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी एसीआईटी ग्रुप के लिए।
1: ओके।
2: क्योंकि मंजिलें आगे बढ़ती जा रही है, मैं कह रहा हूँ कि एक के बाद एक टूर्नामेंट्स आते रहेंगे, एक के बाद आके बाद चैलेंजेस आते रहेंगे, वो कंटिन्यू आपको करने हैं। तो मैंने अगेन, मैं 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने मेडल लिया और उसके बिहाफ पे मैंने अपना सेकेंड आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मैंने ग्रैब करा अपने डिपार्टमेंट के थ्रू। अपॉर्चुनिटी मिली कि ड्यू टू दिस मेरे को मिल सकता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में मैक्सिमम 3 ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलते हैं
1: जी,
2: जो कि आप अवेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी गाइडलाइंस के थ्रू आपको अवार्ड और प्रमोशन देती है। तो मैं एसीआईटी, मैंने 2023 में मैंने एज एसीआईटी मैंने ज्वाइन किया और अपनी ट्रेनिंग हाथ के हाथ कम्प्लीट करी। पर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ऑल एग्जाम और सब चीजें, इसके साथ साथ मेरा टूर्नामेंट और प्रिपरेशन कंटिन्यू रही।
1: इसके
2: साथ साथ मैंने एमए साइकोलॉजी भी कंटिन्यू ओपन से करता रहा, क्योंकि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाह रहा था कि ठीक है ये अपॉर्चुनिटी आई है अगर करने की, तो मैं कंटिन्यू कर रहा था। 2022 में एशियन गेम्स होने थे जो कि पोस्टपोन होकर के 23 में हुए। अगेन ये मेरा थर्ड 23 में मेरा एशियन गेम्स आया और डबल मेडल मैंने वापस से एशियन गेम्स में क्लिंच करे और मैं एलिजिबल हो गया अपने थर्ड और लास्ट आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए।
1: ओके।
2: हर एक के रूल्स, रेगुलेशन, सब चीजें होती हैं, तो उसमें मुझे अपनी ट्रेनिंग और अपना प्रोविजन पीरियड अपना कंप्लीट करना होता है। बीच में एग्जाम भी, सब चीजें होती हैं, वो सब कंप्लीट करते हुए आपको 2 साल आपको सर्व करना है, उसके बाद आप थर्ड के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये पीरियड रहता है, ये चीजें रहती है। तो मैं यही सबसे ये कहूंगा कि अपनी एकेडमिक को छोड़ना नहीं है, साइड बाय साइड लेकर के चलना है। अगर आपने वहां पे छोड़ दिया, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन तो अच्छे पर एकेडमिक 12th भी नहीं करी उन्होंने,
1: बिल्कुल बिल्कुल, उससे वो रुक जाते हैं,
2: वो रुक जाते हैं, वो रुक जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए कह सकते हैं जिम्मेवार है, ये नहीं सिर्फ कोई डिग्री ले ली और आप एलिजिबल हो गए, वो आपको चीजें सिखाती है, आपका लाइफ स्टाइल सिखाती है, आपको बोलना, चीजें करना, या आपको आना जाना, समझ देना, मतलब एक तरह से आपको लेसन है लाइफ के। ये शायद स्पोर्ट्स के साथ साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को अक्सर ये लगता है कि सिर्फ खेल लिया तो काम बन जाएगा, पर खेलों के साथ साथ अगर एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाए तो आपकी तरक्की जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है, सिस्टमैटिक वे में होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
1: तो अभिषेक जी, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। मैं कुछ चीजों में ना विजुलाइज करने लग गई थी कि किस तरीके से आप खेलते होंगे या किस तरीके से आपने एग्जाम्स दिए होंगे, क्योंकि इन फील्ड्स में एग्जाम देना, खासतौर पर से जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑलरेडी आप उसमें होते हैं और प्रमोशन के लिए एग्जाम देना होता है, अपने आप में बहुत थकाने वाली चीज भी हो जाती है, क्योंकि आप उस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आप एक्सपर्ट अपने खेल के होते हैं, फिर भी आपको दूसरों से कम्पीट करना होता है अपनी फील्ड में भी।
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल कहा, ये बहुत चैलेंजिंग होता है अपने, मतलब उसी डिपार्टमेंट में बैठ करके, कि जहाँ पे रोज वो रूल रेगुलेशन लगाते हैं, ये करते हैं, और हमें उसकी नॉलेज नहीं,
1: बिल्कुल
2: एग्जाम देना, प्रिपेयर करना चैलेंजिंग होता है, फॉर्चुनेट होता है, पर स्पोर्ट्स पर्सन एक अच्छा वो है जिसको फाइट करनी आती है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बातें कही हैं बहुत ही कमाल की बातें कही हैं, और मैं चाहूंगी बस आप कुछ ही शब्दों में एक अच्छा सा मैसेज हमारे यंग आर्चर्स के लिए और साथ ही उन सभी बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा फोन छोड़ के किस तरीके से जाएं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ये बस बता दीजिए हमें।
2: देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको अभी समझ नहीं है, तो पेरेंट्स को इसमें बहुत अपना रोल अदा करना है, एक उनके साथ साथ आपको भी टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, गार्डन ले जाइए, पार्क ले जाइए, स्टेडियम्स ले जाइए, कहीं पे भी ले जाइए, उनके साथ साथ आप अपनी जर्नी भी स्टार्ट कीजिए, आप अपना डेब्यू भी स्टार्ट कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, आप भी गेम कीजिए। जरूरी नहीं सिर्फ बच्चे ही खेलेंगे, बैडमिंटन बच्चा खेलने गया साइड में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे को भी बूस्ट मिलेगा, बच्चे को भी वो होगा कि प्रेरित होगा और आपकी नजरों में भी रहेगा और एक बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर चीजों में ऐसे उलझ गए हैं, पोल्यूशन, हेल्थ, डॉक्टरों के चक्कर काटना, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसीलिए है कि एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पा रही, बच्चे की लाइफ स्टाइल नहीं हो पा रही। एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन इजिली, बहुत इजिली बीमार नहीं होता, अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उनके दिमाग में बिल्कुल मतलब वो है फिजिक को लेकर के, मतलब बिल्कुल एक्टिव है क्योंकि उनकी बॉडी एक्टिव है। तो अपने बच्चों को एक्टिव रखिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए कि क्या रिजल्ट आएगा, वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, पर एक अच्छी हेल्थ रहेगी। बच्चा एक टाइम ऐसा भी आता है मेहनत करने के बाद एक टाइम क्लिंच होगा ऐसा कि आपकी सक्सेस आपको मिलने लग जाएगी, पर मुझे नहीं मालूम वो कब मिलेगी, 2 साल 3 साल 4 साल, पर मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू तो एक क्लिंच ऐसा आएगा जिसमें आप बढ़ते चले जाओगे।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं जेन जी कह लें या जेन अल्फा कह लें, इन लोगों में पेशेंस थोड़ा सा कम है। वो पेशेंस ना होने की वजह से ये बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। एक वही है ना, एक हमारे में 10,000 hours लगते हैं किसी भी बड़ी विक्ट्री को अचीव करने में
1: जी।
2: अब आप गिव अप कर देते हैं 500 hours में, तो गिव अप मत कीजिए। आपको अभी 10,000 कंप्लीट करने हैं और 100% विक्ट्री आपको मिलेगी, बीच में नहीं छोड़ना आपको। तो वही सबसे बोलूंगा कि एक हार, दो हार, तीन हार पर जीत चौथी पांचवी आपकी है।
1: बिल्कुल, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अगर आप हार भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ बार हारेंगे लेकिन अल्टीमेटली आप जीतेंगे और सीखेंगे तभी आप जीतेंगे। तो अभिषेक जी बहुत अच्छा लगा बियॉन्ड द गेम में आपने आज हमसे बातचीत की और आर्चरी की दुनिया से हमें रूबरू कराया, हमारे लिसनर्स को रूबरू कराया। आपसे बातचीत करके मुझे तो बहुत मजा आया और यकीनन हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए और भारत को ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहें, जिस प्रकार से अनगिनत मेडल्स लेके आपने भारत को एक एक आर्चरी की दुनिया में एक नया मकाम दिया है, ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते रहें।

कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अनुसार, और फिर ये पॉडकास्ट आपको पूरा कभी भी सुनने को मिलेगा, कहीं भी सुन सकते हैं आप इसे, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और क्या पता आपके एक शेयर से एक नया खिलाड़ी हमारे देश को मिल जाए। फिलहाल बहुत सारी बातें मैं कर चुकी हूँ बियॉन्ड द गेम में, फिर से होगी मुलाकात एक नए खिलाड़ी और उनके कुछ खास सफलता के सूत्रों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: रुबिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आप सभी को पता है कि मानवता की राह पर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें मैं आपको अनसंग हीरोज से मिलवाने की कोशिश करती हूँ, उन लोगों से मिलवाने की कोशिश करती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे हैं, हमारे समाज, देश और दुनिया के लिए अलग अलग किस्म के काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मैं आपको उन लोगों से मिलवाने की कोशिश करती हूँ जिन्हें मैं अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी कहती हूँ, यानी वो लोग जो मानवता के ढेर सारे काम कर रहे हैं। और आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं धरती माँ ट्रस्ट से। धरती माँ ट्रस्ट की मैं अगर बात करूँ तो इनका नाम बड़ा ही क्यूट है। मुझे याद है बॉलीवुड इंडस्ट्री ने धरती माँ की सौगंध हमें बड़ी खिलाई है और हम धरती माँ की सौगंध खाते भी आए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो ओरिजिनली धरती माँ के लिए काम कर रहे हैं। हम सब तो सौगंधे खाते हैं और उन्हें याद करते हैं, पर ये धरती माँ की रक्षा कैसे कर रहे हैं, सेवा कैसे कर रहे हैं, आज इसकी कहानी इन्हीं की जुबानी। और इसके लिए मैं करूंगी स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में भवन सिंह बिष्ट जी को और दीपिका बिष्ट जी को। भवन सिंह बिष्ट जी जो धरती माँ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और दीपिका बिष्ट जो की सेक्रेटरी हैं। तो आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल भवन सिंह आप जी से करती हूँ। भवन सिंह जी मुझे बताइए, धरती माँ ट्रस्ट, आप लोग ना पर्यावरण पर बहुत सारा काम करते हैं, पर मुझे ये बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और हर चीज के पीछे ना एक कहानी होती है। मतलब शायद ही मैं किसी ऐसे एनजीओ से मिली हूँ जो कॉन्शियसली सोचा हुआ नहीं है या उसके पीछे कोई कारण नहीं था। तो अगर मैं धरती माँ ट्रस्ट की बात करूँ तो इसकी शुरुआत कैसी और इसके पीछे की कहानी क्या है?
1: जी, सभी देशवासियों को और पूरे भारतवासियों को मैं धरती माँ ट्रस्ट की ओर से सादर नमस्कार करता हूँ। धरती माँ ट्रस्ट की जो नींव रखी एक दिव्य प्रेरणा के माध्यम से, जो मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे यह नाम दिया कि जिस तरीके से मुझे बचपन से ही एक छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना, उनको यूजफुल बनाना, यह मेरी आदत में था। और कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स में ये जो वाइब्रेशन गई थी उस माध्यम से मेरे गुरुदेव ने ही मुझे यह सुना होगा कि इस कार्य के लिए कि उन्होंने इस नाम को मुझे दिया कि धरती माँ नाम रख करके एक बड़ा आपने काम करना है पूरे विश्व के लिए। तो यह नाम मुझे मिला और इस पर हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि हम कोई ऐसी एनजीओ बनाएं, हम छोटा सा अपना एक जो जिससे हमारी फैमिली अच्छे से उसका पालन पोषण हो सके उस तरीके से काम करता था। मैं अपना फर्नीचर का काम था हमारा, और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में एक हम इंटीरियर का, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट भी आज भी है, उस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से कर रहा था। तो ये बीच में इनिशिएटिव जो मेरे जीवन में आया तो एक मेरे लिए एक ज़िंदगी का नया मोड़ था जो शायद मेरे लिए ईश्वर ने चुना होगा। तो इस फील्ड में फिर हम आगे बढ़ते रहे। और पर्यावरण क्या है, धरती को कैसे सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सके, फिर धीरे धीरे इस चीज़ पर हमने स्टडी करी और उन छोटी छोटी चीज़ों पर हमने फोकस किया, उन पर उनको प्रयास किया कि इसको मानव समाज तक हम एक अच्छा संदेश कैसे दे सकें। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि एक छोटा सा एक टॉफ़ी या बिस्कुट का जो रैपर होता है उसको हमने संभालना शुरू किया, उसको वेस्ट के डब्बे में हमने डालना बंद किया कि ताकि अगर वो वहाँ पहुँचेगा तो हमारे द्वारा धरती बिल्कुल दूषित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। यहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी।
0: वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम आज भी देखें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इस चैलेंज पर इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे डंपिंग यार्ड्स बने हुए हैं और हमारे घर से कूड़ा सुरक्षित तरीके से चला जाता है, हमारा घर बहुत ही साफ रहता है, तो आगे ये वेस्ट का क्या होता है, हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब इतने सालों में आप खुद देख रहे हैं, चाहे आप रोज़ अगर गुड़गांव जाते हैं तो बंदवाड़ी का वो डंपिंग यार्ड देखते होंगे, फरीदाबाद के आसपास आप देखते हैं तो अलग अलग खत्ते बने हुए हैं और वहाँ पर आपको अब दिख रहा है कि ये वेस्ट काली पन्नियाँ, नीली पन्नियाँ भर भर कर और उन्हें मवेशी खाते हुए। सो कहीं ना कहीं हमने इस वेस्ट को अब खुद ही अपने पर्यावरण का हिस्सा बना लिया है और अपने घरों से निकलकर शायद हमारी सड़कों पर ये वेस्ट आ गया है। लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है और इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस पर कोई है जो काम कर रहा है और वो है धरती माँ ट्रस्ट। बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करने वाली हूँ, बस उससे पहले लेने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम बात कर रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के बारे में। धरती माँ ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं बीएस बिष्ट जी, वो मेरे साथ बैठे हैं और उनके सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं। दीपिका, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण पर आप लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली किस तरीके से करते हैं और क्या है आपकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग पूरी?
1: मेरा नाम दीपिका बिष्ट है और हम लोग सब लोग एनजीओ में मिल के काम करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप होता है कि अपने लेवल पे, अपने सेल्फ लेवल पे हम लोग धरती पर वेस्ट ना पहुंचाएं।
0: जी,
1: जितना हो सकता है उसको बचाया जा सकता है, रीयूज करें। हम लोग फर्स्टली मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो हम लोग पॉलीथीन का बैग का यूज़ बिल्कुल नहीं करते, अपना एक कॉटन का बैग लेके जाते हैं, सारी सब्जियों को उसी में कैरी करते हैं और घर पे आके उसे कैटेगराइज कर देते हैं। जितना हो सकते हैं हमने आसपास हम जितने लोगों को मिलते हैं उनको ये मैसेज जरूर देते हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। हमारे जो पॉलीथीन है वो डेली यूज में आती ही आती है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट जितना हो सकता है अपने सेल्फ लेवल पे उसको अवॉइड करें। और हमारी एनजीओ जो है पर्यावरण के लिए बहुत सालों से काम कर रही है, तो हम लोग इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं जगह जगह जा कर के, स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि एक यूथ ही है जो इसको अच्छे से समझ सकता है और जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो उसको जल्दी हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, समझते नहीं हैं। वो जो यूथ है उनको पता है कि हाँ, आने वाले टाइम में ये चीज़ हमें प्रॉब्लम देगी, तो हम सस्टेनेबल के भी ऊपर काम करते हैं। तो उसका अल्टरनेट हमने मार्केट में ये निकाला, फिर हमने पूछा कि आप इसका अल्टरनेट क्या बताएंगे, तो फिर हमने बैग्स बनाने शुरू करे।
0: जी,
1: कॉटन के बैग्स हो गए, जूट के बैग्स, ताकि उनसे हम बचाया जा सके मार्केट को और अपनी एनवायरनमेंट को।
0: दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। सो इसको सही में अगर आप चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आदत हमें पड़ जाती है, फिर चाहे वो रोज सुबह उठकर चाय पीने की है, कॉफ़ी पीने की है, या फिर एक आदत है कि आप सड़कों पर चलते नहीं हैं, आप सड़कों पर रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, या फिर आप मोबाइल फ़ोन पर घंटों बात करते हैं, या आप अपने घर का वेस्ट जो है आज भी सेग्रीगेट नहीं करते, उसे इकट्ठा करके एक काली पन्नी में डालते हैं और उसे कूड़े वाले को दे देते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की आदत हैं। आपके घर में आरओ होगा, लेकिन आज भी आरओ का जो पानी है वो यूं ही, जो वेस्ट वाटर है वो यूं ही बहता रहता होगा। ये सब हमारी आदतें हैं और एक लंबे समय से इन आदतों को हमने पाल लिया है और फिर ये आदतें जाती नहीं हैं। और जैसा दीपिका ने कहा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या एल्डरली लोग हैं, या फिर कहना चाहिए वो लोग हैं जो अब मिडिल एज हैं, उनका माइंडसेट बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बदल पा रहे हैं और वो है आज की जेनरेशन। उस जेनरेशन को यह समझ में आता है कि घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है, और आप घर से नहीं देश से बाहर निकलिए तो विदेश में जाकर आपको चकाचक सड़कें मिलती हैं, खूबसूरत सड़कें मिलती हैं और वहाँ पर कूड़ा नहीं है। सो मैनेज तो किया जा सकता है, पर ज़रूरत है खुद को बदलने की। सो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को बदलने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, जिन्हें क्रिएट करती है धरती माँ ट्रस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक छोटा सा क्लॉथ बैग लेकर जाया जा सकता है तो आप भी सब्जी खरीदने के लिए एक पहल या एक बदलाव कर सकते हैं। क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे बताइएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम के साथ, क्योंकि अब है फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड, फील लाइट।
2: हाँ, क्या कहा?

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं आज धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट से हमारे साथ प्रेसिडेंट बी एस बिश्री,

0: और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं इनके एक बड़े खास कार्यक्रम की, स्पैरो कंजर्वेशन। जी हाँ, स्पैरोस को बचाने की बहुत जरूरत है। एक जमाने में हमारे घरों के बाहर या फिर अगर कहना चाहिए छतों पर चींची चींची करती छोटी छोटी चिड़ियाएं होती थी, बट आजकल खत्म हो गई हैं। आजकल हमें कहीं कहीं पर सोसाइटीज के बड़े बड़े घरों में या फिर शॉफ्ट्स में हमें सिर्फ कबूतर नजर आते हैं। सो क्या कारण है इन चिड़ियाओं के चले जाने का, और वो जो वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़ियाएं होती थी वो कहाँ लुप्त हो गई हैं, जानते हैं। सो किस प्रकार से इन चिड़ियाओं को बचाया जाता है, भवन सिंह जी?
1: सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, गौरैया हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान है, प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। जो पहले जिन घरों में गौरैया रहा करती थी वो इतने जानकार थे, इतने समझदार थे और इतने साइंटिफिक थे कि उनके लिए अपने घरों में ही उन्होंने उनके लिए घोंसला छोड़ दिया था, जगह छोड़ दी थी दीवारों में, और जमीन से लेकर के 10 फीट की हाइट पे, 15 फीट की हाइट पे, 9 फीट की हाइट पे वो होल होते थे जहाँ पर गौरैया रहा करती थी। तो धरती माँ ट्रस्ट ने उन अपने पुराने दादाजी के घर के उस जगह को देखते हुए, उन होलों को देखते हुए, यहाँ NCR दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव में भी इस इनिशिएटिव कदम को इस तरीके से मार्केट में पहुँचाया ताकि हम अपनी गौरैया को बचा सकते हैं। और हमने समाज में लकड़ी के पुराने, जो पुरानी लकड़ियाँ होती हैं फैक्ट्रियों से जो वेस्ट बच जाता है उनको हम कलेक्शन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वेस्ट हमें दे दीजिए। कहीं पे हमें वेस्ट फ्री में भी मिल जाता है और कहीं हमें खरीद के भी लाना पड़ता है, तो उसका उसके लिए निश्चित जो उसका जो साइज़ है 9x7x8 साइज़ का हम उसका घोंसला तैयार करते हैं और 10 फीट की 9 फीट की हाइट पर उसको स्टेबल कर देते हैं। और इवन आप मुश्किल से उसको लगाएंगे, गौरैया अगर आसपास देख रही होगी तो उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसके बाद उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है और खुश होकर के वो धन्यवाद देती है प्रकृति को, मानव को, कि किसी ने मेरे बारे में सोचा और मैं इसके बारे में क्यों ना सोचूंगी।
0: सो भाई देखिए, अगर हम स्पैरो कंजर्वेशन की बात करें तो ना सिर्फ अब हम खुद ही ये देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे एनिमल्स और बर्ड्स, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, अब सोसाइटियाँ बन रही हैं और पुराने जमाने के घर नहीं रह गए हैं, बड़े बड़े बंगलोज नहीं रह गए हैं, तो इन सभी जीव जंतुओं के घर छिन गए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जंगल खत्म हो गए तो सारे के सारे जानवर, अगर आप देखें तो रोज सुबह अगर आपको अपनी पूरे सोसाइटी में ढेर सारे बंदर नजर आते हैं तो दरअसल ये बंदर तो अपने ही जंगलों में घूम रहे थे, बट परेशानी है कि इनके जंगलों को काट कर हमने सोसाइटी बना ली है, तो अब ये बंदर कहाँ जाएंगे या फिर ये बाकी जानवर कहाँ जाएंगे। सो इन जानवरों को अपना घर बनाने की भी जरूरत है, लेकिन बंदरों के लिए शायद आप बड़े घर नहीं दे सकते हैं, जिराफ के लिए नहीं दे सकते हैं, एलिफेंट के लिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी गोरैया के लिए तो आप अपने ही इस घर के अंदर जगह बना सकते हैं। सो कोशिश करिए कि लुप्त होती हुई गोरैया के लिए आप छोटा सा एक घर जरूर बनाएं। सो अपने घर में एक छोटा सा घोंसला बनाने की जरूरत है, और उस घोंसले को अगर आपने प्रोक्योर करना है तो उसके लिए आप धरती माँ ट्रस्ट को जरूर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको रेडीमेड ऐसे घोंसले देंगे जिसमें गौरैया रहकर खुश रहेगी और आपके घर में चहलकदमी मची रहेगी। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट से हमारे साथ प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट और साथ के साथ सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट जी हैं। अब हम आपसे एक बड़ा खास सवाल पूछना चाहेंगे पवन सिंह जी, और पवन सिंह जी वो ये है, आपके दो बड़े खास इनिशिएटिव हैं, नव सृजन टूरिज्म और उसके साथ साथ वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट। मुझे ये बताइए, जो वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट है और नव सृजन टूरिज्म है, दरअसल इसमें आप क्या करते हैं?
1: सबसे पहले तो मैं वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा। नव सृजन एक हमारा प्रोजेक्ट है, धरती माँ ट्रस्ट ने इसकी जब नींव रखी धरती माँ ट्रस्ट की, उसके बाद हमने एक नव सृजन एक अलग से हमने प्रोजेक्ट बनाया कि इसके अंतर्गत हम किन किन कैटेगरीज में हम काम कर सकते हैं। नव सृजन जो वेस्ट क्राफ्ट है, हमारे घर और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जिस भी प्रकार का जो भी वेस्ट है, हम मानव समाज तक हर इकाई उस हर एक वर्ग तक हम पहुँचते हैं, जिस तक हमारी पूरी प्रयास रहते कि हम किन किन को इस बातों को कि इस मैसेज को पहुंचा सके। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर हम बताने जाएंगे, स्कूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी नींव है, वो उन बच्चों को हम सिखाते हैं कि वेस्ट को हमें किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, उस किस तरीके से उसको अलग अलग करना है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में इस कचरे को दो तरीके से, तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसको दो तरीके से बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे, गीला कचरा और सूखा कचरा। हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को, गीले कचरे को अलग ग्रीन कलर के आप किसी भी तरह का एक डब्बा बनाइए, उसमें रखिए, और सूखा कूड़ा जो होता है उसको एक दूसरे रेड कलर के डब्बे में उसको आप रखिए, ताकि उसमें हम छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो वेस्ट है हम उससे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको हम आराम से ज़मीन पर गाड़ भी सकते हैं, उससे हमारी खाद बन सकती है। और सूखा जो कूड़ा होता है उससे आप समाज के उस व्यवस्था को, जो समाज ने, सरकार ने हमारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, वहां तक हम उसको बहुत अच्छी तरीके से हम, जैसे हमारे घरों में आजकल गाड़ियाँ आती हैं वेस्ट को लेने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलेक्शन के तौर पर करते हैं, तो उनको हम वो सूखा कूड़ा देंगे तो उनको बहुत ईजिली उसको अलग अलग करने में कोई असुविधा नहीं होगी। और गीले कूड़े से जो आप खाद बनाएंगे उससे एक आप जैविक ताकि और आगे बढ़ सकते हैं, उससे आप कंपोस्ट से अच्छी तरीके से खेती भी कर सकते हैं। आप अपने घर में बालकनीज में छोटे छोटे पौधों में अच्छी सी खाद आप बनाएंगे तो वो गीला कचरा हमारे बाहर जाने से बच जाएगा। और सूखे कूड़े से आप जैसे टॉफ़ी के, बिस्किट्स के, नमकीन्स के, कई तरह के जो आप रैपर्स हैं, उन रैपरों से भी आप बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हैं। और कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते हैं उसको एक छोटा सा एक ऐसा रूप दे सकते हैं, पुराने घर में हमारे कपड़े बहुत पड़े रहते हैं, उसका एक छोटा सा थैला बना करके उसमें आप भरते जाइए, एक कुशन का, एक तकिए का काम भी करेगा, आपके बैठने के काम आएगा। और जिस भी प्रकार का जो भी वेस्ट, जैसे क्लॉथ है, आज हमारे मार्केट में कपड़ों की ऐसी डिमांड आ रखी है, हम कपड़ों को भी यूँ ही फेंक दिया करते हैं डंपिंग यार्डों में। और हमारे देश में आज भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ कपड़े की बहुत सख्त ज़रूरत हो, ठंडियों में आप देखिए बहुत से लोग ठिठुरते रहते हैं, बैठे रहते हैं स्टेशनों में, बहुत हम जगह जगह घूमते हैं, हर स्टेशनों में आप देश के कई राज्यों में आप पहुँचे, जैसे गरीब जो लोग रहते हैं उन तक हम इस कपड़े को पहुँचा सकते हैं। आप धरती माँ ट्रस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं कि अपना घर का जो भी वेस्ट है, वो चाहे किसी भी तरह का वेस्ट है, वो भी आप हमें दे सकते हैं एज ए डोनेट के तरीके से आप। और इन चीज़ों को आप यूज़फुल कैसे बनाएंगे, इसको आप क्रिएटिव कैसे करेंगे, हमारी जो यूट्यूब चैनल है धरती माँ ट्रस्ट के नाम से, हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, धरती माँ .org पे भी विजिट करें, उससे भी आप इन बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं।
0: सो दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट क्या है, मतलब जो वेस्ट है उसको आप बहुत खूबसूरत क्राफ्ट में बदल सकते हैं और उसे मैनेज करते हुए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे ना तो आप वेस्ट को कूड़े में जाने देंगे और उसे धरती में वापस जाने से अच्छा धरती माँ को सुरक्षित और स्वच्छ रख सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ, जिसके प्रेसिडेंट BS बिष्ट और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं। दीपिका, आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप इन कामों को करने के लिए जाती हैं, खास तौर पर मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूंगी, किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं? क्योंकि ना, मुझे पता है आप लोगों को जाकर कितना भी समझा ले, बट क्योंकि लोगों का माइंडसेट नहीं बदलना है, लोगों की आदत नहीं है, सो बड़ा मुश्किल होता है। सो किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं?
1: जैसे हम किसी को फर्स्ट समझाएंगे
0: जी,
1: तो वो तो कहते हैं कि हमारे करने से क्या हो जाएगा
0: जी,
1: पूरी दुनिया ऐसा कर रही है, ये तो होता ही रहता है, हमें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है
0: जी,
1: सरकार अपना काम कर रही है। तो वो लोग इसको समझते नहीं है, पर हम जितना हो सकता है हम उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। जो यूथ होते हैं वो थोड़ा बहुत समझते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम फॉलो करेंगे, पर कुछ टाइम तक फॉलो करते हैं, फिर वो भी जो नेचुरली सब कर रहे हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं। और बड़े लोग हैं वो तो मोस्टली सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है उस चीज़ को, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा।
0: वाकई ये बिल्कुल सही है, मतलब दीज आर सम रियल टाइम चैलेंजेस लोग फेस करते हैं। आप सोचिए ना कि आप जाएंगे और आप लोगों को एजुकेट करेंगे, आपके आज के बाद से आपके घर का जो कूड़ा है उसे ना सेग्रीगेट करिए, गीला अलग करिए, सूखा अलग करिए, तो अक्सर लोग ये जवाब देते हैं कि आप अपना काम खुद करिए, ये तो सरकार की ड्यूटी है कि हम अपने घर से कूड़ा निकाल देंगे, वहां जाकर ये कूड़ा आगे सेग्रीगेट हो जाएगा। सुन, सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली सेग्रीगेट हमेशा सोर्स पर होता है, यानी जहाँ कूड़ा बन रहा है वहीं आप उसे अलग कर सकते हैं। एक बार आपने सूखे कूड़े को गीले कूड़े में मिला दिया, तो बड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि वो जो गीला कूड़ा है वो सूखे कूड़े को भी गीला कर देता है। उसके बाद आप उसको वापस सुखाएंगे, एक प्रोसेस सोचिए कि आपके गीले और सूखे कूड़े को जब आप मिक्स कर चुके हैं तो कहाँ कौन सज्जन है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके इस मिक्स करे हुए कूड़े को पूरा पहले वो अलग करेंगे, फिर सारी चीज़ों को अलग करने के बाद सेग्रीगेट करेंगे, जो पॉसिबल नहीं होता है। सो ये कुछ खास चैलेंजेस हैं, हम अपनी धरती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद में लोग इस धरती को पोल्यूट कर रहे हैं। सो चलिए हम सब भी वो बने जो धरती माँ ट्रस्ट की तरह कॉन्शियसली इस वेस्ट को सही ढंग से मैनेज करें। और जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट बहुत बेहतरीन काम कर रही है पर्यावरण पर, जिनके प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट जी और दीपिका बिष्ट जो कि सेक्रेटरी हैं मेरे साथ हैं। अब भवन सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी टीम कितनी बड़ी है और आप लोग दरअसल किस प्रकार काम करते हैं। सो अवेयरनेस फैलानी है, फिर साथ के साथ लोगों में बदलाव लाने की कोशिश करनी है, वेस्ट मैनेजमेंट के क्राफ्ट्स हैं, आप लोग स्टॉल्स लगाकर इसका सामान भी बेचने की कोशिश करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि वेस्ट में से सामान कैसे बनाया जा सकता है। सो किस प्रकार करते हैं
1: इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे घर में किस प्रकार का जो कूड़ा होता है
0: जी,
1: उसको हम कैसे हम उसको यूजफुल बना सकते हैं
0: जी,
1: ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि हम जो हमारे घर का जो किसी भी प्रकार का जो कूड़ा है, उस कूड़े को हमने ये समझना है कि ये व्यर्थ नहीं है
0: जी।
1: इससे भी हम कुछ न कुछ अर्न कर सकते हैं, इससे भी हम कुछ वेल्थ में इसको बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँगा, हमारी पुरानी जीन्स की पैंट है, हमने फेंकनी है, अब हमने नहीं पहननी, उसका आप थैला बना लीजिए। उसका जब आप थैला बनाएंगे तो कुछ भी नहीं, तो आपका साल या दो साल आराम से वो थैला आपके काम करेगा और एक अच्छी फीलिंग भी आपको देगा कि मैंने अपने हाथों से यह बैग बनाया। और कई सारी ढेर सारी पॉलीथीन को आप बचा सकते हैं। और जो हमारी टीम काम करती है, हम घर से ही इसका प्रयास शुरू करते हैं
0: जी।
1: जैसे कि हमने जो भी प्रकार का जो कूड़ा है उसको हमने कैसे किया, हमने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा इसको आपने अलग अलग रखना है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, समाज की एक नींव कहाँ से रखी जाएगी, अपने घर से। अपने बच्चों को आप सिखाइए, अपनी आदत में बदलिए उसको कि हमने उसको वेस्ट में डालना ही नहीं है। अब इसका करेंगे क्या, लोगों की यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है। अब हमें इसका, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इसको सेग्रीगेट करने का, इसको अलग अलग करने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश का जो हमारी जेब से पॉकेट में से जो रोज के आपके बगैर कहे, आपको बगैर समझे हुए आपके 50 रुपये यूँ ही निकल जाया करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, जो कि आप रोज़ाना 50 रुपये दे रहे हैं भारत सरकार को। कैसे, समझिए। हमारे घर से जो भी कूड़ा ले जाने वाला व्यक्ति है उसको सरकार सैलरी देती है, कहाँ से देगी, हमारी पॉकेट से देगी। उसके बाद उसने बड़ी गाड़ी में उसको ट्रांसफ़र करना है, उनको सैलरी कहाँ से जाएगी, हमारी सेब से जाएगा। अब उसके बाद जो ट्रक जाएगा डंपिंग यार्ड में जाएगा, वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनको सैलरी कौन देगा, भारत सरकार देगी। भारत सरकार हमारी जेब से निकालेगी, हम जो टैक्स पेयर करने वाले हैं उनके जेब से जाएगी। अब उस पर सेग्रीगेट करने वाले जो लोग हैं, वो गीले कचरे को और सूखे कचरे को जब अलग अलग करते हैं, उनमें से जो निकलने वाली जब इकट्ठा होता है उसमें डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलती हैं, तो बताइए सो दोस्तों, वो हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे जैसे हाथ पैर नाक कान आँख वाले लोग हैं, वो कितनी मुसीबतों के साथ हमारे समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए और हमें एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमारे घरों के आसपास हमारी गंदगी ना हो उसको व्यवस्थित करने के लिए वो इतने गहरे डीपली हम काम कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पे और कार्बन डाइऑक्साइड, वो दिन रात सूंघते रहते हैं और वो इस चीज़ से बीमार भी हो जाते हैं। आज डंपिंग यार्ड जितने भी बन चुके हैं हमारे देश में, आप वहाँ के आप देखिए, दिल्ली NCR के आसपास आप जब लोग जाते होंगे तो कितनी, मतलब कितनी बदबूदार जो स्मेल जो वहाँ से आती है, उससे हम प्रदूषित भी हैं और आप इसको मैं 100% ये कहना चाहूँगा, उससे हम लोग बीमार भी रहते हैं। तो जो हमारी टीम है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है कि उसको हम अलग अलग रखें और उससे फिर यह निष्कर्ष निकालें अब इसको हम किस तरीके से इसको वेल्थ में बदल सकते हैं। जैसे बैग बनाना है, पेंटिंग्स बनानी है और उसके फ्लावर पॉट बनाने हैं, इवन धरती माँ ट्रस्ट जो पॉलीथीन होती है उसकी चप्पलें भी बनाते हैं। हम जगह जगह जा कर के स्टॉलों के माध्यम से अपने गुड्स को बेचते हैं और समाज को ये समझाते हैं कि आप जो है इस चीज़ को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, हमने राष्ट्र को, अपने पूरे विश्व को बदलना है, उसको सुव्यवस्थित करना है, उसको दुनिया से एक भारत को अलौकिक स्थान दिलाना है। हम उनको संदेश देते हैं कि हम अपनी धरती पर वेस्ट को जाने से यहीं से शुरुआत उसकी करते हैं। हमारी ऐसी इस तरीके से पूरी टीम काम कर रही है, जो कि हमारे गली मोहल्ले में लोग हैं और धरती माँ ट्रस्ट के 150 वॉलंटियर आज काम कर रहे हैं, जो मानव समाज को जागृत कर रहे हैं।
0: वाओ, तो भाई देखिए, इतने सारे लोग हैं जो पॉलीथीन से चप्पल बना रहे हैं, बहुत सारे पॉलिथिन बैग से क्राफ्ट आइटम बनाया जा रहा है, वेस्ट से यूजफुल चीजें बनाई जा रही हैं जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जरूरत यह है कि इसमें कहीं ना कहीं माइंडसेट और उसके बदलाव की जरूरत है। सो क्या आप इस माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी धरती माँ ट्रस्ट के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो मेरा अगला सवाल यही है, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ, जिसके की प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट जी और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई इस ट्रस्ट के साथ कैसे एसोसिएट हो सकता है। भाई देखिए, मुझे भी पता है कि इनकी बातें सुनकर आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई है, थोड़ा सा एंथुजियाज्म आया और आपको भी लग रहा है कि चलिए अपनी धरती माँ को बचाया जाए। तो धरती माँ को बचाया कैसे जा सकता है, जानते हैं दीपिका बिष्ट से, जो कि सेक्रेटरी हैं धरती माँ ट्रस्ट की। दीपिका, अगर कोई आपके धरती माँ ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहता है, कोई वॉलंटियर करना चाहता है, कोई एसोसिएट करना चाहता है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या आपकी वेबसाइट है, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं और कैसे आप तक पहुँच सकते हैं?
1: हमारी वेबसाइट है www.dhartimaa.org, आप उसमें विजिट कर सकते हैं, हमारी उसमें सारी डिटेल्स हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसमें मेंबर्स बन सकते हैं, वॉलंटियर का फॉर्म भर सकते हैं, हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप आइए। हम अपने वॉलंटियर्स को, अपने मेंबर्स को यही बोलते हैं कि आप अपने लेवल पे एक स्टेप जरूर आगे करिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर्सन को इस चीज़ को समझाइए, अपने तक ही उस मैसेज को ना रखें, आगे आप बात को बढ़ाएंगे तो तभी हमारा पूरा जो समाज है वो एक साथ जुड़ेगा, एक सोच के साथ आगे बढ़ेगा। तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करिए, उसमें आपको डिटेल्स मिलेंगी। हमारे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ जगह जगह जाके स्टॉल्स लगाते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम में, वो सब हम सब मिल के लोगों को आगे मोटिवेट करते हैं।
0: वाकई भाई, आप अगर मोटिवेटेड हैं तो आप इनके साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं, तरीका आपके पास है। अगर आपको लगता है कि आप श्रमदान देना चाहते हैं तो आइए किसी दिन वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके को सीख लीजिए। अगर आपको लगता है आपके पास समय नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है, आप इन्हें धन दे सकते हैं, जिससे कि वो अलग अलग एरियाज में जाकर इस पर्यावरण को ठीक कर सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इनके इनिशिएटिव से अपने आप को जोड़ सकते हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप इनके साथ वॉलंटियर बनिए और अलग अलग तरीके से धरती माँ को एक बार फिर से वो तोहफा दीजिए जो धरती माँ आपसे चाहती हैं, गंदगी नहीं सफाई। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने ढेर सारी बातें जानी धरती माँ ट्रस्ट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानवता की राह पर चल रहे हैं। ऐसे ही आज दो शख्सियत से मैंने आप लोगों को मिलवाया, प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट भवन सिंह जी, और साथ के साथ अगर देखा जाए तो दीपिका बिष्ट जो कि सेक्रेटरी हैं धरती माँ ट्रस्ट की, आज यहाँ पर आई और उन्होंने बताया कि धरती माँ ट्रस्ट का सही मायने में उद्गम किस लिए हुआ और उसका उद्गम होने के बाद इतने लंबे समय, अगर आप देखें 2009 से इन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया, 2014 से लेकर 2025 तक की मैं अगर बात करूं तो इतना लंबे समय से ढेर सारे काम कर रहे हैं मानवता की राह पर चलते हुए। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी भवन सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स जो आपको रेडियो मानव रचना के जरिए सुन रहे हैं, उन्हें क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं एक छोटा सा एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ।
0: जी,
1: अगर एक मेले में, मैं कहूँ कि ये हमारा पूरा विश्व जो है एक मेला है, एक बाजार है, इसमें पिता पुत्र ये आप फिर कहें कि एक पूरी फैमिली अगर साथ में जा रही है कहीं पे, तो उसमें फैमिली का एक भी मेंबर अगर छूट गया, एक भी सदस्य अगर उस मेले में अगर कहीं खो गया, तो वह बच्चा भी परेशान हो जाएगा और पूरी फैमिली भी परेशान हो जाएगी और पूरा गांव भी परेशान हो जाएगा। हो सकता है उसके लिए पूरा जिला और पूरा राज्य भी परेशान हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा देश भी परेशान हो सकता है। हम इस बात को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा, हमारी एक सोच के द्वारा अगर हम एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, वह है वेस्ट मैनेजमेंट। और वेस्ट मैनेजमेंट ही हमें पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व में एक ऐसा अलौकिक स्थान दिला सकता है जो कि सोच भी बहुत बड़ी, एक कल्पना आप उसको करिए तो आप हमारे इस देश को पूरे विश्व में ऐसा सुंदर बना सकते हैं। इसी बात को लेकर के हमने एक बीच में एक प्रश्न हमसे छूट गया था कि नवसृजन टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा संदेश यह है कि अगर आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जाना चाहते हैं, खूबसूरत जगहों को ढूंढना चाहते हैं और खूबसूरत सा आप भोजन ढूंढते हैं, खूबसूरत रहना ढूंढ सकते हैं और अच्छा शुद्ध पानी ढूंढ सकते हैं, तो यह हमारी डिमांड होती है वहाँ जा करके। तो इसको वहाँ पर जा करके हम शुद्ध कैसे पाएंगे? जब हम करेंगे तब हमें वो शुद्धता मिलेगी। हम एक उदाहरण के तौर पर और आपको बताना चाहूँगा कि अगर सपोज एक एग्जांपल के तौर पर आप उत्तराखंड में, मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ, आप नैनीताल की झील पर आइए, घूमिए, किसी भी स्टेट में आप जाइए, वहाँ पर जा करके अगर आप अपने द्वारा कुछ भी वेस्ट अगर करके आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा एक पाप करके आ रहे हैं और इस धरती माँ पे आप जो बोझ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं और जो उसके द्वारा उसको वहाँ पे उसको इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद वो बहुत सारी प्रोसेसिंग के जरिए जाता है, बहुत अज्ञानतावश वहाँ पे अभी भी, आज भी हमारे देश में इतना सब काम होने के बावजूद, स्वच्छता अभियान होने के बाद भी, देश के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, उसके बावजूद भी आज हम एक ही गलती कर रहे हैं। जो इस गलती को हम सुधार सकते हैं वह है हमारा नवसृजन प्रोजेक्ट का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, कूड़ा न जलाएं, न बहाएं, न फैलाएं, इसे विश्व कल्याण

0: के लिए उपयोगी बनाए। अगर इस मुहिम को आप अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं, उसका अनुसरण करना चाहते हैं, तो आइए धरती माँ ट्रस्ट के साथ जुड़िए और आप हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं। हमारे धरती माँ ट्रस्ट के वॉलंटियर न बन करके आप अपने वॉलंटियर बनिए, अपने पूरी फैमिली के लिए, अपने पूरे राज्य के लिए, पूरे विश्व के लिए। यही मेरा संदेश है। आइए हम सब मिलकर अपनी धरती माँ की रक्षा करें, सुव्यवस्थित करें और सुंदर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तहे दिल से धन्यवाद बिश जी, आज आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। दोस्तों, वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि ऐसे धरती माँ ट्रस्ट के शायद 150 वॉलंटियर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना इनके साथ जुड़कर या इनके बिना भी हम अपने घर पर सिर्फ एक छोटा सा प्रण लें कि आज के बाद से हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वेस्ट को उस धरती पर न जाने दें जहां दरअसल जिस धरती को हम अपनी माँ कहते हैं। अगर एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लेते हैं, एक माइंडसेट में बदलाव लेकर आते हैं, तो ये पर्यावरण यूं ही ठीक हो जाएगा, धरती खूबसूरत हो जाएगी और बहुत सारी परेशानियों का हमें हल मिल जाएगा। इसी बात पर मैं यानी आरजे भावना ले रही हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: Narang and you're listening to Radio Manarachana 107.8. Feel good, feel light.
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम में जहाँ मैं आप लोगों के पास होती हूँ पूरे दो घंटे के लिए, जहाँ होती हैं खूब सारी बातें और खूब सारे गाने मैं आपको सुनाती हूँ, तो आज के प्रोग्राम में भी आप बिल्कुल तैयार हो जाइए जहाँ आपके पसंद के गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और इसी के साथ ही आज के इस खास मौके पर, जी हाँ, चिल्ड्रंस डे के इस मौके पर आप सभी को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम में वही कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपको बहुत सारे भाव मन के अंदर आने वाले हैं। क्या होने वाला है ये आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में, तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और एक गाना सुनाती हूँ मैं आपको। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आपका कोई सवाल है या कोई मैसेज आपको हम तक या बाकी लिसनर्स तक पहुँचाना है या कोई गाना आपको सुनना है या किसी को डेडिकेट करना है, तो हमारा नंबर है 8010781078। चलिए गाना एंजॉय करते हैं और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

कहते हैं बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है, जहां ना कोई चिंता ना कोई डर, बस खेल, सपने और ढेर सारी मासूमियत। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। ये कैसा शो जो दिल से जुड़ता है, और आज तो दिल को छू लेने वाला दिन है। जी हाँ, आज है चिल्ड्रंस डे, और आज इस मौके पर मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ जिंदगी को दूसरा नाम मिलता है। जी हाँ, यहाँ वो बच्चे रहते हैं जिन्हें शायद अपना कोई ना मिला, लेकिन अब इनके पास है मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी का प्यार भरा परिवार। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की, जहाँ हम गए, हमने ढेर सारी बातें की। और इस संस्था के प्रेसिडेंट है श्रीमती सिमरन लांबा, जो पिछले कई सालों से इन बच्चों की जिंदगी में माँ जैसी ममता और मार्गदर्शक जैसी शक्ति लेकर आई है। सिमरन, जिसे आज हमने बहुत सारी बातें की, इनसे जाना मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी किस तरह से इन बच्चों के लिए काम करता है, आप किस तरह से सहयोग दे सकते हैं, और भी बहुत कुछ, यहाँ तक कि बच्चों की कहानियां हम सुनेंगे इस प्रोग्राम में, कि किस तरह की कहानी है उन छोटे छोटे बच्चों की जिन्होंने शायद कुछ देखा ही नहीं अभी, जो अभी देखना बाकी है, लेकिन एक मोड़ पर उन्हें कोई अपना छोड़कर चला गया। तो आज हम करने वाले हैं सिमरन लांबा जी से ढेर सारी बातें, और साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई सवाल है आपका, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। तो आइए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और इस वक्त हमारे साथ में है सिमरन लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
1: थैंक यू प्रियंका जी।
0: जी, मिरेकल के प्रेसिडेंट हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बात करने वाले हैं, आपसे जानने वाले हैं आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में, मिरेकल की नींव कैसे रखी जाई गई, किस तरह से आज ये वर्क करता है और भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। सबसे पहले आप हमारे रेडियो के माध्यम से जुड़ी हैं, सभी लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, सभी लोगों के लिए मैसेज क्या होगा आपका?
1: सबके लिए मेरा मैसेज ये होगा कि बच्चों को थोड़ा बच्चों के तरीके से देखें और थोड़ा इंसान को ह्यूमैनिटी ग्राउंड में होना चाहिए और जितना हम बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भविष्य में हमारे देश के लिए या संसार के लिए ये जनरेशन है, क्योंकि ये अभी हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, नींव है हमारे बच्चे है ना। आज ही इनका भविष्य अगर अच्छा होगा तो कल आने वाला हम सबका भविष्य अच्छा होगा, देश के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए उन्नति वो होगा ये।
0: जी मैम, सबसे पहले मिरेकल की नींव कैसे रखी गई, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है एक ड्रीम से, तो क्या आपका भी कोई सपना था या किस तरह से आपने मिरेकल की नींव रखी?
1: मिरेकल की नींव तब स्टार्ट हुई जब मैंने मास्टर्स किया MSW, तब हम लोग इंटर्नशिप करने के लिए होम्स में जाते थे, तो जब हमने ऑर्फनेजेस के अंदर इंटर्नशिप किया मैंने वहाँ एक चीज़ महसूस की कि बच्चों को ना मतलब माँ बाप की कमी कहीं ना कहीं खलती थी, अगर किसी ने कोई डोनेशन दिया या कुछ भी दिया तो उनको पता रहता था, और वो चीज़ कहीं ना कहीं ना हम बड़े तो बड़ों की तो डिग्निटी होती है पर हम ये भूल जाते हैं बच्चे की भी अपनी एक डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और हम कहीं ना कहीं उसको ना हार्म कर रहे होते हैं उनके हाथों में कुछ ना कुछ दे के और फोटोज क्लिक करके। आजकल ये ट्रेंड भी है कि हमें देना है या हमने कोई पुण्य का काम करना है जी तो हमें बच्चों को देना, तो वो कहीं ना कहीं हार्म करती है और वो बच्चा डीमोटिवेट होता है, वो सोसाइटी में जेल नहीं हो पाता
0: जी।
1: तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कैसा होम बनाऊंगी जो जीरो होगा, यहाँ बच्चे नहीं रहेंगे और हर बच्चे को उसका घर मिलेगा। फिर हमने स्टार्ट किया, तब गवर्नमेंट का साथ टाई अप करके हमने एडॉप्शन देना स्टार्ट किया कि होम के अंदर एक भी बच्चा नहीं हो, बच्चे की सही जगह उसका घर हो, फैमिली से बेटर कोई जगह नहीं है। तो तब हमने फिर इसको 2015 में इसको स्टार्ट किया।
0: तो करीबन इसे 10 साल हो गए।
1: 10 साल हो गए इसको, 10 साल हो गए, और कम से कम मैंने 250 बच्चों को अडॉप्शन में दे दिया हमने, इन कंट्री, इंटर कंट्री, 40 बच्चों के तो खुद के उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ के उनको वापस किया। कई बार बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, या मियाँ बीबी का कभी झगड़ा हो जाता है तो वाइफ रोड पर छोड़ के चली जाती है बच्चे को, तब हमने 40 बच्चों को तो उनके बायोलॉजिकल को वापस किया, बाकियों को हमने जो स्पेशल नीड हैं या आपके नॉर्मल बच्चे हैं तो हमने एडॉप्शन में दिए हैं सारे।
0: तो कई बार ऐसा होता होगा कि काफ़ी ब्रूटल केस भी आते होंगे आपके पास में, तो कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहें?
1: काफ़ी केस है, एक बार कोविड में हुआ था कि 2 भाई बहन को उनके सगे ताऊ ने जला दिया था बिल्कुल बम बांध के, और BK चौक पर उनको फेंक दिया था बच्चों को, और एक बच्चा है जो 9 साल की लड़की है वो सेक्सुअली असोल्ट भी है, 3 बहनें हैं, हमारे अकॉर्डिंग शायद बाप ने ही दारू के लालच में उस बच्चे को बेच दिया। तो बहुत वर्स केसेस में आते हैं बच्चे, बहुत ट्रोमाटाइज भी होते हैं बच्चे, उन्हें कभी कभी अपने उस पास से निकलने के लिए साल साल दो दो साल लग जाता है, पर जब वो निकलते हैं फिर बहुत अच्छा निकलता है।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज हम हैं मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी, जहां पर हम बात कर रहे हैं इस संस्था के प्रेसिडेंट श्रीमती सिमरन लांबा जी से, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस जान रहे हैं और किस तरह से हर एक बच्चे की कहानी है जो ये हमें बता रही हैं और कितनी तकलीफें बच्चों की जिंदगी में और उनको कैसे उभारने का काम करते हैं सिमरन जी। तो काफी कुछ हमें इनसे जानने को मिल रहा है। ये वाकई ऐसा होता क्यों है, क्यों इस तरह से बच्चों के साथ में चीजें होती है? बच्चों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है या उसके माँ बाप कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनको वापस से आपने वो किया, तो कितनी खुशी होती होगी ना ये देख करके कि जो बच्चे खो गए हैं वो वापस से अपने माँ बाप के पास पहुँच गए।
1: काफ़ी कई बार कई पेरेंट्स के बच्चे मिसिंग हो जाते हैं पर वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं और बच्चा यहाँ तड़पता है अपने माँ बाप के लिए और जब वो मिलता है और उसके बाद वो बहुत टाइटली पकड़ के रखता है कि मैं दोबारा नहीं खो जाऊँ, कि देखो बच्चे के अंदर एक फियर होता है, डर होता है उसके अंदर कि मैं दोबारा नहीं कहीं जाऊँ। अब कई बार लोग कहते हैं बच्चा वहाँ से भाग गया, मेरे यहाँ होम में गेट खुला रहता है, उसको पता है वापस आना है। कहीं घूमने भी जाते हैं ना तो वहाँ पर वो ढूंढते हैं कि बड़ी मम्मा कहाँ है, हम कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि उनको लगता है एक बार खो के हम दोबारा नहीं खोना चाहते। तो बच्चा बहुत मासूम होता है और ये सच में आपसे सच में प्यार करता है। देखो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पैसे वाले हैं, सुंदर हैं, नहीं है, वो जो आपको सच में कह, हम लोग कहते हैं ट्रू लव आपको बच्चा ही कर सकता है लाइफ में और कोई नहीं कर सकता है।
0: बहुत बहुत बड़ी आपने ये बात बोली है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अभी मिरेकल में कितने बच्चे हैं अभी जो यहाँ पर हैं?
1: 95 बच्चे हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, तो 95 है जिसमें से आप एज बताएंगे कैसे कैसे?
1: हाँ, मेरे पास 0 से लेके 16 साल तक के बच्चे हैं, 62 गर्ल्स हैं, बाकी 33 मेरे पास बॉयज़ हैं और नॉर्मल बच्चे हैं प्लस स्पेशल बच्चे हैं और ओवरऑल हरियाणा के 0 to 6 वाले स्पेशल नीड बच्चे यहीं आते हैं, तो स्पेशल बच्चे ज़्यादा हैं।
0: ओके, तो जब ये बच्चे इतने हैं तो कभी ऐसे खर्चे को लेके कभी ऐसे दिमाग में थॉट आया हो कि क्या कहीं से हम कुछ कर सकते हैं, या कितने लोग हैं जो आपके साथ इस जगह को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, कितने लोग फंडिंग दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपके मदद के लिए आगे आ रहे हैं कुछ सा?
1: हाँ, हमारे पास 2 कंपनीज जुड़ी हुई हैं, एक है ब्रिलियन, एक है फ्लोर। ब्रिलियन वो जो ऑल आउट बनाती है वो कंपनी हमें स्पॉन्सर करती है, एक फ्लोर कंपनी है जो बच्चों का स्पॉन्सर करती है, प्लस कुछ कभी कभी हमारे पास रोटरी है जो सामान के लिए हमें कुछ चाहिए काइंड्स के लिए तो हम रोटरी को, कुछ इंडिविजुअल डोनर्स हैं। पर फिर भी क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, मेडिकल एक्सपेंस ज़्यादा हैं क्योंकि स्पेशल नीड है और इन्फेंट्स हैं तो उसमें हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, फंड्स की तो दिक्कत आती है छोटे बच्चों बहुत, क्योंकि हर चीज़ फ्री में नहीं आती, हर चीज़ में पैसा लगता है।
0: जी।
1: बच्चों के दूध है, लैक्टोजन है, डायपर्स हैं, खाना है, मेरे 30 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका लंच है, सब कुछ है। मेरी बिल्डिंग है जो ये रेंटेड बिल्डिंग है, इसमें बिजली है और जो स्टाफ है उसकी सैलरी है, कोई फ्री में नहीं करेगा ना, क्योंकि सबका अपना अपना घर है, कोई 1 महीना 2 महीना कर देगा कैसे करेगा, सर्वाइवल कैसे करेगा। तो टिल ऑफ द एंड जो लास्ट में क्वेश्चन आ जाता है पैसा, तो पैसा कहीं ना कहीं तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
0: वाकई में किसी संस्था को चलाना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए। आप अगर चाहते हैं इनके साथ जुड़ना तो मैम कैसे जुड़ सकते हैं लोग आपके साथ?
1: आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, हमारे मिरेकल की वेबसाइट पे जाके डोनेशन दे सकते हैं, आप फिजिकली आके दे सकते हैं, किसी एक बच्चे को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं 5,000 पर मंथ, या आपको लगता है हमें किसी का लंच स्पॉन्सर करना है लंच कर सकते हैं बच्चों के लिए, ये काइंड्स में कुछ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कि किसी बच्चे का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का है एक्सपेंस तो आप वो उसको बेयर कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई एक बंदा 500 रुपये पर मंथ भी देता है तब भी वो हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए वो 500 रुपये छोटा है पर वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा।
0: क्या कोई यहाँ क्राइटेरिया है कि मतलब बच्चा इतनी एज के बाद वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा या कब तक बच्चा यहाँ रह सकता है?
1: हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है वो 0 to 6 तक है। अच्छा। पर मेरे पास बड़े बच्चे भी हैं जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, और मेरा मानना है कि भाई बहन अलग नहीं होने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से यहाँ थे अब वो बड़े हैं, तो उसके लिए भी हमने एक CCI के लिए फाइल चलाई हुई है कि मेरा एक्सटेंड कर दो 25 बच्चों का, एटलीस्ट मेरे बच्चे मेरे पास ही वो रहेंगे क्योंकि उनके लिए ये घर है। और मैं नहीं चाहती कि वो पहले से उनके पेरेंट्स नहीं है, फिर हम भाई बहनों को भी अलग कर दें, या एक बच्चा बचपन से यहाँ से पला है, सडनली आप किसी को चेंज करते हैं। आप सोचो ना, हम एक न्यू जॉब भी शिफ्ट करते हैं ना, तब भी हमें कैसा लगता है, और वहाँ तो वो बच्चा है, यहाँ उसकी अटैचमेंट है, पता नहीं दूसरी जगह उसकी अटैचमेंट होती है, वहाँ पे वो मिक्सअप होता नहीं होता है केयर टेकर से, या और बच्चे कैसे हैं। तो ये है, ये आपको पलट के थैंक्स भी नहीं कर सकते। इनको पता, इनको ये भी नहीं पता है कि इनके लिए लड़ा कौन, बच्चे को क्या पता, शायद उसको आगे पता भी नहीं चलेगा। तो लोग जो है आजकल शायद बेनिफिशरीज के लिए काम करते हैं, या हमको यहाँ से कुछ थैंक्स मिलेगा, या हमारी वाहवाही होगी, तो उसके लिए लोग ज्यादा करते हैं, पर इनके लिए ये भी नहीं सोचते। मैं हमेशा कहती हूँ, डिपार्टमेंट से भी कुछ भी डिसीजन किसी बच्चे के लिए लेना है तो अपने बच्चे को हमेशा आंखों के आगे रखो कि अगर ये चीज मेरे बच्चे के साथ है तो उस पर कैसा इम्पैक्ट करेगा, तब जाके यहाँ सोचो। हमारे JJAT में लिखा तो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, पर क्या हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं? हम उस बच्चे को एज अ पेपर के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर, वहाँ से वहाँ। वो ये नहीं सोचते, मैंने अभी घर शिफ्ट किया, उसमें मछलियाँ ट्रांसफर हुई हैं, तो मछलियों ने दाना नहीं खाया क्योंकि उनके लिए नया घर था, तो वो मछलियाँ हैं, और यहाँ तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं। मेरे स्पेशल नीड रूम में जो बच्चे हैं उनका रूम बिल्कुल सेटअप है, अगर आप उसको एक रूम से या उनकी केयर टेकर भी हटा देते ना, वो खाना नहीं खाते दूसरों से। सोचो, परमात्मा ने अगर कोई चीज़ छीनी है ना, तो दूसरी चीज़ दी भी है। तो हम हमारे केयर टेकर्स बहुत मुश्किल होता है जो स्पेशल बच्चों के पास हैं, कि भैया नहीं, दूसरे के हाथ से वो पानी मुंह बंद कर लेते हैं, दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको वही केयर टेकर चाहिए, वही रूम चाहिए जिस रूम में वो लोग रह रहे हैं,
2: वो तो उनको माता पिता मान चुका
1: है। यस, तो मैंने क्या कहा, परमात्मा कुछ चिंता ना कुछ देता भी है एक सेंस, और जो हमारे तरफ पास बच्चे आते हैं उनके अंदर एक ऑलरेडी डर होता है अबेंडन होने का, कि वो ऑलरेडी पहले से उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, और फिर वो यहाँ जेल होते हैं, यहाँ एडजस्ट करते हैं, अपनाते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर एक डर होता है। तो क्या हम इन बच्चों को ये डर ही दें हमेशा? कुछ अच्छा नहीं दे सकते क्या हम लोग? दे सकते हैं
2: बिल्कुल। जो भी इस धरती पर आया है और आ करके अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो आप गलत है, क्योंकि अगर आपने जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर अच्छा है जिसे आप देख नहीं रहे हैं। अब जैसे ये बच्चे हैं, इनके साथ बचपन से ही बहुत गलत होता आया है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो इस तरह से माँ या बाप के रूप में आगे आता है। तो चलिए अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे। बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और आज के इस प्रोग्राम में यानी आज इस खास मौके पर हम हैं मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी। एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है और वो बच्चे जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं या अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को यहाँ पर पनाह दी जाती है। और सिर्फ पनाह ही नहीं बल्कि हर तरह का ख्याल रखा जाता है, फिर चाहे हम मेडिकल की बात करें या फिर उनकी एजुकेशन की बात करें या फिर उनकी हम हर एक चीज़ की बात करें, सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और इस संस्था को, इस पूरे मिरेकल को चलाती हैं यानी कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिमरन लांबा जी, इनसे आज हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं बच्चों के बारे में। सिमरन लांबा जी जो काम कर रहे हैं बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला ये काम है, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देने वाला है। मैं दोबारा कहूँगी अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैम एक बार आप अपने बारे में और बता दीजिए।
1: मेरी जो संस्था का नाम है मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी है, ये सूरजकुंड लेकवुड सिटी के अंदर है। आप गूगल पे जैसे सर्च करेंगे, आप एडॉप्शन एजेंसी डालें या मिरेकल डालें तो आपको आएगा हमारा। वहाँ मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। या किसी को कोई अबैंडेंड बच्चा मिलता है, और आपसे मैं एक चीज़ और भी ये कहूँगी कि अगर कोई लड़की लगता है कि अनवेड है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो बच्चा डिलीवर करके उसको फेंके नहीं, उसको हमारे पास आए और हमारे पास बताएं और हम उस बच्चे को सेफ सरेंडर करवाएंगे। उसमें उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। कई बार बच्चों में होता है कि हमें पता नहीं होता और अब बच्चा पैदा किया और फेंक देते हैं, कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है आप प्रेग्नेंट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके लिए आप अबॉर्शन ना कराएं, क्योंकि आप अबॉर्ट कराते हैं, बच्चा अबॉर्ट नहीं होता, फिर उसको फिर फेंक देते हैं, फिर बच्चा वो स्पेशल नीड हो जाता, पूरी जिंदगी उसकी बेड पर निकल जाती है। तो कोशिश करें, आपको लगता है नहीं, आप गूगल पे जाएं, मेरा नंबर है उसके अंदर, मैं नंबर बोल भी देती हूँ 7291-977-831। कोई भी लगता है कि प्रेग्नेंट है, बच्चा है, हम नहीं रखना चाहते हैं, इवन कपल भी कि गर्ल

0: माता पिता हमें यहाँ नहीं मिलेंगे पर वहाँ बाहर अब्रॉड मिल जाते हैं, तो फॉरनर्स हमेशा स्पेशल बच्चा लेते हैं। तो है रेशो, कोशिश तो है कि हमारे साथ साल में कम से 10 से 15 बच्चे तो बच्चों को घर तो मिले, परमानेंट घर मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और प्रोसीजर क्या है, कई सारे माता पिता हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं बट अडॉप्शन के प्रोसीजर से डरते हैं, कई बार बहुत सी चीज़ें उनके सामने आती है कि आपसे ये पूछताछ होगी वो होगी बहुत सारी चीज़ें, और तो क्या इस तरह के लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों?
0: अडॉप्शन के लिए गवर्नमेंट की साइट है मिशन वात्सल्य, बहुत ईजी साइट है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ आप पेरेंट्स का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, आप संस्था में आए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेके हम रजिस्टर करके देंगे आपको। ऑनलाइन प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, शॉर्टकट जाने की जरूरत नहीं है किसी भी पेरेंट को, और लीगलाइज बच्चा लेने चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं कि आपकी इतनी इनकम देखी जाएगी या आप गरीब हैं या रईस हैं, हमें बच्चों के लिए एक अच्छे माँ बाप चाहिए। एक नॉर्मल फैमिली भी अपने बच्चे को पाल लेती है, हम सिर्फ इतना वो देखते हैं कैलकुलेशन कि अगर ये एक बच्चे को पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, या कभी कोई सिंगल कपल रह जाता है कि एज अ सिंगल स्पाउस क्या बच्चे को पाल पाएंगे, तो हर एजेंसी देती, कहीं बच्चा वापस तो नहीं आएगा। आप समझो बच्चा को पहले उसके बायोलॉजिकल ने छोड़ा, फिर यहाँ से वो फिर अडॉप्शन में गया, फिर पेरेंट्स वापस, तो उसके लिए बहुत नुकसान है। तो ये सब क्राइटेरिया देखते हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है, कोई डर नहीं है। अडॉप्शन के लेके लोगों के दिमाग में बहुत मिथ है कि हम छुपाएंगे बच्चा लेके आए, उसको छुपाएंगे, क्यों छुपाना, आप क्राइम थोड़े ना कर रहे हो, अच्छी बात है अडॉप्शन कर रहे हो, है ना। तो अडॉप्शन को खुल के करना चाहिए, बता के करना चाहिए, प्राउडली करना चाहिए, ये काम हो रहा है। और खून का रिश्ता क्या होता है, मियां बीवी का खून का रिश्ता नहीं होता, कोई खून का रिश्ता नहीं होता, मुझे लगता है सब सफेद होते हैं। रिश्ता दिल से बनता है, और बच्चा ना पेट से कभी नहीं पैदा होता, बच्चा पैदा ही दिल से होता है। अगर बच्चा पेट से पैदा होता तो मेरे पास होम में बच्चे नहीं होते। तो कभी भी ये सोचे कि हम एडॉप्शन ले रहे हैं, हम खुल के ले रहे हैं, भाई समाज क्या कहता है, समाज का काम है बोलने का। समाज आपके दुख को नहीं देखता, ना किसी को देखता है, आपको एक परिवार मिल रहा है, एक अधूरी परिवार को एक पूरे परिवार मिल जाता है, बच्चे को माँ बाप, माँ बाप को बच्चा। तो एडॉप्शन के लिए हमेशा मैं सबको ये कहूंगी कि लीगल जाए, गवर्नमेंट की साइड है मिशन वात्सल्य, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, वहाँ पे पास में DCPOs हैं, आपको नहीं फॉर्म फिल करना आता, आप DCPOs के पास जाएं, वो आपको फॉर्म फिल करके देंगे। साइबर कैफे या कोई भी ऐसे इन जगह पे नहीं जाएं, सरकारी जो सरकार ने चीजें बना रखी है सरकारी बंदों के पास आए, क्या पता दूसरा बंदा आपको फ्रॉड करे, आपका डाटा लेके बैठे, फिर आपको समझ में नहीं आऊगा, आपको कह के नहीं जी हम आपको बच्चा दिला देते हैं जी, आप कैसे कर देते, वो फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा हो जाता है। बच्चा खरीदे नहीं, पैसा देके बच्चा नहीं, फिर आपने सामान लिया बच्चा नहीं लिया। सरकार ने यहाँ पे एक नॉर्मल फीस रखी हुई है कि आपका हर कोई बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है, तो यहाँ कोई रईस गरीब नहीं है, एक नॉर्मल फीस है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, आपके आधार कार्ड, आपका ID प्रूफ वगैरह, आपकी इनकम का प्रूफ, तो इतना मुझे नहीं लगता कोई इतना डिफिकल्ट है जितना लोगों ने बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वेटिंग पीरियड ज्यादा है, वेटिंग इसलिए ज्यादा कि 2 साल कोविड में बंद हो गया, वो बैकलॉग बढ़ गया, पर ऐसा नहीं आप रजिस्टर करें बच्चा मिलेगा जरूर, चाहे 3 साल बाद मिले मिलेगा जरूर।
1: मतलब इतना लंबा टाइम पीरियड भी जाता है
0: क्योंकि कोविड में पहले 1.5-2 साल की ही वेटिंग थी, पर कोविड में 2 साल बंद था, हम अडॉप्शन देते कैसे ना, पेरेंट्स आते कैसे, वो 2 साल से हमारा बैकलॉग बढ़ गया। अब गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है पर टाइम तो लगेगा हर चीजों को करने के लिए।
1: अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और हमारे साथ इस वक्त हमारे शो में हैं सिमरन लांबा जी, जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं।
1: तो जैसे ये रिक्वेस्ट आती है तो क्या कोई रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, किस तरह की नीड है उनकी?
2: आती है, फैमिलीज बहुत चूजी होती हैं। गर्ल और बॉय चूज करने का ऑप्शन होता है, बाकी किसी चीज का नहीं होता कि सुंदर है, गोरा है, काला है, पीला है, कुछ नहीं। आपको जो रेफरल में आएगा, क्योंकि रैंडमली रेफरल आता है, हमको भी नहीं पता किसके पास जा रहा है किसके पास नहीं जा रहा, तो वो है। तो अदरवाइज लोगों की तो बहुत चॉइस होती है कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। फिर हम काउंसलिंग करते हैं, नहीं परमात्मा आपको बच्चा देता तो हम बोलते कि हमें लड़का दो जी, लड़की दो, गोरी देना, काली मत देना, ऐसी देना। तो इसको भगवान का एक तोहफा ही मानो ना, तोहफे की तरह एक्सेप्ट करो। करती हैं फैमिलीज।
1: अभी जैसा कि कहा आपने कि कोरोना के टाइम पर ये बंद रहा था, तो पीछे से इतनी रिक्वेस्ट आई हैं तो वो अभी पेंडिंग में चल रही हैं, तो टाइम लगेगा और भी बहुत कुछ के एक समाज जो है अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ जो आपको पीछे खींचेगा। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप ये काम कर रहे हैं और इस बीच कोई ऐसा you know, आपने अपने बारे में सुना हो, या कभी ऐसा लगता हो कि यार ये समाज ही होकर ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर कैसे कोई आगे बढ़ पाएगा?
2: कभी ऐसा हाँ, कोई किस्सा? बहुत चीज़ें सुनते हैं हम लोग को। मेरे को तो काम का, अच्छा मैडम को तो इंटरेस्ट है, पैसा आता होगा इसलिए मैडम बच्चे अडॉप्शन में दे लो। ऐसा कुछ नहीं, बहुत नेगेटिव। मैं कभी कभी अच्छा भी बोल लूँ, हमारे समाज में है कि जो इंसान अच्छा करता है उसे करने भी नहीं देते हैं। आप सोचो ना, बच्चों को घर मिलेगा। और रही बात फीस की, फीस तो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई, मैंने तो डिसाइड नहीं की हुई ना, और वो फीस भी सोसाइटी के अकाउंट में जाती है, मेरे पर्सनल अकाउंट में तो नहीं आते ना। मेरा क्या बेनिफिट है? मेरा ये बेनिफिट है कि मेरे बच्चे को घर मिल रहा है, मेरे बच्चे को घर। घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए, शायद आपके लिए या किसी और समाज के लिए घर का इंपॉर्टेंस नहीं होगा, पर मेरे बच्चों के लिए घर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग सोचते, जब मैंने उनके मुंह से सुनना शुरू किया कि घर, तो मुझको भी रियलाइज हुआ यार घर, ये वर्ड तो मेरे दिमाग में इतने साल में कभी नहीं आया। जब बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और जब स्कूल से वो बच्चे वापस आए, एक बच्चा मेरा सो गया, दूसरे बच्चे ने उसको कहा कि उठ जाओ, घर आ गया। और मुझे तब रियलाइज हुआ हाँ घर। मैं तो आज तक अपना एनजीओ की तरह ही चला रही थी इसको, पर मुझे नहीं पता चला उस बच्चे के लिए घर कब बन गया। और एक परमानेंट फैमिली बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। माँ बाप से बेटर कुछ नहीं है, माँ बाप ही होते हैं।
1: हम भी जब कुछ दिन के लिए घर से बाहर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हमें अपने माँ बाप चाहिए, हमें उनको देखना है, हमारे पेरेंट्स, हम उनसे दूर हैं। तो सोचो ये तो बच्चे परमानेंट दूर हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि इनके माँ बाप कहाँ हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, या क्या कहानी है, क्या हमारा पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं पता,
2: कुछ नहीं पता। और जिन बच्चों को पता है वो अपने बैकग्राउंड से बहुत नफरत करते हैं। जो बड़े बच्चे जिनको पता है या कोई ट्रोमा है उनको बहुत करते हैं। जो छोटे से बड़े हो जाते हैं, बड़े के पूछते हैं कि बड़ी मम्मा वाई मी।
1: अच्छा, आपको बड़ी मम्मा कहते हैं?
2: बड़ी मम्मा कहते हैं। बड़ी मम्मा ऐसा क्यों हुआ, हमारे पापा मम्मी क्यों मर गए, हमें क्यों छोड़ गए, कब आएंगे या आप कब ढूंढोगे हमारे लिए? तो बोलते हैं अच्छा नए पापा मम्मी ढूंढ दो। सोचो तो वाई मी, घर। मैंने क्या कहा ना, घर, माँ बाप सब बच्चों को चाहिए। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मैं यहाँ बैठी होती हूँ, मैं संडे को भी यहाँ आती हूँ, क्योंकि उनको अपनी हर चीज़ें बतानी होती हैं। स्कूल से आते ही मुझे बच्चे अपनी डायरीज दिखाएंगे, आज ये मिला, या दोस्त चार मिले, आज स्माइली मिला, या कोई अवार्ड मिला, कोई मेडल मिला, तो उस मेडल को उतारते नहीं, सीधा आते भाग पहन के यहाँ के दिखाते, बड़ी मम्मा देखो। सोचो कितना है। तो उन फैमिली क्यों नहीं चाहिए उनको फैमिली? देखो ये होम, ये लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए बच्चे के लिए। हम देखा जाए है तो ये अनाथ आश्रम है ना, और ये परमात्मा किसी का बच्चा यहाँ ना भेजे, परमात्मा किसी का बच्चा नहीं भेजे, आना ही नहीं चाहिए बच्चा। और मेरा तो बस चले, मैं तो सारे बच्चे रिलीज कर दूँ, सारे बच्चे अडॉप्शन में, तो सबका अपना अपना घर खाली होना चाहिए। क्या करना है बच्चों को उनका घर, ताकि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें बता सकें। यहाँ मेरी जान खाते रहते हैं, बड़ी मम्मा ये ऐसे किया, उसने ऐसे किया, देखो मुझे आज ये मिला, आज मुझे वैसे मिला। तो कितनी चीजें हैं जो उनको बतानी है, उनको सुनने वाला कौन है? होम्स में मैं ये नहीं कह रही होम्स रख नहीं रहे, हम लोग एक शेल्टर दे रहे हैं सब कुछ, पर वो प्यार माँ बाप कहाँ से दे?
1: कई बार ना ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं, कई बार की चीजें जब समझ नहीं आती, बच्चे को इस तरीके से इस कंडीशन में छोड़ना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप उनको देखती हैं, जब आप तक खबर पहुँचती हैं, तो आप किस किस केस में, किस किस सिचुएशन में बच्चों को देखते हैं? और मैं चाहती हूँ कि आपने जो जो केसेस देखे हैं बुरे से बुरे, वो आप सबके साथ शेयर करें, ताकि कल को किसी के जहन में अगर ये बात आती भी है तो उसको बच्चे का क्या हर्ष होता है उसके बारे में भी पता।
2: जब हम लोग बच्चों के केसेस की बात करते हैं, जब कुछ बच्चे साथ बहुत ट्रेजेडी होती है, और कई बार बच्चे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बहुत नफरत करते हैं, कई बार माँ है, फादर ने छोड़ दिया, मदर ने दूसरी शादी कर ली, यहाँ बच्चे को छोड़ गए, फिर मदर ने तीसरी शादी कर ली, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वो जाता नहीं। अब एक मेरे पास एक है, दो भाई बहन, बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी मदर ने कहा मैं लेके जाऊंगी, उसकी मुझे बोला बड़ा, बड़ी मम्मा मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊंगा,
1: बच्चे नहीं,
2: यस, और उसको पहचानता है कि वो मेरी मम्मी है। मैं कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, उसने ये बोला बड़ी मम्मा मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊंगा, इस औरत, मैं औरत नहीं बोलते बेटा, औरत किसने बोला? कह रहे नहीं बड़ी मम्मा वो मेरी मम्मी नहीं है। मैं कहा नहीं वो आपकी मम्मी है, उसके नहीं। तो माँ बाप ऐसी हरकत करते हैं या ऐसी चीज़ें बच्चों को छोड़ देते, बच्चे को जब इनिशियल स्टेज में माँ बाप की ज़रूरत होती है ना, तब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, फिर जब वो अपने बुढ़ापे में जाते हैं फिर उनको बच्चे याद आते हैं, फिर वो चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे पास आए और हम जाएं। तो उसने कहा बड़ी मम्मा मैं यहीं रहूँगा, शैतानी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, पर मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। तो मैं ना हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमें बड़ों को इमोशंस होते हैं, हम ही डिप्रेशन में जाते हैं, हमें एंजाइटी होता है, सब कुछ होता है, नहीं, बच्चों का अलग लेवल की एंजाइटी है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। हमारा बच्चों की तरफ से कोई गौर ही नहीं है, बच्चों की तरफ हमारा कुछ नहीं है, बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं, बच्चों को भी एंजाइटी है, उनकी अपनी दुनिया और उनके अपने इतने सवाल हैं, उसका शायद आंसर किसी के पास नहीं।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका, आपके साथ प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ इस वक्त हैं सिमरन लांबा जी, जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं।
1: बच्चों के अपने सवाल, अपनी बहुत सारी बातें होती हैं, उनको सुनने वाले घर में पेरेंट्स होते हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो नहीं है उस स्थिति में, वो कहीं ना कहीं आपको ही माँ, आपको ही पिता, सब कुछ आपको ही समझते होंगे। और मैं समझ सकती हूँ कि वो फील कितना प्राउड मोमेंट होता होगा आपके लिए कि आप कितने सारे बच्चों की बड़ी मम्मा हैं।
2: यस, अब जैसे मेरे पास एक बड़े ब्लड की आशा, तो उसने उसका बर्थडे था, तो मैंने कहा क्या, क्योंकि मैं यहाँ पर हर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, तो उनसे पूछ पूछ के उनके अकॉर्डिंग केक वगैरह आते हैं। तो उसने कहा बड़ी मम्मा मुझे ना BTS का केक चाहिए। मुझे लगा BTS कोई फ्लेवर होगा, मैं कहा कौन सा फ्लेवर है, नया फ्लेवर है। तो फिर मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मी, आजकल कोरियन ग्रुप है BTS। तो मुझे लगा यार बच्चा बड़ा हो गया, कोरियन ग्रुप मतलब वो देख रही है, तो सोचो उसकी फीलिंग्स है ना। तो फिर मैंने उसके लिए वो BTS का दो उसका बनवा के दिया प्रॉपर। फिर उसने कहा बड़ी मम्मा मुझे BTS की टी शर्ट चाहिए, ऐसी चाहिए। फिर वो लेके आई, तो पता भी नहीं चलता बच्चे कब आते हैं और कब बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इच्छाएं किसको बताएंगे वो, किसको बताएंगे वो, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना माँ बाप। और जब उस लड़की की मदर एक्सपायर हुई थी, तो उसकी मदर ने लास्ट उसको एक चप्पल दी थी, और वो उस चप्पल को वो अपने पास ही रखती है, सोचो। और हर मदर्स डे में उसको निकालती है। कई बार मेरे बच्चे मदर्स डे फादर्स डे में भी ना थोड़ा मायूस हो जाते हैं। स्कूल्स में थोड़ा सा है कि आप ये भी देखो कि हमारे जैसों के बच्चे भी जा रहे होते हैं स्कूल के अंदर। तो शायद ये मदर डे फादर डे हम एक दिन ही क्यों सिखाएं, हमेशा सिखाएं ग्रैंड पेरेंट्स डे, क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनको बहुत मुश्किल होती है।
1: और सबसे बड़ी चीज बच्चों के साथ सहानुभूति,
2: सहानुभूति, क्योंकि जब मदर्स जाता है बड़े मम्मा किसका नाम लिखे, मैं कह लिखो तो बच्चे मेरा नाम लिखते हैं, फादर जिसमें लिखते हैं, पर कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं हैं।
1: कितने बच्चे हैं जो अभी इस वक्त स्कूल जाते हैं, किस किस एज के?
2: वो 30 बच्चे हैं, 3.5 साल से 12 साल तक का बच्चा स्कूल जाता है।
1: अच्छा।
2: स्कूल जाते हैं यहाँ पे, मुरारी लाल स्कूल है उसमें जाते हैं, हमारे बस आती है प्रॉपर, बस में जाते हैं। पढ़ाई में अच्छे हैं, और मैं तो जो बड़े बच्चे बीच में आए थे उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने किया। एक को तो डॉक्टर बनना है, तो बहुत मेहनत कर रही है वो लड़की, क्योंकि बड़ी एज में आके फिर फर्स्ट करना, फिर सेकंड करना, फिर मैं तो उसको फोर्थ में करा रही थी, क्योंकि हम जंप करा रहे थे। उसने कहा नहीं मुझे ना फिफ्थ में ही आप कराओ, उसको फिफ्थ में ही आप करवाओ उसको। तो मैंने मना किया उसको, आशा को, कि नहीं बेटा। तो उसने कहा नहीं बड़ी मम्मा मुझे फिफ्थ में करा। तो प्रिंसिपल से उसने बात की और उसे फिफ्थ में कराया। अब वो फिफ्थ करेगी, फिर फिफ्थ के बाद उसने खुद कहा कि मैं सेवन्थ करूँगी, फिर एट्थ नहीं सीधा मुझे नाइन्थ में करना, ताकि उसकी उसको उसकी उम्र भी बढ़ गई ना, बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। तो ये है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे और बच्चों से पीछे हैं, क्योंकि उनकी स्कूलिंग लेट शुरू हुआ, उनका वैसा अलग से ट्रेजडी थी। अपनी मेहनत अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं।
1: आपके अभी तक जितनी भी बातें मैंने सुनी हैं, मतलब आप अपने बारे में कम और इस ऑर्फनेज के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। सबका अपना ड्रीम होता है, मुझे बड़े होके ये बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे अच्छा अच्छा पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी अच्छी फैमिली बनानी है मुझे। मुझे लगता है कि आपका सपना सिर्फ और सिर्फ मिरेकल को आगे बढ़ाना है, राइट?
2: मेरा सपना बस ये।
1: तो आज से अगर मैं 5 साल आगे आपको देखती हूँ, क्या सपना है आपका, आप मिरेकल को कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं?
2: मैं मिरेकल को काफ़ी आगे लेके जाऊँगी। मेरा सपना है अपने बच्चों को IAS दुनिया बनाती है, क्योंकि मैंने अपने उम्र से 2 IAS भी नहीं निकाले तो क्या फ़ायदा। काफ़ी आगे लेके जाऊँगी, इवन नॉर्मल बच्चे नहीं, स्पेशल बच्चे भी। मेरे स्पेशल बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, बस एक बच्चा है बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, उसके लिए भी। ऐसा नहीं कि स्पेशल बच्चे आइए अब दान दीजिए और रोटी चावल, नहीं, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है। मेरे पास स्पेशल एजुकेटर है, वो अच्छे से उनको ट्रीट कर रही है, अच्छे से उनको समझा रही है, पढ़ा रही है, और उनमें काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, ताकि अपने पैरों पे खड़े। मेरा मानना है कि 18 साल के बाद उनको पता होना चाहिए कि लक्स साबुन भी हमने खरीदना है, इंडिपेंडेंट। मैंने यहाँ अपाहिज नहीं बनाने, हमारे यहाँ डोनेशन देने का तरीका भी अलग है भाई। आप हाथों में बांट के लेके नहीं जाओगे, आप दे के जाओ और रिसीट लेके जाओ। बच्चों को हम वैसे देंगे, एक एक चीज हाथों में नहीं, या फोटोशूट नहीं करना चाहिए। आपने देना दो, नहीं देना मत दो, क्योंकि उससे क्या है, देखो उनकी ग्रूमिंग नहीं होती। बच्चों में ना बिहेवियर इश्यूज भी बहुत होते हैं, फिर वो डिपेंड हो जाएंगे, उनको लगेगा हमें तो कोई देगा। उनको पता होना चाहिए हमें अर्न करना है भाई, हमें हर चीज अर्न करनी है, मेहनत करनी है, इंडिपेंडेंट बनाने हैं बच्चे। अब जैसे सैटरडे संडे को ऑफ होता है, तो अलमारियां वो अपनी अपनी आप साफ करते हैं। जिसकी सबसे बेस्ट अलमारियां होगी, उसको उसका डायपर को गिफ्ट चाहिए, या बाहर जो भी चाहिए, और सैटरडे में क्या बॉयज मेरे हमेशा जीतते हैं, क्योंकि वैसे वो हमेशा कभी अच्छे नहीं रखते, पर उनको पता है सैटरडे को उनको रखनी है, सबसे लड़कियों से भी अच्छे से सेट करके रखते हैं हमारे यहाँ। गाड़ी चाहिए, रिमोट कंट्रोल वाली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इससे क्या उनको इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि सच्चाई क्या 18 साल के बाद तो देखो एक ना एक दिन तो करना ही है ना, अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। तो आदत मुझे वही डालनी है कि मेरे होम से जब बच्चा बाहर निकले उसको दान की आदत नहीं है, उसको इंडिपेंडेंटली कि हाँ मैं ये करके इतना कमा के इतना करके मैं खड़ा हो सकता हूँ।
1: तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे बच्चे जो आज इंडिपेंडेंट हैं?
2: हाँ है, मेरे पास इंडिपेंडेंट बच्चे हैं मेरे, पर अभी मैंने एडॉप्शन ज़्यादा दिए हैं तो मैंने बड़े होने नहीं दिए, कोशिश मेरी थी कि एडॉप्शन हो जाए। ये वो बच्चे जो कोविड में भाई बहन आ गए, सिबलिंग्स हैं या माइनर स्पेशल नीड हैं, तो ये वो बच्चे हैं, अदरवाइज तो मेरे पास सारे बच्चे एडॉप्शन में, क्योंकि पहली प्रायोरिटी मेरे लिए है बायोलॉजिकल फैमिली, दोबारा उसके बाद एडॉप्शन नहीं है, फिर तो अपने पैरों पे खड़े होंगे वो, इसलिए मैंने पढ़ाई पे फोकस किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्कूल को भी फीस देते हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि हम फंड्स ले रहे हैं और फीस दे रहे हैं, दो ट्यूटर हैं, पढ़ाई की वैल्यू शायद मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पढ़ेंगे तो अपने पैरों पर खड़े होंगे, पढ़ाई है। और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मैं ड्रीम देखती हूँ, देखो ना आशा का ड्रीम है डॉक्टर बनना, और उस डॉक्टर बनने के लिए वो बच्ची सच में बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि बड़ी एज में आके फर्स्ट में बैठना छोटे बच्चों के साथ इतना इजी नहीं है, वो सबसे बड़ी है। और फिर मैथ पकड़ना वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है मेरे लिए, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है मैथ, और मैथ को निकालना करना, और वो कर रही है बच्ची, सोचो उनका अपना एक ड्रीम है, तो मैं जो ड्रीम जीती हूँ मैं अपने बच्चों का ड्रीम जीती हूँ, क्या करना है। वो आशा डॉक्टर बनती है, इससे बड़ा बेटर क्या है, क्या अचीवमेंट, और कुछ भी नहीं है।
1: कितना प्राउड मोमेंट होता होगा ना जब आप अपने आप को शीशे के सामने देख के ये सोचते होंगे कि लोग तो एक दो तीन या चार बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मैं तो कितने सारे बच्चों की पेरेंट्स हूँ, और बड़ी माँ दर्जा हाँ। ही आपको बड़ी माँ का मिले।
2: हाँ मेरे को तो वाकई में लगता है, मुझे कोई कहता है ना आप ऐसे वैसे, मैं कहा मुझसे ज़्यादा रईस कोई नहीं है, मैं इतने सारे बच्चों की माँ, क्योंकि वो बच्चे सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में कुछ भी, बड़ी मम्मा ये, बड़ी मम्मा ऐसे, बड़ी मम्मा ऐसे, देखो बड़ी मम्मा, और खुश है, और उनको बोलो नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे करना। हाँ बीच में कोई प्रॉब्लम थी, अब हमारी अपने फंडिंग की प्रॉब्लम थी, तो दूसरे बच्चे बड़ी मम्मा को दुखी मत करो, बड़ी मम्मा के पास पैसे नहीं है, इस बैग को फाड़ना नहीं, इसको भी चलाना है, अपने आप ही
1: समझ रहे हैं,
2: अपने आप ही समझ रहे हैं। मैं तो उनकी बातें सुन रही थी, मैं तुमको किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, अरे बड़ी मम्मा हमें पता है अभी फंड नहीं आया ना आपके पास, मैंने उसको बोल दिया वो बैग नहीं फाड़ेगा, मतलब सोचो अपने आप ही कॉस्टिंग करना, बजट की कॉस्टिंग करना उन्होंने खुद ही सीख लिया कि बड़े मम्मा को दुखी नहीं करना, तो सोचो कितना प्यार करते हैं वो।
1: वाकई में एक बहुत प्यार, एक सम्मान की बात है कि, और बहुत खुशी भी मिलती होगी आपको कि बच्चे इस कदर प्यार करते हैं, जबकि आपका ब्लड से कोई रिश्ता नहीं है, बट उसके बाद भी आपको माँ कहना, आपकी फीलिंग्स समझना, एक वाकई में प्राउड मोमेंट होता होगा। आज की जनरेशन की बात करें तो बहुत ना ऐसे ज़रा सा दुख आए या ज़रे से असफलता मिली तो बहुत जल्दी हार जाते हैं, उसके बाद फिर या तो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं या फिर थक हार के बैठ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में लगता भगवान ने कुछ दिया ही नहीं हमें। आप उन बच्चों को, उस यूथ को, स्पेशली आज के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, जो लोगों को आप एक मैसेज दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी यूथ को?
2: आजकल के बच्चे जल्दी थक जाते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमारे पास अगर दुख आया तो सुख भी आया, और ये हमारी अपने अंदर की जंग है, और इसे हमें लड़ना है, हमें कमज़ोर नहीं बनना है कि हम वहाँ से, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं दोबारा हो जाएंगे, फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप टॉपर नहीं, बैक टॉपर नहीं थी अपनी क्लास की, मैं कर नहीं रही हूँ, और जो लोग टॉपर भी होते ज़्यादा क्या कर लेते हैं, तो ये मत सोचो कि प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में कंपटीशन आ गया, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपैरिजन करते हैं, या फलाने का बच्चा ये फलाने का, क्या ज़रूरत है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है भाई, आपके पास सबका बच्चा है, अच्छा है, अच्छे संस्कार हैं, वो ही बहुत है। और यूथ को तो खासकर मैं कहूँगी हारने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आप अंबानी को या किसी को देखते हो कि एलन मस्क को देखते हो, वो आज सक्सेस नहीं हुए, उनकी स्टार्टिंग देखो, सबकी स्टार्टिंग जीरो से होती है, तो इस चीज से मत डरो कि यार आज मुझे 10,000 की सैलरी मिल रही है मेरा ऐसे होगा, आज 10 से कल 50 भी होगी, पर उस 10 में आप काम कितना सीख रहे हो, काम सीखो, फोकस पैसे पे नहीं, काम पे करो, आपको काम आएगा तभी तो पैसा आएगा, और जल्दी हार जाते हैं या टाइमिंग ज़्यादा है, ऐसे नहीं, काम करो, मेहनत करो, काम करो। और ये कुछ नहीं है, आपको कोई मोटिवेशन जरूरत नहीं, आप शीशे के आगे खड़े हो, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, क्योंकि आपसे बेटर कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई दूसरा इंसान नहीं जानता आपको। तो आपको कभी लगता है ना हम थक रहे हैं या हमें कुछ ऐसा मायूस हो रहा है, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, शीशे के आगे खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करो कि मैं इतना कायर नहीं, ठीक है। दुनिया में परमात्मा ने अगर हमें भेजा है ना, तो कुछ सोच समझ के भेजा, हर बंदे के लिए ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ बनाया। तो ऐसे नहीं कि अपनी ज़िंदगी से हार जाओ, सुसाइड कर लो, ऐसे डिप्रेशन में चले जाओ, ड्रग्स ले लो, नशे में चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता, और ऊपर वाले ने आपको जब भेजा है तो कुछ ना कुछ एम के लिए भेजा। क्या पता आप किसी रिक्शे वाले के लिए बहुत अच्छे हो, किसी को आप चाय पिलाते हो एक कप, वो चाय उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अपने लिए देखो कि आप कहाँ अच्छे हो
1: जी। तो आप मोटिवेट रहो, मोटिवेट करो लोगों को, मेहनत करो ऑफ कोर्स, और जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश रहो, कभी शिकायत मत करो। ये शिकायतें जो हम अक्सर भगवान से करते हैं, आज हम जहाँ पर हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, उनके पास तो वो मौके भी नहीं हैं कि वो शिकायत कर सकें। वो जितना उन्हें मिल रहा है उसमें वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, और हमारे पास भगवान ने इतना दिया है, लेकिन उसके बाद भी शिकायतें हमारी ख़त्म नहीं होती है। तो कभी शिकायत मत करो, जितना भी मिला है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा जरूर करो। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी सिमरन लांबा जी जो कि मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने अपनी बातों से कई गुच्छ जाहिर किया, बच्चों की स्थितियां बताई, बच्चों की जो कहानी, इतने छोटे बच्चे हैं किस तरह से ये बच्चों के लिए काम करते हैं, किस तरह से बच्चों के हित के लिए इनका जो काम है, जो इनकी ज़िंदगी है वो समर्पित है। तो मैं आपसे भी कहूँगी, सिमरन लांबा जी जैसे कई सारे लोग हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस फील्ड में आना या कहें कि बच्चों के लिए काम करना, इस संस्थाओं के साथ जुड़ना अभी बाकी है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपके मन में भी ये है कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना है और या फिर ऐसे ही ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करना है, तो आप भी इस तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह के कामों में आगे आइए और मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ पर लोग सभी जुड़ जाते हैं वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ को अंजाम मिलता है। तो बस आप लोग भी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ें और इनके कामों के साथ जुड़ें ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078 और अब मेरे चलने का वक्त हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।

0: सुन रुबिया प्यार हो गया
1: सच
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से र...

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे शायर की कि जब वो अपने शेर लोगों को सुनाता है तो लोग वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। नाम है राहत इंदौरी। देखिए दोस्तों, राहत इंदौरी 1950 को इंदौर में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम राहत इंदौरी नहीं बल्कि राहत कुरैशी था। उनके पिता का नाम था रफतुल्ला कुरैशी और माँ का नाम मकबूल उन्निसा बेगम। और इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी देवास और इंदौर के नूतन स्कूल में हुई थी। इसके बाद इंदौर विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए और उर्दू मुशायरा शीर्षक से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद 16 सालों तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दी और एक पत्रिका थी जिसका नाम था शाखें, उसमें 10 सालों तक संपादन भी किया था और सालों साल वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरों की शान बने हुए थे। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आज मैं आपसे साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, राहत इंदौरी उर्फ राहत कुरैशी ने दो शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी 27 मई 1986 को सीमा राहत से की। सीमा से उनको एक बेटी शिबली और दो बेटे जिनका नाम फैजल और सतलज राहत है। उन्होंने दूसरी शादी की थी अंजुम रहबर से, जो कि ये बात है 1988 की। दोस्तों, अंजुम से उनको एक बेटा हुआ और कुछ सालों के बाद इन दोनों में तलाक हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहत इंदौरी कैसे बने शायर। हुआ क्या दोस्तों, राहत इंदौरी के शायर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो अपने स्कूली दिनों में सड़कों पर साइन बोर्ड जो होता है ना, उस पे लिखने का काम किया करते थे। बताया जाता है कि उनकी लिखावट काफी सुंदर थी। वो अपनी लिखावट से ही किसी का भी दिल जीत लिया करते थे, लेकिन तकदीर ने तो उनका शायर बनना मुकर्रर कर दिया था। एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान निसार अख्तर से हुई। बताया जाता है कि ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद को शायर बनने की इच्छा उनके सामने जाहिर की थी। अब राहत इंदौरी की इच्छा को जान निसार अख्तर ने कितनी तवज्जो दी, इसके बारे में भी बात होगी। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि एक बार राहत इंदौरी की जानिसार अख्तर से मुलाकात हो गई। जानिसार अख्तर यानी कि जावेद अख्तर साहब के पिताजी, उनसे मुलाकात हुई और मैं भी शायर बनना चाहता हूँ ये इच्छा उन्होंने उनके सामने जाहिर कर दी। तब अख्तर साहब ने कहा था कि पहले 5000 शेर जुबानी याद कर लें, फिर वो शायरी खुद ब खुद लिखने लगेंगे। तब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि 5000 शेर तो मुझे पहले से ही याद हैं। इस पर अख्तर साहब ने जवाब दिया कि फिर तो तुम पहले से ही शायर हो, देर किस बात की है, स्टेज संभाला करो। उसके बाद राहत इंदौरी इंदौर के आसपास के जो इलाके थे वहाँ की महफिलों में अपनी शायरी का जलवा बिखेरने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वो एक ऐसे शायर बन गए जो अपनी बात अपने शेरों के जरिए इस कदर रखते थे कि उन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता। राहत इंदौरी की शायरी में जीवन के हर पहलू पर उनकी कलम का जादू देखने को मिलता था। बात चाहे दोस्ती की हो या प्रेम की या फिर रिश्तों की, राहत इंदौरी की कलम हर क्षेत्र में जम कर चलती थी। इसी के साथ उनके और भी बहुत सारे कलाम हैं, आपके साथ साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में। राहत इंदौरी एक ऐसा नाम कि जिसने अपने शेरो शायरी से लोगों को दीवाना बना दिया था। अपने देश भारत में ही नहीं, बल्कि वो जिस देश में भी जाया करते थे और अपनी शायरी से लोगों को दीवाना बना दिया करते थे। उनकी शायरी कहने का जो अंदाज है, वो अंदाज ही लोगों को इतना अच्छा लगता था कि उनके दीवाने हो जाया करते थे। और राहत इंदौरी की बात चली है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर राहत इंदौरी उर्दू तहजीब के, कह सकते हैं कि वट वृक्ष की तरह थे। लंबे अरसे से श्रोताओं के दिल पर राज करने वाले राहत इंदौरी की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब का नारा बुलंद था। कहते थे कि शायरी और गजल इशारे का आर्ट है। वो कहते थे कि अगर मेरा शहर जल रहा है और मैं कोई रोमांटिक गजल गा रहा हूं, तो अपने फन, देश, वक्त सभी से दगा कर रहा हूं। ऐसा कहना था राहत इंदौरी का, ऐसा जज्बा था उनके भीतर अपने देश भारत के लिए। और भारत के लिए भी उन्होंने एक से बढ़कर एक शेर लिखे हैं, उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, हर कोई अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। क्षेत्र सबका अलग अलग हो सकता है, उनकी अपनी पसंद के मुताबिक, उनकी रुचि के मुताबिक। बात चल रही है शायर की और शायर हैं राहत इंदौरी। हर आदमी की यही इच्छा होती है कि वो अपने फन को, अपने टैलेंट को इतना निखार ले कि लोगों के बीच जब वो जाए तो लोग उसकी शायरी से या जो भी कला वो जानता है उस कला से अपना बना लें। राहत इंदौरी के अंदर ये जादू वाकई में था कि किस तरह से लोगों को सम्मोहित किया जाता है, किस तरह से उनके जैसा बनकर उन्हीं की बात उनको कहना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है जो राहत इंदौरी के साथ थी। शायरी लिखने से पहले वो एक चित्रकार बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर पेंटिंग करना शुरू भी कर दिया था। वो भारतीय सिनेमा के जो पोस्टर होते हैं ना और जो बैनर होते हैं उनको बनाने का काम शुरू कर दिया। यही नहीं, वो किताबों के जो कवर होते हैं ना उन कवर को भी डिजाइन किया करते थे। उनके गीतों को 11 से भी ज्यादा भारतीय सिनेमा ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। उसी फहरिस्त में नाम आता है मुन्ना भाई MBBS का। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहत इंदौरी एक सरल और स्पष्ट भाषा में कविता लिखते थे। वो अपनी शायरी की नज्मों को एक खास शैली में पेश किया करते थे। उनकी जो पहचान थी ना, वो पहचान भी सबसे अलग थी। राहत इंदौरी की जिंदगी के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही है राहत इंदौरी की। चित्रकारी में भी काफी नाम अर्जित किया था राहत साहब ने। राहत इंदौरी की दो बड़ी बहनें थीं, जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत साहब को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने शहर इंदौर में मात्र 10 साल की उम्र से ही एक साइन चित्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में से एक थी और बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में उनका नाम हो गया था। अपनी प्रतिभा, असाधारण डिजाइन कौशल, शानदार रंग भावना और कल्पना के चलते वो कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्तम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए थे। एक दौर वो भी था जब ग्राहकों को राहत के जरिए चित्रित बोर्डों को पाने के लिए महीनों का इंतजार करना भी कबूल था। तो इस तरह का दौर था हमारे आज के शायर राहत इंदौरी का। लेकिन उनकी जिंदगी से कुछ और भी बातें जुड़ी हैं, आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: नहीं है।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
2: दोस्तों, आज बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में। अब उनको शेर पढ़ने का इतना शौक था कि वो चाहते थे कि जो मेरा कलाम है मैं लोगों को सुनाऊं, और इसीलिए उनके अंदर ये बात पैदा होती थी कि मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए क्या करना होगा, ये सवाल उनके जहन में आता था। राहत साहब पर लिखी डॉक्टर दीपक रूहानी की किताब, जिसका शीर्षक है मुझे सुनाते रहे लोग वाकया मेरा, इस किताब में एक किस्से का जिक्र है कि राहत साहब इंदौर के नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे जब वो 9वीं क्लास में हुआ करते थे। तो उनके स्कूल में एक मुशायरा होना था। राहत साहब की जो ड्यूटी थी वो शायरों के वेलकम में लगी थी। वहां जब जानिसार अख्तर आए तो राहत साहब उनसे ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए और कहा कि साहब मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। इस पर जानिसार अख्तर साहब बोले कि भाई देखिए, पहले कम से कम आपको 5000 शेर याद होना चाहिए। तब राहत साहब फौरन बोले कि अरे साहब, इतने शेर तो मुझे अभी याद हैं। अब राहत इंदौरी की इस बात को सुनने के बाद जानिसार अख्तर साहब ने क्या कहा आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है राहत इंदौरी के बारे में और किस्सा चल रहा था कि एक बार जानिसार अख्तर साहब से जब राहत साहब की मुलाकात हुई तो राहत साहब ने कहा कि मैं भी शेर बोलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो जानिसार अख्तर साहब ने कहा इसके लिए आपको कम से कम 5000 शेर ज़बानी याद होने चाहिए और खुरदार। तो राहत साहब ने कहा कि साहब इतने शेर तो मुझे अभी याद हैं। ये बात सुनने के बाद जानिसार अख्तर साहब ने कहा तो फिर अगला शेर जो होगा वो तुम्हारा ही होगा। इसके बाद जानिसार अख्तर साहब ने ऑटोग्राफ देते हुए अपने शेर का पहला मिसरा लिखा और मिसरा कुछ यूं था, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह। राहत साहब के मुंह से दूसरा मिसरा निकला, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अब दोस्तों, डॉक्टर राहत इंदौरी के इस शेर के साथ ही आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड, फील लाइव। हमारे शो बहुत स्पेशल होता है, रीजन बीइंग यहां पर हम तो स्किल्स की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो टॉक अबाउट अ फ्यू मेजर थिंग्स जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। ये माइट बी आपके आसपास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको एड्रेस करने का काम इस शो में हम लोग करते हैं। आज अगेन वी आर हेयर विद अ स्पेशल गेस्ट विद अस, और आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है, बिकॉज वी हैव मिस्टर धीरज शर्मा, हु इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब अमूमन आप अगर हमारे शो सुनते हैं तो आपको पता होगा कि भैया कितने सारे फ्रॉड्स हमारे आसपास होते हैं, लोग ताक लगाए बैठे हुए हैं कि कैसे एक ब्रेक थ्रू मिले आपके फोन का, आपके व्हाट्सएप का, आपके वॉलेट्स का, और किस तरीके से आपके फंड्स को गायब कर दिया जाए। बट यहाँ पर आज के शो में हम यही एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, प्राइमरीली डिजिटल अरेस्ट। अगेन हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, कई बार ये बात बता चुके हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है कोई ऐसी टर्म इंडिया में, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टिंग एक एंटिटी है, स्टिल लोग उसका विक्टिम बन जाते हैं। सो विल एड्रेस ऑल दीज थिंग्स कि कैसे आपका फ़ोन हैक हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, आपके एंड पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फ़ोन के एंड पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। On this note, we'll begin the show. आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ वैल्यूज मिलने वाली हैं। But first, we'll welcome Mr. Dheeraj Sharma. Hi sir, welcome to our show.
4: Thank you, Sagar, to bring me on this show. This is, you know, very delightful for me to talk about the cyber threats we have nowadays.
3: So amazing, sir. It's an honor to have you here. I would like to start with a very basic question. When we talk about cyber threats, इसमें primarily गलती किसकी होती है? User की होती है, phone की होती है? क्या वो चीजें हैं जो common mistake सब लोग करते हैं?
4: Common mistake इसमें सागर जो होती हैं वो होता है कि हम panic में आ जाते हैं। ये technological fear है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा psychological जो role है वो ज़्यादा play करता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी केस को अगर आप एसेस करोगे तो उस केस के अंदर आपको सबसे ज़्यादा यूज़र का जो प्रेशर है, डर है, फियर है, राइट, उसका लालच है, वही उसको हेल्प करता है, हैकर को हेल्प करता है उसको हैक करने में। क्योंकि टेक्नोलॉजी बिना आपकी मदद के, बिना आपकी मर्जी के उसको आपके डिवाइस का एक्सेस नहीं दे सकती, कहीं ना कहीं आप ही अलाउ करते हो कि वो आपको हैक करे। उसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूं कि टेक्निकल रोल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है साइकोलॉजिकल रोल। वो आपके ऊपर एक प्रेशर बनाएगा, आपको कुछ थ्रेट्स देगा और उसकी हेल्प से वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर लेगा।
3: कुछ कॉमन थ्रेट्स क्या हैं साइबर थ्रेट्स?
4: अगर मैं कॉमन थ्रेट की बात करूँ, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन कहा कि आज की डेट में हमारे पास कई तरह के साइबर थ्रेट हैं, जिसमें से डिजिटल अरेस्ट एक थ्रेट है। जिसमें मैं अगर आपको एक रिसेंटली एक केस बताऊं, जिसमें एक लड़की थी, हमारी फरीदाबाद की ही लड़की थी, वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। तो उसको एक दिन एक फ़ोन आता है कि आप, उसका नाम बोला जाता है कि आपका नाम सो एंड सो है, आपके पास आपका आधार नंबर ये है। बोलते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेस हैं कि आप किसी ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हो। लड़की घबरा जाती है, उससे बोला जाता है कि आपका ये पासपोर्ट नंबर है, ये डिटेल्स हैं, आप उसकी सारी डिटेल्स वेरीफाई कराई जाती हैं। वो सारी डिटेल वेरीफाई करती है कि हाँ मेरी सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट पे हो, आप मूव नहीं कर सकते हो, आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, अपने फ़ोन को, मोबाइल को आप चार्ज पे लगा लो। और वो बहुत घबरा जाती है। उसके बाद उससे बात करी जाती है, नेगोशिएट किया जाता है, कई कई घंटों तक उसको डराया जाता है। और क्योंकि उनको पता था, हैकर को पता था कि उसके अकाउंट में पैसे हैं और तकरीबन 3.5 लाख रुपये उससे 2 या 3 ट्रांजेक्शन में वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। शाम तक जब वो दरवाज़ा नहीं खोलती है तो घर वाले थोड़े पैनिक होते हैं, वो वो बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं, पड़ोस से लोगों को बुलाते हैं और दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है, लड़की बहुत डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। जब उससे बात करी जाती है तो पूरा केस निकल के सामने आता है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म कराया जाता है, पुलिस आती है, जो यहाँ के SP थे उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वहाँ पहुँचा। तो हमने जो डायग्नोज किया वो ये था कि लड़की का मोबाइल हैक था, उसकी सारी ट्रांजैक्शन, सारी डिटेल्स उनके पास, हैकर्स के पास थी, और उससे वो आइडिया लगा पा रही थी कि वो किस स्टेट ऑफ मूड में है, क्योंकि लड़की के कैरियर का सवाल था। उसने बहुत साल शायद मेहनत करी थी कनाडा जाने के लिए और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो इसी डर से, इसी फियर से कि कहीं उसका कनाडा का वीज़ा रद्द ना हो जाए, वो पैनिक में आने के बाद उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अगर मैं इस केस में कहूँ तो इस केस में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है रीज़न, वो होता है अनअवेयरनेस। क्योंकि हम बहुत सालों से इस पर बात कर रहे हैं, राइट, साइबर थ्रॉट पर, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता है। कई बार लगता है कि मुझे पता है, मैंने 5 बार सुना है तो सबको पता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों को, अगर हमारी बात होती है, लोगों को नहीं पता है। लोग, बहुत से लोग हैं जो रेडियो नहीं सुनते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। अब इस पूरे केस में क्या होता है कि वो आपको प्रेशर बनाते हैं, ये सारे प्रेशर का गेम है। उनको पता है, ऐसा नहीं है कि वो रैंडम किसी को पकड़ के अटैक करेंगे और आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। वो ट्रेस करते हैं आपको, वो बहुत दिनों से आपको ट्रेस कर रहे होते हैं, वो आपकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं, वो टारगेट करते हैं ग्रुप ऑफ यूजर्स, उसमें से वो फाइंड आउट करते हैं कि हमें किसको फाइनल करना है, कैंडिडेट को फाइनल करते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, समझते हैं कौन डर सकता है, किसी के पास पैसा है अकाउंट में, किस परिस्थिति में है, किसका क्या केस है जिससे उसे डराया जा सकता है। वो सारा डायग्नोज करने के बाद, सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपना अटैक प्लान करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फेयर ज्यादा है।
3: ओके, सो इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंसाइटफुल केस के थ्रू आपने हमें ये चीज़ बताई। बट यहाँ पर आप जो बोल रहे हो कि हमारे फ़ोन को पूरा ट्रेस किया जाता है, क्या मैं पता लगा सकता हूँ किसी तरीके से कि मेरे फ़ोन को ट्रेस किया जा रहा है या नहीं?
4: देखिए, आज की टाइम में फ़ोन आपका, जनरल मैं कहूँगा कि सबका फ़ोन मैक्सिमम हैक हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार फेसबुक का डेटा हैक हुआ है, राइट, और जनरली मैक्सिमम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। इवन क्या होता है कि आप एज ए यूज़र, आपके पास बहुत सारे लिंक आते हैं, वो लिंक आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिशिंग अटैक के थ्रू आते हैं, जहां पर वो एक अट्रैक्टिव ऑफर देके आपको एक लिंक देता है, वो आपको ट्रेस करते हैं। ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा कि आप घर में किसी से बात कर रहे हैं, बात करते वक्त आपने एडिडास शूज़ का बात करा कि मुझे एक एडिडास का शूज़ खरीदना, मैं देख रहा हूँ, और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे धीरे एडिडास के आपके पास ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो एक क्यों होता है, आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन आपको 24 आवर ट्रेस करती है कि आप क्या बात करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या आपका टेस्ट है, क्या आपका शौक है, वो सारी चीज़ें एसेस करती हैं। वो डेटा कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के पास जाता है, और जो जो एप्लीकेशन कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उस एप्लीकेशन का सारा डेटा उनके पास पहुंच जाता है। कई बार हैकर्स अपनी एप्लीकेशन भी बना के धीरे धीरे यूजर्स के उसमें लिंक के थ्रू या किसी और थ्रू इंस्टॉल कर देते हैं। तो इन सब के थ्रू आपका जो मोबाइल है उसका एक्सेस यूजर ले सकता है। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं आज की डेट में जिनके थ्रू आपका जो अकाउंट है, जो मोबाइल है, उसका एक्सेस लिया जा सकता है।
3: और ये आप कह रहे हो कि मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता है, वो मुझे डराएंगे, पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे, मर्जी मेरी ही होगी, चाहे सिचुएशन कोई भी बनाई जाए, प्रेसिंग सिचुएशन होगी मेरे सामने और मैं डर के उस चीज में एक्ट वैसे करूंगा।
4: बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। एक केस था जिसमें एक यूजर को लिंक आया, ठीक है, उस यूजर ने उस लिंक पे क्लिक किया, उसको KYC का एक मेल आया था, मैसेज आया था कि आपका KYC ड्यू है, अगर आपने नहीं करा तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो प्रेशर में आ गया, उसने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक बैंक की साइट खुली। वो बैंक की साइट एक्चुअल बिल्कुल बैंक जैसी ही थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि आदमी को लगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप किसी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हो, राइट, तो बिल्कुल सेम वेबसाइट आपकी बन जाएगी। अब क्या हुआ, उसने वेबसाइट पर ध्यान दिया, अपना ID डाला, पासवर्ड डाला, लॉग इन करा और कुछ दिन बाद उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में OTP आता है और मेरा अकाउंट सेफ है। मैं मानता हूँ आपका अकाउंट सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार हमारी खुद की गलतियों से वो अकाउंट अनसेफ हो जाता है। हैकर्स ना कभी, देखो ये फिल्मी नहीं है, ये जो एनवायरनमेंट है वो फिल्मी नहीं है कि आदमी आया, एक चुटकी बजाई, किसी ने कुछ प्रेशर दिया, एक लंबे वाला आदमी आया और उसने लैपटॉप पे 5-10 मिनट की दबाई और हैक हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये एक लंबी एक्सरसाइज है। वो लोग आपको पूरा असेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जब भी आप अपने लॉगिन ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, दूसरा होता है OTP। तो वो दो पार्ट में इस पे काम करते हैं। पहले आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड लेंगे, राइट, फिर उसके बाद वो लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मोबाइल को हैक करके वो पासवर्ड या तो आपको चुरा लेंगे या उस पासवर्ड को बाईपास कर देंगे, राइट। तो और ये कोई एक टेक्निक नहीं है, एक ही तरीके से होता है। ऐसा 50 तरीके से हो सकता है, ऐसे 50 तरीके होते हैं जिससे आपको बाईपास किया जा सकता है। आपके अकाउंट जो SMS आएगा आपके पास, वो SMS आप पे ना आगे किसी दूसरे मोबाइल पे चला जाएगा, वो आपका ही क्लोन होगा, या आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं मोबाइल पर तो उनको पता पड़ रहा है क्या टाइप हो रहा है। आपके कुकीज होते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं अपने ईमेल आईडी पासवर्ड कुकीज में सेव रखते हैं। लोगों को लगता है मैं इतने पासवर्ड याद नहीं रख सकता, तो सेव एज कर देते हैं, एक कुकीज में अपने पासवर्ड सेव कर देते हैं। वो कुकीज किसके पास जाएगा, उस पासवर्ड, आपका आईडी पासवर्ड सब उसमें मिल जाएगा उसको। बहुत आसान है, आपके लिए कठिन है लेकिन हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सबके लिए भी कहीं ना कहीं आपको ही अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपके सिस्टम में घुसे। और वो उसका तरीका सिर्फ वही है, या तो वो आपको डराएंगे या आपको कोई लालच देंगे और आप किसी गलत लिंक पे आपको क्लिक कराएंगे।
3: सो इंटरेस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन चल रही है जो मुझे लगता है हम सब लोग रिलेट कर सकते हैं इस एक चीज से कि हमारे एंड पर क्या गलतियां होती हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी

अपने परिवार को सारी खुशियाँ देते हैं, अपने बच्चों को सारे गुण, सारी अच्छी चीजें सिखाते हैं। लेकिन क्या आप अपनी तंबाकू की आदत अपने बच्चों को देना चाहोगे? नहीं ना? तो आज ही से तंबाकू को ना कहें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज हमारे साथ है मिस्टर धीरज शर्मा, और धीरज सर से हम लोग बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, बिकॉज ही इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अभी तक हमने बेसिक्स जाने हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं और कैसे बाईपास किया जा सकता है हमारे फोन्स की, हमारे सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसको। नाउ विल डिकोड फर्दर। सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, प्लीज मुझे ये बताइए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि किसी भी तरीके से मेरे सिस्टम में या मेरी किसी आईडी में या मेरे जीमेल में मेरे फोन में कोई हैकर ना जा पाए, उनके वो ब्रेक थ्रू ही ना मिले, ऐसा कुछ किया जा सकता है मेरे एंड पे एज अ यूजर?
1: देखिए, आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे हम बेसिक हार्डनिंग बोल सकते हैं या बेसिक सिक्योरिटी बोल सकते हैं। पहला तो आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करते रहिए, राइट, पहला। दूसरा, आपके पास, मैं सबसे बात ये बात कहता हूँ सारे यूजर्स से, सारी ट्रेनिंग्स में, कॉर्पोरेट में काफ़ी ट्रेनिंग्स करता हूँ मैं, कि मोबाइल में एप्लीकेशन फ्री है। और ये देखो, हर यूज़र इसको रिलेट कर पाएगा कि फ्री की चीज़ इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लोग यू नो अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन आपके लिए जरूरी है, जिन एप्लीकेशन के बिना आपका काम नहीं चल सकता, आप उन्हीं को रखें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई एप्लीकेशन टाइमिंग के लिए इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद उसको आप इंस्टॉल कर दो कि लगता है कि आपको यूज नहीं करनी है फर्दर। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, कुछ लोग के घर में बुजुर्ग होते हैं जिनको पेंशन आती है, राइट, पेंशन में ईयरली आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, लोग उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की एप्लीकेशन भी होती है, राइट। आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है अपने सिस्टम में, जो कि एक्टिविटी साल में एक बार होनी है, लेकिन हम उसको वापस इंस्टॉल नहीं करते। तो हमको ऐसी एप्लीकेशंस जिनका हमें यूज नहीं करना है और टाइम बिंग के लिए यूज है, तो यूज करने के बाद उनको अनइंस्टॉल कर दो। तीसरा टिप्स ये है कि आप जो भी एप्लीकेशन आपके इंस्टॉल करते हैं उसको रेगुलरली आप अपडेट करते रहो, आप उसमें देखते रहो कि किसी एप्लीकेशन का अपडेट तो नहीं आया। एंड्रॉयड में, एप्पल मैक में, सब में एक फीचर होता है कि आप जाके चेक कर सकते हो किस एप्लीकेशन का कौन सा अपडेट आया है, आप उसे अपडेट करें। तीसरा ये है, आपको ये देखना है कि आपने किस एप्लीकेशन को किस लेवल का एक्सेस दिया हुआ है, और आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन को इस एक्सेस का जरूरत नहीं है, तो आप उसे डिसेबल कर दीजिए। हो सकता है किसी टाइमिंग आपको जरूरत रहे किसी भी एक्सेस की, तो आप उस एक्सेस को टाइमिंग सिर्फ उसे दीजिए और उसके बाद डिसेबल कर दीजिए। अगर आप ये बेसिक जानकारियां अपनी नॉलेज में रखेंगे और बेसिक सेटिंग आप करके रखेंगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है हैक होने की वो कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाएगी, क्योंकि और बहुत तरीके हैं करने के, पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर सिक्योर रहेगा तो आपके चांसेस कम है। और सबसे बड़ा, सबसे बेसिक नियम जो आपकी लाइफ में, वो ये है कि आपको क्लिक करने से बचना है, आपको अनअवॉइड अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आप क्लिक जितना करेंगे उतना आप अपने रिस्क को बढ़ाएंगे। जब तक आपको लगता नहीं ये जरूरी है मेरे लिए, किसी मेरे नॉन सोर्स ने आपको भेजा है आपको कोई लिंक, आप सिर्फ वही लिंक ओपन करिए, अदरवाइज जस्ट इग्नोर द लिंक्स। कई बार मैंने देखा है कि अमेजोन का एक मैसेज आता है कि अमेजोन पे एक शूज जो 10,000 रुपए मिल रहा था 1,000 रुपए मिलता है। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा प्रोबेबिलिटी होता नहीं कि वो 10,000 की चीज 800 में मिल रही हो, 1,000 रुपए मिल रही हो। और अगर मिल भी रही है, प्रोबेबिलिटी है, तो आप अमेजोन की साइट पे जाके भी तो चेक कर सकते हैं ना, डायरेक्ट उस लिंक से ही जाएंगे, जरूरी तो नहीं है आपको तभी मिलेगा। आप अगर वो ऑफर है तो अमेजोन की वेबसाइट पर भी वो ऑफर है, ऐसा नहीं है कि उस लिंक पे ही ऑफर है। तो यूजर को थोड़ा वेट करना चाहिए, अपने लालच को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो आप अमेजोन की एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर है, आप वहां जाइए, वहां से आप उसे सर्च करिए और देखिए वो ऑफर है कि नहीं।
0: सो वंडरफुल। सच बात है कि अगर आपको कोई ऑफर कोई कंपनी दे रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि छुपा के आपको देगी। अगर वो दे रही है, जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ी यूएसपी उस कंपनी की उस टाइम के लिए बनेगी। सो यू शुड चेक इट आउट ऑन दैट वेबसाइट। अगला सवाल मेरा रहेगा अबाउट पब्लिक वाईफाई। ये बहुत बार हम सुनते हैं कि इज इट सेफ टू यूज पब्लिक वाईफाई?
1: देखिए पब्लिक वाईफाई में जो एक रिस्क है वो ये बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि जब आप पब्लिक वाईफाई एक्सेस करते हो तो पब्लिक वाईफाई आपके लिए फ्री नहीं होता है, हैकर के लिए भी फ्री होता है। हैकर उस नेटवर्क में स्पूफ करके बैठ जाता है और जब आप उस नेटवर्क कनेक्ट करते हो तो वो उस कनेक्शन के थ्रू एक मालवेयर आपके मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकता है आसानी से। और वो जो मालवेयर जो वो इंस्टॉल करेगा उसको आज यूज नहीं करेगा, वो उसको आपको ट्रेस करने के लिए यूज करता है। अभी मैंने जैसे अपने डिस्कशन में बताया कि जो हैकर्स होते हैं वो आपको लंबे समय तक ट्रेस करते हैं, आपको एनालिसिस करते हैं, फिर आप प्लान करते हैं आप पे अटैक का। तो वो कैसे ट्रेस करते हैं? वो ऐसे ट्रेस करते हैं, वो साइलेंटली किसी लिंक के थ्रू, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, कहीं पर आपने वाईफाई एक्सेस किया जो अनसिक्योर था, उसके थ्रू आपके सिस्टम में एक छोटा सा मालवेयर डाल देंगे और उसके थ्रू आपका डेटा धीरे धीरे धीरे धीरे चुराते रहेंगे। जरूरी तो नहीं है ना कि आज आपने एक मालवेयर मैंने आपके सिस्टम में डाला, आज ही आपने लॉगिन कर लिया बैंक की साइट पे, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है आप 15 दिन बाद लॉगिन करो, हो सकता है आप 20 दिन बाद लॉगिन करो, तो मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप वो डेटा जो मैं चाहता हूं आप लॉगिन ना करें। आप लॉगिन करोगे डेटा को मैं चोरी करूंगा, उसको चोरी करने के बाद मैं नेक्स्ट प्लान करूंगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी है, मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, कैसे ट्रांसफर करना है पैसा, और उसके लिए मुझे इस बंदे को कैसे स्पूफ करना पड़ेगा। फिर वो अलग अलग तरीके से आपको स्पूफ करने की कोशिश करता है, हो सकता है कि एक बार में आप बच जाओ, वो बच जाओगे नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ट्राई करेगा। तो ये एक कॉमन तरीका नहीं है लेकिन बचने के कॉमन तरीके हैं। जो बेसिक हार्डनिंग अगर आप करोगे तो आप 80% रिस्क को रिमूव कर दोगे, 20% फिर भी रहेगा लेकिन फिर भी आप 80% उसको रिमूव कर पाओगे।
0: आप कह रहे हो पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए।
1: पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, आज की डेट में मोबाइल बहुत सस्ता है, इंटरनेट बहुत सस्ता है, आप अपने हॉटस्पॉट यूज करके कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं पब्लिक वाईफाई की आज के टाइम में कोई जरूरत है।
0: सो इंटरेस्टिंग। ऑन दिस नोट वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइफ।
2: सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

0: मैं अर्जय सागर शो चल रहे हैं यहाँ पर वॉइस ऑफ यूथ। हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर धीरज शर्मा, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और यहाँ पर हम सर से बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स के बारे में कि कैसे अपने डेटा को हम बचा सकते हैं, कैसे हम अपना फाइनेंसिस को सेव कर सकते हैं यहाँ पर, खासतौर पर स्कैमर्स, हैकर्स, जितने भी आप टर्म सुनते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, इनसे कैसे अपना बचाव किया जाता है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे अननोन नंबर से फोटो आती है हमारे पास, ठीक है। मेरी आदत यह कि मैं जब तक मैं उस नंबर को नहीं जानता, मैं अननोन फोटोज डाउनलोड नहीं करता हूँ। व्हाट आर द थ्रेट्स इन्वॉल्व्ड, क्या हो सकते हैं वहां पर थ्रेट्स?
1: देखिए, व्हाट्सएप पे ना दो बहुत कॉमन थ्रेट आज की डेट में एक्टिव है। पहला जो आपने बोला कि एक फोटो, आप शादियों का सीजन चला है, राइट? शादी के सीजन में नॉर्मल लोग कार्ड भेजते हैं एक दूसरे को, आजकल व्हाट्सएप पे कार्ड आ जाते हैं। तो आज की डेट में आपको क्या होगा, एक अननोन नंबर से एक शादी का कार्ड आएगा, आपको लगेगा किसी रिलेटिव ने, किसी ने भेजा, उसका कोई नया नंबर होगा, उसने मुझे भेज दिया है। लेकिन वो कार्ड नहीं होता, आप जब उस पर क्लिक करते हैं, उस कार्ड के पीछे एक लिंक हाइड होता है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो एक मालवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा चुपचाप। एक कार्ड आया, आपको लगेगा किसी ने मजाक करा होगा, वैसे कार्ड आया होगा। लेकिन आपने जैसे वो कार्ड पे क्लिक किया, उसको डाउनलोड किया, आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि वो मालवेयर आपके सिस्टम में आ गया। अब वो मालवेयर एक तरह का इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे इन्फेक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, वो इन्फेक्शन अलग तरीके से काम करते हैं, ऐसे मालवेयर भी अलग अलग तरीके से काम होता है। तो हर हैकर का एक अपना पर्पज होता है मालवेयर को भेजने का, कि मैं किस पर्पज से इस मालवेयर को किसी यूजर के पास दे रहा हूं, तो वो उसी पर्पज को मालवेयर काम करेगा, राइट? अब उसमें क्या होगा कि जैसे आपने मूवमेंट आपने, और दूसरा क्या होता है, कई लोग स्मार्ट होते हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं क्लिक करेंगे, लेकिन उनके यहाँ पर ऑटो डाउनलोड इनेबल्ड होता है मोबाइल के अंदर। आप देखोगे व्हाट्सएप में एक फीचर होता है कि आप जैसे कोई आता है ऑटोमेट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। वो सबको वो फीचर डिसेबल्ड करना चाहिए। अगर आप फीचर डिसेबल नहीं करते हैं तो आप क्लिक भी नहीं करते हैं, वो तभी भी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो बेसिक ये है कि सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे जाइए अभी इमीडिएटली। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए और डिफॉल्ट जो डाउनलोड है उसको डिसेबल कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसको, अगर कोई ऐसा केस आता, हमको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर आपका कोई नॉन है तो आपको कॉल करेगा, राइट? वो आपको बताएगा कि भाई मैंने आपको शादी का कार्ड भेजा है। और जो लोग खाली व्हाट्सएप पे आपको कार्ड भेज रहे हैं, आपको फोन भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके जाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, राइट? तो आपको ये सोचना चाहिए, अगर कोई कार्ड भेज रहा है तो आपको फोन भी जरूर करेगा। तो जब आपका फोन करे और बताए कि आपको मैंने इस नंबर से कार्ड भेजा है, तब आप उसको ओपन कर सकते हैं। जब तक आपके पास ये श्योरिटी ना आए किसी नॉन बंदे ने मुझे कोई चीज भेजी, आप उसे डाउनलोड नहीं करेंगे। दूसरा एक और थ्रेट आ रहा है आजकल, क्या हो रहा है कि मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आता है। मैं भी आपको एक केस बताता हूँ, एक बेंगलोर का केस है। वहां पर एक 45 टू 50 ईयर के बीच का एक IT प्रोफेशनल थे, उनके पास एक वीडियो कॉल आया। और वीडियो कॉल में जैसे उन्होंने वीडियो कॉल उठाया, एक लेडी थी जो कंप्रोमाइज स्टेज में थी, राइट? और उन्होंने उससे बात करा, थोड़ी देर बात करा कि भाई आप क्या, उन्होंने फोन काट दिया थोड़ी देर बाद ही। लेकिन जैसे उन्होंने डिस्कनेक्ट किया, थोड़ी देर बाद एक बंदे का फोन आता है, उसको बोलता है कि आपके कुछ फोटोज हैं हमारे पास, जो आप एक लेडी के साथ कंप्रोमाइज स्टेज में हो, और ये जो आपके फोटोज हैं आपको वायरल कर देंगे। डर जाता है बंदा, राइट? डर जाता है, उसके बाद उससे कुछ पैसा मांगा जाता है, वो दे देता है एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन वो कुछ अपने खास दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कशन करता है, जिनको पता था कि ये फ्रॉड है, वो उसको समझाते हैं कि ये फ्रॉड है, फिर वो पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन इसमें क्या एज ए यूजर आपको समझने की जरूरत है कि ये फ्रॉड होता है जहां पर एक वीडियो कॉल आता है, या आपको पता होगा तो आप उन वीडियो कॉल को इग्नोर कर सकते हैं, राइट? और दूसरा, अगर एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाता है तो इमीडिएटली आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको बेसिक समझना चाहिए, राइट? पुलिस का जो डर है ना हमारे मतलब जहन में, वो कई बार हमको गलत करने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसलिए हमको पुलिस से डरना नहीं चाहिए, राइट? वो जो आप, अगर मैं कहता हूँ बुरी से बुरी स्थिति में, जो आप पैसा हैकर को दे रहे हो, अगर आप वो हैकर को नहीं दोगे तो पुलिस आपको कहीं ना कहीं सेफ करेगी। आप उनके पास जाइए, पुलिस को बताइए, अगर आप गलत हो तभी आपको डरने की जरूरत है, आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इतने पुलिस वालों को जानता हूं, उनके साथ दिन रात काम करता हूं, लेकिन मेरी अपनी नज़र में मुझे पता है कि पुलिस वाले अगर आप गलत नहीं हो तो आपको परेशान नहीं करते हैं। जर्नली कुछ लोग हर जगह होते हैं गलत, हर पेशे में गलत होते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप एक फियर बना लें कि पुलिस वाले के पास जाऊंगा तो कुछ गड़बड़ी होगा, ऐसा नहीं है। उसके चक्कर में आप अपने साथ गलत करा लेते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आपको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए।
0: सो वंडरफुल। तो कोई भी अगर ऐसी चीज होती है, कोई भी फ्रॉड होता है जहां पर आपने कुछ गलत नहीं किया है, जस्ट इमीडिएटली गो टू पुलिस। 1930 हेल्पलाइन नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉल करके सहायता जो है वो ले सकते हैं। सवाल हालांकि और बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है, इसलिए शो को यहां पर हमें कंक्लूड करना होगा। तो प्राइमरीली आज हमने बात करी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की, क्या होते हैं, कैसे अवॉइड किया जा सकता है इन सिचुएशंस को। खासतौर पर सेक्सटॉर्शन एक टर्म है जहां पर सर ने अभी जिक्र किया कि एक वीडियो कॉल आएगा अननोन नंबर से। तो बेसिकली अननोन नंबर कुकीज में अपने पासवर्ड आईडी सेव करना, या अननोन लोगों को रैंडम एंटरटेन करना, या कोई लिंक आपके फैमिली ग्रुप में आया उसको फॉरवर्ड करना, उसके ऊपर क्लिक करना, ऑल दीज थिंग्स आर यू नो मेकिंग अ ट्रैप अराउंड यू जिसमें आप शायद फंस सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सर ने दो तीन चीज़ें और बहुत अच्छी बताई कि कोई एप्लीकेशन अगर आपके यूज में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप साल में एक बार किसी एक चीज़ को यूज़ करते हैं, एक एप्लीकेशन को, उसको हटा दीजिए, वो आपका स्टोरेज घेर रही है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो एक थ्रेट के तौर पर है, अगर उसको यू नो बाईपास कर लिया गया किसी एक पॉइंट पे, तो वो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को भी बाईपास किया जा सकता है बहुत ईजीली। दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ इट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट मत करिए अपने फ़ोन्स को। आपको लग रहा है वाईफाई फ्री है, लेकिन भूलिएगा मत, सबसे कीमती चीज उस टाइम पर उस फ्री वाईफाई के थ्रू जा सकती है, वो है आपका डाटा, आपकी सबसे प्रेशियस चीज है, वो वहां पर लीक हो सकती है। टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। इट मींस अ लॉट टू अस कि आप यहाँ पर आए और अपना यू नो ये इंपॉर्टेंट टाइम हमें देकर ये सब बताया। थैंक यू सागर।
1: थैंक यू।
0: ऑलराइट दोस्तों, वी आर डन विद आवर क्वेश्चंस। ऑन दिस नोट वक्त है शो का पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों तक हम पहुंचा पाए। इसी नोट पर इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर दोस्त एंड दिस इज योर होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे सागर, लेकर आ चुका हूं प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, जहां पर हम लोग बात करते हैं हर एक एपिसोड में एक नई कंपनी की, यानी कि केस स्टडी के तौर पर हम एक शो लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें आपको हम बताते हैं कंपनी के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंडस्ट्री को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये कंपनी क्या करती है, किस एक मार्केट सेगमेंट में डील करती है, कंपनी के फाउंडर्स कौन है, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से रिसर्च करके एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझा पाए। तो यहाँ पर फिर एक बार लेकर आ गए हैं एक और नई केस स्टडी आपके लिए। बात करेंगे कौन सी कंपनी है, कौन सा मार्केट सेगमेंट है, सब कुछ अच्छे से विस्तार से आपको बताएंगे। बस आप इतना करिए, अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये है रेडियो मारमर्शना 107.8 FM, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी। तो कंपनी के बारे में बात करने से पहले हम इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहेंगे, जिस इंडस्ट्री में हमारी आज की ये कंपनी जो है वो डील करती है। तो इंडस्ट्री का नाम है एग्रीटेक इंडस्ट्री। अब मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई काफी पुरानी भी है और काफी नई भी है। तो पुरानी इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा है, एग्रीकल्चर आगे बढ़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये बोलूं कि इवोल्यूशन में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था ही एग्रीकल्चर का, बिकॉज जब हमें ये समझ में आ गया था कि अब हम खाने को उगा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक, तो उसके बाद हमने बाकी चीजों में काम करना शुरू किया, जैसे कि साइंस, जैसे कि पॉलिटिक्स, जैसे बाकी जो भी चीजें हमारे पास हैं, उनके ऊपर हमने काम तब करना शुरू किया जब हमारे पास टाइम था और हमारे पास इतना एक सुकून था कि चलो पेट तो भर जाएगा, खाना हमने स्टोर कर लिया है। और नई इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत नई है। अब एग्रीकल्चर में अगर टेक्नोलॉजी को लेकर आया जाए तो यकीन मानिए कितनी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो तो एक पॉइंट है, साथ साथ कितनी तेजी से तरक्की हो सकती है, कितनी तेज रफ्तार के साथ देश को आगे लेकर जाया जा सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है और आज की डेट में हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। लेकिन अब से कुछ टाइम पहले तक भी किसान जो है वो पुरानी जो ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल मेथड्स हुआ करते थे उनको यूज करके हार्डवर्क करते थे, जिसमें क्या होता था कि इनपुट बहुत ज्यादा होता था, आउटपुट उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। मतलब एफर्ट्स बहुत है, मेहनत बहुत है, लेकिन उस लेवल की क्रॉप्स नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है, तो काइंड ऑफ वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता था। तो उन एफर्ट्स को कम करने के लिए टाइम टू टाइम टेक को उसमें इनरोल करते रहे हैं लोग, और जिसका परिणाम है आज हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हो गई है। फॉर अ टाइम बीइंग अभी चल रहा है, लेकिन आगे चलकर ये चीजें और एक्सपेंड होने वाली है और मल्टीप्लाई होने वाली है। तो एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया गया, दैट्स हाउ ये एक नई इंडस्ट्री बन जाती है एग्रीटेक। एग्रीटेक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, या फिर आप कह सकते हैं एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है, जहां पर टेक्नोलॉजी मल्टीपल चैलेंजेस को एड्रेस करती है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। हमारी जो आज की कंपनी है वो भी ऐसा सा ही कुछ करती है। यहां पर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जो गोल है वो है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना, और साथ साथ फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करना, सो दैट इसको एक सस्टेनेबल मोड बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आउटपुट ले पाए मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो ये है अल्टीमेट गोल एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने का। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री का नाम है एग्रीटेक, यानी कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को मिलाकर कुछ अगर बनता है तो बनता है एग्रीटेक। अब इसमें आप छोटा सा ओवरव्यू, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ है हमारे साथ साथ, और नई नई प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आई हैं। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ के निकाले हैं, जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग, जैसे कि फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो फार्मर्स के लिए जरूरी होती हैं। समटाइम्स उनके पास इतने पैसे नहीं होते, जिसको आप अगर बिजनेस फॉर्मेट में समझे तो कैपिटल उतना नहीं होता कि इन्वेस्ट कर सके, तो ऐसे में उनको अगर थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है सो दे कैन डू मच बेटर। उसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीजें भी है हमारे पास, जिसमें किसानों की काफी हेल्प हो जाती है, ना सिर्फ क्रॉप्स को समझने में बल्कि कुछ नया क्रिएट करने में, कुछ ऐसा इनोवेटिव सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। तो इंडस्ट्री का जो एम है वो है इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा हम रेजिलियंट, एफिशिएंट और सस्टेनेबल बना सके। ये है इस पूरी एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू। छोटे से रेफरेंस के तौर पे, बहुत छोटे माइन्यूट लेवल पे जाता हूँ यहाँ पे, और ये मैं जा रहा हूँ कि कुछ साल पहले जब किसान बैल का इस्तेमाल किया करते थे हल चलाने के लिए, अब वो चीज ठीक थी लेकिन फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा था उसमें, बहुत ज्यादा फिजिकल उनके एफर्ट्स लगते थे। तो उसके बाद ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर इनोवेट हुआ तो उससे काफी हेल्प हुई, जो बैल थे उनको बाकी कामों में यूटिलाइज किया गया, एंड जब ट्रैक्टर आया तो उनको बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करना पड़ा। ऐसे करते करते कि चीजें भी बदल रही हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी काफी चेंज हो जाती है। हर एक रीजन में अलग तरह का एक सॉइल होता है जहां पर अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। जैसे कश्मीर जैसी जगहों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ठंडे इलाके होते हैं, तो आप सेब, केसर, इस तरह की चीजें ज्यादा उगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ पर गेहूं, चावल, इनकी खेती थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं पर अगर आप राजस्थान जैसी जगहों की बात करते हैं तो वहां पर बाजरे की खेती थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस तरीके से अलग अलग चीजें बटी हुई हैं, क्योंकि सॉइल जिस तरीके का होता है उसी तरीके की फसल वहां पर उगाई जाती है। अब इसको और प्रिसाइजली समझने में जो हेल्प होती है वो टेक्नोलॉजी करती है। वहीं पर एक और चीज होती है, फार्मर शायद रिलेट कर पाएंगे, खेतों की लेबलिंग की जाती है, जो मिट्टी होती है उसको इक्वल किया जाता है। अब उसको पहले मैनुअली किया जाता था, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि आप एक बटन दबाएंगे और पूरे खेत को वो एक लेबल में कर देगा विद इन अ फ्यू आवर्स। तो ऐसी टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प करी है और बहुत बड़े पैमाने पर हमने इवोल्यूशन देखा है खेती बाड़ी का। अभी ये आलम है कि आप हरियाणा में, इवन यूपी में आप जाकर देखेंगे कि जैसे ही गेहूं कटते हैं लोग मूंग की दाल जो है वो बो देते हैं, उससे उनको काफी मुनाफा हो जाता है, एक थर्ड सोर्स बन जाता है उनकी इनकम का, यानी कि चावल और गेहूं के बीच में एक तीसरी फसल उगा दी गई। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तरबूज जैसी चीजें उगा देते हैं। तो ये हमने छोटे छोटे इनोवेटिव चीजें ढूंढ रखी है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी हेल्प करती है सॉइल को समझने में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके साथ डील करना होता है। जो हमने क्रॉप उगाई है वहां पर उसकी हेल्थ कैसी है, और ये एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि कितनी फसल जो है इस बार निकल के आने वाली है, उसमें और प्रिसाइज हम हो जाते हैं कि ठीक है इस बार हम ये बजट लगा सकते हैं, इतना हो सकता है, या इसमें इतने एफर्ट्स हम और मार सकते हैं, या फिर इन प्लांट्स की जो आप कह सकते हैं पोटेंशियल है वो इतनी है। तो ऐसे करके किसानों की बहुत हेल्प हो जाती है। आपने अपडेट्स में ये भी देखा होगा कि कई जगह पर बहुत तेज बारिश हो गई, या फिर ओलावृष्टि हो गई, या फिर कहीं पर लंबे टाइम तक बारिश ही नहीं हुई तो वहां पर फसल पूरी खराब हो गई, ऐसी भी चीजें सामने आती हैं। ये बहुत दुखद चीजें होती हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए काम करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे इस एक इंडस्ट्री के की ड्राइवर्स की, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से एग्रीटेक जो है वो चल रही है और इतना तेजी से ग्रो कर रही है। पहला है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसमें आप डेटा का यूज करते हैं, जीपीएस का यूज करते हैं, आईओटी का इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मॉनिटर किया जा सके और फार्म पर होने वाले सारे ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके। इसमें बहुत सारे की प्लेयर्स हैं, कुछ नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा, फैजल है, क्रॉपलिन है, देहात है, ये सब जो स्टार्टअप्स हैं ये फोकस कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके, कैसे डेटा को यूज करके जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प की जा सकती है, कैसे उनके फार्म में होने वाले डे टू डे एक्टिविटीज, चाहे वो खेती बाड़ी है चाहे वो पशुपालन है, उनको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। देन सेकेंड इज सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेजेस। अब बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो फार्मर्स को कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली बायर्स के साथ, जिसमें मिडिल मैन का कमीशन कम हो जाता है, या वो जो किसान को होने वाला मुनाफा जो मिडिल मैन की जेब में चला गया वो डायरेक्ट अब किसान के पास आ जाता है, जिसमें इंश्योर कर लेता है किसान कि उसको उसकी जो फसल है उसका बेस्ट प्राइस मिला है। ऐसे में कुछ कंपनीज डील करती हैं, निंजा कार्ट, वे कूल, जम्बो टेल। निंजा कार्ट हमारी आज की कंपनी है जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट इस एक चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। अभी तक क्या होता था कि किसान फसल उगाते थे, उसको काटते थे और उसको जो आढ़ते हुआ करती थी वहां पर ले जाकर उसको बेचते थे। इनफैक्ट अभी भी वही प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस बन चुकी हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो किसानों को डायरेक्ट अपने साथ एनरोल करते हैं और उनकी खेती को डायरेक्ट बिकवाते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप बायर्स या रिटेलर्स के पास जा सकते हैं अपनी फसल को लेकर जो भी आपकी निकल के आई है। तो ऐसे में मुनाफा आपका ज्यादा हो जाता है। अगर आप आढ़त की बात करेंगे तो आढ़त पहले उनसे लेगी, उसको सरकार को बेचेगी या आगे चलकर रिटेलर्स को बेचेगी, वहां पर एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन उसमें मल्टीपल मिडिलमैन जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें किसान का जो मुनाफा है वो कम हो जाता है। जबकि सारा आउटपुट, सारी मेहनत, सारा इनपुट सब कुछ किसान का था। सो अल्टीमेटली उसके पास ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होना चाहिए। इस एक प्रॉब्लम को फिक्स करते हुए ये कंपनीज आई हैं, जिनमें हमारी आज की कंपनी भी डील करती है। देन उसके बाद है फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे टूल्स बना दिए गए हैं जो किसानों की हेल्प करते हैं उनके ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंटली करने में। ऐसे में कुछ मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा, कृषि हब, फार्म ईआरपी। देन नेक्स्ट मेजर सेगमेंट है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब ऐसे बहुत सारे सीड्स इनोवेट कर लिए गए हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स इनोवेट कर लिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल जो हैं वो इनोवेट कर लिए गए हैं जो खेती को बढ़ाते हैं, साथ साथ कीटनाशक के तौर पे भी काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पर्टिकुलर यही चीजें बना रही हैं, इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, जिससे खेती ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सके। क्योंकि आज भी दोस्तों आप रूरल एरिया में जाएंगे तो मेजर सोर्स आपको जो देखने को मिलेगा इनकम का, वो अभी भी खेती है। और अगर खेती नहीं होगी तो हमारा खाना कहां से आएगा? इसलिए अल्टीमेटली हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। खाना हम सब लोग खाते हैं, चाहिए हम सबको, लेकिन उसको जो उगा रहे हैं उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिक्स करना भी जरूरी है। देन इसके बाद नेक्स्ट मेजर सेगमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फार्मर्स को कई बार लोन चाहिए होते हैं, फार्मर्स को कई बार क्रेडिट चाहिए होता है, तो ऐसे में कुछ कंपनीज हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो उनको ये सब सुविधाएं जो है प्रोवाइड करती हैं। इंश्योरेंस चाहिए होता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जो फार्मर्स की इस एक डायरेक्शन में इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रही हैं कि लेट्स से उन्हें मिड फसल में पैसों की जरूरत पड़ गई तो ठीक है, आपको मिल जाएगा। जैसे कि इंश्योरेंस कराना है फसल का, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे में इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा अगर फसल जस्ट इन केस खराब भी हो जाती है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जिनकी वजह से ये जो एग्रीटेक है ये निकल के इतना सामने आया है और इतना तेजी से ये ग्रो कर रहा है। हालांकि साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो एट द सेम टाइम सबके होते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे। बट फिलहाल अभी मैंने आपको बताया कुछ मेजर सेगमेंट्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेज, फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बिना किसी देरी के जिस इंडस्ट्री की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्रीटेक, उसके कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला चैलेंज आता है सबसे बड़ा जो है वो है एडॉप्शन एंड अवेयरनेस का। जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या चीजें की जा रही दुनिया में। जैसे अगर मैं बात करूं आज की कंपनी की जो है निंजा कार्ड, अब निंजा कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो डायरेक्ट रिटेलर्स से कॉन्टेक्ट कर सके, लेकिन अब जब फार्मर्स को पता ही नहीं है इसके बारे में तो कैसे वो उस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे, कैसे नई टेक्नोलॉजीज उनकी हेल्प कर पाएंगी। बिकॉज अल्टीमेटली उसको इनोवेट कर देना इज वन थिंग, लेकिन जन जन तक पहुंचाना, उनके फोन तक लेकर आना, उनको उसकी आदत लगाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सेकेंड थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है तो वहां पर उतने इफेक्टिव तरीके से एग्रीटेक सॉल्यूशंस को नहीं एनरोल किया जा सकता। एज इन अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी मशीन्स हैं और लेट्स से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे वो काम करेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो बहुत सारी जगह पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरऑल यही सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, मैं कह रहा हूं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। ऑन एन एवरेज जो चैलेंजेस हैं मेजर, वो हम यहां पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। छोटे या फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो है थोड़ा मुश्किल बना देते हैं सिचुएशन को, जब बात होती है किसी भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को एक लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एक पर्टिकुलर या तो ढर्रे में खेत नहीं होते हैं, पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में खेत नहीं देखने को मिलते हैं, या मिलते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग जगह पर डिवाइडेड होते हैं। इसलिए कुछ ऐसी चीजें जो एक लंबे एरिया पे अगर इम्प्लीमेंट करें तो ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, इसलिए वहां पर वो एक चैलेंज आता है। देन उसके बाद कुछ रेगुलेटरी के हर्डल्स होते हैं, कुछ चीजें हैं जो अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको लेकर शायद आने वाले टाइम में बहुत सारी नई रेगुलेशंस जो है बनाई जाएंगी, नई गाइडलाइंस इश्यू की जाएंगी। बट अभी तक जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बिकॉज बहुत सारी चीजें नई है हमारे लिए, अभी डील कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे जैसे चीजें साबित होती जा रही है, प्रूव होता जा रहा है कि चलो ये ठीक है, ये देश के लिए ठीक है, किसानों के लिए ठीक है, तो उन तमाम चीजों को रेगुलेट कर दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई चैलेंजेस की। अब बात करते हैं आज की कंपनी की, जिसका नाम है निंजा कार्ट। निंजा कार्ट एक बहुत ही इनोवेटिव एग्रीटेक स्टार्टअप है। अभी तक आप एग्रीटेक को अच्छे से समझ चुके हैं एंड आई होप कि अब मुझे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लगभग सभी चीजें हमने कवर कर दी हैं। आपको इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे दिया है, की ड्राइवर्स आपको बता दिए हैं, मेजर सेगमेंट्स आपको बता दिए हैं, उसके साथ साथ आपको चैलेंजेस के बारे में भी बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कंपनी की, जिसका नाम है निंजा कार्ट। सो निंजा कार्ट एक ऐसे मॉडल पर काम करती है कंपनी जो फार्मर्स को डायरेक्ट मिलवाती है बायर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, मतलब मिडिल मैन को कम किया जाता है। मतलब इसको आप अगर समझना चाहें तो थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेजेस की, तो सप्लाई चेन एंड मार्केट लिंकेजेस वाली जो प्रॉब्लम है उस सेगमेंट की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आई है एक कंपनी जो किसानों के लिए बहुत ही कारगर है। लेकिन प्रॉब्लम अगेन मैं बता रहा हूँ कि चैलेंजेस हैं हमारे सामने, क्योंकि अभी किसानों को पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। अभी जाकर किसी को वहां पर बताना होगा या फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो वर्ड ऑफ माउथ होता है उसके थ्रू पहुंचेगा, बट इट विल टेक सम टाइम अगेन। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, एक अच्छा आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी मेथड है जहां पर किसानों की जेब में जाएगा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, डायरेक्ट वो मिल सकते हैं बायर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, और ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी फार्मिंग को। दैट्स हाउ उनका एक मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा, साथ साथ वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ अपनी खेती के ऊपर ध्यान देंगे, और अब उन्हें पता है कि बेचना कैसे है, तो उनके लिए वो भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। सो दैट्स ऑल निंजा कार्ट इज डूइंग। दोस्तों आज की जो इंडस्ट्री है वो है एग्रीटेक, उसके बारे में सब कुछ आप लगभग जान चुके हैं, मतलब इन डेप्थ तो हम नहीं गए हैं बट ओवरव्यू आपको मिल गया अच्छे से, जो जो उसमें मेजर आप कह सकते हैं पिलर्स हैं उस इंडस्ट्री को ड्राइव करने वाले, और जो जो सेटबैक्स हैं साथ साथ वो भी हमने आपको बता दिए। कंपनी के बारे में आपको हम बता चुके हैं निंजा कार्ट के बारे में, अब थोड़ा सा बात करेंगे हम फाउंडर्स के बारे में, बिकॉज रियल हीरोज ये लोग होते हैं जो इन कंपनीज को स्टार्ट करते हैं। तो निंजा कार्ट 2015 में स्टार्ट की गई और इसको 6 लोगों ने स्टार्ट किया था। पहला नाम है थिरुकुमारन नागराजन, दूसरा नाम है शरत लोगनाथन, तीसरा नाम है आशुतोष विक्रम, चौथा नाम है कार्थीस्वरन के, पांचवा नाम है वासुदेवन अचिन्ना थाम्बी, और छठा नाम है शोभित जैन। ये जो फाउंडर्स हैं ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ को टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कुछ बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो सब लोगों ने अपने अपने एंड पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। दैट्स हाउ ये कंपनी इतनी बड़ी बन पाई और कंपनी स्टार्ट होकर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है फिक्स कर पा रही है। अगर यहाँ पर पहले नाम की बात करें जो है मिस्टर थिरुकुमारन नागराजन, वो इस कंपनी के सीईओ एंड को फाउंडर हैं। इनके अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने, एंड साथ साथ बिजनेस का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है क्योंकि मल्टीपल स्टार्टअप्स पहले कर चुके हैं। सेकंड नेम शरत लोगनाथन, ये है हेड ऑफ सप्लाई चेन एंड को फाउंडर। इनकी एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी में एंड लॉजिस्टिक्स में, एंड एग्जैक्टली वही एक चीज है जिसको ये कंपनी एड्रेस करती है, वही एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ये कंपनी लेकर आई है फार्मर्स के लिए। तो इसमें लॉजिस्टिक्स के ऊपर बहुत स्ट्रांग होल्डिंग की जरूरत होती है, एंड ये कंपनी अगर सक्सेसफुल हो पाई है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब लोग अपने अपने एरियाज में कितने माहिर होंगे। तीसरा नाम है आशुतोष विक्रम, ही इज द सीटीओ एंड को फाउंडर। ये टेक्निकल प्रोसेस लेकर आते हैं, टेक्निकल पावर जो है वो इनके पास है, तो इसलिए एक स्ट्रांग होल्डिंग है इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और टेक्निकल जो भी टर्म्स होती है कंपनी की उन सबको ये देखते हैं। देन उसके बाद अगला नाम है वासुदेवन चिन्ना थाम्बी, ही इज द वीपी ऑफ ऑपरेशंस एंड को फाउंडर है। ये फोकस करते हैं जितने भी ऑपरेशनल टास्क होते हैं उनके ऊपर। देन उसके बाद अगला नाम है कार्थीस्वरन के, ही इज द सीओओ एंड को फाउंडर। इनका भी एक स्ट्रांग बैकग्राउंड है इन ऑपरेशंस। देन उसके बाद लास्ट नेम है शोभित जैन, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड को फाउंडर। ये मैनेजमेंट एक्सपर्टीज लेकर आते हैं। तो ये अभी आपने जाना कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हुए जो लोग हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज लेकर आते हैं जो लोग एक टेबल पर, वो मिलाकर कैसे कमाल करते हैं। अब एक ऐसी प्रॉब्लम जो कई सालों से चली आ रही है, मतलब किसानों के साथ बहुत पहले से ये सब चला आ रहा है, पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है। किसान जो है वो खेतीबाड़ी करेगा, वो फसल उगाएगा, फसल काटेगा, देन उसके बाद उस फसल को एक ठेकेदार तक पहुंचा देगा, या एक आढ़ती तक पहुंचा देगा, या एक मिडल मैन तक पहुंचा देगा, आगे चलकर वो डील करेगा फिर इन सब के साथ। तो ऐसे में उनका मुनाफा कम हो जाता है जबकि मेहनत सबसे ज्यादा उन्होंने ही करी है उसके लिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे लोग हैं जो ढूंढ कर लाए हैं और काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो ये वो 6 लोग, ये 6 वो आप कह सकते हैं हीरोज हैं जिन्होंने किसानों के लिए करने का सोचा कि चले कुछ अच्छा करते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम मार्केट को अच्छे से समझ चुके हैं, एग्रीटेक को, हम निंजा कार्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हम फाउंडर्स के बारे में जान चुके हैं, फाउंडर्स का एक्सपीरियंस भी हम समझ चुके हैं, और अभी तक इतना भी हमें समझ में आ चुका है कि ये मार्केट कितनी पुरानी है और क्या क्या चीजें हैं अगर हम टेक यहां पर लेकर आते हैं तो क्या बैरियर्स हमारे सामने आते हैं, और जो इसके की ड्राइवर्स हैं वो क्या क्या हैं। अब इसी के साथ हम बात करेंगे निंजा कार्ट के बिजनेस मॉडल की। तो देखिए, निंजा कार्ट ने एड्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम को किया जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। जैसे कि एक मेथड बना हुआ था कि किसान अगर फसल उगाएगा, फसल को काटकर वो जाकर एक सर्टेन पॉइंट है जो फिक्स्ड है, वहां नियर बाय जितने भी एरियाज हैं वो सब किसान उस एक पॉइंट पर जाएंगे और वहां पर जाकर अपनी फसल को बेच देंगे और जो उन्हें दाम मिलेगा वो फिक्स होगा। अब उसके बाद आगे वो इंसान जाने जिसने फसल को लिया है उनसे, लेट्स से गेहूं की अगर बात करता हूं तो वो इंसान गेहूं को स्टोर करेगा, सरकार को बेचेगा, आगे रिटेलर्स को देगा, वो उसका खुद का एक व्यापार है वहां पर। अब ऐसे करके बहुत सारे मिडिल मैन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है सबका अपना एक इंसेंटिव होता है, तो वहां पर किसान का जो मुनाफा होता है उसको आप कह सकते हैं कि वो काफी कम हो जाता है। इस एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया निंजा कार्ड ने, जिसकी वजह से किसान को सही मूल्य प्राप्त हो, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंस्पायर हो और वो टेक की तरफ भी आए और खेती के ऊपर और ज्यादा फोकस करें और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से, नए इनोवेटिव तरीके से कुछ लेकर आए। हालांकि इसके बहुत सारे रेफरेंसेज हम आपको अपने जो हमारा मंडे टू फ्राइडे शो होता है टैक्सी नंबर 1078 शाम को 5 से 8 उसमें कई बार दे चुके हैं कि कैसे कैसे लोग नई चीजें लेकर आते हैं और अपनी रूट्स को अपलिफ्ट करते हैं। अब यहां पर निंजा कार्ड ने क्या किया कि फार्मर्स और जो रिटेलर्स हैं डायरेक्ट उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर दिया, जिससे क्या हुआ मिडिल मैन वहां पर काफी कम हो गए। अब डायरेक्ट जो किसान है वो रिटेलर को अपना सामान बेच सकता है। इसी के साथ मल्टीपल मिडिलमैन जो इन्वॉल्व थे उनको वहां से हटा दिया गया, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किसान के पास आए और एक फेयर अमाउंट उसके हाथ में हो एट द एंड ऑफ द क्रॉप, ताकि उसके पास मोटिवेशन हो वो नेक्स्ट ईयर अच्छे से और फसल को उगा सके। अब इसी के साथ रिटेलर्स को भी एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको फ्रेश फूड मिल जाता है, आपको ताजा फसल मिल जाती है जिसके ऊपर पेस्टिसाइड्स नहीं लगे हुए हैं, जिनको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं किया हुआ है, सीधा खेत से आ रही है, सीधा फार्मर की तरफ से आ रही है और प्राइस भी उनको उतना ज्यादा पे नहीं करना होता है। अब इसका एक दूसरा फायदा रिटेलर्स को भी तो होगा ना, क्योंकि उसको भी मिडिलमैन को पे करना होता था। लेट्स से कि अगर वो उस एक सर्टेन पॉइंट से खरीद रहा है जहां पर किसान ने बेची थी, तो वो सर्टेन पॉइंट वाला जो बंदा है, अब आप उसको आढ़ती बोल लें या ठेकेदार बोल लें, जो भी है वो अपना इंसेंटिव रखेगा, वो रिटेलर से भी लेगा, फार्मर से भी लेगा। दैट्स हाउ ये पूरा लूप चल रहा था। अब इसको फिक्स किया निंजा कार्ट ने, जिसने लिटरली बहुत सारे फार्मर्स को काफी प्रोत्साहित किया, काफी इंस्पायर किया ताकि वो काम कर पाए। इसी के साथ एक और चीज है जिसको निंजा कार्ट ने एड्रेस किया, दैट इज लॉजिस्टिक्स। वो अपने आप में एक नया चैलेंज खड़ा होता है सामने, क्योंकि किसान अपने ट्रैक्टर में लेकर जाएगा, लेकिन अगर उसको कहीं दूर देकर आनी है, जैसे कि किसी यूपी के किसान ने किसी दिल्ली के रिटेलर से बात की है, अब यूपी से दिल्ली तक लाने के लिए ट्रैक्टर एक तो अपने आप में बहुत मशक्कत है, ऊपर से बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, प्लस बहुत सारे टोल प्लाजाज भी होते हैं, पुलिस को भी फेस करना होता है, ऊपर से बहुत मौसम का भी जो इम्पैक्ट है वो झेलना पड़ता है। तो इस एक इश्यू को भी एड्रेस किया है निंजा कार्ट ने। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया, ट्रक्स हैं और मिनी ट्रक्स जो हैं वो भी होते हैं, जिससे जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और टाइमली जो फसल है, टाइमली जो भी चीज वहां पर खरीदी गई है उसको रिटेलर तक पहुंचा दिया जाए। अब इससे अगेन रिटेलर्स को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको फ्रेशली प्रोड्यूस जो है क्रॉप मिल रही है, जिससे आप जो है अपने हिसाब से उसको बेच सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट भी पे नहीं करना पड़ा है, क्योंकि मिडिलमैन वहां पर नहीं है। इसी के साथ अगर मैं निंजा कार्ड की यूएसपी की बात करूं, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तो वो उनकी एबिलिटी में ही लाई करती है, क्योंकि उनका सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है और वेस्टेज काफी कम हो जाता है और फेयर प्राइसिंग जो है, ये तीन उनके यूएसपी हैं जिन्होंने इस कंपनी को यूनिक बनाया है। और टेक ड्रिवन सप्लाई चेन है, तो जाहिर सी बात है कंपनीज को ट्रैक कर सकती है, फार्मर्स को ट्रैक कर सकता है, रिटेलर्स को ट्रैक कर सकता है, तो काफी सारी चीजें, काफी सारी मशक्कत वहां पर कम हो गई, जिससे एक स्मूथ आप कह सकते हैं कि प्रोसेस बन गया और सबके लिए बेनिफिशियल है। सो दैट्स हाउ टेक ने दुनिया को बदला है और इस एक इंडस्ट्री को भी बदला है। अभी शो को यहां पर हम कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन में हम आपको बता सकते हैं कि निंजा कार्ट ने एग्जैक्टली किया क्या है। तो निंजा कार्ट एक प्राइम एग्जाम्पल हो सकता है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को अगर हम मिला दें तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है। जैसे कि एग्रीकल्चर सप्लाई चेन बहुत बड़ा, बहुत पुराना नेटवर्क है, अब उसके अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। हालांकि हम लोग चैलेंजेस की बात कर चुके हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग गुड, दिस कंपनी इज डूइंग रियली गुड, जहां पर आपकी जो लाइवलीहुड है वो एनहेंस हो जाती है एज इन फार्मर्स की, और साथ साथ रिटेलर्स को भी काफी फायदा हो जाता है, फ्रेशली प्रोड्यूस आइटम मिल जाता है, जिससे कंज्यूमर को भी बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब आपको ताजा खाना मिल रहा है, साथ साथ आपको उतना ज्यादा अमाउंट जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, तो साउंड्स गुड। तो ये एक चीज है जो निंजा कार्ट ने की है, एक अच्छी खासी बहुत ही पुरानी एक इंडस्ट्री को टेक के साथ इनलाइन करके उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। सो इसी को कहते हैं इनोवेशन, जो निंजा कार्ट ने अभी यहां पर करके दिखाया। एंड विद दिस नोट दोस्तों हमारा वक्त शो के यहाँ पर खत्म करने का। आपको आज की स्टडी कैसी लगी 8010781078 पर बताइएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, अपने शो को यहाँ पर खत्म करता हूँ, तो फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खैरियत से रहें, गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम सत्यमेव जयते। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते में बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करता हूं, और कभी मैं अकेला होता हूं तो कभी मेरे साथ मेहमान होते हैं और बात करते हैं आप ही लोगों के अधिकारों के बारे में। अधिकार की जब बात आती है तो हमें एडवोकेट याद आते हैं, और आज मेरे साथ एडवोकेट हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं, नाम है शीला असवानी। शीला जी, सबसे पहले मैं आपका रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
1: नमस्कार सर। नमस्कार ऑडियंस, मैं एडवोकेट शीला असवानी रेडियो मानव रचना से बोल रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे।
0: जी, और देखिए शीला जी, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जब कानून की बात आती है, लोगों के अधिकारों की जब बात आती है। आज हम बात करेंगे जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को यही बताइए कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं ये क्या है?
1: क्या है ये?
0: जी
1: सर, देखिए हमारे इंडियन पेनल कोड और हमारा CRPC प्लस हमारा एविडेंस एक्ट, ये हमारे अंग्रेजों के टाइम के जमाने के बने हुए हैं लॉज। आप ये देखें कि इंडियन पेनल कोड IPC, शॉर्टकट में IPC बोलते हैं हम, ये हमारा 1860 का बना हुआ है, डेट मीन्स आज़ादी से पहले का ही है। और प्लस हमारा जो CRPC है वो 1974 का बना हुआ है, ये भी अंग्रेजों के टाइम का था लेकिन थोड़ा सा अमेंड करके इंडियंस ने अपना इसका इंडियंस के नाम दे दिया गया, लेकिन है तो ही अंग्रेजों के टाइम के जमाने का ही। और आप देखिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य, ये भी 1872 का बना हुआ है। ये हमारे सारे लॉज हमारे अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं सर। ये तो उस टाइम की कंडीशंस अलग थी, आज का ज़माना अलग है, आज की टेक्नोलॉजी अलग है। आप ये देखिए कि उस टाइम पे किसी घर में फ़ोन भी नहीं होता था।
0: बिल्कुल,
1: फ़ोन तो बहुत दूर की बात है कि जो लैंडलाइन फ़ोन वो भी नहीं होते थे। यानी एक घर में है तो चार घर में नहीं होगा, और हम उस टाइम बड़ी बेसब्री से वेट करते थे, अच्छा फ़ोन आया है, बहुत इंतज़ारी होती थी। अब तो फ़ोन की इंतज़ारी नहीं है क्योंकि हमारे पास मोबाइल्स आ गए हैं। और किसी को सूचना देनी होती थी, तार के माध्यम से सूचना जाती थी, जिसको हम टेलीग्राम से बोलते हैं। तो अगर किसी घर पे अगर तार आ जाए ना, तो समझो तो उसके हाथ पर फूलने लग जाते थे कि ये क्या क्या न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ आई है, कोई बुरी खबर आई है। तो अब आप देखिए कि आजकल के टाइम में, आजकल के टाइम छोड़िए, सबसे पहले हम क्या कहते थे कि फास्टेस्ट सर्विस किसकी होती थी? एरोप्लेन की। और आज के टाइम में फास्टेस्ट सर्विस है आपकी मोबाइल की, विद इन कुछ सेकंड के अंदर किसी के पास सूचना पहुंच जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये हमारे उस टाइम पे नहीं था। तो उस लॉज के अंदर भी, ये हमारे कानून के अंदर भी हमारी टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं था। तो इसलिए प्रावधान हमारे चेंज किए गए हैं, पनिशमेंट चेंज की गई है, बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो रिफॉर्म किया गया है। यानी हमारे जो न्यू लॉज हैं वो हमारे भारतीयों के फेवर के लिए हैं। भारतीयों के फेवर के लिए, कि भारतीयों को दंड ना मिले बल्कि उनको न्याय मिले। तो भारतीयों के न्याय के लिए ये हमारे लॉज बनाए गए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनाए गए।
0: तो ये जो लॉज बनाए गए हैं नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कहना है हमारी मेहमान शीला असवानी जी का। और शीला जी देखिए, क्रिमिनल लॉज की जब बात आती है तो बहुत सारे सवाल भी जहन में आते हैं, और उसी से संबंधित कुछ और सवाल हैं मैं आपसे करूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको सुनाता हूं एक गाना, और उसके बाद लौट करके आता हूं आज के मेहमान एडवोकेट शीला असवानी के साथ, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ सत्यमेव जयते। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी मेहमान है एडवोकेट शीला असवानी, हाई कोर्ट दिल्ली में है, और आज बात कर रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। देखिए दोस्तों, क्रिमिनल लॉज की जब बात आती है तो बहुत सारे सवालों का जहन में उठना स्वाभाविक है। शीला जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ये न्यू क्रिमिनल लॉज क्या है
1: जी।
0: लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, वारदातें हो जाती हैं घर में, घर से बाहर, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो लोगों के लिए हैं और लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, उससे अवगत नहीं है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई भी नागरिक देश का कंप्लेंट अपने किसी थाने में देना चाहता है, उसके लिए उसके क्या क्या अधिकार हैं?
1: जी सर, थाने में अगर आप कंप्लेंट दे रहे हैं, मान लो कि किसी पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, हम एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए और बी है, उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, तो अगर वो क्रिमिनल नेचर का है, क्रिमिनल अपराध है, तो आप थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर थाने वाले आपके पुलिस स्टेशन अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रावधान ये है कि आप EFIR कर सकते हैं। पहले हमारे जो पुराने लॉज है CRPC, उसके अंदर ये प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी हमारी उस टाइम नहीं थी, आज के में टेक्नोलॉजी है, तो आप EFIR भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन EFIR दर्ज करने के बाद आपको within 3 days, 3 दिन के अंदर वहां पे साइन करने जाना होगा। बिना साइन के आपकी कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी।
0: ये तो जो आपने बताया EFIR, ये EFIR क्या है हमारे श्रोताओं को जरा ये?
1: ये इलेक्ट्रॉनिक FIR है कि आप अपने फोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप पुलिस स्टेशन में अपनी EFIR के थ्रू अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, और आपको 3 दिन के अंदर वहाँ पे थाने के अंदर साइन भी करना होगा। हमारी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पर्दे की आड़ में रहती हैं और जिनका पुलिस स्टेशन तक अप्रोच नहीं है, वो नहीं जा सकती हैं, या उन्हें कुछ बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन फ़ोन तो सबके पास होता है, वो अपने इस फ़ोन से पुलिस स्टेशन में मैसेज भी कर सकती हैं, फैक्स भी कर सकती हैं, ठीक है, या कोई टेक्स्ट मैसेज भी कर सकती हैं, या EFIR भी दर्ज कर सकती हैं। तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से कॉल भी आती है कि आपके यहाँ से ये ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, बताइए क्या बात है
0: जी।
1: ठीक है, तो डैट मीन्स कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये लॉ बनाया गया है। सपोज कि अगर एक पॉइंट और कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि जहाँ पे वारदात होती है आप उसी थाने में जाएंगे, लेकिन ये बात हमारे पुराने लॉज में थी। अब जो न्यू लॉज हमारा आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS
0: जी,
1: इसके अंदर एक प्रावधान और ये भी कर रखा है कि जहां पे घटना हुई है वहां पे तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे दूर है, उस घटना स्थल से दूर है, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई पर्सन अपने गांव में रहता है, गांव में कोई घटना हो गई है, या उसका मकान हड़प लिया है, या कोई वारदात हो गई है, वो अब दिल्ली में है, आप कमाने के लिए आया है, अब वो गांव जाएगा तो इतने में तो सारे सबूत मिट जाएंगे, ठीक है, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? तो वो जहां अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में भी अपनी EFIR या वहां के लोकल थाने के अंदर भी अपनी कंप्लेंट या अपनी FIR दर्ज करा सकता है, ताकि उसको इंसाफ मिले। गांव पहुंचते उसके 2 दिन लग जाएंगे, तो ये प्रावधान यहाँ पे दे रखा है कि आप कहीं पर भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। बहुत से एग्जांपल्स है कि सपोज कि उस पर्सन का जिस स्थान जो पर्सन जहाँ पे रहता है, जहाँ घटना हुई है, वहां पे थाने के अंदर कोई मोनोपोली है, ठीक है, या फिर कोई प्रेशराइज है किसी पॉलिटिशियन का, वो उसकी दर्ज नहीं कर रहे कंप्लेंट, तो किसी और थाने से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, इरिस्पेक्टिव एरिया। ये मेंशन किया गया है FIR के अंदर, इरिस्पेक्टिव एरिया, EFIR हो गया आपका, ऐसी बातें इसमें दर्ज की गई। तो बहुत ही अच्छे प्रावधान बनाए गए हैं हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, BNSS में
0: जी। और दोस्तों देखिए क्या है कि धाराएं होती हैं, आपके अधिकार होते हैं, उनसे जुड़ी धाराएं होती हैं। और जैसा कि बताया शीला जी ने कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, और वहां नहीं होती है तो आप कहीं से भी करा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है शीला जी। और भी सवाल है, मैं आपसे करता रहूंगा, फिलहाल अपने दोस्तों को अभी एक गाना सुना देते हैं।
1: जी जी जरूर सर।
0: चलिए दोस्तों आप गाना सुनिए, गाने के बाद दोबारा से आता हूँ आज की मेहमान एडवोकेट शीला असवानी जी के साथ, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

कई बार तुमने घूंघट भी खोल लिए, एक घूंघट के भीतर तुमने कोई ना पाया तो भी तुम्हें समझ नहीं आती, तब तुम दूसरा घूंघट खोलने में लग जाते हो। एक मुट्ठी झाग झाग सिद्ध हो गई तो मन कहे चला जाता है सारी ही झाग थोड़ी झाग होगी, एक घूंघट व्यर्थ हुआ दूसरे घूंघट में खोज लेंगे। ऐसा जन्म जन्मों से घूंघट उठाने का क्रम चलता है, किसी घूंघट में कभी किसी को नहीं पाया, सब घूंघट खाली थे। तुमने कभी किसी में किसी को पाया? पति में कुछ पाया, पत्नी में कुछ पाया, मित्र में कुछ पाया, सगे साथी में कुछ पाया, या सिर्फ घूंघट था? नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है वहां, लेकिन मन की आशा है, कहती यहां नहीं मिला तो कहीं और मिल जाएगा। इस झरने में पानी सिद्ध नहीं हुआ, फिर दूर और झरना दिखाई पड़ने लगता। तुम कब जागोगे इस सत्य से कि झरने तुम कल्पित करते हो, कहीं कोई नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त सब अयथार्थ है, तुम्हारे अतिरिक्त सब माया है। यमराज की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ो। अगर जीवन को सचमुच पाना है तो मौत से, जहां जहां मौत हो वहां वहां जीवन नहीं है, इसको तुम समझ लो। जहां जहां परिवर्तन हो वहां शाश्वत नहीं है, और जहां जहां क्षणभंगुर हो वहां सनातन नहीं है, और जहां जहां चीजें बदलती हो वहां समय को मत गमाना, उसको खोजो जो कभी नहीं बदलता है। उस न बदलने को खोज लेने की कला का नाम धर्म है। एस धम्मो सनातनो। विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को बढ़ी हुई बाढ़, जिस सोए हुए गांव में अचानक नदी में बाढ़ आ जाए और लोग सोए सोए ही बह जाते हैं, ऐसे ही विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उठा ले जाती, सोए ही सोए बाढ़ आ जाती है और जिंदगी विदा हो जाती। तुम सपने ही देखते रहते हो और बाढ़ आ जाती। सारी काम वासना स्वप्न देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह ऐश के बंदे सोते रहे फिर जागे भी तो क्या जागे, सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। एक तो जागते ही नहीं, सोए ही रह के बिता देते, और अगर कभी कोई सोचता भी है कि जाग गया तो सोचता ही है कि जाग गया, वो भी जागना जैसे सपने में ही जागना है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए, तो लोग अपने जन्मदिन को याद रखते, मृत्यु दिन की कौन चर्चा करता है। लोग जीवन पर नजर रखते, मौत की बात ही करनी बेहूती मालूम पड़ती। अगर किसी से पूछो कि कब मरोगे तो वो नाराज हो जाता, मरोगे के नहीं तो फिर तुम्हारा तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, वो तुम्हें दुश्मन समझ लेगा। पूछा कुछ गलत न था, जो होने ही वाला था वही पूछा था, लेकिन मौत की लोग बात भी नहीं करना चाहते, बात से भी भय लगता है। फिर भी मौत तो है, उस तथ्य को इनकार न कर सकोगे। किसी भांति उस तथ्य को स्वीकार करो तो शायद इस जीवन से जागने की क्षमता आ जाए। जिसने भी मृत्यु को स्वीकार किया वो देखेगा मृत्यु कभी आती है ऐसा थोड़ी, रोज हम मर रहे हैं, अभी आती है, अभी आ रही है, अभी घट रही है, ऐसा थोड़ी कि कभी 70 साल के बाद घटेगी, रोज रोज घटती है, 70 साल में पूरी हो जाती। जन्म के साथ ही मौत का सिलसिला शुरू होता है, मरने के साथ पूरा होता है, लंबी प्रक्रिया है। मृत्यु कोई घटना नहीं है, प्रक्रिया है, पूरे जीवन पर फैली है। जैसे झील पर लहरें फैली हो ऐसे जीवन पर मौत फैली है। अगर तुम मौत को छिपाते हो, ढांकते हो, बचते हो तो तुम जीवन के सत्य को ना देख पाओगे। जिसे तुम जीवन कहते हो इस जीवन का सत्य तो मृत्यु है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। सूरज उग चुका है, ढलने में ज्यादा देर न लगेगी। जो उग चुका वो ढल ही चुका, जो उग गया है वो ढलने के मार्ग पर है। सुबह का सूरज सांझ का सूरज बनने की चेष्टा में संलग्न है,
सांझ दूर नहीं है अगर सुबह हो गई। जब सुबह ही हो गई तो सांझ कितनी दूर हो सकती है। जिसको तुम भर जवानी कहते हो वो केवल आधे दिन का पूरा हो जाना है, आधी सांझ का आ जाना है। जवानी आधी मौत है। लेकिन कौन याद रखता है? जो याद रख लेके वही शिष्य है। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत को दुश्मन मत समझना। जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो मौत ही है, वो भी जान लेकर जाएगी। फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को बढ़ी हुई बाढ़। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, दुनिया को पाने की चेष्टा में वो जो जीवन था उसे तूने मिटा दिया, और दुनिया के पाने की चेष्टा को ही तूने जिंदगी समझी, वो जिंदगी ना थी। भूल हो गई गाफिल सोए हुए आदमी, भूल हो गई जिंदगी ही दुनिया थी। इसे थोड़ा समझ लो। जिसे तुम दुनिया कहते हो तुम्हारे बाहर जो फैलाव है उसे जिंदगी मत समझ लेना। अगर उस बाहर की दुनिया को ही इकट्ठा करने में लगे रहे तो असली जिंदगी गंवा दोगे, पीछे पछताओगे, समय बीत जाएगा और रोओगे, फिर शायद कुछ कर भी ना सकोगे। अभी कुछ किया जा सकता है, मरते क्षण में शायद अधिकतम लोगों को यह समझ आती है। तू हविस में दुनिया की जिंदगी गंवा बैठा, मरते वक्त अधिक लोगों को यह ख्याल आना शुरू हो जाता है। भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी, लेकिन तब समय नहीं बचता। मरते मरते दिखाई पड़ना शुरू होता है कि महल जो बनाए, धन जो इकट्ठा किया, साम्राज्य जो फैलाए, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। भीतर की जिंदगी को जान लेते तो दुनिया को पा लेते, बाहर की दुनिया को पाने में लग गए भीतर की जिंदगी गंवा दी। बाहर और भीतर में उतना ही फर्क है जितना सत्य में और स्वप्न में। बाहर है स्वप्न का जाल, भीतर है साक्षी का निवास। जो दिखाई पड़ता है उस पर ध्यान मत दो, जो देखता है उस पर ध्यान दो। जो भोगा जाता है उस पर ध्यान मत दो, जो भोगता है उस पर ध्यान दो। आंख की फिक्र मत करो, आंख के पीछे जो खड़ा देखता है उसकी फिक्र करो। कान की फिक्र मत करो, कान के पीछे खड़ा जो सुनता है उसकी फिक्र करो। न जन्म की चिंता करो न मृत्यु की, चिंता करो उसकी जो जन्म में आता है और मृत्यु में जाता है, जो जन्म के भी पहले है और मृत्यु के भी बाद है। मरते क्षण में ये याद भी आए तो फिर क्या करोगे? जिनको पहले याद आ जाती है वे कुछ कर लेते। हिचकियों पर हो रही है, हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म। झटके देकर तार तोड़े जा रहे मरते क्षण में तो फिर ऐसा ही लगेगा कि जिसको जिंदगी समझी। हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म। वो सारे स्वप्न, वे सारे गीत, वो सारा संगीत हिचकियों में बदल जाता है। हिचकियां ही हाथ में रह जाती है। हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म। झटके देकर तार तोड़े जा रहे इसके पहले कि सब कुछ हिचकियों में बदल जाए, और इसके पहले कि तुम्हारा साज तोड़ा जाए, भीतर के गीत को गा लो। इसके पहले कि मौत शरीर को छीने, तुम उसे जान लो जिसे मौत छीन ना सकेगी। इसके पहले कि बाहर का जगत खो जाए, तुम भीतर के जगत में पैर जमा लो। अन्यथा तुम सोए हुए गांव की तरह हो, बड़ी हुई नदी की बाढ़।
तुम्हें सोया सोया बहा ले जाएगी। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे। जीवन के गांव की बात है। बुद्ध कह रहे हैं जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, ऐसे ही तुम इस जिंदगी में रहो। जीवन जो रस दे सके ले लो, मगर रस केवल वे ही ले पाते हैं जो जागृत है। शेष तो उन भवनों की तरह है जो रस लेने में इस तरह डूब जाते कि उड़ना ही भूल जाते। सांझ जब कमल की पखरियां बंद होने लगती तब वे उसी में बंद हो जाते, उनके लिए कमल भी कारागृह हो जाते। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुंचाए रस लेके चुपचाप चल देता है, ऐसे जिंदगी को बिना कोई हानि पहुंचाए, यही अहिंसा का सूत्र है। अहिंसा का सूत्र इतना ही है कि रस लेने के तुम हकदार हो, लेकिन किसी की हानि पहुंचाने के नहीं। फूल को तोड़ के भी भोगा जा सकता है, वो भी कोई भोगना हुआ। भौरा आता है फूल पर चुपचाप गुनगुनाता है गीत, रिझा लेता है फूल को, रस ले लेता, उड़ जाता है, तोड़ता नहीं, मिटाता नहीं। भौरे की तरह मुक्त, भ्रमर की तरह मुक्त। बुद्ध कहते हैं जीवन के गांव में तुम जियो जरूर, लेकिन आबद्ध मत हो जाना, बंद मत हो जाना। हमारी हालत तो बड़ी उल्टी है, इससे ठीक उल्टी। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया के मत हो जाना। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन हमारी हालत से ठीक उल्टी है। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है, बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। मर भी जाएं हम तो भी गम नहीं मरते, कब्र में भी तुम पड़े रहोगे। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में, तब भी तुम सपने देखोगे, तब भी तुम उसी दुनिया के सपने देखोगे जिससे तुमने कुछ कभी पाया नहीं। तुम्हारी आंखें फिर भी उसी अंधेरे में खोई रहेंगी जहां कभी रोशनी की किरण न मिली। तो एक तो है ढंग, दुनिया उसके भीतर से नहीं हटती, और एक है सन्यासी का ढंग, वो जीता भी है तो दुनिया उसके भीतर नहीं होती। ये जीवन के विराट नगर के संबंध में भी सही है, और यही बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कहा कि गांव-गांव जब तुम भीख भी मांगने जाओ, भिक्षाटन भी करो, तो चुपचाप मांग लेना, ऐसे ही जैसे भौरा फूलों से मांग लेता और विदा हो जाना। ले लेना जो मिलता हो, धन्यवाद दे देना जहां से मिले, अनुग्रह पूर्वक स्वीकार कर लेना। न मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मिलना चाहिए धन्यभाग, न मिले संतोष। और जो न मिलने पर संतुष्ट है उसे मिल ही जाता है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी कि मिल जाने पर भी संतोष नहीं, तो मिल के भी नहीं मिल पाता, हम दरिद्र के दरिद्र ही रह जाते हैं। जीवन से बहुत कुछ पाया जा सकता है, सपने से भी सीखा जा सकता है, और मृग मरीचिकाएं भी बुद्धत्व का आधार बन जाती, भ्रम से भी जागने की कला उपलब्ध हो जाती। रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे। न तो संसार का सवाल है, न संसार को छोड़ने का सवाल है, क्योंकि जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ोगे कैसे। इतने भर जानने की बात है कि हम यहाँ मेहमान से ज्यादा नहीं। जब तुम किसी के घर मेहमान होते हो, जाते वक्त तुम ऐसा थोड़ी कहते हो कि अब सारा घर तुम्हारे लिए छोड़े जाते, त्याग किए जाते। मेहमान का यहाँ कुछ है ही नहीं, घर में ठहरने का सौभाग्य मिल गया, धन्यवाद। अपना कुछ है नहीं, छोड़ेंगे क्या। इसलिए त्यागी वही है जिसने ये जान लिया कि हमारा कुछ भी नहीं, वह नहीं जिसने छोड़ा, क्योंकि जिसने छोड़ा उसे तो अभी भी ख्याल है कि अपना था छोड़ा। अपना हो तो ही छोड़ा जा सकता है, अपना हो ही ना तो छोड़ना कैसा।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ छोड़ने की भ्रांति में मत पड़ना, क्योंकि वो पकड़ने की ही भ्रांति का हिस्सा है। तुम तो पकड़ने की भ्रांति को ही समझ लेना, अपना कुछ भी नहीं। अभी नहीं थे तुम, अभी हो, अभी फिर नहीं हो जाओगे। इस संसार को भीतर घर मत बनाने देना। तुम संसार में रहना, लेकिन संसार तुम में न रह पाए। गुजरना पानी से, लेकिन पैर भीगे नहीं। जीना, लेकिन भंवरे की तरह किसी को हानि न पहुंचे। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है। क्या रस है, किस रस की बात कर रहे हैं बुद्ध? समझा दूं, क्योंकि डर है कि तुम कुछ गलत ना समझ लो। बुद्ध किस रस की बात कर रहे हैं, किस भंवरे की बात कर रहे हैं? तुम जिन्हें सुख कहते हो उनकी बात नहीं कर, तो वही रस है, क्योंकि जिसने वो जान लिया उसके लिए महारस के द्वार खुल गए। तो जीवन के हर फूल से और जीवन की हर घटना से, जन्मों की मृत्यु और जीवन की हर प्रक्रिया से तुम एक ही रस को खोजते रहना और चुनते रहना। हर अवस्था तुम्हें जगाने का कारण बन जाए, निमित्त बन जाए। घरों की गृहस्थी, बाजारों की दुकान, कोई भी चीज तुम्हें सुनाने का बहाना न बने, जगाने का बहाना बन जाए। तो तुमने रस ले लिया। मरने के पहले अगर तुमने इतना जान लिया उनको, महाजीवन को जान लिया, तो तुमने रस ले लिया। तो तुम यूं ही न भटके, तो तुमने ऐसी ही गर्द गुबार न खाई, तो रास्ते पे तुम चले ही नहीं पहुंचे।

बच्चे भी, तब तब तुम अचानक हैरान होगे, चकित होगे कि जिसे तुम खोजते फिरते थे वो तुम्हारे भीतर था। वो परमात्मा का राज तुम्हारे हृदय के ही राज्य का दूसरा नाम है। मोक्ष तुम्हारे भीतर छिपी स्वतंत्रता का ही नाम है। और क्या है जो अहंकार का टिमटिमाता दिया बुझ जाता है तो ऐसा नहीं कि अंधकार हो जाता है, उस टिमटिमाते दिए के बुझते ही महासूर्यों का प्रकाश तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि जब वे गीतांजलि लिख रहे थे तो पद्मा नदी पर एक बजरे में निवास करते थे, रात गीत की धुन में खोए कोई गीत उतर रहा था, उतरे चला जा रहा था, वो एक टिमटिमाती मोमबत्ती को जला के बजरे में देर तक गीत की कड़ियों को लिखते रहे। कोई आधी रात फूंक मार के मोमबत्ती बुझाई, हैरान हो रे चांद ही गीत था। जैसे ही मोमबत्ती बुझी कि बजरे की उस छोटी सी कुर्सी में सब तरफ से सूरज, सब तरफ से चांद की किरणें भीतर आ गई, रंध रंध से वो छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी चांद की किरणों को बाहर रोके हुई थी। तुमने कभी ख्याल किया कमरे में दिया जलता हो तो चांद भीतर नहीं आता? फिर दिया फूंक मार के बुझा दिया, चांद बरस पड़ा भीतर, बाढ़ की तरह सब तरफ से आ गया। रविन्द्रनाथ उस रात नाचे और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आज एक अपूर्व अनुभव हुआ, कहीं ऐसा ही तो नहीं, कहीं हम निर्वाण है, इधर तुम बुझे उधर सब तरफ से परमात्मा या जो भी नाम दो भीतर प्रविष्ट हो जाता है। तो एक तो जीवन को जीने का ढंग है जैसा तुम जी रहे हो, एक बुद्धों का ढंग भी है, चुनाव तुम्हारे हाथ में। तुम बुद्धों की भांति भी जी सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा सिवाय तुम्हारे, और तुम दीनहीन भिखमंगों की भांति भी जी सकते हो जैसा तुम जी रहे हो, कोई तुम्हें जबरदस्ती जिला नहीं रहा, तुमने ही न मालूम किस बेहोशी और नासमझी में इस तरह की जीवन में जानो जिनमें तुम खुद ही कैद हो गए हो। मैं एक घर में मेहमान था, सामने एक मकान बन रहा था और एक छोटा लड़का वहां मकान के सामने पड़ी हुई रेत और ईंटों के बीच में खेल रहा था। उसने धीरे धीरे, मैं देखता रहा बाहर बैठा हुआ, मैं देख रहा था, उसने धीरे धीरे अपने चारों तरफ ईंटें लगा ली और ईंटों की जमाता गया ऊपर। फिर वो घबराया जब उसके गले तक ईंटें आ गई, क्योंकि वो खुद कैद हो गया। तब वो चिल्लाया कि बचाओ, मैं उसे देख रहा था और मुझे लगा यही आदमी की अवस्था है, ढंग से रखी है उसी ढंग से गिरा दो, तुमने ही रखी है तुम ही उठा सकते हो, कारागृह तुम्हारा ही बनाया हुआ है, किसी और ने तुम्हें कारागृह में बंद नहीं किया है, खेल खेल में बना लिया है, खेल खेल में ही आदमी बंद हो जाता है, जंजीरों में उलझ जाता है। चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं, मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में, अब ऐसे मत चलो, अब जरा जाग के चलना हो जाए, अब जरा होश से चलो। महाकाश्यप उस दिन सुबह खिलखिला के न हंसा होता तो भी क्या बुद्ध उसे मौन के प्रतीक फूल को देते? प्रश्न पूछते समय थोड़ा सोचा भी करे कि प्रश्न का सार क्या है। यदि ऐसा हुआ होता, यदि वैसा हुआ होता, इन सारी बातों में क्यों व्यर्थ समय को व्यतीत करते हो? महाकाश्यप न हंसा होता तो बुद्ध फूल देते या न देते, इससे तुम्हें क्या होगा? महाकाश्यप ना भी हुआ हो, हुआ हो, कहानी सिर्फ कहानी हो, तो भी तुम्हें क्या होगा? कुछ अपनी पूछो, कुछ ऐसी बात पूछो जो तुम्हारे काम पड़ जाए। प्रश्न ऐसे न हो कि सिर्फ मस्तिष्क की खुजलाहट हो, क्योंकि खुजलाहट का गुण है जितना खुजाओ बढ़ती चली जाती है। पूछने के लिए ही मत पूछो,
अगर न हो प्रश्न तो पूछो ही मत, चुप बैठेंगे। शायद तुम्हारे बीच कोई महाकाश्यप हंसते। हंसना न हंसना महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर जो घटता है उसका कोई मूल्य बुद्ध पुरुषों के लिए नहीं। फूल तो महाकाश्यप को दिया ही होता है, वो अकेला ही था वहां जो बुद्ध के मौन को समझ सकता था। हर हालत में फूल उसके पास गया होता, बुद्ध न देते तो भी गया होता। छोड़ दो फिक्र, हंसता नहीं। बुद्ध ना भी देते फूल तो भी मैं कहता हूँ उसी के पास गया होता, फूल खुद चला गया होता, कोई बुद्ध को देने की जरूरत भी न थी। घटना को समझने की कोशिश करो, ब्यौरे की व्यर्थ बकवास में मत पड़ो। घटना सीधी है कि बुद्ध चुप रहे, उस चुप्पी को कोई और न समझ पाया। चुप्पी को समझने के लिए तुम्हें भी चुप होना जरूरी है। जिस भाषा को समझना हो उस भाषा को जानना जरूरी है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी जानना जरूरी है, मैं चीनी बोलूँ तो चीनी जानना जरूरी है, तभी समझ सकोगे। बुद्ध उस दिन मौन बोले, मौन की भाषा बोले। जो मौन का रस जानता था वही समझा, जो मौन का रस नहीं जानते थे उन्होंने उस मौन को भी अपने चिंतन का व्यापार बना लिया। वो सोचने लगे बुद्ध मौन क्यों बैठे। अभागे लोग जब बुद्ध मौन थे तब चुप हो गए होते तो फूल उन्हें भी मिल सकता था, लेकिन वे सोचने लगे कि बुद्ध मौन क्यों बैठे, कि बुद्ध हाथ में फूल क्यों लिए। जिसने सोचा उसने गंवाया। बुद्धों के पास सोचने से संबंध नहीं जुड़ता, बुद्धों के पास तो न सोचने की कला आनी चाहिए। महाकाश्यप चुप रहा, उसने बस भर आंख देखा, उसने सोचा नहीं कौन फिक्र करे। इतना अप्रतिम सौंदर्य उस दिन प्रकट हुआ था, ऐसा सूरज उगा था जैसा कभी कभी सदियों में उगता है। बुद्ध उस दिन सब द्वार दरवाजे अपने मंदिर के खोलकर बैठे थे, निमंत्रण दिया था कि जिसे भी आना हो आ जाए। परमात्मा द्वार पर आके खड़ा था, दस्तक दे रहा था। तुम सोचने लगे, तुम विचार करने लगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों बुद्ध चुप बैठे हैं, पहले क्यों कभी नहीं बैठे। विचारक चूक गए। महाकाश्यप कोई विचारक न था, वो सिर्फ देखता रहा बुद्ध को। जैसे बुद्ध फूल को देखते रहे ऐसा महाकाश्यप बुद्ध को देखता रहा। वही तो इशारा था कि जैसे मैं देख रहा हूँ फूल को, मात्र दृष्टा हूँ, ऐसे ही तुम भी दृष्टा हो जाओ। आज हो चुकी बहुत बातें दर्शन की, अब दृष्टा हो जाओ। दर्शन की बात कब तक चलाए रखोगे। हो चुकी चर्चा भोजन की, अब भोजन करो, अब स्वाद लो। बुद्ध ने थाली सजा दी थी अपनी, तुम सोचने लगे भोजन के संबंध में। बुद्ध भोजन रखे सामने बैठे थे, जैसे बुद्ध फूल को देख रहे थे वैसा ही महाकाश्यप बुद्ध के फूल को देखने लगा। बुद्ध ने एक फूल देखा, महाकाश्यप ने दो फूल देखे, दो फूलों को एक साथ देखा, उन दोनों फूलों का तारतम्य देखा, संगीत देखा, लयबद्धता देखी, एक अपूर्व छंद का उसे अनुभव होने लगा। रुकता भी महाकाश्यप कैसे बिना हंसे, क्यों हंसा महाकाश्यप, हंसा लोगों पर जो कि सोच में पड़ गए हैं। मंदिर सामने खड़ा है और वो मंदिर की खोज कर रहे हैं। सूरज उग चुका है, वो आंख बंद किए प्रकाश की चर्चा में लीन। महाकाश्यप हंसा लोगों की मूर्ता पर। हंसा कहना ठीक नहीं, हंसी निकल गई, कुछ किया नहीं हंसने में, और रुक न सका, घट गया, फूट पड़ी हंसी। देख के सारी ना समझी,
हजारों लोग मौजूद थे, चूके जा रहे इस मूर्ता पर हंसा है और इस बात पर भी हंसा है कि बुद्ध ने भी खूब खेल खेला, जो नहीं कहा जा सकता वो भी कह दिया, जो नहीं बताया जा सकता उसको भी बता दिया, जिसको जतलाने में कभी अंगुलियां समर्थ नहीं हुई उस तरफ भी इशारा कर दिया। उपनिषद उस दिन मात हो गए, जो नहीं कहा जा सकता था उसे कृत्य बना दिया, वक्तव्य दे दिया उसका संपूर्ण जीवन से। इसलिए उस दिन के बाद जैन परंपरा में जब भी गुरु प्रश्न पूछता है तो शिष्य को उत्तर नहीं देना होता, कोई कृत्य करना होता है जिससे वक्तव्य मिल जाए, कोई कृत्य, ऐसा कृत्य जिसमें शिष्य संपूर्ण रूप से डूब जाए। महाकाश्यप हंसा ऐसा नहीं, महाकाश्यप हंसी हो गया, पीछे कोई बचा नहीं जो हंस रहा था, कोई पीछे खड़ा नहीं था जो हंस रहा था, महाकाश्यप एक खिलखिलाहट होकर बिखर गया उस संगत पर। जैन फकीर प्रश्न पूछते, एक जैन फकीर हुआ बैठा था, शिष्य बैठे थे, एक बर्तन में पानी रखा था, उसने कहा कि सुनो बिना कुछ कहे बताओ कि ये क्या है, ये बर्तन और ये पानी बिना कुछ कहे कोई वक्तव्य दो, अर्थात कृत्य से घोषित करो जैसा महाकाश्यप ने किया था खिलखिलाकर। और जब कृत्य से महाकाश्यप ने घोषित किया तो कृत्य से बुद्ध ने उत्तर भी दिया फूल देकर। आज मैं भी तुम्हें फूल देने को उत्सुक हूं। शिष्य देखने लगे हाथ में कोई फूल तो नहीं था, सोचने लगे कि ये बात तो और उलझन की हो गई, कम से कम बुद्ध हाथ में फूल तो लिए थे, इस आदमी के हाथ में कोई फूल नहीं, वो फूल के संबंध में सोचने लगे। और उन्होंने लाख सोचा कि इस पानी भरे बर्तन के संबंध में क्या कहो, बिना कहे कैसे वक्तव्य दो। और तभी भोजन का समय करीब आ रहा था, रसोईया जो भिक्षु जो सन्यासी रसोई का काम करता था वो भीतर आया, उसने ये उदासी चिंतन से तने हुए लोग देखे, उसने पूछा मामला क्या है। गुरु ने कहा एक सवाल है, इस बर्तन जल भरे बर्तन के संबंध में वक्तव्य देना है, कोई वक्तव्य जो इसकी पूरी के पूरे रहस्य को प्रकट कर दे, शब्द का उपयोग नहीं करना है, और जो ये करेगा वही फूल में देने को तैयार हूं जो बुद्ध ने दिया था। लेकिन उस रसोई ने गुरु के हाथ की तरफ देखा ही नहीं कि फूल वहां है या नहीं, गुरु फूल है, अब इसमें फूल क्या देखना। वो उठा, उसने एक लात मार दी उस बर्तन में, पानी लुढ़क के सब तरफ बह गया, और वो बोला कि अब उठो हो गई बकवास बहुत, भोजन का समय हो गया। कहते हैं गुरु ने उसके चरण छू लिए, दे दिया फूल, वक्तव्य उसने प्रकट कर दिया। अस्तित्व को तो ऐसे ही बिखेर के बताया जाता है, अब और क्या कहने को रहा, उल्टा दिया पात्र, जल बिखर गया सब तरफ। ऐसे ही उस दिन महाकाश्यप ने भी उल्टा दिया था अपना पात्र, खिलखिलाहट बिखर गई थी सब तरफ। ऐसी फिर हजारों घटनाएं हैं जैन परंपरा में, एक घटना को दोबारा नहीं दोहरा सकते याद रखना, क्योंकि दोहराने का तो मतलब होगा सोच के, इसलिए हर घटना अनूठी है और आखिरी, फिर तुम उसे पुनरुक्त नहीं कर सकते। अगर मैं आज फूल लेके आ जाऊं तो जो हंसेगा उसको घर नहीं मिलेगा, अगर आज मैं बर्तन में पानी रख के बैठ जाऊं और तुमसे पूछूं तो जो लात मार के लुड़काएगा उसको घर नहीं मिलेगा। वो तो विचार हो गया, अब तो महाकाश्यप की कहानी पता है, हजारों घटनाएं लेकिन हर घटना अनूठी है और उसकी पुनरुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पुनरुक्ति यानी विचार, कुछ कहो पूरे अस्तित्व से और कुछ कहो इस ढंग से जैसा कभी ना कहा गया हो, तो फिर मन को जगह नहीं बचती। मन तो अनुकरण करता है, दोहराता है, यंत्रवत है,
मन के पास कोई मौलिक सूझ नहीं होती। एक दूसरे दिन फकीर का एक शिष्य बहुत दिन से चिंता में रखे, गुरु ने कोई सवाल दिया है जो हल नहीं होता। जब सब तरह के उपाय कर चुका तो उसने प्रधान शिष्य को पूछा कि तुम तो स्वीकार हो गए हो, तुम तो कुछ कुंजी दो, हम परेशान हुए जा रहे हैं, वर्षों बीत गए, कुछ हल नहीं होता, कोई राह नहीं मिलती, और जब भी जाते हैं हम उत्तर भी नहीं दे पाते। गुरु कहता बस बकवास बंद, अभी हम बोले भी नहीं, अभी तो हद हो गई, ऐसे तो हम कभी भी जीत ना पाएंगे, कम से कम बोलने तो दो, हम कुछ कहें फिर तुम कहो गलत और सही, हम बोलते ही नहीं और गलत हो जाता है, तो अब तो सही होने का कोई उपाय ना रहा है। गुरु नाराज है। शिष्य हंसने लगा। प्रधान शिष्य का नाराज नहीं, क्योंकि जब तुम विचार करते हुए जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है, जब तुम निर्विचार में जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है। सोचो थोड़ा, जब तुम विचार से भरे होते हो तो सारे चेहरे पर तनाव होता, आंख में माथे पर बल होते, जब तुम निर्विचार में होते हो सब बल खो जाते हैं, सब तनाव खो जाता है। जब तुम निर्विचार में होते हो तब तुम्हारे चारों तरफ ऐसी शांति झरती कि अज्ञानी भी पहचान ले तो गुरु ने पहचान लिया, वो तुम्हें दरवाजे के भीतर घुसने देता है, ये भी उसकी करुणा। उस प्रधान शिष्य ने कहा कि मेरी तुम्हें पता नहीं, दरवाजे के बाहर ही रहता था, वो कहता था लौट जा, फिजूल की बकवास लेके मत आ, अभी उसने मुझे देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे मेरी छाया मुझसे पहले पहुंच जाती, जैसे मेरा वातावरण, मैं दरवाजे पर होता और उसे छू लेता, जैसे कोई गंध उसे खबर दे देती। तो इस नए शिष्य ने पूछा फिर तुमने कैसे उसकी अनुकंपा को पाया, उसके प्रसाद को पाया। उसने कहा वो तो मैं कभी ना पा सका, जब मैं मर ही गया तब मिला। उसने कहा भले मानुष पहले क्यों ना बताया, यही हम भी करेंगे, अब कहीं कोई ये कर सकता है। दूसरे दिन वो गया, जैसे ही गुरु ने उसकी तरफ देखा, इसके पहले कि गुरु कहे कि नहीं बकवास बंद, वो भड़ाम से गिर पड़ा, आंख बंद कर ली, हाथ फैला दी, जैसे मर गया। गुरु ने कहा बहुत खूब, बिल्कुल ठीक ठीक किया। प्रश्न का क्या हुआ? उस शिष्य ने अब मजबूरी एक आंख खोली और कहा कि प्रश्न तो अभी हल नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा ना समझ, मुर्दे बोला नहीं करते और न मुर्दे ऐसे आंख खोलते, उठ भाग यहां से और किसी दूसरे से उत्तर मत पूछना, पूछे उत्तरों का क्या मूल्य है, वो तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे अंतरतम से आना चाहिए, तुम उसमें मौजूद होने चाहिए, वो तुम्हारा गीत हो, वो तुम्हारा नाच हो, उसमें तुम पूरे लीन हो जाओ, वो जीवन हो कि मौत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाश्यप उस दिन हंसा, कहना ठीक नहीं हंसा, हंसी फैल गई, देखते ये सारी दशा, बुद्ध का सामने होना और लोगों का अंधे बने रहना, सूरज का निकल आना और अंधेरे का न मिटना, देखते हंसा, ज्ञान बरसता हो और लोगों के घड़े चिकने हो और जल उन पर पड़ता ही न हो, ये देख के हंसा। हंसता या न हंसता फूलों से मिलना था, हंसी न हंसी तो संयोगी थी। बुद्ध ने फूल हर हालत दिया होता, हंसने की वजह से नहीं दिया, ध्यान रखना नहीं तो फिर भूल हो जाएगी, यही तो भूल है मन की। तब तुम सोचोगे हंसने की वजह से दिया, तो अगर अब दोबारा कभी ऐसा मौका हमें मिलेगा तो हम हंस देंगे, वहीं तुम चूक जाओगे, हंसने की वजह से नहीं दिया। हंसी के पीछे जो मौन था, हंसी के पीछे विचार भी हो सकता तब व्यर्थ हो गई, हंसी के पीछे जो मौन था, उस खिलखिलाहट के फूलों के पीछे जो परम शांति थी, वो हंसी निर्वाण का फूल थी। न हंसता तो बुद्ध उठ के गए होते, हंसा तो बुद्ध ने उसे बुला भी लिया, न हंसता तो बुद्ध खुद उठ के गए होते, खुद उसकी झोली में उड़ेल दिया होता। लेकिन इस तरह के
प्रश्न तुम्हारे मन में उठते क्यों? तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल हो गई कि तुम महाकाश्यप की चिंता में पड़े हो? तुम्हारा जीवन समाधान को उपलब्ध हो गया कि तुम इस तरह के बौद्धिक प्रश्न उठाते हो? मत गमाओ समय को इस भांति, अन्यथा कोई महाकाश्यप तुम पर भी हंसेगा, तुम्हारी मूर्ता पर भी हंसेगा। यहां मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, कुछ हो सकता है। जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तब तुम रोओगे, अगर अभी ना हंसे तो तब तुम रोओगे। इस मौजूदगी का उपयोग कर लो, इस मौजूदगी को पी लो, इस मौजूदगी को तुम्हारे रग रेशे में उतर जाने दो। व्यर्थ के ऊहापोह में मत पड़ो। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, पाठशाला तक तर्क तर्क जाल, प्रश्नों प्रश्नों के विस्तार। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, चुप लगी जब बात की तह पा गए। तो जो मैं कहता हूं उसको तुम तर्क मत बनाओ, अन्यथा तुम चूके। तब तुम किसी दिन पछताओगे कि इतने करीब थे और चूक गए। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि सोचने वालों ने गमा दिया है और न सोचने वालों ने पा लिया है। कभी कभी क्या हमेशा ही ऐसा हुआ है? जो मैं कह रहा हूं वो इसीलिए कह रहा हूं ताकि चुप लग जाए और तुम बात की तह पा जाओ। तुम बात में से बात निकाल लेते हो, बात की तह नहीं पाते। एक बात से तुम दस दूसरी बातों पर निकल जाते हो। मैं करता हूं इशारा चांद की तरफ, तुम उंगली पकड़ लेते हो। तुम उंगली के संबंध में पूछने लगते हो, तुम चांद की बात ही भूल जाते हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हें कहना पड़े, थी ना आजादे फना किस्ती ए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। किसी तरह तूफान से बच के आ भी गए तो किनारे से टकरा गए। थी ना आजादे फना किस्ती ए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम मेरे किनारे पे आके भी डूब जाओ। कोई एजाजे सफर था या फरेबे चश्मे शौक, सामने आकर नेहा आंखों से मंजिल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल सामने आ गई हो और फिर भी तुम चूक जाओ। उस दिन बुद्ध के सामने बैठे लोग चूक गए। सामने आकर नेहा आंखों से मंजिल हो गई, आ गई थी सामने मंजिल, लेकिन जिसे पहुंचना है अगर वही तैयार न हो तो मंजिल भी क्या करे। सामने भी आ जाए तो भी तुम चूक जाओगे, क्योंकि सवाल मंजिल का नहीं तुम्हारा है। व्यर्थ की बातों में मत पड़ो। और यदि ऐसा होता तो कैसा होता, ये तो पूछो ही मत। इसकी तुम्हें व्यर्थना नहीं दिखाई पड़ती कि यदि रावण सीता को न चुराता तो रामायण का क्या होता? अब इसका कौन उत्तर दे, इसका कौन उत्तर दे? और उत्तर का क्या अर्थ है? जो हो गया हो गया, उससे अन्यथा नहीं हो सकता था। अब तुम उसमें से और व्यर्थ की बातें मत निकालो, नहीं तुम सोचते ही रहोगे। प्रत्येक पल सोचने में गवाया बड़ा महंगा है, क्योंकि उसी पल में सब कुछ उपलब्ध हो सकता था। दूसरा प्रश्न, बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा, लेकिन बुद्ध के देह विसर्जन के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, बुद्ध धर्म अनेक शाखाओं एवं प्रशाखाओं में बटने लगा। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन बुद्ध के ज्ञानी शिष्य भी अनेक विभिन्न एवं विपरीत संप्रदायों में बट गए। कृपया इस घटना पर कुछ प्रकाश डालें। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, ज्ञानी भी संप्रदाय बनाते हैं,
लेकिन अज्ञानी का संप्रदाय काराग्रह हो जाता है और ज्ञानी का संप्रदाय मुक्ति की एक राह है। संप्रदाय का अर्थ होता है मार्ग, संप्रदाय का अर्थ होता है जिससे पहुंचा जा सकता है। ज्ञानी मार्ग से पहुंचते हैं, मार्ग बनाते भी हैं, अज्ञानी मार्ग से जकड़ जाते हैं, पहुंचते नहीं। मार्ग बोझिल हो जाता है, छाती पर पत्थर की तरह बैठ जाता है। ज्ञानी मार्ग का उपयोग कर लेते हैं, अज्ञानी मार्ग से ही बंध जाते हैं। संप्रदाय में कुछ बुराई नहीं है अगर पहुंचाता हो। संप्रदाय शब्द बड़ा बहुमूल्य, जिससे पहुंचा जाता है वही संप्रदाय है, लेकिन बड़ा गंदा हो गया। लेकिन वो गंदा हो जाने का कारण संप्रदाय नहीं है। अब कोई नाव को सिर पर रख के ढोए तो इसमें नाव का क्या कसूर है? क्या तुम नाव के दुश्मन हो जाओ कि लोग नाव को सिर पर रख के ढो रहे हैं? मूड़ तो ढोएंगे ही, नाव न होती कुछ और ढोते हैं। मंदिर मस्जिद न होते लड़ने को तो किसी और बात से लड़ते हैं, कुछ और कारण खोज लेते हैं। जिन्हें जाना नहीं वे मार्ग के संबंध में विवाद करने लगते, जिन्हें जाना है वे मार्ग का उपयोग कर लेते, और जिसने मार्ग का उपयोग कर लिया वो मार्ग से मुक्त हो जाता है। जिसने नाव का उपयोग कर लिया वो नाव को सिर पर थोड़ी ढोता है, नाव पीछे पड़ी रह जाती, रास्ते पीछे पड़े रह जाते, तुम सदा आगे बढ़ते चले जाते हो। संप्रदाय में अपने आप कोई भूल भ्रांति नहीं है, भूल भ्रांति है तो तुम में। तुम तो औषधि को भी जहर बना लेते हो, बड़े कलाकार, तुम्हारी कुशलता का क्या कहना है? जो जानते हैं वे जहर को भी औषधि बना देते हैं। वक्त के काम पड़ जाता है जहर भी जीवन को बचाने के, तुम्हारी औषधि भी जीवन की जानलेवा हो जाती है। असली सवाल तुम्हारा है। बुद्ध के जाने के बाद धर्म शाखा प्रशाखाओं में बटा, बटना ही चाहिए। जब वृक्ष बड़ा होगा तो पेड़ ही पेड़ थोड़ी रह जाएगा, शाखा प्रशाखाओं में बटेगा। पेड़ ही पेड़ बड़ी थूट मालूम पड़ेगी, उस वृक्ष के नीचे छाया किसको मिलेगी जिसमें पेड़ ही पेड़ हो? उससे तो खजूर का वृक्ष भी बेहतर, कुछ तो छाया थोड़ी बहुत कहीं पड़ती होगी। वृक्ष तो वही शानदार है, वही जीवित है जिसमें हजारों शाखाएं प्रशाखाएं निकलती। शाखाएं प्रशाखाएं तो इसी की खबर है कि वृक्ष में हजार वृक्ष होने की क्षमता थी, किसी तरह एक में समा लिया है। हर्ज भी कुछ नहीं है, जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हो उतना ही सुंदर, क्योंकि उतने ही पक्षी बसेरा कर सकेंगे, उतने ही पक्षी घोंसले बना सकेंगे, उतने ही यात्री विश्राम पा सकेंगे, उतनी ही बड़ी छाया होगी, उतनी ही गहन छाया होगी, धूप से तपे मानों के लिए आसरा होगा, सरल होगी। जो वृक्ष फूट रह जाए उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ हुआ वृक्ष बांझ, उसमें फैलने की क्षमता नहीं है। जीवन का अर्थ है फैलने की क्षमता। सभी जीवित चीजें फैलती हैं, सिर्फ मृत्यु सिकुड़ती है। मृत्यु सिकुड़ती है जीवन फैलाता है, जीवन विस्तार है। एक से दो, दो से अनेक होता चला जाता है। परमात्मा अकेला था फिर अनेक हुआ, क्योंकि परमात्मा जीवित था। अगर मुर्दा होता तो अनेक नहीं हो सकता था। संसार को गाली मत देना, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आया तो समझोगे कि संसार परमात्मा की शाखाएं प्रशाखाएं, तुम भी उसी की शाखा प्रशाखा हो। इतना जीवित है कि चुकता ही नहीं, फैलता ही चला जाता है। वृक्ष भारत में बड़े प्राचीन समय से जीवन का प्रतीक रहा है। बुद्ध के वृक्ष में बड़ी क्षमता थी, बड़ा बल था, बड़ी संभावना थी। अकेली पीर से कैसे बुद्ध का वृक्ष चिपटा रहता? जैसे जैसे बड़ा शाखाएं प्रशाखाएं हुई, लेकिन
ज्ञानी की दृष्टि में उन शाखाओं प्रशाखाओं में कोई विरोध न था, वे सभी एक ही वृक्ष से जुड़ी थी और एक ही जड़ पर जीवित थी। उन सभी का जीवन एक ही स्रोत से आता था, बुद्ध स्रोत थे। ज्ञानी ने इसमें कुछ विरोध न देखा, इसमें इतना ही देखा कि बुद्ध में बड़ी संभावना है। ये जरा हैरान की बात है, सारी मनुष्य जाति में बुद्ध ने जितनी संभावनाओं को जन्म दिया किसी दूसरे आदमी ने नहीं दिया। महावीर के वृक्ष में केवल दो शाखाएं लगी, दिगंबर श्वेतांबर बस, और उनमें भी कोई बहुत फासला नहीं है, क्षुद्र बातों का फासला है कि कोई महावीर का श्रृंगार करके पूछता है, कोई महावीर को नग्न पूछता है। श्रृंगार के भीतर भी महावीर नग्न है और नग्न में भी उनका बड़ा श्रृंगार है, इसमें कुछ बड़ा फासला नहीं। उनकी नग्नता ही श्रृंगार है, अब और क्या सजाना है उनको, और सजाना तो ऐसे है जैसे कोई सांप पर पैर चिपका है। तो सांप अकेला बिना पैर के खूब चलता था, अब तुम और पैर चिपका के उसे खराब मत करो। ये तो उन पर और श्रृंगार करना ऐसे है जैसे कोई मोर को और रंगों से पोते, मोर वैसे ही काफी रंगीन था, अब तुम कृपा करके रंग खराब मत करो। महावीर की नग्नता में ही खूब श्रृंगार है, उन जैसी सुंदर नग्नता कभी प्रकट हुई तो फिर तुम्हारी मौज है, तुम्हारा मन नहीं मानता। इसलिए नहीं कि महावीर में कुछ कमी है, तुम्हारा मन बिना किए कुछ नहीं मानता, तुम कुछ करना चाहते हो करो भी क्या, महावीर जैसे व्यक्ति के सामने एकदम असमर्थ हो जाते हो। सुंदर कपड़े पहनाते हो, सुंदर आभूषण लगाते हो, ये तुम्हारी राहत है, तो महावीर का कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारे सब वस्त्रों के पीछे भी वे अपनी नग्नता में खड़े नग्न ही है। ऐसे छोटे छोटे फासले हैं। दिगंबर कहते हैं कि उनकी कोई शादी नहीं हुई, श्वेतांबर कहते हैं शादी हुई, क्या फर्क पड़ता है। दिगंबर कहते हैं उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, जब शादी ही नहीं तो बच्चा कैसे हो। श्वेतांबर कहते हैं उनकी एक लड़की थी, पर क्या फर्क पड़ता है। महावीर में से क्या फर्क पड़ता है शादी हुई कि ना हुई, ये तो फिजूल के विस्तार की बातें हैं। महावीर के होने का इससे क्या लेना देना है, शादी हुई हो तो ठीक, न हुई हो तो ठीक, जिसको जैसी मौज हो वैसी कहानी बना ले, लेकिन कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं होगा। जीसस के भी दो शाखाएं फूट के रह गई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, कोई बड़ा विस्तार नहीं होगा। बुद्ध अनूठे हैं, अद्वितीय हैं, सैकड़ों शाखाएं हुई और प्रत्येक शाखा इतनी विराट थी कि उसमें से भी प्रशाखाएं हुई। कहते हैं जितना दर्शन के मार्ग अकेले बुद्ध ने खोले उतने मनुष्य जाति में किसी व्यक्ति ने नहीं खोले। बुद्ध अकेले समस्त प्रकार के दर्शनों का स्रोत बन गए। ऐसी कोई दार्शनिक परंपरा नहीं है जगत में जिसके समतुल परंपरा बुद्ध धर्म में ना हो। अगर तुम बुद्ध धर्म का पूरा इतिहास समझ लो तो बाकी सब धर्मों का इतिहास छोड़ भी दो तो कुछ हार जाना होगा, क्योंकि सारे जगत में जो भी कहीं हुआ है, जो विचार कहीं भी जन्मा है, वो विचार बुद्ध में भी जन्मा है। बुद्ध अकेले बड़े विराट वृक्ष, ये तो सौंदर्य की बात है, ये तो अहोभाव और उत्सव की बात है, इसमें कुछ चिंता का कारण नहीं है। ये तो इतना ही बताता है कि बुद्ध में बड़ी संभावना थी। ज्ञानी ने तो उस संभावना का उपयोग किया, उसमें कोई झगड़ा न था। बिल्कुल विपरीत जाने वाली शाखाएं भी, एक पूरब जा रही है, एक पश्चिम जा रही, फिर भी एक ही तने से जुड़ी होती, विरोध कहां है। और उन दोनों का जीवन स्रोत एक ही जगह से आता है, एक बुद्ध ही फैलते चले गए सब में। इससे कुछ अड़चन न थी, लेकिन अज्ञानी अड़चन खड़ी करता है। अज्ञानी की अड़चन ऐसी है कि वो ये भूल ही जाता है कि सभी विरोध अलग अलग दिशाओं में जाती शाखाएं एक ही स्रोत से जन्मी है। मैंने सुना है एक गुरु के दो शिष्य थे, गर्मी की दोपहर थी, गुरु विश्राम कर रहा था और दोनों उसकी सेवा कर रहे थे। गुरु ने करवट बदली,
तो दोनों शिष्यों ने आधा आधा गुरु को बांट रखा था सेवा के लिए। बाया पैर एक ने ले रखा।

क्योंकि मेरा पैर जहाँ रख गया रख गया, ये कोई साधारण पैर नहीं, अंगद का पैर है। भारी झगड़ा हो गया, दोनों लठ लेके आ गए। गुरु इस उपद्रव सुन के उसकी नींद खुल गई। उसने देखी ये दशा, उसने जब लठ चलने के ही करीब आ गए, लठ चलने वाले थे गुरु पर, क्योंकि जिसका दाया पैर था वो बाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था, और जिसका बाएं पैर था वो दाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था। गुरु ने कहा जरा रुको, तुम मुझे मार ही डालोगे, ये दोनों पैर मेरे, तुमने विभाजन कैसे किया? अज्ञानी बांध लेता है और भूल ही जाता है कि जो उसने बांटा है वो एक ही व्यक्ति के पैर या एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। अज्ञानी ने उपद्रव खड़ा किया, अज्ञानी लड़े, एक दूसरे का विरोध किया, एक दूसरे का खंडन किया, एक दूसरे को नष्ट करने की चेष्टा की। जब संप्रदाय अज्ञानी के हाथ में पड़ता है तब खतरा शुरू होता है। ज्ञानी संप्रदाय को बनाता है, क्योंकि धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं पैदा होती, जितना जीवित धर्म उतनी शाखाएं प्रशाखाएं। दुनिया से संप्रदाय थोड़ी मिटाने हैं, अज्ञानी मिटाने हैं। जिस दिन संप्रदाय मिट जाएंगी दुनिया बड़ी बेरौनक हो जाएगी। उस दिन गुरु बिना पैर के होगा, उसको फिर जैसे भिकमंगों को ठेले पर रख के चलाना पड़ता है ऐसे चलाना पड़ेगा। फिर वृक्ष बिना शाखाओं के होगा, न पक्षी बसेरा करेंगे न राहगीर छाया लेंगे। और जिस वृक्ष में पत्ते न लगते हो शाखाएं न लगती हो उसका इतना ही अर्थ है कि जगह सूख गई, अब वहां जीवन नहीं, जीवन छोड़ चुका उसे, उड़ गया। तुम पूछते हो बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा? नहीं, ज्ञानी के लिए तो वो अब भी एकता में। और तुमसे मैं कहता हूं अज्ञानी के लिए वो तब भी एकता में नहीं था जब बुद्ध जीवित थे, तब भी अज्ञानी अपनी तैयारियां कर रहे थे, तभी फिरके बटने शुरू हो गए थे। बुद्ध के जीते जी अज्ञानियों ने अपने हिसाब बांट लिए थे, अलग अलग कर लिए थे। बुद्ध के मरने से थोड़ी अचानक अज्ञान पैदा होता है, अज्ञानी तो पहले भी अज्ञानी था, वो कोई अचानक थोड़ी अज्ञानी हो गया। और जो अज्ञानी है बुद्ध के जीवित होने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है, अज्ञान तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, बुद्ध क्या कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तो तुम्हें पड़ेगा, समझा सकता हूँ, समझना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम न समझने को ही जिद किए बैठे हो, अगर समझने के लिए तुमने जरा भी तैयारी नहीं दिखाई है, तो बुद्ध लाख सिर पीटते रहे कोई परिणाम नहीं हो सकता।

0: 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में। जिंदगी का ये सफर तय करते, कई रोल्स निभाते, कई बार एक सवाल बार बार उठता है कि कौन हूँ मैं। उस सवाल को हम दबाकर आगे बढ़ जाते हैं और हर रोल को फिर निभाने लगते हैं। लेकिन हमने जो ये सफर तय किया है उसमें इस सवाल को सामने लाए हैं और इस पूरे सफर में ये तलाशने की कोशिश की है, कई जवाब हमें मिले भी हैं, लेकिन हम उस पड़ाव पर पहुंचे थे कि किस तरह से जो हमारी ईगोज हैं वो कई बिहेवियर्स जो हमारे होते हैं उनको बताती हैं कि वो अड़चन बन सकती है और कैसे हम सुप्त अवस्था में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जागना क्यों ज़रूरी है और जागा कैसे जा सकता है, यही आज तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी इस कड़ी में। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, बहुत कुछ हमने अपने बारे में जानने की कोशिश की है, जाना है कि ईगो क्या है। जिसे हम मानते थे कि ईगो है वो कहीं ना कहीं अंदर के आंतरिक भय से जुड़ा था, अटैचमेंट से जुड़ा था, और अब ये भी जान गए हैं कि हम सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं जागना जरूरी है।
2: जागना टू रियलिटी।
1: यस।
2: से अवेकन टू व्हाट? अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस। अभी तक सोए हुए थे, मतलब सोचेंगे क्या सोए हुए थे, कि जो सत्य है उसकी तरफ जैसे मुंह उससे परे हटा हुआ था, आंखें बंद थी, तो जिसको हम कहते हैं अज्ञान की नींद में सोए हुए थे। नहीं कहते कि तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब ज्ञान का नेत्र खुल गया, जो असलियत है, जो सत्यता है, जो अंदर एक प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में जागरूकता हो गई। तो नाउ क्योंकि अब प्रोसेस पता चल गया, अब उसको फॉलो करना शायद थोड़ा सा ईजी हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, जैसा आपने ये कहा कि किसके बारे में जागना है, क्योंकि हमें कई बार कहा जाता था, मुझे भी अगर मैं अपने आप को देखूं तो कहा जाता है कि खुद के बारे में अवेयर हो जाओ, अपने बारे में सोचो, मेडिटेट करो। ये सारे सवाल आते तो थे, सब कुछ तो था, लेकिन करना कैसे है? आज जब ये प्रोसेस समझ में आया है कि ये होता है हमारे अंदर, ना किस तरह से हमारा थॉट जो है वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है, किस तरह से ईगो दो तरह की हो सकती है, हम हर्ट होने को, सेंसिटिविटी को अपनी हम अपनी स्ट्रेंथ मानते थे, वो कहाँ किस तरह से हमारे भय का एक रूप होती
2: है, कोई ना कोई एक अटैचमेंट है,
1: हाँ,
2: जो पकड़ी हुई है, वी हैव टू लेट गो ऑफ दैट।
1: लेकिन ये जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जो सुप्त अवस्था है, हम नहीं जानते कि भाई क्या है हम, उसको जागृत करने का प्रोसेस अब क्या है?
2: We will have to go through a few steps. मतलब ये सब कुछ जैसे आपने कहा हमें समझ पे भी आ गया, फिर भी सारा दिन में करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको समय देना पड़ेगा। एंड वो समय देना मतलब क्या, आप देखो सवेरे से उठते हैं, इट बिगिन्स विद न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इस तरफ से रेडियो ऑन है, चौथी तरफ सब तैयार हो रहे हैं, शोर मच रहा है, एंड एक्चुअली जो सारा दिन हमारा बीतता है वो बहुत शोर में बीतता है। शोर नॉट नेसेसरली बाहर, लेकिन शोर अंदर। यू नो, इफ यू जस्ट एक मिनट के लिए डिटैच होकर सबसे पहले अपने मन की स्थिति को देखें, तो सारा दिन साइलेंस बहुत कम है। सारा दिन मन में ये करना है, ये करना है, जल्दी करो, यहाँ हुआ कि नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे तो ये करना था। द स्पीड ऑफ द माइंड इज वेरी फास्ट। अगर इतनी ज्यादा स्पीड होगी तो फिर रास्ते में कौन आ रहा है जा रहा है वो नहीं दिखाई देगा। यू नो, इफ यू आर गोइंग एट 120 तो यू विल नॉट रियली सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द जर्नी।
1: बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस।
2: इनसाइड में
1: अंदर ही इतनी तेज स्पीड पे चल रहे हैं,
2: बहुत ज्यादा तेज है ना। आप देखो संकल्पों की गति इज अबाउट 25-30 थॉट्स पर मिनट, और आजकल हम बहुत ज्यादा नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं है, वी आर स्लाइटली हायर स्पीड। आप देखो सड़क पर भी गाड़ी चलाने की एक स्पीड रखी जाती है ना, आज कितनी पुलिस खड़ी होती है कि जैसे ही आपने उस स्पीड को क्रॉस किया, स्टॉप। क्यों? जहाँ स्पीड बढ़ेगी वहाँ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। मन की स्पीड इस टाइम कैसी है?
1: बहुत फास्ट है।
2: बहुत फास्ट है। एक संकल्प उसके बाद तुरंत दूसरा, मतलब देयर इज नो टाइम, इतना फास्ट है। और जितनी स्पीड ज्यादा है तो समझ लीजिए कि क्वालिटी ठीक नहीं है। आप देखो जब हम परेशान होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसके बाद तो मन की स्पीड कैसे चलती है? क्यों कहा? अपने को ऐसा समझता है, सबके सामने बोल दिया, मेरा कुछ नहीं है क्या, मेरी सेल्फ, इट्स फास्ट। अगर किसी के लिए अच्छा सोचना है आप उसकी स्पीड देखिए, इट इज स्लो। तो पॉजिटिव थॉट्स विल ऑलवेज बी स्लोअर, एंड नेगेटिव थॉट्स आर ऑलवेज फास्टर. तो अगर बहुत स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है. तो अब अवेयरनेस चाहिए, तो पहली बात तो इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा. हम बहुत ज़्यादा नॉइज सारा दिन कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, इंफॉर्मेशन, नॉइज, टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, यू नो, जस्ट फिलिंग इट इन. जितना भरते जाएंगे उतना
1: हम खाली होते हैं.
2: इट विल गो वेरी फास्ट.
1: इनफैक्ट मैंने हमने ये भी देखा है कि जैसे ही हम खाली होते हैं हम भागते हैं किसी नॉइज की तरफ.
2: हाँ,
1: बिकॉज हम खाली रहना नहीं चाहते. हमें
2: अभ्यास ही नहीं रहा कि दो मिनट अगर बैठ जाए. सो द फर्स्ट thing that we can start is beech mein kuch kshan nikal ke just be quiet and not be quiet just verbally na. shant rehna matlab ye nahi ki sirf mukh se chup rehna, lekin antrik.
1: to kya hum apne thoughts ko control kar sakte hain? us time
2: suppress nahi karna aur na thought ko band karna hai, lekin dekhna hai is samay. let's do it right now. jo sabhi dekh bhi rahe hain is time program ko, is kshan hum kar sakte hain. जो कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं, एक सेकंड के लिए जो कर रहे हैं वो रुक जाइए. जस्ट स्टॉप एंड अभी सिर्फ डिटैच होकर देखिए मेरे मन में इस समय कौन सा संकल्प चल रहा है. एंड वेरी ऑफन वी विल फाइंड कि वो बहुत रेलेवेंट नहीं होगा इस टाइम. वो या तो पास्ट में होगा, कुछ थोड़ी देर पहले किसी से बात की होगी, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, या वो आने वाले टाइम के बारे में प्लान कर रहा होगा अभी ये करना है. वेरी रेयरली वी आर इन द नाउ. इस क्षण का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा रहे होंगे. बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, मन लेकिन पूरा पूरा उस बात को, जब हम जो बात अभी सुन रहे हैं उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना कहाँ पॉसिबल है. तो वो तभी होगा जब माइंड थोड़ा सा साइलेंट होगा. उस ब्लॉटिंग पेपर को क्लीन रखना पड़ेगा. वो ब्लॉटिंग पेपर इतना सैचुरेटेड रहता है कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रह जाती कि कुछ नया डाला जाए. तो इसका एक जेन्युइन अभ्यास अगर हम करना शुरू करें कि बीच बीच में जस्ट बी क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स, एक मिनट, दो मिनट, कुछ मत अभ्यास करें कि कुछ नहीं सोच रहे, बट एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहे ऐसा नहीं होगा. लेकिन करना क्या है, सिर्फ देखना है कि मेरा मन क्या कर रहा है. जैसे हम बीच बीच में चेक करते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं. बीच बीच में जो ऑफिस में सीनियर होगा वो एक राउंड मार के देखेगा कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं. इसी तरह बीच बीच में चेक करना मन क्या कर रहा है. तो डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके चेक कर लेगा ठीक काम कर रहा है नहीं. तो थोड़ा सा उसको प्यार से, अभी आपको इस टाइम ये नहीं सोचना है, अभी आपको ये सोचना है, ब्रिंग इट बैक.
1: ओके,
2: यू हैव टू टॉक टू योर माइंड. इट्स योर माइंड. अगर हम दूसरे को जाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप ऑफिस में एक हेड है, आप अपने ऑफिस में चक्कर लगा के सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं अभी आपको ये नहीं करना ये करना है, आप किससे बात कर रहे हैं? आप उनके मन से ही तो बात कर रहे हैं ना. कान सुनेगा, मन ही तो उस चीज को परसीव करेगा. सबके मन से बात कर सकते हैं, तो अपने मन से क्यों नहीं बात कर सकते?
1: अब अपने मन से, मेरे मन से, मैं, आई द सोल इज टॉकिंग.
2: क्या इट्स लाइक दिस, आई एम सिटिंग हियर एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन पे बात की थी तो मुझे कोई और चीज़ के बारे में पता चला. अब मैं यहाँ कुछ और बात कर रही हूँ आपसे और सोच कुछ और रही हूँ, तो मैं अपने साथ और आपके साथ धोखा
1: है.
2: यू नो, बिकॉज मेरा मन यहाँ होना चाहिए इस टाइम, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा. मैं आराम से आपसे अभी बात करते करते कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन फिर हमारा वो जो रिलेशनशिप बनना चाहिए वो नहीं होगा. थोड़ी देर के बाद कोई आर यू रियली लिसनिंग? ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग. एंड ऊपर ऊपर से वील गो यस यस आई एम लिसनिंग बट नो. एंड फिर हम सुनेंगे लेकिन उसको ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, जाकर कर कुछ और देंगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइंड, मोस्ट ऑफ द टाइम द माइंड वॉज डूइंग समथिंग एल्स. ऑफिस में आप देखो कितनी बार होता है, मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया था ना, आपने सुना नहीं था उस टाइम. सुना तो था, कानों ने सुना था,
1: रजिस्टर नहीं हुआ.
2: दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. आई एम हियरिंग, कान सुन रहे हैं, लिसनिंग
1: समझ रहे हो.
2: तो दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर बीच बीच में हम चेक कर लें कि मन कहाँ है.
1: अच्छा, हम जब चेक कर रहे हैं तो जो विचार, जो संकल्प उसी वक्त चल रहा है उसी को देखें या पीछे जो गुजरा वक्त थोड़ा सा है?
2: अभी चेक करें अभी क्या चल रहा है. कुछ और चल रहा है. अपने आप से पूछें क्या इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है नहीं, ये तो बीती हुई वाली बात है, अभी कुछ और करना है। इसके बारे में कब सोचे? शाम को सोचेंगे, घर जाने के बाद। ठीक है, शाम को हम इसके बारे में सोचेंगे, फुल स्टॉप। इट्स जस्ट दैट वी नेवर टॉक्ड टू आवर माइंड। अगर हमने किसी के साथ बात ही नहीं की, उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कैसे चलना है, तो वो अपने आप चल रहा है
1: हिसाब से जो उसे समझ में।
2: अगर ऑफिस में हम नहीं बताएंगे कि क्या कब करना है, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। तो हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, बीच बीच में स्टॉप करके चेक करना है। दैट इज व्हाट वी से, जस्ट बी क्वाइट फॉर सम टाइम। और थोड़े टाइम के बाद क्या है, मन को पता चल जाएगा काम करने का तरीका कैसा है, एक सिस्टम बन जाएगा, और फिर वो मन उसी सिस्टम के अनुसार चलेगा। लेकिन थोड़ा सा उसके साथ, एंड दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट स्टॉप, डिटैच, चेक, क्या सोच रहे थे? अच्छा, ये वाली बात तो कल के लिए है ना, ये तो कल की मीटिंग में करना है, अभी ये, ओके। लिविंग इन द प्रेजेंट। किसी ने कुछ कह दिया, वो सुनकर घर पहुंच गए, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, घर आ गए, घर में बच्चों के साथ है इस टाइम, वाइफ के साथ है, जितना थोड़ा समय मिलता है इट शुड बी क्वालिटी टाइम। यू नो वी टॉक अबाउट क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम यही है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली अवेलेबल नहीं है। मेंटली अभी भी मन सोच रहा है क्यों ऐसा डांटा, इतनी सी तो बात थी, या वट एवर, टेल द माइंड वो ऑफिस की बात है ना, और शायद उन्होंने जो किया वो ठीक ही किया था, जो भी किया था कल सोचेंगे ऑफिस जाने के बाद, एंड इट विल लिसन। गिव इट वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन, माइंड को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना। अगर हम मन को सिर्फ ये कहेंगे अभी नहीं सोचना, पर ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कल सुबह 9 बजे आना,
1: तब सोचेंगे।
2: यस, एंड इट इज सो परफेक्ट, वो कल सुबह 9 बजे आपको थॉट आ जाएगा।
1: अच्छा, इट लाइक हियर यू,
2: या इट इज लिसनिंग, व्हाट इज इट, इट इज प्रोग्रामिंग, एक इंस्ट्रक्शन फीड हो रही है। कंप्यूटर में भी रिमाइंडर फीड करते हैं ना, टुमारो मॉर्निंग 9 o'clock रिमाइंडर, और वो एग्जैक्ट 9 o'clock आ जाएगा। सेम टू द माइंड,
1: गुड, इट्स लाइक अ गुड, एक्चुअली वी कैन ऑलवेज ट्राई इट आउट,
2: लेट्स ट्राई करेंगे, वो प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी एंड इट विल हैपन। एक बार अगर सपोज उसने आपकी बात नहीं मानी, फिर आ गया, आपको कहा ना कल सुबह 9 बजे, फिर आ गया, क्या कहा था आपको कल सुबह 9 बजे, बस थोड़ा सा, फिर इट्स डन।
1: ओके, That's nice.
2: It's very simple. It's very simple.
1: So okay.
2: But yeah. The thought should be, ये मेरी काम की चीज़ है ही नहीं. So stop. Why am I wasting my energy? Full stop. फिर आएगा thought, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है. It's wastage of energy. Stop. दो बार, तीन बार, finished. नहीं, अगर नहीं stop किया,
1: तो आता रहेगा और वो convert करेगा फिर destiny में.
2: सिर्फ एक नहीं आएगा, इतनी चेन आती है फिर उस थॉट्स के। इसलिए जहां अगर बीच बीच में रुकते हैं ना, तो थोड़ी सी भी क्वालिटी अगर दूसरी साइड पर जा रही है, तो हम उसको जल्दी से
1: वापस ले आते हैं।
2: तो पूरा दिन वेस्ट नहीं होता। कई बार हम अपनी चेकिंग करते हैं लेकिन दिन के एंड पे, बट बाय देन द डे इज ओवर।
1: सो लाइक इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट्स एक्चुअली यू नो लाइक इट्स अ टिप कि वी कैन ऑल यूज इट, इट्स अ प्रैक्टिकल टिप एक्चुअली।
2: सो सिंपल है, बीच बीच में थोड़ा सा क्वाइट हो जाए और अपने मन को देखे। दूसरी चीज जो बहुत सिंपल हमें करनी पड़ेगी, अटैचमेंट्स जो हमने देखी थी, लेट गो। लेट गो करना पड़ेगा।
1: नाउ लेट गो टू द अटैचमेंट,
2: बेसिकली टू द अटैचमेंट,
1: सो दैट इज लाइक वी विल हैव टू गो डाउन, यू नो, लाइक जो हमने पूरा प्रोसेस देखा कि जहां हमने ईगो की बात की, वो ऐसा बिहेवियर जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारे ईगो को जनरेट कर रहा है। बिकॉज अभी ये मिथ भी तो लेके जी रहे थे हम कि सेंसिटिविटी होना या हर्ट होना तो हमारी स्ट्रेंथ है, यू नो लाइक, और हम अपनी ईगो को कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहे थे,
2: राइट।
1: तो वो जैसे रियलाइज हुआ, देन वी गो बैक टू द प्रोसेस,
2: सो वी हैव टू लेट गो। इवन ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज करते हैं, लोग जिनके साथ हम रहते हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, अभी भी वही चीज यूज करेंगे, वही फोन यूज करेंगे, लेकिन डिटैच्ड, ये मेरा है, यूज करने के लिए आया है, एक दिन ये फिनिश हो जाएगा। बट लेट गो, डोंट होल्ड ऑन टू इट। और बहुत चीजें जो हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर, उसको लेट गो करना
1: कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, या पास्ट में जो था वो इतना अच्छा था, वो कहाँ चला गया पास्ट,
2: दैट्स
1: वेरी डिफिकल्ट।
2: अच्छा या नेगेटिव भी,
1: हाँ
2: नेगेटिव को भी पकड़ के रखते हैं,
1: बहुत खराब था, मैंने कैसे जिंदगी गुजारी,
2: उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किसी ने कुछ एक सेंटेंस कह दिया, उसको कितने साल पकड़ के रख सकते हैं। Who will let it go? कौन था? आप खुद ही देखो, आप किसी को भी इस समय याद कर लीजिए जिसका आपका कोई बिटर मेमोरी, आपके अंदर बैठी हुई है,
1: वो लिंगर है, अभी भी लिंगर है, इसका मतलब अपने मैं कभी भी चाहूँ रिवाइव कर सकती हूँ।
2: और जितनी बार आप उसको रिवाइव करेंगे आप अपने आप को कष्ट देते हैं,
1: बिकॉज वी गो थ्रू द सेम पेन,
2: सेम पेन, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एवरीथिंग,
1: एंड दैट केमिकल थिंग, आई स्टिल रिमेंबर दैट, यू नो, बिकॉज़ पेन इज समथिंग which people at times do start enjoying.
2: और आपको पता है कई बार जब शरीर को वो केमिकल नहीं मिला होता बहुत देर के लिए और कोई आ भी नहीं रहा आसपास जो मुझे हर्ट कर रहा है, I just pick up something from the past.
1: पुराना कुछ नहीं, तभी मैं स्टोर करता रहता हूँ, करती रहती हूँ,
2: इतना सारा accumulated है कि fresh talk अगर नहीं भी मिला आज सारा दिन में कि किसी ने कुछ आकर नहीं ऐसा कहा जिससे मुझे बुरा लगे, तो पास्ट का कितना सारा पड़ा है। कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए, just one second is needed, aapne wo incident uthaya and that's it,
1: you get
2: that same pain and everything all over again and then you're like ha mera to bhagya hi aisa hai, wo jo self victimization, self sympathy fir wo shuru ho gayi,
1: we want to change them, yeah. And especially you know when we fall in love, when we care for the other person, or maybe you know like now so I feel that all our belief systems have been actually wrong, maybe you know like standing on wrong aspects, it's like we feel that we are in love with that person, so that person has to become what we expect,
2: want him to be. To hum sara din jisko hum kehte hain hum dusron ki script likhne ki koshish karte hain, aapko aisa karna chahiye, aapko aise uthna chahiye, aise baithna chahiye, aise bolna chahiye, aise kaam karna chahiye, we are writing the script. Jitna hum दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे यहाँ प्रेशर है, क्योंकि आप वैसे बनेंगे नहीं जैसे मैं चाहती हूँ, तो वो सारा दिन मेरी इनर जो कॉन्शियस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं, आप देखो करके देखना, एक दिन का ये एक्सपेरिमेंट है, डोंट कंट्रोल एनीबडी इन द होल डे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जैसे हैं, इट डजंट मीन कि हम किसी को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप डिसिप्लिन करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, आप बहुत ज़्यादा उसको पकड़ कर फोर्सफुली अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, दैट्स ऑल, उसके बाद वो जैसा है यू विल हैव टू एक्सेप्ट, उससे आपकी इनर लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी, नहीं तो इट इज़ अ टर्मोइल, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, तो बी क्वाइट बीच बीच में, लेट गो जो भी अटैचमेंट्स हैं एंड लेट पीपल बी, वो जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, ये एक थॉट भी, ये जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट, लेकिन इफ आई से नहीं आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट, तो इट इज़ एक्सेप्टेंस, तो ये एक्सेप्टेंस भी हमारी इनर स्टेबिलिटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख सकती है, जैसे ही हम ये तीन चीज़ें करना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि लेट गो और लेट बी जब कर लिया, इनर जो सारा जो सूत बहुत मूंझा हुआ है ना वो सारा स्ट्रेटन आउट हो जाएगा, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद, यहाँ एकदम क्लैरिटी आने लगेगी, और जैसे ही वो आने लगेगी फिर जो आपने कहा ना अंदर की आवाज़,

0: वो सुनाई देने लगेगी अंदर की आवाज़। मतलब जब दूसरों के बारे में सोचना बंद करेंगे, दूसरों को कंट्रोल करना बंद करेंगे, तब तो कहीं अपना कोई प्रोसेस दिखाई देना शुरू कर रहा होगा। एंड इसको हम कहते हैं इंट्यूशन। अपनी सॉल्यूशंस खुद से। अभी पहले क्या था, इधर इतना कंफ्यूजन था तो दूसरों से पूछना पड़ता था, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: लेकिन सॉल्यूशन तो मेरे पास है, आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ जब ये सब हट जाएगा तो क्लीन, नाउ आई कैन सी माई ओन सॉल्यूशन, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो वी विल बी एबल टू स्टार्ट लिसनिंग। अंदर वो जो हमारी इंट्यूशन है वो हमारे से बात करना शुरू कर देती है, एंड देन वी रियली वेक अप। क्योंकि वी आर अवेक कि क्या हो रहा है। मतलब फिर क्या हो जाएगा, जो हमने शुरू में कहा कि सब कुछ करते हुए, लोगों से बात करते हुए एक अवेयरनेस क्या चल रहा है अंदर। अभी क्या होता है, हम गुस्सा कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, हर्ट हो जाते हैं, फिर जाके कहीं लगता है शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब एक अवेयरनेस में चलेंगे, गलती होगी, अभी भी बात करते करते मुझे आप पे गुस्सा आ जाए, लेकिन करते करते देयर विल बी एन अवेयरनेस, ओके नो दिस इज रॉन्ग, स्टॉप, चेक, चेंज फास्ट।
1: जैसे कहा जाता था कि भाई गुस्सा आ रहा हो तो आप 10 तक गिन लीजिए, या पानी पी लीजिए, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। वो हो ही नहीं पाता था,
0: वो हो नहीं पाता
1: था, क्योंकि पूरा प्रोसेस नहीं होगा जब
0: तक। और फिर वो एक बाह्य पुरुषार्थ था ना, आप बाहर से पानी पी रहे थे, बट द आइडिया वाज यही कि गिव योरसेल्फ लिटिल गैप टू सी। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा क्लीन अंदर से चल रहे हैं, आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ नहीं, गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, स्टॉप, राइट लेन पर उसको लेके जाना है, एंड इट विल गो। तो यू वेक अप टू द प्रोसेस दैट्स गोइंग ऑन इनसाइड। आप कंटिन्यूसली अवेयर हो जाएंगे, जैसे किसी को क्रिटिसाइज किया तुरंत अवेयरनेस होगी, क्या डर था मुझे, किस लिए मैंने इनको क्रिटिसाइज किया, अच्छा मुझे ये डर था,
1: प्रोसेस शुरू हो जाएगा अंदर तलाश में,
0: मुझे किस बात का डर था, नहीं छोड़ दिया, तो फिर क्रिटिसिज्म बंद। तो बाह्य लेवल से हम नहीं कर सकते क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज वो नहीं होगा अनलेस माय दैट इनर प्रोसेस गेट्स सिंप्लीफाइड। तो अब अवेयरनेस आएगी, अब आउटर बिहेवियर और इनर प्रोसेस
1: के बीच का काम जो
0: हार्मनी। अभी क्या हो रहा था, इनर प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इतना ऊपर कंफ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था, आउटर बिहेवियर में वो सिर्फ आता जाता था, क्वाइट हो गए, साइलेंट कर दिया, अब दिखाई देता है, एंड देन वी वेक अप। एंड सबसे पहली चीज, जब हम वेक अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी हैव अ चॉइस एट एवरी स्टेप, वी हैव अ चॉइस कि हमें कैसे बिहेव करना, हमें क्या बोलना है। एंड ये इतनी डीप रियलाइजेशन होती है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली कोई हैबिट्स एक्चुअली होती ही नहीं है। हम जो कहते हैं ना जी ये तो मेरी आदत है, हमें एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आपने इस तरह से क्यों बोला, जी मेरी आवाज ही ऐसी है, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा, ये तो मेरी आदत है। आदत मतलब ऑटोमेटिक। अब हम ऑटोमेटिक नहीं है, आदत क्या होगा, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अब तो हमारे पास चॉइस है, हर स्टेप पे चॉइस है। तो देयर विल बी नो हैबिट्स, एवरी टाइम यू विल बी
1: अ न्यू पर्सन,
0: न्यू पर्सन।
1: Wow, that's nice actually.
0: Yeah. Even you will not know कि आपका क्या response अब. You will be surprised at your own response. आप खुद हैरान होंगे कि इन्होंने इतना कुछ कह दिया, अच्छा मैंने गुस्सा नहीं किया, how come? पहले तो मैं गुस्सा कर देती थी, but you didn't realize that time you were sleeping. अब आप उठ गए हैं, तो आदतें खत्म हो जाएंगी, and I'll be a new person every time. That's a very important thing. तो ये चार बातें भी अगर हम ठीक से कर ले, let go, let be quiet, start listening, wake up, and know yourself. जो हमने पहले भी देखा कि सबसे important अपने आप को जानना कि ये कौन कर रहा है, ये किसका process है, कौन अंदर काम कर रहा है, और सारा दिन याद रखना मैं कौन। जब हम quiet भी हो जाते हैं, quiet होना मतलब यही संकल्प, मैं कौन जो ये कर रहा है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, उसने इन्होंने आकर ऐसा कुछ कह दिया, लेकिन मैं कौन, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। So every step we will be able to do with that.
1: It's a whole process actually, but then अगर हम steps की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से कुछ आकर होगा, इट इज विद इन अस, यू नो। सबसे पहले आपने बात यही कही कि क्वाइट, शांति, एक चुप रहकर सुनने की जरूरत है,
0: अंदर से चुप। कई बार हम बाहर बहुत शोर में हो सकते हैं, लेकिन अंदर चुप। यू नो, नहीं तो लोग बोलेंगे जी क्या करे, हमेशा ही आवाज है चारों तरफ, बट इट्स नॉट दैट नॉइज, इट्स इंटरनल,
1: इंटरनली यू नो, लाइक हम और वो सुनने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है मेरे अंदर. एंड देन यू सेड कि डिटैचमेंट, लेट गो. एंड थर्ड इज लेट बी, लेट पीपल द वे दे आर. सो इन थिंग
0: बहुत लाइफ ईजी हो जाएगी इफ वी लेट पीपल बी द वे दे आर. सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर आ रही है.
1: बिल्कुल,
0: बहुत ज्यादा.
1: ये किस तरह से इसको एहसास करना है, ये पूरा प्रोसेस है, बट देन इट डस टेक टाइम एक्चुअली शिवानी.
0: नो, इट्स जस्ट बिगिन, यू बिगिन, आप शुरू कीजिए कोई भी चीज. आपने शुरू कर दी, इट्स बिगन. इट्स लाइक हमें उठने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब नींद खुली, इट्स बिगन.
1: लेकिन मुझे दिन भर में बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे ये करना है.
0: थोड़ा सा अटेंशन तो रखना पड़ेगा. थोड़े टाइम के बाद इट्स नेचुरल. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे पानी पीना. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे आराम करना है. करना ही है, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा. इसी तरह मुझे मन को बीच बीच में आराम देना है, दैट इज बी क्वाइट, नहीं तो वो थक जाएगा. थोड़े टाइम के बाद नेचुरल.
1: बिल्कुल, ये जो हमने पूरी एक यात्रा तय की है और जागने तक के प्रोसेस पर आए हैं, ये एक बात समझ में आती है कि ये जिंदगी की शुरुआत में ही अगर समझ ली जाए तो हम इतना लंबा सोते हुए वक्त नहीं गुजार देंगे. तो सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा ये जो पूरी हमारी बातचीत रही, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू.
1: आज हमने ये समझा कि हम जाग सकते हैं, इतनी आसानी से जागा जा सकता है. सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ क्षणों की चुप्पी बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है. सुनना अपने अंदर कि क्या हमारे अंदर चल रहा है, क्या हम कह रहे हैं, या जो भी हमारे थॉट आ रहे हैं. और उसके बाद लेट द वे पीपल आर, लेट बी, जिस तरह से हैं उन्हें वैसे ही रहने दें और हम भी लेट गो कर दें. यानी जिसके साथ हम अटैच हो जाते हैं उन्हें हम जाने दें. शायद एक बात एक और कहना चाहेंगे सिस्टर शिवानी कि कहा जाता है कि जो अपना है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा.
0: They will come back.
1: और जो कभी था नहीं आपका, उसको आप कितना भी रोक लीजिए.
0: तो ये सब फिलोसफिकली हमें पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में
1: बहुत मुश्किल है. नमस्कार.